0: अफसरों पर भ्रिकटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है, क्या वाकई न्याय होगा?
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता? और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले भैया से हमने कहा भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए वीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा।
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है, अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ही बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
12: जी वो बंदा जी मैं एक बार दस देना वो बंदा जी जिहड़ा जगमन जगमन है कोई वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं संगल लगते नहीं।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
13: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
14: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई तो अननोन नंबर से था, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ फिर उसके बाद की आपको बात करें। कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
14: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ तो किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
15: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ना मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैनू दोषी करार देता गया।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
16: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
17: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
18: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर के मर्डर की प्लानिंग करती रही और मंगेतर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था, और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिलती, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे डर भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सपने में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सपने में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था, और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की मां केतन की मां को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए। पहले मेरा बेटा बच गया, उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही सिया। सिया ऐसे क्यों कर रही है?
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची, पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर, जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे, कुछ ऐसा दिखाया नहीं। और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी, दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिसे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Each year, KellyBlueBook.com ranks vehicles on the road for predicted future resale value. And for 2026, Toyota dominates the top of the list. 4Runner ranks number 3, the Tundra is number 2, and the Tacoma is number 1 overall again. The fact is Toyota works hard on both ends of ownership with special low APR financing rates available on Tacoma and Tundra right now at your local Toyota dealer. But also because you're getting trucks that are built to lead in affordability tomorrow. 4Runner, Tundra, and Tacoma are all expected to vastly outperform the average vehicle in resale value after 5 years of ownership, according to KBB, which can mean thousands more in your pocket when it's time to sell or trade in. That kind of affordability is hard to find anywhere else. So stop by your local Toyota dealer or visit Toyota.com and start shopping today. Projected resale value information is specific to the 2026 model year. For more information, visit KellyBlueBooksKBB.com. Toyota, let's go places.
8: कौन सी है साल की सबसे बड़ी एकादशी? साल की सबसे बड़ी एकादशी का क्या है विधान? और साल की सबसे बड़ी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

कोलकाता गोदाम हादसे में राहत बचाव का काम जारी। 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। अब तक 5 की मौत की पुष्टि। 3 आरोपी गिरफ्तार। कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा नियमों को लेकर सवाल। हादसे को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। ममता राज में गोदाम निर्माण की मंजूरी। फाइलों में मिली खामियां। भ्रष्टाचार निरोधी कानून लाने की तैयारी। सभी निर्माण कार्यों पर रोक। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। जलने से नहीं, दम घुटने से हुई 15 बच्चों की मौत। एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी। अखिलेश ने पूछा 10 साल में क्यों नहीं की कार्रवाई। आज उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिवस मनाएगी कांग्रेस। 2027 के चुनाव से पहले दलितों और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने की कोशिश। शहर शहर सम्मेलन, पदयात्रा का प्लान। और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। 17 लोग घायल। लापता लोगों की तलाश जारी। भारी भूस्खलन से तमाम रास्ते बंद हुए।

0: आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बुधवार की दोपहर जो हादसा हुआ है उसमें अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मलबे में दबे 21 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, जिन्हें निकाल लिया गया है। इनमें से 2 की हालत हालांकि गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया। मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लगातार राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है। मलबे के अंदर से हर संभावित जीवित व्यक्तियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे इसकी भी जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है। लेकिन लापरवाही के आरोप में बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल की जा रही है। मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मिलकर अभियान चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है।
1: जो ठेकेदार है, जो काम लिया है, उसको वर्कर का सेफ्टी देना चाहिए ना। वो बिना सेफ्टी का वर्कर काम करेगा? ये लोग इतने वर्कर लोग काम कर रहे बिना सेफ्टी का करेगा? हाँ, वर्कर को सेफ्टी चाहिए, इसलिए वर्कर काम करेगा।
2: पता ही है, अभी नहीं मिला उसको।
3: दम कहीं होगा, दबाव होगा, बैठा होगा, मुंह से कोई निकाल
2: वाले के लिए एम्बुलेंस तो यहाँ से बोलो दादा डेढ़ लाख की वाले
4: मन जोड़ को।
0: तो देर रात शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की, उन्होंने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि सबका बेहतरीन इलाज किया जाएगा और ये भी कि जितने भी संभावित जीवित मलबे में हो सकते हैं उन्हें निकालने की भी कोशिश की जाएगी। ये देर शाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब अस्पताल पहुंचे, जिन घायलों को 15 लोग लगभग अभी तक निकाले गए, रेस्क्यू किए गए हैं, जो घायल अवस्था में अस्पताल में हैं, 2 की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, 2 की हालत ज़्यादा नाजुक है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम का शेड गिरने से यह हादसा हुआ। तमाम एजेंसियां पूरी रात अभी भी वहां पर मलबा हटाए जाने का काम जारी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवित बचाया जा सके। हालांकि प्रेस जानकारी ये भी आई कि कई लोग मलबे के नीचे दबे थे जो कि उस समय सांसें ले रहे थे, जिन्हें पानी और ऑक्सीजन भी देने की कोशिश की गई थी।
5: रेस्क्यू करा गया है, तार मध्ये 5টা ব্রড ডেথ আছে আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2 ক্রিটিক্যাল আছে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। 18 জন আউট অফ ডেঞ্জার আছে, 2 ক্রিটিক্যাল আছে।
0: हमारे सहयोगी तपस सेन कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। तपस, ताजा जानकारी क्या है, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी कितने लोगों की संभावना ये जताई गई है जो अभी भी मलबे में शामिल हो सकते हैं?
6: जी देखिए, रात भर ये उद्धार कार्य चला है और ये निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है ये गिरने की वजह से कई लोग दब गए थे, लेकिन तुरंत वहां पे कार्रवाई की गई। एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें वहां पर पहुंची, 4 कलम आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। और जो ताजा जानकारी के मुताबिक 25 लोग अभी तक रेस्क्यू हो पाए हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। और जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कल रात को कहा कि 2 लोगों की हालत जो है वो गंभीर है। इसी बीच सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और उन अहम फैसलों में ये है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता कॉरपोरेशन के अधीन जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इमारतें हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो, उन सारी इमारतों के बनने पर पाबंदी लगाई गई है। 31 जुलाई तक पहले सारे बिल्डिंगों की जो ऑडिट है वो की जाएगी, उसके बाद उन्हें हरी झंडी मिलने के बाद तभी वो काम शुरू कर सकते हैं। और देर रात का जो अपडेट है, कोलकाता पुलिस के साथ एक SIT की गठन की गई है, जहां डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के, होमिसाइड डिपार्टमेंट के अफसर रहेंगे। और ये जो SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है, ये तारातला जो बिल्डिंग बह गया इस मामले में एक जांच शुरू करेगी और जांच में ये देखेगी कि इसमें टेक्निकल खामियां कहां थी और या फिर जो जिस तरीके के सामानों का इस्तेमाल किया गया था वो किस हद तक क्वालिटी के थे, ये सारी जानकारी वो जाते ही परखेंगे। और इसके लिए एक SIT की गठन की गई है, जो माना जा रहा है कि आज से ही अपना काम शुरू कर देगी। आशुतोष।
0: ठीक है तपस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा हुआ है और यहां भी एसआईटी गठित कर दी गई है। उधर कोलकाता में गोदाम हादसे को लेकर के बंगाल सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि गोदाम के निर्माण संबंधी मंजूरी टीएमसी के शासनकाल में दी गई थी, जिसमें काफी खामियां हैं। अब शुभेंदु सरकार भ्रष्टाचार रोधी कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए 29 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और उसके लिए पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाएगी।
4: 17/1/2026 से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन देवा हुई है। आगे हमरा सरकारे आसार आगे जे प्लान सैंक्शन हुई है।
7: তাই যদি হয় ইমিডিয়েটলি আমি অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রীকে ইমিডিয়েট স্টেপ নিন, এর জন্য একদম সময় নষ্ট করবেন না, ইমিডিয়েট স্টেপ নিন। যারা যারা এসব করেছে তাদেরকে সবাইকে বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন।
0: तो पश्चिम बंगाल में इस हादसे के बाद सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। तो यहां पर भी इस हादसे के बाद कोलकाता गोदाम हादसे में एक एसआईटी गठित कर दी है, जो जांच करेगी और ये बताएगी कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाही किसकी थी। तारातला पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है और एसआईटी आज से जांच पड़ताल शुरू करेगी। वो ये बताएगी कि आखिर इस इमारत को अनुमति कैसे मिली, किस तरह की खामियां थी तो किसकी गलती थी, अनुमति में अगर लापरवाही थी तो किसकी गलती थी। हालांकि चूंकि कोलकाता नगर निगम का ये प्रोजेक्ट था, जिसके लिए सीधे सीधे कोलकाता नगर निगम ही जिम्मेदार है। नगर निगम का अगर ये प्रोजेक्ट था तो नगर निगम के कमिश्नर से लेकर के उस समय के महापौर और उसे तमाम सारे लोग, ये प्राथमिक भूमिका होती है। लेकिन अब एसआईटी गठित कर दी गई है तो एसआईटी इस मामले में जानकारी देगी, उसी के साथ अपनी रिपोर्ट देगी। फिलहाल इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में पुल गिरने की जांच होगी, लेकिन एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है। दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भुकते ताने हुए हैं। अयोध्या से लखनऊ तक जनता के सवाल हैं कि क्या न्याय होगा और होगा तो कैसे होगा।
8: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
9: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
10: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
9: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
11: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
9: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
12: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
10: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं नहाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
9: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए, ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
10: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
9: इसीलिए कटघरे में सरकार है क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: मन में सवाल हर किसी के होगा कि अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी और लूट हो गई, लेकिन उसके बाद क्या ये जांच हो रही है? क्या जांच ऐसे ही होती है? क्या हर अपराध की जांच ऐसे होती है? रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर के भी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अफसरों की नींद टूटी है, लेकिन अधिकारी एक्शन कम खानापूर्ति ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
13: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
9: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
14: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बाड़ी मिली।
9: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
15: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
9: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
15: उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
16: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
9: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
17: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पर बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
9: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
17: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है, अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
9: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
10: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
18: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कहीं पर सिस्टम की गलती होती है, कहीं सरकार की गलती होती है, दोष बाबुओं के कंधे पर आ जाता है और कुल मिलाकर सरकार आरोप से बच जाती है। लेकिन कटघरे में बिहार की सम्राट सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मामले में चारों ओर से सवाल उठ रहे हैं। सरकार को अब न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा है।
19: सम्राट एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
9: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
20: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
9: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
21: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
9: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
22: सीधे उसको पकड़ लेना।

0: हो सकता है कि गृहमंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
1: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
2: उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया था, वो रिपोर्ट अब फर्जी होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
3: निजी वो बंदा जिहड़े मैं इहदी बारे दस देना, वो बंदा जी जिहड़ा जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते नहीं।
1: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
4: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
1: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था, वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
5: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, मैंने फोन उठाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
1: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया, उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
5: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर दी, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
1: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
6: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ना मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैनू दोषी करार देता है।
1: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
7: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
8: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
9: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
1: पंजाब चुनाव

0: से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: कौन सी है साल की सबसे बड़ी एकादशी? साल की सबसे बड़ी एकादशी का क्या है विधान? और साल की सबसे बड़ी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
4: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की थी। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ जब ओल्ड राजेंद्र नगर की
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 5 की मौत की पुष्टि, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। हादसे को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, ममता राज में गोदाम निर्माण की मंजूरी, फाइलों में मिली खामियां, भ्रष्टाचार निरोधी कानून लाने की तैयारी, सभी निर्माण कार्यों पर रोक। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, जलने से नहीं दम घुटने से हुई थी 15 बच्चों की मौत, एलडीए के 19 इंजीनियरों पर एक्शन की तैयारी, अखिलेश ने पूछा 10 साल में क्यों नहीं की कार्रवाई। आज उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिवस मनाएगी कांग्रेस, 2027 के चुनाव से पहले दलितों और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने की कोशिश, शहर शहर सम्मेलन पदयात्रा का प्लान। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, 17 लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी, भारी भूस्खलन से तमाम रास्ते बंद।

देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करने एक बड़ी खबर के साथ, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में जोरदार भूकंप आया जिससे भारी तबाही हुई है, लोग दहशत में हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 नापी गई है, 7.5, एक नहीं दो भूकंप, पहले 7.5 रिक्टर का भूकंप, उसके बाद 7.1 रिक्टर का भूकंप, दो लगातार भूकंप के झटकों से वेनेजुएला दहल गया। युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र मापा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य भूकंप आने से महज 40 सेकंड पहले 7.1 तीव्रता का एक झटका भी महसूस किया गया। लगातार दो झटकों से तमाम इमारतें धराशायी हो गई हैं। कैरकस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी इलाके के आसपास देश की बड़ी रिफाइनरियां भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ वेनेजुएला के तटीय इलाकों में सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए तस्वीरें, तो कैरकस के पास सबसे ज्यादा ये नुकसान हुआ है और वेनेजुएला जहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं और अब तक जो तस्वीरें ज्यादातर आ रही हैं वहां पर सब कुछ बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, यानी गगनचुंबी इमारतें बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अब जो तस्वीरें आ रही है, देखिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं वेनेजुएला की, दो भूकंप एक के बाद एक 7.5 की तीव्रता के। देखें ये एक ऊंची इमारत नजर आ रही है, बगल की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें 8-10 मंजिला इमारत है, लेकिन जब दो भूकंप आए उसके बाद बिल्कुल फ्लैट ही, बिल्कुल आपको नेपाल में आए उस 2014 के भूकंप की याद दिलाता है कि ऐसे सब कुछ पूरी के पूरी इमारत जो है वो मलबे में। देखिए एक इमारत वहां संभवतः 18 से 20 मंजिल है और इसके बगल की इमारत है पूरी तरह जमींदोज हो गई है। तो दो भूकंप 7.5 रिक्टर का एक, उसके बाद एक 7.1 रिक्टर का भूकंप आता है और इसी के चलते लगातार ऐसे झटके महसूस किए जाते हैं। वेनेजुएला में आखिरी भूकंप की तीव्रता 6 रिक्टर महसूस की गई थी, तो ये पिछले 100 सालों में दक्षिण अमेरिकाई देश के लिए बिल्कुल सबसे खतरनाक भूकंप है। देखिए आप जो तस्वीर आ रही है, देखिए कैसे सब कुछ हिलता जाता है, पूरी की पूरी इमारत के आसपास इलाके लोग उस समय दहशत में थे, भाग रहे थे और उसी के बाद अब पूरा शहर वेनेजुएला के आसपास, हालांकि अभी तक मरने वालों का जो आंकड़ा है उसकी जानकारी नहीं आई है क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय अपने दफ्तरों में थे। और ये देखिए ये कैरकस एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जो लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे या वहां से बाहर निकल रहे थे, अचानक इस तरह भूकंप आया कि लोग दहशत में थे, छुपने की कोई, देखिए एक आदमी यहां लेट गया है, उसके बाद यहां पर भागने की कोशिश की जा रही है। दहशत की ये तस्वीर है वेनेजुएला में, 100 सालों में सबसे खतरनाक भूकंप ने वेनेजुएला को प्रभावित किया है और एक के बाद एक दो, यानी ट्विन अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, दो भूकंप लगातार आए हैं और उसी के बाद आमतौर पर हम देखते हैं कि पहले बड़ा भूकंप आता है फिर आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन यहां आफ्टर शॉक भी 7.7 की रिक्टर से ज्यादा था और 7 सबसे भी, ये देखिए जैसे भूकंप आया, दूसरी तस्वीर है, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दहशत में उस समय सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं, लेकिन उस समय इतने खुले इलाके में अगर पूरा इलाका हिल रहा है तो आप कहां सुरक्षा खोजेंगे, कहां पर भागकर जाएंगे, कहां जान बचाएंगे। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कई गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो पूरी तरह समतल हो चुकी हैं, मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने भी मदद भेजने की अपील की है दक्षिण अमेरिकी राज्य। और इसी के बाद अब जो जानकारियां धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सोचिए इस इमारत में अगर ऊपर नीचे हिस्सा गिरता है तो कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे। ऐसे ही पूरे कैरकस से अभी तक जो जानकारी आ रही है कि सारी इमारतें नीचे गिरी हुई हैं और ऐसे में कितने लोग उसमें मारे जा सकते हैं, इसकी संख्या जो है बेहद भयानक दृश्य है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर लोग भगदड़ में दिखाई दे रहे हैं, दहशत में दिखाई दे रहे हैं। दो ताकतवर भूकंप, 100 सालों का सबसे खतरनाक भूकंप जिसने पूरे वेनेजुएला को हिला दिया। ये देखिए पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक आया हालांकि राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ी, क्योंकि वेनेजुएला के पास उस तरह की क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े मिशन अभियान को अंजाम दे सके और तटीय इलाकों पर ऊपर से सुनामी का भी खतरा अब बरकरार है। इमारतें ढह गई भूकंप के चलते, भारी तबाही दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आई है। और इतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा यह है कि जिन इलाकों के पास ये केंद्र है, एपिसेंटर है, वहां पर कई सारी तेल रिफाइनरियां हैं जिसके चलते खतरा और भी बढ़ सकता है। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, दिल्ली के नंद नगरी इलाके में देर रात एक निजी बस बेकाबू हो गई। बस डिपो के पास तेज रफ्तार बस ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8-10 लोगों को बस ने कुचल दिया। इनमें से 5 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बस नंद नगरी फ्लाईओवर से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक पहले एक टैक्सी को टक्कर मारी, उसके बाद 3 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। हादसे से अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते नजर आए।
खबर झांसी से, जहां पड़ोसियों के बीच हिंसक विवाद हुआ। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर एक युवती के साथ मारपीट की। अब आरोप यह है कि युवती के घर में उन्होंने आग लगा दी और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक झांसी के पंचवटी इलाके में रहने वाली रुचिता कुशवाहा अपने परिवार के साथ एक जिम चलाती थी। उनका आरोप है कि पड़ोसी लंबे समय से जिम बंद करने का दबाव बना रहे हैं और आए दिन विवाद करते रहते हैं। रुचिता का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने, जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। मुहर्रम नजदीक है और उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस बल तैनाती है। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ताजिया की ऊंचाई, परंपरागत मार्गों के नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कई शहरों में शांतिपूर्ण सुरक्षित माहौल में धार्मिक आयोजन संपन्न कराने के लिए संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों की पहचान भी कर ली गई है। अधिकारियों ने संबंधित थाना इलाके जो प्रभारी हैं उनको विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। जुलूस मार्गों का निरीक्षण करके सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अब मॉनसून लगभग हर इलाके तक पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो अपने आप के अंदर जिज्ञासा होती है समंदर किनारे जाएं तो लहरों का मजा लें। इस खबर को देखिएगा क्योंकि गोवा के बागा समंदर के किनारे लहरों का रोमांच देखना एक युवक को भारी पड़ गया। कर्नाटक का रहने वाला 33 साल का ये युवक चट्टान पर बैठकर समंदर की लहरें देख रहा था। गोवा गया था तभी तेज लहर उसे समंदर में बहा ले गई। उसने तैरकर बचने की कोशिश की लेकिन उफनते समंदर में वो डूब गया। बाद में उसका शव बरामद हुआ। जो वहां आई विटनेस थे उन्होंने कहा कि समंदर में गिरने के बाद युवक ने तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश भी की लेकिन मानसून के कारण समंदर में ऊंची और तेज लहरें उठ रही थी जिनसे बाहर निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो सका। ये देखिए, कहां तो लहरों का सामना करना था लेकिन लहरों का सामना करने की बहादुरी युवक को भारी पड़ गई। को बता दें जब समंदर में इस तरह मानसून के टाइम लहरें उठती हैं तो जितनी तेजी से वो आगे जाती हैं वो पीछे भी पानी उतनी ही तेजी से धकेलती हैं। अब एक सामान्य शरीर पानी के विपरीत दिशा में तैरने की जब कोशिश करता है तो तैर तो सकता है, समंदर में तैरना आसान होता है, लेकिन जब लहरें इतनी तेज आगे आती हैं तो उतनी ही तेज वो पीछे जाती है। देखिए, वहां लहर उसके शरीर को आगे फेंक रही है लेकिन जब वो पीछे खींच रही, इसी के साथ वो किनारे से दूर होता गया और डूब गया। तो रोमांच के चक्कर में कभी भी इस तरह का खतरा मोल ना ले। रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र के अकोला में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई और पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। 24 घंटों में तेज बारिश के चलते नदियां, नाले, ओढ़े सब उफान पर आ गए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अकोट, मुर्तिजापुर, इन तमाम इलाकों में बारिश के कारण गाँव शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिसमें घरों में रखा अनाज, फर्नीचर, अन्य जरूरी सारा सामान खराब हो गया। अचानक ऐसी स्थिति के चलते नागरिकों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरबा जिले में दो पक्षों के झगड़े के बीच बचाव का प्रयास कर रहे एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिता पुत्र सहित तीन वयस्क और तीन नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जांच में यह पता चला कि दो पक्षों के बीच करीब एक सप्ताह पहले इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर के विवाद हो गया था। बाद में मारपीट तक पहुंच गया। इस मामले में थाने में शिकायत दी गई। शिकायत देने के बाद जब मामला बढ़ा तो एक युवक बीच बचाव के लिए आया और जो बीच बचाव करने आया वो भी मारा गया। इश्क क्या नहीं करवाता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, इश्क, धोखा, न जाने कितनी कहानियां आपने सुनी है, पढ़ी हैं, लेकिन जो कुछ पुणे में हुआ ना उसने हर किसी को चौंका दिया। एक करोड़पति परिवार की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतर का कत्ल कर देती है। बड़ी बात यह है कि मंगेतर लड़की पर प्यार लुटाता रहा, लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर के मर्डर की प्लानिंग करती रही और मंगेतर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दे रही थी, यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर सिर्फ हैरान नहीं रहेंगे, ताज्जुब करेंगे कि एक लड़की ने ऐसा क्यों किया। देखिए प्यार की एक ऐसी दास्तां जिसने एक इंसान की जान ले ली।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन टूटता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था। और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिली, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे डर भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की मां केतन की मां को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए पहले, मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या हसीना थी, क्या दीवाना था। एक बार एक और ऐसी कथा जिसमें एक ऐसे आदमी की जान चली गई जो अपनी जान लुटा रहा था। प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारी बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 साल की सिया के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर कातिलों को भी मात दे देगी। आखिर करोड़पति कारोबारी के परिवार से आने वाली सिया को कत्ल का आइडिया कहां से मिला? कैसे प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची, पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर, जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पता चला कि वो अकेली ही आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे, कुछ ऐसा दिखाया नहीं। और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी, दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिसे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद घर में ट्रंप घिर गए हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान रोको युद्ध प्रस्ताव पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी के पास मौजूद बहमत के बाद ईरान के पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई। अमेरिकी संसद ने भी ईरान पर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान किया है। अमेरिकी सांसद मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है।

0: पहले ईरान के आगे झुके और घर में ट्रंप घिरे। अमेरिकी सेनेट की ईरान युद्ध रोकने पर मोहर। ईरान युद्ध पर ट्रंप की पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा। पीस डील पर ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत नहीं। ट्रंप की हेकड़ी गुल, अब दिमाग में है टेंशन फुल। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की शर्तों के आगे झुककर शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत करने पड़े। अब ट्रंप की युद्ध नीति पर अमेरिकी सेनेट ने पानी फेर दिया है। एक के बाद एक ट्रंप को जोर का झटका जोर से लगा है। सोचिए, जिस सदन में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, उसी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के पक्ष में 50 मत पड़े, जबकि विरोध में 48। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी यही प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी बात यह है कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। घर पर मोर्चे पर ट्रंप को मिली करारी शिकस्त से पहले ईरान के साथ हुई डील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति घिरे हुए हैं। फिर चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा हो या फिर इसराइल को लेकर ट्रंप और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद हो, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप के दावों को ईरान खारिज कर चुका है, तो लेबनान को लेकर ट्रंप के मंत्रिमंडल में बड़ा कंफ्यूजन है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अपनी गलतियों और नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध रोको प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने अपनी नाकामी को जीत बताते हुए दावा किया, मैंने ईरान को कमजोर स्थिति में डाल दिया है, वो गिरने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का जमकर सम्मान कर रहा है। और अमेरिकी सीनेट ने एक गलत समय पर और अर्थहीन युद्ध शक्ति अधिनियम पर मतदान करने का फैसला किया। दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक को ये बताते हुए कि अमेरिका को वो पसंद नहीं है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद और समर्थन किया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा, इसका क्या मतलब है? इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा काम पूरा करता हूँ।
1: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: कौन सी है साल की सबसे बड़ी एकादशी? साल की सबसे बड़ी एकादशी का क्या है विधान? और साल की सबसे बड़ी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दो शक्तिशाली भूकंप से कांपा वेनेजुएला, राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा ढहा, 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप। कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 5 मौत की पुष्टि, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, जलने से नहीं दम घुटने से हुई 15 बच्चों की मौत, एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी, अखिलेश ने पूछा 10 साल में क्यों नहीं की कार्रवाई। आज यूपी में आरक्षण दिवस मनाएगी कांग्रेस, 2027 के चुनाव से पहले दलितों और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने की कोशिश, शहर शहर सम्मेलन पदयात्रा का प्लान। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, 17 लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी, भारी भूस्खलन से तमाम रास्ते बंद।

के साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दो ताकतवर भूकंप से वेनेजुएला कांप उठा। वेनेजुएला में दो भूकंप के झटके एक के बाद एक, 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके तुरंत बाद 7.1 की तीव्रता का भूकंप, जिसके बाद राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में इमारतों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई सारी इमारतें बिल्कुल समतल हो गई हैं। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का, जिसका केंद्र कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में, गहराई 13 किलोमीटर, और उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के भीतर 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। दूसरे भूकंप का केंद्र मोरोन शहर के दक्षिण पश्चिम में, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। कराकस के एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे, राहत बचाव कार्य की जानकारी देंगे। कई सारी इमारतें लॉस पालोस, ग्रेनेडेस, अल्टामिरा, एल पार्सियो, करासियो, सिबकान, चकाओ, बरूता, सैन बर्नार्डिनो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और लगातार आफ्टर शॉक के चलते लोग सड़कों पर रह गए, घरों में नहीं जाने को तैयार हैं। कई सारे इलाकों में ऑयल, वेनेजुएला की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं। हालांकि यूएसजीसी ने इसके पहले सुनामी की वार्निंग भी जारी की थी, जिसका असर अमेरिकी तटीय इलाकों को भी हो सकता था, लेकिन सुनामी वार्निंग को फिर वापस ले लिया गया है। लेकिन भूकंप के बाद आई तबाही की ये तस्वीरें, ये मंजर बता रहा है। आपको भी बता दें, इससे पहले जो सबसे बड़ा भूकंप वेनेजुएला ने देखा था वो 6.1 रिक्टर का था, लेकिन पिछले 100 सालों में वेनेजुएला के लिए ये सबसे बड़ा भूकंप है। वेनेजुएला ने जो भूकंप के झटके देखे हैं वो बेहद इंटेंसिटी कम रहे हैं, कई बार 2 रिक्टर के भूकंप, कई बार 3 रिक्टर के भूकंप, और सबसे बड़ा जो मंजर उन्होंने देखा वो 6 की तीव्रता का था। लेकिन अब लगातार इसमें आफ्टर शॉक्स आए हैं, और उस आफ्टर शॉक्स में कैराकस से बेहद करीब, और इसी के चलते कैरेबियाई तटीय, जो कैरेबियन समंदर है, उसके इलाकों में सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उसको फिर वापस ले लिया गया है। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कई सारी गगनचुंबी इमारतें जब नीचे गिरती हैं तो उसके बाद क्या उसका असर होता है। मरने वालों का आंकड़ा अभी तक नहीं सामने आ पाया है, घायलों की संख्या भी पता नहीं चल पाई है, क्योंकि ये तबाही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 7.5 समझिए कि 7 सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है, और ऐसे भूकंप में भी एक के बाद एक आफ्टर शॉक आए हैं और 2 बड़े भूकंप आए हैं। तो डेलिसी रॉड्रिगेस, जो कि प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वो इससे जुड़ी जानकारी देंगे और राहत बचाव कार्यों का भी जायजा देंगे। लेकिन इस भूकंप के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई थी। लागवेरा जो इलाका है वहां सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिला है, क्योंकि ये एपिसेंटर है कैराकस के पास, और इसीलिए यहां पर बहुत सारी इमारतों की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वो बिल्कुल नीचे गिर गई हैं, और सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो लागवेरा इलाके में ही दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आसपास जो वेनेजुएला के आसपास कई सारे इलाके हैं वहां पर सड़कें, मुख्य सड़कें कट गई हैं, वहां पर कई सारे जो ब्रिज हैं वो टूट गए हैं, लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, कई जगहों पर सड़कों पर भारी दरारें आई हैं, और पोटेंशियल सुनामी वार्निंग भी जारी की गई थी वेनेजुएला के लिए, बोनारियो के लिए, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट, तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है भाग्य चक्र का।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साल की कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दो एकादशियों को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी। तो आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में और इसके महत्व के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र शाम के 4:29 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव में एक भाई थे भीम। भीम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और भूख की वजह से मूर्छित हो गए थे, इसीलिए इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है, निर्जल, और बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल इस दिन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा निर्जल एकादशी पर व्रत रखकर उपासना करने से, साधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी के दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो साल में अगर आप किसी भी एकादशी का उपवास नहीं रखते और नियम पूर्वक, विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, साधना पूजा करते हैं, तो निर्जला एकादशी का शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि,
नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आप निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं तो इसकी विधि क्या है? प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीं श्रियै नमः, या श्री हरि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। निर्जला एकादशी पर प्यासों को पानी पिलाना, वृक्षों में जल डालना बड़ा पवित्र माना जाता है, तो आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। देखिए नियम ये कहता है कि आज के दिन निर्जला उपवास रखिए, जल मत पीजिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, तब आप नींबू पानी पी करके और फल खा करके भी उपवास रख सकते हैं। आज उपवास जरूर रखिएगा, अगर निर्जल रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज के दिन जल पीकर फल खाकर भी उपवास रखिए। दान जरूर करिए और आज के दिन अधिक से अधिक अपने इष्ट देव की या भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। निर्जला एकादशी पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न जयदीप जी ने हमें लिखा है और जयदीप जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1975। जन्म का समय 4:30 शाम को। जन्म स्थान है आजमगढ़। जयदीप जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ हमेशा बनी रहती है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। जयदीप जी, कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में ज्यादातर आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करें और डॉक्टर की सलाह माने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख पाते तो कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए केवल जल पीकर और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय अपने गुरु या अपने इष्ट देव या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। आज रात में अगर आप जगें 11 बजे से 1 बजे के बीच में और रात में जग करके अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। और देखिए, उपवास का मतलब होता है उप मतलब निकट, वास का मतलब रहना। भगवान के निकट रहने का दिन भर प्रयास करिए, तो ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधा राधा, जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसका अधिक से अधिक जप करिए और अपना मन ध्यान में लगाइए। आज के दिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप कुछ भी ना कर पाए अगर
तो आज के दिन प्यासों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, जल और जल के पात्र का अगर आप दान करें तो ऐसा करना बहुत शुभकारी होगा। अगर आज के दिन आप जल पिलाते हैं, जल के पात्र का दान करते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं, तो आज जल का दान करना और जल पिलाना अत्यधिक पुण्य का कारण बनेगा। निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती भी आती है। गायत्री जयंती का क्या महत्व है और क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार

बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। गायत्री जयंती की महिमा क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी और कहीं कहीं पर एकादशी पर गायत्री जयंती मनाई जाती है। आम तौर पर निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती का पर्व लगभग एक ही साथ आता है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। जो गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो गायत्री मंत्र वेदों का मूल है, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है और मुक्ति का मंत्र है। वो मंत्र इतना मूल्यवान है कि ऐसा माना जाता है कि वो माता के स्वरूप में हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए इस दिन को वेद माता गायत्री के प्राकट्य के रूप में मनाते हैं। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और गायत्री जयंती पर अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से अनुमति लेकर अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें सुबह और शाम कम से कम 11-11 माला अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें आपको सन्मार्ग मिलेगा, आपकी बुद्धि उचित रास्ते पर चलेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है लेकिन मुझे गुरु नहीं मिल पा रहे, गुरु प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो पा रही। तो जिनको गुरु मिलने में दिक्कत है ऐसे लोग गायत्री मंत्र का जप करना आज से शुरू कर दें और निरंतर गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गुरु प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी जो आपको सन्मार्ग दिखाएंगे। तो बाकी कुछ करें या ना करें लेकिन आज दो काम जरूर करिएगा। एक, किसी निर्धन व्यक्ति को या प्यासों को पानी पिलाइएगा, जल का दान करिए।

करेगा और यथाशक्ति जितना संभव हो गायत्री मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बचें, करियर में कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः हम माता लक्ष्मी के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो धन लक्ष्मी का स्वरूप है, और केवल धन की कामना करेंगे, केवल माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, गलत रास्ते पे भटकेंगे या धन की बर्बादी होगी। ऐसी स्थिति में धन की प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु के साथ या भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ताकि धन के साथ बुद्धि और विवेक भी मिल सके। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें कैसा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा के मामले में और संतान के मामले में आपकी बाधाएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए बताते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों के दाने खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है
तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को, तनाव बढ़ सकता है, मन परेशान हो सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी की तिथि है, आज सात्विकता रखिएगा। अगर भोजन आदि करते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। आज निश्चित रूप से जल और फल का दान करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

तो शुरुआत करें बड़ी खबर की। दो ताकतवर भूकंप से वेनेजुएला कांप उठा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए। राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में इमारतों मकानों को नुकसान पहुंचा है। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में, गहराई 13 किलोमीटर, और उसके तुरंत ही कुछ मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। दूसरे भूकंप का केंद्र मोरोन शहर के दक्षिण पश्चिम में, गहराई 10 किलोमीटर थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार कराकस एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, मलबा गिरने से धूल का गुबार दिखाई दिया। वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कई जगहों पर गैस की सप्लाई लाइन को काट दिया गया है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। हालांकि उसको लेकर के प्राथमिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन यूएसएसजीसी ने 10 जगहों को सबसे ज्यादा खतरनाक घोषित किया, जहां पर असर हो सकता है, और ऐसे में घनी आबादी के इलाकों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वेनेजुएला के कई सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं भूकंप से तबाही के बाद। तबाही की तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भूकंप की तरफ इमारतें गिरती नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और कई जगहों पर इमारतें समतल हो गई। पिछले एक सदी में वेनेजुएला ने यह सबसे खतरनाक भूकंप देखा है। आखिरी भूकंप उसने 60 के दशक में लगभग 6 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप देखा था। सेस्मिक जोन उन पर इसकी बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का यह भूकंप आया है, वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इस झटकों के बाद सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी गई थी। तो वेनेजुएला में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, और इसी के साथ साथ दुनिया भर की एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर के दुनिया भर की तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब वेनेजुएला में मदद की गुहार लगा रही हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी है, यानी अब देश की पहली प्राथमिकता राहत बचाव कार्य होगी। इस इमरजेंसी के तहत सरकार के सारे अधिकार अब इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, और इस इमरजेंसी के तहत दूसरे अन्य किसी भी कार्य के बदले राहत बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी स्थानीय पुलिस से लेकर के सेना, अर्धसैनिक और सारे जो बल हैं, उन सबको अब राहत बचाव कार्य में लगाया जाएगा। अभी तक ये अनुमान नहीं लग पाया है कि मरने वालों का आंकड़ा कितना है, लेकिन यूएसजीसी का जो एस्टिमेट है, वो घनी पॉपुलेशन है, यानी घनी आबादी के जो इलाके हैं जिनमें 10 सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके घोषित किए गए हैं, ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा हजारों में भी हो सकता है। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसको शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर तबाही और दूसरी तरफ तबाही का मंजर। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है नॉनस्टॉप 100 का।

0: वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। 40 सेकंड में दो बार कांपी धरती, इमारतें ढही, सुनामी का खतरा। राजधानी कराका समेत कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्य झटके से 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके से आसपास के देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी मौजूद थी। कुछ इलाके में धूल का गुबार भी देखने को मिला। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर के सड़कों पर निकल आए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी की लहरों की आशंका जताई, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। खबर पश्चिम बंगाल से कोलकाता के तारातला हादसे पर अब तक एक्शन शुरू हो चुका है। 3 गिरफ्तार हुए, 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। SIT जांच के आदेश दिए गए। पुलिस ने भी मामले की जांच तेज कर दी है। निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर रोक लगा दी है। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने पिछली सरकार में दिए बिल्डिंग निर्माण की तमाम अनुमतियों की जांच का आदेश दिया। आज हादसे पर बंगाल विधानसभा सत्र में बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी। 29 जून को विधानसभा का विशेष सत्र। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। 19 इंजीनियर, 6 PCS अफसर दोषी, LDA ने की सख्त एक्शन की सिफारिश। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लोगों की मौत आग से नहीं, दम घुटने से हुई। लखनऊ में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर LN कोचिंग सेंटर सील, LDA बोला बिना मंजूरी के नक्शे पर चल रही थी कोचिंग। अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया, कहा यदि समय पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती। लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट है। 923 कोचिंग संस्थानों की जांच होगी। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर घोटाले की जांच में नया एंगल जुड़ा। डोनेशन की जांच के बीच SIT ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत भी मांगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम। आप सांसद संजय सिंह को सबूतों के लिए बुलाया। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने UP सरकार की SIT को फर्जी बताया। पूछा FIR दर्ज कर CBI और ED को जांच क्यों नहीं सौंपी गई। केजरीवाल के 26 जून को होने वाले अयोध्या दौरे पर विरोध तेज हो चुका है। धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई, बोली रामनगरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रशासन से दौरा रोकने की मांग की गई है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे, संत समाज ने आप संयोजक को दी चेतावनी, बोले आस्था का ध्यान रखा जाए, पहुंचने पर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। गांवों के मुद्दों पर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरे भारत में छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। गौरव गोगोई, प्रियंका खड़गे समेत 28 नेता संबोधित करेंगे। अभियान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाने की तैयारी की जा रही। पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसी एयर इंडिया के फ्लाइट, गोवा राउंड के दौरान हुई चूक। मामले पर एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा इस घटना की जानकारी एजेंसियों को दे दी गई, आंतरिक जांच की जा रही है, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में सीएम योगी शामिल हुए, बोले बीमारू टैक्स से बाहर निकला यूपी, उद्योगपतियों को निवेश का न्योता दिया। यूपी के विकास की चर्चा करते हुए योगी ने यूपी को पिछले 9 साल में सबसे तेज विकसित राज्य बताया, बोले उत्तर प्रदेश भारत के 3S मॉडल का प्रतीक बन गया। गूगल क्लाउड के CTO तरुण पंत ने सीएम योगी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि AI के जरिए किसानों, युवाओं और स्टार्टअप्स के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करेगा यूपी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर कही ये बात। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 101.10 करोड़ से अधिक चुकाने का निर्देश दिया। 32 साल पुराना यमुना जल विवाद सुलझ गया है। अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा राजस्थान के बीच ऐतिहासिक MOU होगा। अमित शाह ने दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। NCB वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया, पिता से पूछताछ में लोकेशन पता चला। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष दल के नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अध्यक्षता करेंगे। भारत रूस सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए। मानसून से पहले अलर्ट मोड में दिल्ली सरकार, डेंगू मलेरिया रोकने के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिवसेना UBT सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर संविधान दल बदल कानून के प्रावधानों की रक्षा की मांग की। बैठक के बाद अरविंद सावंत ने कहा बिना संबंधित पक्ष की सुनवाई के बिना फैसला न लिए। स्पीकर ने UBT सांसदों को बताया कि बागी गुट की ओर से अभी तक कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत बागी गुट को अलग मान्यता नहीं दी जा सकती। महाविकास आघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमबीए की एकजुटता सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नेताओं की मौजूदगी पूरी नहीं रही बैठक में, गठबंधन के कुल 60 विधायकों में से करीब 37 ही पहुंचे। महाराष्ट्र में शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छापना अब जरूरी होगा। बेगूसराय गैंगरेप की पीड़िता से मिले तेजस्वी यादव, कहा जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो राज्य में न्याय कैसे मिलेगा। महाराष्ट्र के पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी प्रेमी भी गिरफ्तार। शादी से बचने के लिए सिया ने हत्या का प्लान बनाया, फोटोशूट के बहाने लोहागढ़ किला पहुंची थी। पुणे हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने लोहागढ़ फोर्ट का दौरा किया, इसे ट्रैकिंग दुर्घटना माना गया था शुरू में। मर्डर केस में गेटकीपर का बड़ा दावा, आरोपी चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट्स ड्रेस में पहुंचा था। करोड़पति कारोबारी के पिता ने सिया के परिवार पर सवाल उठाया। गुजरात के नर्मदा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अरुणाचल के केई पेन्योर में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से नीपको परियोजना स्थल और उसके आसपास के इलाके प्रभावित हुए। प्राकृतिक आपदा के बीच बचाव और राहत कार्य जारी। फ्लैश फ्लड के बीच पन्नी और जलाशय में एक व्यक्ति और उसका पालतू कुत्ता बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, साप्ताहिक हाट बाजार में घुटने घुटने तक पानी भरा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नशे में धुत एक युवक 11,000 वोल्ट के बिजली के पोल पर चढ़ गया। गोवा के बागा बीच पर हादसा हुआ, पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। दिल्ली में 24 साल की महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश, मौत से पहले रिकॉर्ड वीडियो में ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। चेन्नई में प्लेसमेंट के नाम पर बंधक बनाई गई सरगुजा के 3 युवतियां, वीडियो जारी कर मदद मांगी। पहलगाम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 वाहनों की टक्कर हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हिंसा झड़प, बीच बचाव में युवती की जान गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक का अपहरण कर मारपीट, फिरौती मांगने के मामले में 3 हिस्ट्री शीटर की परेड। बिजनौर में एटीएम में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। कर्नाटक में कावेरी नदी में एक परिवार के 5 सदस्य डूब गए, फोटो खिंचवाने के दौरान हादसा हुआ। मुहर्रम को लेकर के झांसी पुलिस अलर्ट है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Japan takes on Sweden in Arlington, Texas, with the winner potentially winning Group F, and the USA will face Turkey in Inglewood, California, with Group D already locked up and likely playing a lot of reserves in the match. The USA are -105 to record the win. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: In association with Hind, बड़े आराम से
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Vimal, bolo zubaan kesri.
12: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
14: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर ePaper.AajTak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे। तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही पद तक जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा निकलो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
3: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ 100 या 1000 रुपए का नहीं बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का दावा है तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
4: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहां लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
3: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Japan takes on Sweden in Arlington, Texas, with the winner potentially winning Group F, and the USA will face Turkey in Inglewood, California, with Group D already locked up and likely playing a lot of reserves in the match. The USA are minus 105 to record the win. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: एक एनकाउंटर सम्राट सरकार के गले की हड्डी की तरह यूं फंसा कि नाना करते पुलिस कर्मियों पर एक्शन की हामी भरनी पड़ी। एक एनकाउंटर पर अपनों के बीच ऐसे घिर गई सम्राट सरकार कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 7 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 7 दिन बाद खुद बिहार पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज है और जांच आगे बढ़ रही है। ये क्यों और कैसे हुआ ये बताने से पहले आप भोजपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस बयान को गौर से देखिए। ये बयान जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष यानी SHO राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की तस्दीक करता है और ये मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए पहली जीत है जो पुलिस कर्मियों पर एक्शन की लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां आशा देवी ने लिखित अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि 17 जून को पुलिस टीम भरत तिवारी को अपने साथ जवेनिया गांव ले गई थी, वहां भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे घेर लिया और गोली मार दी, लेकिन भरत तिवारी के परिवार के आरोप, एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश, इन तमाम बातों का शायद उतना असर नहीं होता जितना कि बीजेपी के भीतर उठी आवाज का हुआ है। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं थे, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त थी जो खुलकर नाराजगी जता रहे थे और शायद यही वजह थी कि 5 पुलिसकर्मियों को मुकदमे की जद में आना पड़ा। आरा से शशिभूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
3: जिस AI से लोग अपने सवालों के जवाब ले रहे हैं, नौकरी के ईमेल लिखवा रहे हैं और रोजमर्रा के काम आसान बना रहे हैं, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग ChatGPT और दूसरे AI टूल से टैक्स कैलकुलेशन करवा रहे हैं, डिडक्शन का हिसाब पूछ रहे हैं और ITR भरने में मदद ले रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये है कि आपके रिटर्न की जाँच भी AI ही कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि इनकम टैक्स विभाग का AI आपकी छोटी से छोटी चूक पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसी वजह से टैक्स जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि AI के भरोसे रिटर्न भरते वक्त लापरवाही महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आयकर डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स और AI बेस्ड सिस्टम तैनात किए हैं जो रिटर्न में दी गई जानकारी को कई रिकॉर्ड्स में मिलाकर देखते हैं। दरअसल AI सिस्टम ITR के आंकड़ों को AIS, TIS और फॉर्म 16 से मैच करता है, वहीं बैंकिंग रिकॉर्ड, ब्रोकरेज डेटा और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले जाते हैं। किसी भी तरह का अंतर मिलने पर मामला फ्लैग हो सकता है, ऐसे मामलों में रिफंड रुकने और नोटिस आने का खतरा बढ़ जाता है। जांच के दौरान कुछ गलतियां सबसे ज्यादा सामने आती हैं, इनमें आय कम दिखाना, ब्याज या डिविडेंड की जानकारी छोड़ देना और गलत डिडक्शन क्लेम करना शामिल है। इसके अलावा फॉर्म 16 और ITR में इनकम का अंतर, FD ब्याज, सेविंग अकाउंट ब्याज या डिविडेंड नहीं दिखाना, शेयर म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन में गलती, HRA, ATC या ATD के तहत गलत डिडक्शन क्लेम और विदेशी इनकम या विदेशी असेट की जानकारी छिपाना शामिल है। दूसरी तरफ एआई से जटिल टैक्स नियमों को समझना काफी आसान हो गया है। इससे कुछ सेकंड में ही टैक्स लैब, डिडक्शन और टैक्स प्लानिंग से जुड़े जवाब मिल जाते हैं। कई लोग शुरुआती कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ बड़े जोखिम मौजूद हैं, जिनमें सबसे कॉमन है कि एआई कई बार पुराने टैक्स नियमों के आधार पर जवाब दे सकता है। वहीं गलत या अधूरी जानकारी देने का खतरा भी बना रहता है, जिसे तकनीकी भाषा में इसे एआई हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। ऐसे में अंतिम फैसला एआई के जवाब के आधार पर लेना जोखिम भरा हो सकता है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डेटा प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। कई टैक्स पेयर्स फॉर्म 16, पैन नंबर, बैंक स्टेटमेंट और दूसरी निजी जानकारी सीधे एआई चैटबॉट्स पर अपलोड कर देते हैं। जानकारी से बड़ी गलती मानते हैं और सलाह देते हैं कि पब्लिक एआई प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। एआई का इस्तेमाल जानकारी समझने और शुरुआती कैलकुलेशन तक सीमित रखें। रिटर्न फाइल करने से पहले सभी आंकड़ों को रिकॉर्ड से मिलाएं और जटिल टैक्स मामलों में एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर विकल्प रहेगा। टेक्नोलॉजी ने ITR फाइलिंग को आसान जरूर बनाया है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी टैक्स पेयर की ही है। ऐसे में AI को केवल सहायक की तरह इस्तेमाल करना ही सही रहेगा। आज तक ब्यूरो।

दो शक्तिशाली भूकंप से कांपा वेनेजुएला, राजधानी काराकास में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा ढहा, 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप, भारी तबाही की आशंका।

होने की आशंका। अब तक 5 की मौत की पुष्टि, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, जलने से नहीं दम घुटने की वजह से 15 की मौत, एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी, अखिलेश ने पूछा 10 साल में क्यों नहीं की कार्रवाई। आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आप नेता संजय सिंह, कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा।

0: सभी का मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर सुबह के 8 बजे और वक्त है खास बुलेटिन सुपर आज का। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें आपको दिखाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे वेनेजुएला में भूकंप की, जहां पर भीषण तबाही मची है। खबर कोलकाता की भी होगी, जहां पर बिल्डिंग हादसे की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। बात चढ़ावा चोरी मामले की भी करेंगे, आपको बताएंगे एक एक अपडेट। वहीं आपको ये भी दिखाएंगे कि लोहगढ़ मर्डर केस में सीआर के नए वीडियो में क्या निकलकर सामने आया है। मुहर्रम से पहले हाई अलर्ट पर यूपी की एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे कि कैसे दिल्ली में एक बेकाबू बस सब कुछ रौंदते हुए निकल गई। साथ ही आपको अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और तबाही पर भी अपडेट देंगे और जिक्र गोवा का भी करेंगे, क्योंकि गोवा के उस हादसे की जिसमें लापरवाही की वजह से एक शख्स की जिंदगी भारी पड़ गई। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेनेजुएला में आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप की। दरअसल सबसे खौफनाक और विनाशक भूकंप की वजह से पूरा मुल्क कांप गया है। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही की आशंका है। राजधानी काराकास में 2 बार धरती कांप गई। तस्वीरें आप देखिए, भूकंप का असर वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया में भी रहा और अब सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि काराकास और ला गुआइरा में भीषण तबाही हुई है। तस्वीरें आप देखिए, कितना भयंकर ये भूकंप आया है। लोगों को चेतावनी भी जारी की गई है। दरअसल जबरदस्त भूकंप, 7.2 तीव्रता का ये भूकंप था, जो पहला भूकंप था, क्योंकि 2 बार धरती हिली है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना भयंकर ये भूकंप था। इसके बाद लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। और खुद राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि काराकास और ला गुआइरा में भीषण तबाही मची है। और ये तबाही की तस्वीरें आप देखिए, भूकंप के बाद कई मकान ढह गए हैं। लोगों को चेतावनी दी जा रही है, सतर्क रहने को कहा गया है। भूकंप की शुरुआती तीव्रता 7.5 मापी गई। ये भूकंप 7.2 तीव्रता के साथ शुरू हुआ, 40 सेकंड बाद आया, और पहले झटके आने के बाद 40 सेकंड बाद दूसरा झटका, यानी एक ही मिनट में 2 बड़े झटके महसूस किए गए हैं। वेनेजुएला की धरती पूरी हिल गई है। 2 शक्तिशाली भूकंप, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी बड़ी इमारतों से जो लोगों ने वहां वीडियो बनाया है, उसके बाद ये तबाही का मंजर, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। भूकंप से कितनी तबाही हुई है ये आप
1: समझिए।
0: तो USGS के मुताबिक वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के कारण हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी तक आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस भूकंप की तबाही के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है। USGS के मुताबिक, आपको बता रहे हैं, अब तक हजारों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भीषण तबाही वेनेजुएला में मची है। एक मिनट में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कि बहुत दूर तक सुनाई दिए गए हैं। अब भूकंप की वजह से फोन के सिग्नल भी गायब हो गए हैं। लोगों को वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप के जबरदस्त झटके लगे हैं। वेनेजुएला की राजधानी में काराकास में लगातार 2 बार धरती कांप गई। इस भूकंप से वेनेजुएला में भारी तबाही की आशंका है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 रही। इतनी शक्तिशाली तीव्रता वाले इस भूकंप के झटकों से राजधानी काराकास दहल उठी है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। काराकास के अल्तामिरा और लॉस पालोस ग्राउंड जैसे रिहायशी इलाकों में कई बहुमंजिला इमारतें और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सड़कों पर मलबा बिखरा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें काराकास एयरपोर्ट की हैं। जब धरती कांपी तो एयरपोर्ट के अंदर भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। देखते ही देखते एयरपोर्ट की इमारत से मलबा गिरने लगा। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। जिस वक्त ये भूकंप आया, उस वक्त वेनेजुएला के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। देश के गृह मंत्री डियोडाडो कैबलो ने पुष्टि की है कि स्थिति बेहद गंभीर है। सेना, फायर ब्रिगेड, पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स के डर से लाखों लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड और अंधेरे में सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। उधर अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और एम्बुलेंस के लिए रास्ते खाली रखने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, एक मिनट में दो भूकंप के झटके, कितना भयंकर ये भूकंप आया? सबसे पहला भूकंप कहां पर, भूकंप के झटके कहां महसूस किए गए? प्रणय बताइएगा केंद्र क्या रहा।
1: देखिए, कैराकस जो कि राजधानी है वेनेजुएला की, उससे करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला था जहां एपिसेंटर था। 7.2 का भूकंप पहले आया और उसके बाद मोरोन से करीब 16 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो दूसरा भूकंप था 7.5 का, वो महसूस किया गया। और इन दोनों ही भूकंप का दायरा इतना व्यापक था, क्योंकि बताया जा रहा है जो भूवैज्ञानिक है उनके मुताबिक कि इस भूकंप की गहराई ज्यादा नहीं, जो भूकंप कम गहराई पर होता है तो उसका दायरा काफी व्यापक होता है, उसकी उसके जो झटके हैं वो ज्यादा तीव्रता के साथ बड़े इलाके के अंदर महसूस किए जाते हैं। और वही जो है, ये तमाम तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, जमीनों में दरार आई, कई बिल्डिंग्स धराशायी हो चुकी हैं, बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक वेनेजुएला की सरकार ने किसी तरीके का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन राहत और बचाव का काम चल रहा है। नजदीकी देश अल सल्वाडोर की तरफ से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही अमेरिका की तरफ से भी ऑफर किया गया है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, रात का वक्त है इस समय, क्योंकि शाम को करीब 6:09 का वक्त था जब पहला भूकंप का झटका आया और महज कुछ मिनट के बाद जो दूसरा 7.5 की तीव्रता का भूकंप था। लेकिन एक और रोचक चीज ये हुई है कि दुनिया के दो बड़े इलाकों, दो अलग अलग इलाकों के अंदर, यानी वेनेजुएला के अंदर ये डबलेट अर्थक्वेक आया है, वहीं दूसरी तरफ जापान के इलाके में अब से कुछ देर पहले 6.9 की तीव्रता का दूसरा बड़ा भूकंप आया है उस पूरे इलाके के अंदर। तो ये जो दो बड़ी भूकंपीय गतिविधियां हैं, ये अपने आप में रेयर मानी जाती है, दुनिया में एक साथ दो बड़े भूकंप इस तरह से नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी ये घटना आज सुबह के बाद ये महसूस की गई है। अब से 3 घंटे पहले जो वेनेजुएला का भूकंप आया था उसके अंदर तबाही का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं इमारतों के अंदर, साथ ही बड़े पैमाने के ऊपर राजधानी कराकस के अंदर भी विध्वंस हुआ है इस भूकंप के कारण।
0: चलिए प्रणय, आप हमारे साथ बने रहेगा। और इस भूकंप के बाद कई वहां पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और कई मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है कि लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। यूएसजीएस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। ऐसे में भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इमरजेंसी की घोषणा वेनेजुएला में कर दी गई है। अंतरिम राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। देखिए, काफी भीषण ये भूकंप आया, लगभग एक मिनट में दो भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए और कई समय बाद ऐसा भूकंप वेनेजुएला में महसूस किया गया है जो काफी दूर तक दिखाई दिया। ऐसे में कई इमारतें ढह गई हैं और माना जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी इस बीच हुई है। अभी तक इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई है। ये तबाही के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार वालों को चेतावनी भी दी गई है इस भूकंप के बाद राष्ट्रपति द्वारा और अंतरिम राष्ट्रपति द्वारा अब इमरजेंसी की घोषणा वेनेजुएला में की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कई इमारतें यहाँ पर ढह गई है और विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। कारागास के जगह पर बहुमंजिला इमारत ढह गई, ताजा वीडियो ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला में तबाही का, किस तरीके से ये धरती पूरी हिल गई और दो भारी भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। तो 40 सेकंड में दो बार धरती कांपी है और ये तबाही के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सारी बड़ी बड़ी इमारतें यहां पर ढह गई हैं और ये ताजा वीडियो आप देखिए कितना तेजी से ये भूकंप आया है। पूरी स्कूटी हिल रही है और लोग यहां पर विचलित हो गए। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, जो अभी माना जा रहा है यूएसजीएस की तरफ से कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? और प्रणय, ये भी बताइएगा कि कितनी दूर तक आखिर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं?
1: देखिए, भूकंप के झटके जो है वो नजदीकी देशों में भी महसूस किए गए हैं। इसका वेनेजुएला तक नहीं था, बाकी लैटिन अमेरिका के कई देशों के अंदर ही भूकंप का झटका महसूस किया गया है, खासतौर पर जो दो सक्सेसिव भूकंप आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी घातक चीज ये होती है कि पहले भूकंप ने नुकसान किया है और कुछ इमारतें, बड़ा भूकंप आता है उसके तत्काल बाद ज्यादा आता है, तब उसके बाद जो बिल्डिंग्स गिर नहीं पाई थी उस पहले भूकंप के अंदर वो भी धराशायी हो जाती है, क्योंकि जो है वो उसमें दरारें आ जाती हैं और दूसरे भूकंप के झटकों के कारण इमारतें धराशायी हो जाती हैं, इस कारण से ज्यादा।
0: चलिए ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। तो ताजा तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं वेनेजुएला में भूकंप के झटके की। अब आप सहयोगी आशुतोष मिश्रा के पास लिए चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। आशुतोष,
2: पूजा, दरअसल जिस तरह की तस्वीरें हमने वेनेजुएला में देखी है, 7 रिक्टर का भूकंप बहुत बड़ा होता है। आपको अगर याद हो तो आखिरी तस्वीरें हमने नेपाल में देखी थी, 2 भूकंप जब आए थे और किस तरह पूरा का पूरा शहर काठमांडू से लेकर के उत्तर दक्षिण के इलाके। अभी हम आप जो डेटा दिखा रहे हैं, ये यूएसजीसी जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है वो ये दिखा रहा है, उसका एस्टिमेटेड डेटा बता रहा है कि जिन इलाकों में भूकंप नहीं महसूस हुआ ऐसे 10 पूरे वेनेजुएला में, कैराकस समेत ऐसे 10 इलाके हैं जहां पर भूकंप या तो मॉडरेट रहा है, स्ट्रांग रहा है या वेरी स्ट्रांग रहा है, लेकिन जिन इलाकों में सीवियर रहा है वहां आबादी का जो घनत्व है वो 3,40,000 है और उसी के साथ जिन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है वहां 20,000। और ऐसे में उसने अनुपात आबादी को देखते हुए, क्योंकि आप अगर देख रहे हो तस्वीरें में कि कई सारे गगनचुंबी इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई हैं, उनका औसत निकालते हुए दरअसल यूएसजीसी डेटा का अनुमान यह है कि अगर इन इलाकों में देखिए अब जिस तरह का नुकसान हुआ है, एस्टिमेटेड एक्सपोजर ऑफ एनी इंक्लूजन पॉपुलेशन विद इन एरिया 1,000 से मल्टीप्लाई किया गया है, 10 इलाकों में औसत अनुमान को यह देखा गया, इसी से माना जा रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है ये हजारों में हो सकता है, ये यूएसजीसी का अनुमान है। और संभवतः इसी वजह से जो राष्ट्रपति हैं उनको इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है ताकि सारी व्यवस्था, हर वो मैकेनिज्म इस बात पर सुनिश्चित कर ले कि डेटा पता चल सके कितने लोगों की मौत हुई है, राहत बचाव कार्य के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी जाएगी क्योंकि ये तस्वीरें बेहद भयानक है।
0: चलिए ठीक है आशुतोष, हमारे साथ बने रहिएगा। तो ताजा तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं भूकंप के झटके के बाद की कि इमारतें कितनी यहाँ पर ढह गई है और लोगों को अलर्ट पर भी रहने को कहा गया। आशुतोष ने बताया कि किस तरीके से कितनी दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो सिर्फ वेनेजुएला में ही नहीं, जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वेनेजुएला में काफी तेजी से ये भूकंप आया और वहीं जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, यानी जापान में भी तबाही की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। भूकंप की तीव्रता 6.9 तीव्रता के भूकंप से उत्तर पूर्वी जापान कांपा है। वेनेजुएला में जो भूकंप आया वो कई दूर तक उसकी तबाही हुई है और अब तक जापान में सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की बात कर लेते हैं। कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मलबे में दबे होने की वजह से 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया। मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और साथ ही अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल भी की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती है इसकी संभावना जताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ और पुलिस और दमकल विभाग सभी मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। तो कोलकाता में हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हादसे की जांच अब और तेज हो गई है जिसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डीसीपी अब एसआईटी प्रमुख होंगे। तो इस पूरे हादसे में 15 जिंदगियों की तलाश भी की जा रही है।
3: रेस्क्यू करा गया है, तार मध्ये 5টা ব্রড ডেথ আছে আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 2টো ক্রিটিক্যাল আছে এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। 18 জন আউট অফ ডেঞ্জার আছে, 2জন ক্রিটিক্যাল আছে।
0: एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब जापान में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वेनेजुएला में भूकंप आया और जापान में भी 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया और भूकंप के झटके काफी तेजी से महसूस किए गए हैं। ताजा तस्वीरें ये आप देखिए, धरती कांपती हुई नजर आ रही है जापान में अभी तक, लेकिन सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ये ताजा तस्वीर आप जापान से देख रहे हैं। जापान में काफी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है। आप ये तस्वीर देखिए, बिल्डिंग्स हिल रही हैं ये ताजा वीडियो आपको हम जापान की धरती से दिखा रहे हैं। जोरदार झटके जापान में भी भूकंप के आज महसूस किए गए हैं। एक तरफ वेनेजुएला में दो बार भूकंप आया है, दो जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ ये जापान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स हिल रही हैं, यहाँ पर भी तबाही मची है। लेकिन अभी तक ताजा आंकड़े कोई भी सामने नहीं आए हैं कि तबाही कितनी यहाँ पर मची है, लेकिन ये ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग्स के हिलने। बात कर लेते हैं लखनऊ अग्निकांड की, जिसमें 15 छात्र छात्राओं की मौत के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। जांच के तीसरे दिन एसआईटी ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को तलब कर गहन पूछताछ की। तीनों विभागों के अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट में कई खामियां मिलने की वजह से एसआईटी ने उसे संशोधित कर दोबारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी बिल्डिंग के अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत और बचाव कार्य में हुई देरी और संसाधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं की गहन जांच कर रही है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अलीगंज में आग में जलकर नहीं बल्कि दम घुटने के कारण 15 बच्चों की मौत हो गई। अग्निकांड में जांच की आंच अब एलडीए से बिजली विभाग तक जा पहुंची।
4: अलीगंज के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 बच्चों की जान ले ली। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन बच्चों की मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम के दौरान मृतकों के शरीर पर जलने या गहरे घाव के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक चेहरे और आंखों के आसपास सूजन देखी और उनकी नाक के अंदर कालिख और धुएं के कण पाए हैं।
5: डोर ऊपर का बंद था, मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले भैया से हमने कहा भैया मुंह को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
4: अग्निकांड की लपटें और अपनों की चीख अब तक परिजनों के कानों में गूंज रही है। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को दोषी पाया है, जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। बिजली विभाग भी जांच के घेरे में है। जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसमें 22 किलोवाट का लोड सैंक्शन था, लेकिन इस्तेमाल हो रहा था 33 किलोवाट।

0: जिन लोगों के ऊपर गंभीर चंदा चोरी के आरोप हैं, वो अभी भी मंदिर का संचालन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती?
1: और चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती स्कूटी पर गिरा पेड़, स्कूटी पर सवार शख्स और उसकी भतीजी को गंभीर चोट, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लद्दाख के द्रास में दर्दनाक सड़क हादसा, मारपोचू के पास द्रास नदी में जा गिरी एक गाड़ी, हादसे में एक शख्स की मौत, 3 अन्य लापता। बिहार के समस्तीपुर में दोस्तों के बीच पैसों के लेन देन के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, गुस्साए लोगों ने आरोपी की कार को आग के हवाले किया, 2 हिरासत में। शिरडी में भक्तों को बेचे जा रहे मिलावटी पेड़े को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन, करीब 650 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त कर नष्ट किया गया। भीलवाड़ा में अपहरण और फिरौती के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाली परे। यूपी के महाराजगंज में शराब के नशे में 11,000 वोल्ट के पोल पर चढ़कर तारों पर लेटा युवक, बिजली सप्लाई नहीं होने से बची जान, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा। झारखंड के रामगढ़ में रांची पटना 33 हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई, हादसे के बाद हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, कार सवार परिवार ने समय रहते कूद कर बचाई अपनी जान। सुपर 8 में आप वक्तों का एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Japan takes on Sweden in Arlington, Texas, with the winner potentially winning Group F, and the USA will face Turkey in Inglewood, California, with Group D already locked up and likely playing a lot of reserves in the match. The USA are -105 to record the win. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
5: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
2: Take a date not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने

0: आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार,
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
4: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
3: जी,
4: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर था, जबकि सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल के अंत में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी को लेकर शाही तैयारियां चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल अरेंज मैरिज करना नहीं चाहती थी। जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के ही रहने वाले चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि केतन को मारने की साजिश 31 मई को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान रची गई थी। 14 जून को केतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन 19 जून को केतन एक बार फिर किले पर गया और इस बार सिया और चेतन की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को लोहागढ़ बुलाया और दोनों ने मिलकर केतन को किले से नीचे धकेल दिया।
2: मेन तो हमको सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ।
3: फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए, क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे। उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा।
1: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड में सिया और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: दो शक्तिशाली भूकंप से कापा वेनेजुएला, राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा ढहा, 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप, हजार लोगों की मौत की आशंका। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे, 40 सेकंड में दो बार कापी धरती, मुख्य झटके से 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का आया एक और भूकंप, सुनामी का खतरा। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में था और इसी इलाके के आसपास देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी मौजूद। कुछ इलाकों में धूल का गुबार छा गया, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर तुरंत सड़कों पर निकल गए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी लहरों की आशंका जताई। एसआईटी ने विभागों से पहले पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियों, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई और उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों का मांगा पूरा ब्यौरा। एसआईटी ने जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट दोबारा मांगी गई। जांच का फोकस अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर विभागों के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया। अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट न होने पर एसआईटी ने जताया संतोष, विस्तृत जानकारी देने को कहा। एसआईटी जल्द ही मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी करेगी दर्ज। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अफसर दोषी, एलडीए ने की सख्त एक्शन की सिफारिश। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लोगों की मौत आग से नहीं दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर एलएन कोचिंग सेंटर सील हुआ, एलडीए बोला बिना मंजूरी के नक्शे पर चल रही थी कोचिंग। लखनऊ अग्निकांड पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा यदि समय पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, 923 कोचिंग संस्थानों की होगी जांच, सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर घोटाले की जांच में नया एंगल जुड़ा, डोनेशन की जांच के बीच एसआईटी ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत मांगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी का बड़ा कदम, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की एसआईटी को फर्जी बताया, पूछा एफआईआर दर्ज कर जांच सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं सौंपी गई। अरविंद केजरीवाल के 26 जून को होने वाले अयोध्या दौरे पर विरोध तेज, धार्मिक संगठनों ने जताई आपत्ति, बोले रामनगरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रशासन से दौरा रोकने की मांग। केजरीवाल के अयोध्या दौरे, संत समाज ने आम आदमी पार्टी संयोजक को दी चेतावनी, बोले आस्था का ध्यान रखा जाए, पहुंचने पर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। कोलकाता के तारातला हादसे पर एक्शन, अब तक 3 गिरफ्तार हुए, 20 लोगों का हुआ रेस्क्यू, एसआईटी जांच के आदेश। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है, निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तथा अन्य संभावित जिम्मेदारियों की जा रही है पड़ताल। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा निर्णय लिया, सीएम ने पिछली सरकार में दिए गए बिल्डिंग निर्माण की तमाम अनुमतियों की जांच का आदेश दिया। आज हादसे पर बंगाल विधानसभा सत्र में बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी, 29 जून को विधानसभा का विशेष सत्र। बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में सीएम योगी हुए शामिल, बोले बीमारू टैक्स से बाहर निकला यूपी, उद्योगपतियों को दिया निवेश का न्योता। यूपी के विकास की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने यूपी को पिछले 9 साल में सबसे तेज विकसित राज्य बताया, बोले उत्तर प्रदेश भारत के 3S मॉडल का प्रतीक है। गूगल क्लाउड के सीटीओ तरुण पंत ने सीएम योगी के विजन की सराहना की और उन्होंने कहा कि एआई के जरिए किसानों, युवाओं और स्टार्टअप्स के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करेगी यूपी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज और 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर यह बात कही गई। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 110 लाख डॉलर से अधिक चुकाने का दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विपक्ष दल की नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस। बिहार सरकार की कैबिनेट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा करेंगे अध्यक्षता। भारत रूस सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो वहीं न्यायिक शिक्षा, डिजिटल बदलाव और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड पर दिल्ली सरकार, डेंगू मलेरिया रोकने के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का रखा प्रस्ताव। 32 साल पुराना यमुना जल विवाद सुलझा, अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा राजस्थान के बीच होगा ऐतिहासिक एमओयू। युवाओं के मुद्दों पर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे भारत में छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव गोगोई और प्रियांक खड़गे समेत 28 नेता करेंगे संबोधित, अभियान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाने की तैयारी। पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसी एयर इंडिया की फ्लाइट, गो अराउंड के दौरान हुई चूक। मामले पर एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस घटना की जानकारी एजेंसियों को दे दी गई और आंतरिक जांच की जा रही है। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों की रक्षा की मांग की। स्पीकर से बैठक के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि बिना संबंधित पक्ष की सुनवाई के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। स्पीकर ने यूबीटी सांसदों को बताया कि बागी गुट की ओर से अभी तक कोई भी औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ। स्पीकर से संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत बागी गुट को अलग मान्यता नहीं दी जा सकती। महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हम सच में साथ हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमवीए की एकजुटता सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सदन के भीतर भी दिखनी चाहिए और राज्य भर में भी। बैठक में नेताओं की मौजूदगी भी पूरी नहीं रही। गठबंधन के कुल 7 विधायकों में से करीब 37 ही पहुंचेंगे, जबकि 23 विधायक गैर हाजिरी रहे। महाराष्ट्र में शादी के कार्ड पर दुल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छिपाना होगा जरूरी। दरअसल बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए रखा गया है प्रस्ताव। बेगूसराय गैंगरेप की पीड़िता से मिले तेजस्वी यादव, कहा जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो उस राज्य में न्याय कैसे मिलेगा, बिहार के लोग भय। महाराष्ट्र के पुणे में युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी प्रेमी भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शादी से बचने के लिए सिया ने बनाया हत्या का प्लान। फोटोशूट के बहाने लोहागढ़ किला पहुंची थी सिया। पुणे हत्याकांड में फोरेंसिक टीम ने लोहागढ़ फोर्ट का किया दौरा। शुरुआत में इसे एक ट्रैकिंग दुर्घटना माना गया था। लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस में गेटकीपर का बड़ा दावा, आरोपी चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट्स ड्रेस में पहुंचा था किले पर। पुणे में करोड़पति कारोबारी के पिता ने सिया के परिवार पर उठाए सवाल, कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, उन्हें शुरू से सब कुछ पता था। गुजरात के नर्मदा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए उत्पन्न। सिलांबा के पास एक महीने पहले बना नाला बहा। अरुणाचल के कई पेन्योर में भारी बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर पानी भरने के कारण 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त। अचानक आई बाढ़ से NEEPCO परियोजना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने की वजह से सड़क मार्ग बहा। प्राकृतिक आपदा के बीच बहाव और राहत बचाव का कार्य जारी है। प्रभावित स्थान पर SDRF की टीम मुस्तैदी से कर रही है काम। अलर्ट पर NDRF। फ्लैश फ्लड के बीच पन्योर जलाशय में एक व्यक्ति और उसका पालतू कुत्ता बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गया, वीडियो तेजी से फैला। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, साप्ताहिक हाट बाजार में घुटने तक पानी भरा और जमकर झूमते नजर आए बच्चे। यूपी के महाराजगंज में नशे में धुत एक युवक 11,000 वोल्ट के बिजली पोल पर चढ़ा। पुलिस और बिजली विभाग की तत्परता से सप्लाई बंद कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। गोवा के बागा बीच पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बह गया एक युवक। दिल्ली में 24 साल की महिला ने की आत्महत्या, मौत के पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में ससुराल वालों पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। चेन्नई में प्लेसमेंट के नाम पर बंधक बनाए गए सरगुजा की 3 युवतियां, वीडियो जारी कर मांगी थी मदद। पहलगाम के पास भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर की वजह से ऑल्टो कार नदी में जा गिरी, 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प, बीच बचाव के बीच युवक की गई जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक का अपहरण कर मारपीट और फिरौती मांगने के मामले में 3 हिस्ट्री शीटर की परे। बिजनौर में ATM में लगी आग से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। कर्नाटक में कावेरी नदी में एक परिवार के 5 सदस्य डूबे, फोटो खिंचवाने के दौरान हुआ हादसा। मुहर्रम पर्व को लेकर झांसी पुलिस अलर्ट मोड पर, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। भारी फोर्स के साथ किया संवेदनशील और मुस्लिम इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च। बिहार के समस्तीपुर में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर बवाल हुआ, बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 12 चोरी की मोटरसाइकिल और लाखों के पार्ट्स बरामद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में घर पर सूखा नारियल पेड़ गिरा, और नींद में सो रहे 10 साल के मासूम की इस वजह से मौत हुई। आधी रात दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत। लद्दाख के द्रास सेक्टर में बड़ा हादसा, नियंत्रित कार नदी में जा गिरी, एक शव बरामद, तीन की तलाश जारी। फिरोजाबाद में आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क, डीएम एसएसपी ने किया ताजिया रूट का निरीक्षण। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में दूसरे दिन भी बड़ा एक्शन, एसपी नेता का कोचिंग सेंटर सील हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जेल में बंद कैदी की मौत के बाद परिजनों का बवाल, परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए सड़क को जाम किया। अब और आधुनिक और टिकाऊ होंगी दिल्ली की सड़कें, रेखा सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से 270 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास को दी मंजूरी। बिहार में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप योजना का होगा अब विस्तार। वहीं समस्तीपुर के प्रसिद्ध चकोटी मठ पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पूजा अर्चना कर राज्य में सुख शांति की कामना की।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

यादों से बचें, करियर में कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आप

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उज्जैन में विकास के बने गए खाके में जमीनों की खरीद के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आरोपों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीनों की लूट का आरोप लगाया।
1: प्रदेश इकाई और मोहन यादव जिसे प्रश्न पूछे थे।
0: रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव और उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए में कुल 85 एकड़ के 57 प्लॉट खरीदे गए, जबकि 2024-25 में 45 करोड़ में कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी गई जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है।
2: मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना, वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलेडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे।
0: मोहन यादव के जमीन मामले पर बीजेपी पहले ही उनका पक्ष रख चुकी है। पार्टी कह रही है कि मोहन यादव के पास आज भी उतनी ही 17 एकड़ की जमीन है जितनी सीएम बनने के पहले थी। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के पास भी 12.29 एकड़ जमीन है जो पहले से थी। मोहन यादव से संबंधित बताए गए सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास 2023 के 68 एकड़ के मुकाबले 65 एकड़ जमीन ही रह गई है। मोहन यादव के बेटे वैभव की 16 एकड़ जमीन 2023 के पहले से है। बहू ने जो 10 एकड़ कृषि जमीन खरीदी है उसका भी उज्जैन के मास्टर प्लान से संबंध नहीं है। उधर जब कांग्रेस मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन के मसले को उठा रही है, तब बीजेपी ने कर्नाटक के जमीन आवंटन मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में उस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की लूट की गई जिसके सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे हैं। बीजेपी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले की तरह यहां भी जमीन की लूट हुई।
3: याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। जो मॉडस ऑपरांडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा।
0: बीजेपी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन के लूट आरोपों पर कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं मोहन यादव का जमीन मामला ओबीसी पॉलिटिक्स में भी तड़का लगा रहा है।
4: एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया।
0: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का एंगल ढूंढ लाए हैं।
5: बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
0: वैसे जमीन की कथित लूट पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नई नहीं, लेकिन अब मोहन यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर नए सिरे से बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींच गई हैं। आज तक तैयार।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

भगदड़ और चीख पुकार, हजारों मौत की आशंका, सुनामी की चेतावनी। कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 5 की मौत की पुष्टि, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी खंगाल रही है, 10 साल के एनओसी का डेटा, हर विभाग के जिम्मेदार अफसरों का ब्यौरा मांगा, एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी। आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आप नेता संजय सिंह, कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, 17 लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी, भारी भूस्खलन से तमाम रास्ते बंद।

स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप, आज की सबसे बड़ी खबर, इसकी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अपनी कहानी में कैसे फंस गई सिया, लोगढ़ के केतन मर्डर केस में नया खुलासा। समंदर में जरा संभल के गोवा के बाघा बीच पर सागर की तेज लहरों में देखते देखते बह गया एक युवक, वीडियो हो रहा है वायरल। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर शुरुआत कर रहे हैं वेनेजुएला में आए भूकंप की तबाही की खबर के साथ।

0: जब आप सो रहे थे तब दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में चीख पुकार और तबाही मची हुई थी। अमेरिका के जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में हजारों लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुएला के समय अनुसार बुधवार शाम 6:04 में भूकंप के 2 ताकतवर झटके महसूस किए गए। पहले झटके की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 7.2 जबकि 40 सेकेंड के बाद ही 7.7 तीव्रता का दूसरा भयानक झटका आया। भूकंप का केंद्र राजधानी काराकास से 168 किलोमीटर दूरी पर था। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि काराकास और ला गुआयरा में भीषण तबाही मची है। तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे चीख पुकार मची हुई है, हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भीषण तबाही वेनेजुएला में ये भूकंप लेकर आया है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो तबाही का मंजर खुद बयां कर रही हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, कई लोगों की आशियां पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखा गया, वहां पर भी चीख पुकार मच गई जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा 7.2 और 7.5 आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्रता वाला ये भूकंप होगा। भारी विनाश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो नंबर्स हैं यानी कि कितने लोग मारे गए हैं इस भूकंप में, उस पर फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आशंका यही है कि हजारों लोग इस भूकंप के झटके में
1: तबाही और बर्बादी की ये खौफनाक तस्वीर वेनेजुएला की है। चंद सेकंड के भीतर 2 बार जलजला आया और चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे जान बचाने के लिए 2 लड़कियां भाग रही हैं और पीछे इमारत धराशायी होती नजर आ रही है। वेनेजुएला के मैक्सिकिया एयरपोर्ट की तस्वीरें भी डरावनी हैं। भूकंप आया तो हड़कंप मच गया, जान बचाने के लिए लोग दौड़ते भागते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, लोग भाग रहे हैं और पीछे मलबे का गर्द और गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। लोगों में खौफ साफ नजर आ रहा है, अपनी आंखों के आगे लोग इमारतों को गिरते हुए देख रहे हैं। भूकंप शाम के वक्त आया जब आमतौर पर बाजारों और अन्य कारोबारी जगहों पर चहल पहल होती है, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा पसरा है। जब भूकंप आया तो बहुत से लोग अपने घरों में छुट्टी मना रहे थे। ये छुट्टी 1821 की उस सैन्य जीत की याद में थी जिससे वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली थी। भूकंप का झटका वेनेजुएला के स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम 6:04 पर आया था। बड़ी बात यह है कि 40 सेकंड के अंतराल में भूकंप के 2 तेज झटके आए। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इसका केंद्र वेनेजुएला की राजधानी काराकास से 168 किलोमीटर दूर कैरेबियन तट पर स्थित मोरोन इलाके के पश्चिम में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर थी जबकि दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। इसे वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के इस दोहरे झटके से जानमाल के व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक बड़ा रिहायशी इलाका भूकंप की चपेट में आया है। राजधानी काराकास में भी बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, सदी का सबसे बड़ा भूकंप ये बताया जा रहा है, कितने जान माल का नुकसान हुआ है, मरने वालों का आंकड़ा क्या है, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, कितनी तबाही मची है इस भूकंप से वेनेजुएला में?
2: देखिए, तबाही की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं जो वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, क्योंकि नेहा यहां ये समझना होगा कि ये भूकंप जो है महज 50 सेकंड से कम के फासले के अंदर 2 बड़े भूकंप, इनफैक्ट आमतौर पर चर्चा की जाती है आफ्टर शॉक्स की, लेकिन यहां पर तो 4 शॉक था। यानी 7.2 का भूकंप पहले आया और उसके बाद करीब 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया, यानी विध्वंस ज्यादा हुआ होगा। जिस पहले झटके से अगर इमारतें अगर बच भी गई किसी तरीके से नुकसान के बावजूद खड़ी भी थी, तो वो अगले और ज्यादा ताकतवर भूकंप के कारण धराशायी हो गई। और लगभग इसी तरीके की तस्वीरें बड़े इलाके से सामने आ रही है, क्योंकि इस भूकंप का की जमीन में गहराई कम थी, यानी इसका दायरा बहुत ज्यादा व्यापक था, और इसीलिए वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा वेनेजुएला की सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा या उससे प्रभावित लोगों का आंकड़ा कितना है, इसलिए आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो अलग अलग एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा हो सकता है, जो इससे जो है काफी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं लोग। इसमें मरने वालों का आंकड़ा भी काफी बड़ा हो सकता है। खास तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं और जो जानकारी आ रही है वेनेजुएला से, वो बताती है कि अभी भी कई लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। लगभग 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस भूकंप को, लेकिन अभी भी राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो उन इलाकों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई हैं जहां ज्यादा पैमाने पर नुकसान हुआ है, और इसके कारण काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं या जो उन वहां के अंतरिम राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिक्स, उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस चीज का ऐलान किया कि इमरजेंसी लगा दी गई है पूरे देश के अंदर। साथ ही जो एयरपोर्ट है सैन बोलिवियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे बंद किया गया है। जो शिक्षण संस्थान है वहां बंद किया गया है लोगों को, और साथ ही जो इमरजेंसी टीम्स हैं उनको अलग अलग इलाकों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और इस मामले के अंदर जो एल सल्वाडोर है,
0: ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है भूकंप का, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि अर्थक्वेक के बाद जलजला आता है, सुनामी की आशंका बढ़ जाती है।
3: दरअसल नेहा, दो चीजें, अब हम जो तस्वीरें ज्यादातर देख रहे हैं, ये जो समंदर का तटीय इलाका है कैरेबियन का, उसे काफी अंदर की तरफ था। अगर ये समंदर का एपिसेंटर या तो एकदम किनारे पर होता या समंदर के बीच होता तो सुनामी थी, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये था कि जैसे ही 7 रिक्टर का पहला भूकंप आया, उसके कुछ ही मिनट में दूसरा भूकंप आया था, और इसी के चलते जो कैरेबियन में सुनामी की संभावना थी, यूएसजीसी ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब से 30 मिनट पहले उसको वापस ले लिया गया है। तो सुनामी का खतरा नहीं है, यानी दो मोर्चों पर अब वेनेजुएला के लिए जंग नहीं होगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम देख पा रहे, आप देखिए जो पहला एयरपोर्ट है इसको बंद करना, लगभग 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो फिलहाल बंद है क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो सकता। कैरेकस और उसके आसपास ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर का पूरा इलाका है जो पूरा, अब देखिए पूरी की पूरी इमारत अगर ये टिल डाउन हो सकती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किल कितनी ज्यादा होगी। खासकर यूएसजीसी का जो अनुमान है कि हाई डेंसिटी वाले इलाके जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और जहां हाई वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है, वहां लोग जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हुए तीव्रता कितनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में इसे डाला गया है, और इसीलिए ये प्रेडिक्शन दिया गया कि इसमें मरने वालों की संख्या हजारों हो सकती है। लेकिन चूंकि सुनामी का खतरा नहीं है, इसलिए राहत बचाव कार्य जो है बहुत आसान हो जाएगा। वेनेजुएला के पास उस तरह के संसाधन, उतनी बड़ी आर्मी या उतनी बड़ी सिविल डिफेंस फोर्स नहीं है, और इसीलिए संभवतः यह हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रपति ने वहां इमरजेंसी की घोषणा की है, ऐसे में पूरी संभावना है कि सबसे पहली मदद
0: कोस्टल एरिया वाली तस्वीर अगर आप समझा सके आशुतोष।
3: बिल्कुल, ये जो तटीय इलाके हैं आप देखिए, यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसमें वीडियो कैप्चर किया। चूंकि झटका लगभग 7.5 रिक्टर का था तो पूरी टर्बुलेंस समंदर में देखने को मिली, इसीलिए ऊंची लहरें यहाँ पर उठी थी। एक बार को लोगों को लगा क्या ये सुनामी है, लेकिन ये लहरें इतनी ऊंची नहीं थी कि सुनामी की तरह जो 10 से 12 फीट आकर के ये जो शहर के इलाके हैं इन पर प्रभाव डालें। लेकिन चूंकि आप 60 से 70 किलोमीटर पर आपने उसका असर देखा है, इसलिए ऊंची लहरें उठी और समंदर के किनारे वहां पर कई सारे मछुआरे थे, और इन्हीं मछुआरे में वो डर गए। देखिए ये 3 से 4 फीट की ऊंची लहरें हैं, ये उतना नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन आसपास के सारे इलाकों जब ये लहरें टकरा रही थी तब इनकी जो ऊंचाई थी वो 4 से 5 फीट तक जाती दिखाई दी है। तटीय इलाकों को समंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो नुकसान हुआ है वो उसके भीतर का है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि वेनेजुएला को अगर पूरे मैप को समझें तो एकदम बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा महसूस किया गया था, इसीलिए किनारे के इलाके सुरक्षित हैं, बीच का इलाका। और उस वजह से क्या हुआ कि आसपास जो साउथ अमेरिका के दूसरे देश हैं उन्होंने वो झटके महसूस किए, लेकिन वो कम रिक्टर पर थे, वहां कहीं पर 2.5 रिक्टर या 3 रिक्टर महसूस किया गया। इस इलाके को आप देखेंगे तो पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप की तीव्रता का असर ऊंची इमारतों पर हुआ है, वो नीचे गिरे हैं, संख्या ज्यादा, और हो सकता है कि अगले जब मतलब आप एयरपोर्ट के इलाके को देखिए, पूरी इमारत है कि लोग भाग करके जाए कहां। और जब ये मलबा 7.5 का समझिए कि 7 मिनट के भीतर 2 भूकंप महसूस किए गए हैं, तो अगर लोग निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो का पालन करते हैं, कहीं दब जाते हैं, ऐसे में वो तबाही ज्यादा बड़ी हो सकती है। नेहा,
0: ये तमाम जो तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं बेहद भयानक और डरा देने वाली, क्योंकि इतनी तीव्रता का भूकंप और वो भी इतने कम समय के लैप्स में अगर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर लोगों में किस तरह का दहशत का आलम होगा। भाग कर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि दोनों तरफ से इमारतें गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे मलबा जगह जगह अब नजर आ रहा है। एयरपोर्ट के अंदर हों लोग या फिर मॉल के अंदर, उन्हें समझ आ गया था कि आखिरकार जान बचाना कितना मुश्किल हो सकता है। और वेनेजुएला के बाद जापान में भी जोरदार भूकंप की खबर है। जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि अब तक सुनामी की चेतावनी नहीं जारी हुई है, लेकिन गनीमत यह भी है कि अब तक इस भूकंप में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जापान की सरकार ने इमरजेंसी टीम को तैयार कर लिया है। जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। अक्सर जापान में भूकंप आता है क्योंकि यह सिस्मिक जोन का सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। और वेनेजुएला में भूकंप से चीखपुकार मची। इधर कोलकाता में एक हादसे से मातम का मंजर है। कोलकाता के तारातला इलाके में कल निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे के बाद सरकार ने कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम को तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। मलबे में दबे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। 15 लोगों के दबे होने की अब भी आशंका है। हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
4: कोलकाता में दोपहर के वक्त जब मजदूर काम में जुटे थे, अचानक लोहे के बड़े बड़े और भारी भरकम गाटर दरकने लगे। कोई संभल पाता, उससे पहले ही लोहे की पूरी शेड धराशायी हो चुकी थी। जो जहां था वही दब गया। हादसे में जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, उनमें राहुल चौधरी भी शामिल है। राहुल कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। हादसे के बाद परिजन अस्पताल में उसे तलाशते रहे और जब उसकी मौत की खबर मिली तो जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई।
5: जो ठेकेदार है, जो काम लिया है, उसको वर्कर का सेफ्टी देना चाहिए ना। वो बिना सेफ्टी का वर्कर काम करेगा? ये लोग इतने वर्कर लोग काम करे बिना सेफ्टी का करेगा?
4: कई मजदूरों के परिजन अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। आरोप है कि प्रशासन से लेकर अस्पताल तक कोई कुछ बताने को तैयार नहीं।
6: हॉस्पिटल में पता किए?
7: पता ही है, अभी नहीं मिला उसको।
8: अंदर भी होगा, दबाव होगा, बैठा होगा।
9: मुंह से कोई निकाल वाले के लिए एम्बुलेंस तो यहां से दवा कीजिए। बोलो दादा डेढ़ लाख की वाले
10: मन जोड़ को
4: 50 टन तक वजन उठाने में सक्षम एक हाइड्रोलिक क्रेन को मौके पर तैनात किया गया है। क्रेन की मदद से गिरी हुई संरचना को थामा गया है ताकि वो और ना गिरे। जानकारी के अनुसार यह गोदाम लगभग 20,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्माण परियोजनाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया है। जो निर्माण कार्य पहले से चल रहे थे उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा शहर भर में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जांच के आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि परियोजना को जनवरी 2026 में मंजूरी दी गई थी और आरोप लगाया है कि स्वीकृत योजना में ही खामियां थी।
11: 17/1/2026 से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन दिया है। आगे हमरा सरकारी आसार आगे जे प्लान सैंक्शन हो।
4: सीएम ने निर्माण कार्य की मंजूरी पर सवाल उठाए तो TMC ने भी हमला बोला। कल्याण बैनर्जी ने कहा है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
12: अनुरोध करब मुख्यमंत्री के इमीडिएट स्टेप नी, एकदम समय नष्ट करबेन ना। इमीडिएट स्टेप नी, जरा जरा ये सब करेछे तादेरके सबाइके बिरुद्धे पदक्षेप नी।
4: बीजेपी ने TMC को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लोकेट चैटर्जी का आरोप है कि TMC के भ्रष्टाचार की कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही है। अनिर्बान रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। तापस, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस हादसे के? अगर जनवरी 2026 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी तब सरकार दूसरी थी, तो अब की सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अब तक कितने लोग मलबे में दबे हुए?
6: जी देखिए, मलबे में कितने दबे हुए अभी भी ये निश्चित तौर पे नहीं बताया जा सका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको पीछे का मंजर दिखाता हूँ, बड़े बड़े क्रेन्स को लाया गया है और ताकि यहाँ पर जो ऊपर का ढांचा है उस ढांचे को हटाया जाए, क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा है कि अंदर और कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था ये चल रहा था, सेना ने बकायदा कमान उठा ली थी, चार कॉलम भारतीय सेना मौजूद है यहाँ पर, उनमें आर्मी मेडिकल कोर भी मौजूद है, एनडीआरएफ भी काम कर रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें पता था कि 6 लोगों को कल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 2 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर की 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुलजार हुसैन जो आयोन ट्रेडर्स के सुपरवाइजर रहे हैं, कमल सामंतो जो आयरन स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर थे, शंभुनाथ बेहरा जिनको ये लीज पे दिया गया था, दिबाकर भंडारी जो सप्लायर थे, और अब्दुल हमीद ये ब्रोकर थे, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से प्लान को सैंक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी था। कुल मिला के 5 लोगों को कोलकाता पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। एक एसआईटी की गठन की गई थी और वो एसआईटी कल रात भर अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें आज 5 लोगों को गिरफ्तार बताया जा रहा है। और जो मूल तौर पर यहां देखा जा रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट था या नहीं, अगर था तो उसे सैंक्शन कैसे मिला, क्या सैंक्शन दिलाने के लिए घूस दिया गया था, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखा जा रहा है। खासकर कल शुभेंदु अधिकारी ने भी यह साफ कर दिया था कि अगर सरकारी कर्मचारी इस प्लान को सैंक्शन करने के पीछे उनके कोई हाथ रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रायोरिटी यही कि अंदर जो फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उस केस की जिसने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया। जी हाँ, पुणे के लोगढ़ का केतन मर्डर केस। केतन मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम ब्रांच के अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। खबर यह है कि पुलिस मौका है वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट करके जांच कर सकती है। अब तक की जांच पर यह रिपोर्ट देखिए।

0: 19 फरवरी के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तस्वीरों में नजर आ रही लड़की के मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये वीडियो उस फंक्शन का है जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल का रोका हुआ था। तस्वीरों में सिया काफी खुश नजर आ रही है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया ने केतन की मौत की पूरी साजिश रची भी और उसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया। यही वजह थी कि केतन के घर वाले उसकी मौत को शुरुआत में हादसा मानते रहे।
1: जैसे 19 तारीख को इनका महाबलेश्वर में बर्थडे कर रहे थे, फिर ये वो कहाँ गए, क्यों गए, तो उस हिसाब से हमने अपने मन की शंका पुलिस में जाहिर की, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया।
0: केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के पिता अपने बेटे के बचाव में सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि चेतन बेगुनाह है।
2: हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
3: अच्छा, किस तरह फंसाया जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है?
2: क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं।
0: केतन मर्डर केस की जांच पुलिस ने तेज

0: 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना जहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है सब घटनाओं के बीच वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है।
1: लोहागढ़ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का दिल दहला दिया है। चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों ही 29 जून तक पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में क्या कोई और भी शामिल था। पुणे से श्री कृष्ण जगन्नाथ पंचाल आज तक।
2: मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त सीधे पुणे से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओंकार, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुलिस को हासिल हुई है?
3: देखो, क्राइम सीन अभी रिक्रिएट करना वैसे बाकी है, लेकिन अहम बात यह है कि ये पहली बार हुआ कि पुणे के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल और उनके साथ महाराष्ट्र की फॉरेंसिक टीम किले पर जा पहुंची। जहां खाई है नीचे, उस खाई में भी उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश की, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए और किले पे जाके भी उन्होंने एग्जैक्टली देखा कि कहाँ से ये सब कुछ हुआ है, किस तरीके से इसे वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी हुई है। लेकिन अहम बात यह है, कल जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बात इंट्रोगेशन चल रहा था, तब दो बातें अहम सामने आई है। पहला यह है कि सिया ने जो अपने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए, जो एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे थे, पहला बयान उसका अलग था और जब उसने कहा कि पैर फिसलने के कारण वो गिर गया, लेकिन दूसरी बार उसने कहा कि वे खुद थक गई थी, पानी की बोतल वो उसे दे रहा था और तब उसका पैर फिसल गया। तो ये दो बयान एक दूसरे को एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थे। दूसरा अहम यह है, पुलिस ने जब जो चेतन चौधरी है जो ऊपर जा रहा था, उसका ऊपर जाते वक्त का सीसीटीवी जब वो पहली बार स्पॉट हुआ तब और वापस वो कितने बजे गया, ये दोनों ट्रैक किया। उसमें पता चला कि उसे सिर्फ 48 मिनट लगे हैं नीचे से ऊपर जाके फिर वापस लौटने में। तो हिसाब ये हुआ कि अगर 20 मिनट ऊपर जाने के लिए लगती है तो 20 मिनट नीचे आने के लिए
2: ठीक
3: लगे,
2: है।
3: और अगर 40 मिनट ये हुए तो 8 मिनट के लिए किले पर एग्जैक्टली क्या कर रहा था। तो एग्जैक्टली यही सस्पिशन था और इसी
2: ठीक है,
3: सस्पिशन को
2: मैं
3: लेते
2: लौटूंगी
3: हुए
2: आपके
3: अब
2: पास। बीच बात अब अयोध्या के राम मंदिर की करेंगे, जिसके चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद मामले की जांच की मांग में कूद गया है। बीएचपी ने कहा है कि चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मामले की जांच तेज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो और दोषियों को सजा मिले। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज एसआईटी के सामने सबूत पेश करने वाले हैं। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत वो उपलब्ध करवाएंगे।
4: चोरों का गिरोह बना के यहां पर ट्रस्ट के माध्यम से केंद्र की सरकार ने बिठा दिया है, ये ठीक नहीं है। इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, उन लोगों की आस्था को चोट पहुंची है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को खड़ा किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। जिन लोगों के ऊपर गंभीर चंदा चोरी के आरोप हैं वो अभी भी मंदिर का संचालन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती?
2: संतोष, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, संजय सिंह के पास सबूत कैसे आए हैं और किस तरह के सबूत हो सकते हैं ये?
5: देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो जमीनों की खरीद हुई, उनका सीधे से आरोप जमीन के घोटाले को लेकर है कि जमीनों की खरीद में पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ। जो राम मंदिर के पास में जमीन है वो सस्ते में खरीदी गई और जो शाहनवाजपुर एक गाँव बताया जा रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र से बाहर है, यानी कि राम मंदिर से दूर है, उसकी जमीनें ज्यादा महंगी खरीदी गई। तो ये गड़बड़ी जमीनों के अधिग्रहण में, जमीनों की खरीद फरोख्त में लगाई गई है। वहीं चंदा चोरी के आरोप में भी संजय हमलावर है और इसको लेकर के वो आज करीब 11 बजे एसआईटी हेड लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत से लखनऊ में मुलाकात करेंगे। उनसे चूंकि सबूत मांगे गए हैं कि किन सबूतों के आधार पर वो इतना महाघोटाला महाचोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो उन सबूतों के साथ आज संजय सिंह विजय विश्वास पंत एसआईटी हेड जो लखनऊ के कमिश्नर है उनसे मुलाकात करेंगे, उनको सबूत देंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हजारों मौत की आशंका, सुनामी की चेतावनी। कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 5 मौत की पुष्टि, 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी खंगाल रही है, 10 साल के एनओसी का डेटा, हर विभाग के जिम्मेदार अफसरों का ब्यौरा मांगा, एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी। आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आप नेता संजय सिंह, कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, 17 लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी, भारी भूस्खलन से तमाम रास्ते बंद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: दो शक्तिशाली भूकंप से कांपा वेनेजुएला, राजधानी काराकास में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके, 40 सेकंड में 2 बार कांपी धरती, मुख्य झटके से 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का आया था भूकंप, सुनामी का खतरा। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, इस इलाके के आसपास देश की बड़ी तेल रिफाइनरीज मौजूद हैं। कुछ इलाकों में धूल का गुबार छा गया, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवर को लेकर तुरंत सड़क पर निकल आए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी की आशंका जाहिर की है। एसआईटी ने विभागों से पिछले 10 वर्षों की बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियों, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई और समय के जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। एसआईटी ने जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की, उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट दोबारा मांगी गई। जांच का फोकस अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर है। अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट न होने पर एसआईटी ने जताया संतोष, विस्तृत जानकारी देने को कहा। एसआईटी जल्द ही मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जारी करेगी। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अफसर दोषी, एलडीए ने सख्त एक्शन की सिफारिश की। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लोगों की मौत आग से नहीं दम घुटने से हुई। लखनऊ में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर एलन कोचिंग सेंटर सील, एलडीए बोला बिना मंजूरी के नक्शे पर चल रही थी कोचिंग। लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा यदि समय पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, 923 कोचिंग संस्थानों की होगी जांच, सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर घोटाले की जांच में नया एंगल, नेशन की जांच के बीच एसआईटी ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत मांगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी का बड़ा कदम, आप सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की एसआईटी को फर्जी बताया, पूछा एफआईआर दर्ज कर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं उनको जांच सौंपी गई। अरविंद केजरीवाल के 26 जून को होने वाले अयोध्या दौरे पर विरोध तेज, धार्मिक संगठनों ने जताई आपत्ति, बोले रामनगरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर संत समाज ने आप संयोजक को दी चेतावनी, बोले आस्था का ध्यान रखा जाए, पहुंचने पर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। कोलकाता के तारातला हादसे पर एक्शन, अब तक 3 गिरफ्तार, 20 लोगों का हुआ रेस्क्यू, एसआईटी जांच के आदेश, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है, निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल हो रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रही सभी निर्माण इमारतों के काम को तत्काल रोकने का आदेश दे दिया। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा निर्णय लिया, सीएम ने पिछली सरकार में दिए बिल्डिंग निर्माण की तमाम अनुमतियों की जांच का आदेश दे दिया है। आज हादसे पर बंगाल विधानसभा सत्र में बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी, 29 जून को विधानसभा का विशेष सत्र। बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में सीएम योगी हुए शामिल, बोले बीमारू टैक्स से बाहर निकला यूपी, उद्योगपतियों को दिया निवेश का न्योता। यूपी के विकास की चर्चा करते सीएम योगी ने यूपी को पिछले 9 साल का सबसे तेज विकसित राज्य बताया, बोले उत्तर प्रदेश भारत के 3S मॉडल का प्रतीक बन गया है। गूगल क्लाउड के सीटीओ तरुण पंत ने सीएम योगी के विजन की सराहना की, बोले एआई के जरिए किसान, युवाओं और स्टार्टअप के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करेगा यूपी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मुख्य रूप से यात्रा का एक दस्तावेज है। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 110 लाख डॉलर से अधिक चुकाने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विपक्ष दल के नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस दे दिया गया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा करेंगे अध्यक्षता। भारत रूस सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग एमओयू पर हस्ताक्षर किए। न्यायिक शिक्षा, डिजिटल बदलाव और तकनीकी सहयोग पर होगा जोर। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड में दिल्ली सरकार, डेंगू मलेरिया रोकने के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली के गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का रखा प्रस्ताव। 32 साल पुराना यमुना जल विवाद सुलझा। अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा राजस्थान के बीच होगा ऐतिहासिक एमओयू। युवाओं के मुद्दों पर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे भारत में छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव गोगोई और प्रियांक खड़गे समेत 28 नेता करेंगे संबोधित अभियान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसी एयर इंडिया की फ्लाइट, गो अराउंड के दौरान हुई चूक। मामले पर एयर इंडिया के बयान जारी करते हुए कहा, इस घटना की जानकारी एजेंसियों को दे दी गई और आंतरिक जांच की जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों की रक्षा की मांग की है। स्पीकर से बैठक के बाद अरविंद सावंत ने कहा, बिना संबंधित पक्ष की सुनवाई के कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। स्पीकर ने यूबीटी सांसदों को बताया, बागी गुट की ओर से अभी कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। स्पीकर से संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत बागी गुट को अलग मान्यता नहीं दी जा सकती। महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते पूछा कि क्या हम सच में साथ हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमवी की एकजुटता सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि सदन के भीतर भी दिखनी चाहिए। कैडर नेताओं की मौजूदगी पूरी नहीं दिख रही है। गठबंधन में कुल 60 विधायकों में से 37 पहुंचे जबकि 23 विधायक गैर हाजिर रहे। महाराष्ट्र में शादी के ताक में दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छापना होगा जरूरी। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। बेगूसराय गैंगरेप की पीड़िता से मिले तेजस्वी यादव का, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो उस राज्य में न्याय कैसे मिलेगा। गुजरात के नर्मदा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न। सोलांबा के पास एक महीने पहले बना नाला बहा। अरुणाचल के कई पेन्योर में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़। बड़े पैमाने पर पानी भरने के कारण 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त। अचानक आई बाढ़ से नीपको परियोजना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित। प्राकृतिक आपदा के बीच बचाव और राहत कार्य जारी। प्रभावित स्थान पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से कर रही है काम। अलर्ट पर एनडीआरएफ। काशकट के बीच पन्योर जलाशय में एक व्यक्ति और उसका पालतू कुत्ता बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गए, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश खरगोन में मूसलाधार बारिश। साप्ताहिक हाट बाजार में घुटने तक भरा पानी। झूमते नजर आए बच्चे। यूपी के महाराजगंज में नशे में धुत एक युवक ने 11,000 वोल्ट के बिजली पोल पर घंटों किया ड्रामा। पुलिस और बिजली विभाग की तत्परता से सप्लाई बंद कर युवक को नीचे उतारा गया। दोआ के वाघा बीच पर हादसा, पानी तेज बहाव में बह गया युवक। दिल्ली में 24 साल की महिला ने किया आत्महत्या। मौत से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। चेन्नई में प्लेसमेंट के नाम पर बंधक बनाई गई सरगुजा की 3 युवतियां, वीडियो जारी कर मांगी मदद। पहलगाम के पास भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों के चक्कर में ओटोकार नदी में गिरी, 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हिंसक झड़प, बीच बचाव में युवक की कही जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक का अपहरण कर मारपीट और फिरौती मांगने के मामले में 3 स्ट्रीट शीटर की परेड। बिजनौर में एटीएम में लगी आग से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आधी रात दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत। लद्दाख के द्रास सेक्टर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार नदी में गिरी, 1 शव बरामद। फिरोजाबाद में आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में दूसरे दिन बड़ा एक्शन। एसपी नेता के कोचिंग सेंटर सील, क्षमता से अधिक, 1 क्लास में बैठे थे 150 स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के नाव में जेल में बंद कैदी की मौत के बाद परिजनों का बवाल। परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए सड़क को जाम किया। कर्नाटक में कावेरी नदी में एक परिवार के 5 सदस्य डूबे, फोटो खिंचवाने के दौरान हुआ हादसा। मोहर्रम पर्व को लेकर झांसी पुलिस अलर्ट, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर। भारी फौज के साथ किया संवेदनशील और मुस्लिम इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च। बिहार के समस्तीपुर में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर बवाल, बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग, 2 आरोपी हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 12 चोरी की मोटरसाइकिल, लाखों के पास बरामद। महाराष्ट्र कोल्हापुर में घर पर सूखा नारियल पेड़ का पेड़ गिरा, नींद में सो रहे 10 साल के मासूम की मौत। अब और आधुनिक और टिकाऊ होंगी दिल्ली की सड़कें। रेखा सरकार ने 658 करोड़ रुपए की लागत से 270 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास को दी मंजूरी। बिहार में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का विस्तार होगा। 12 शहर होंगे सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित। समस्तीपुर के प्रसिद्ध चकोटी मठ पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पूजा अर्चना कर राज्य में सुख शांति समृद्धि की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ विष्णु महायज्ञ और संत महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। श्री महाविष्णु जी के 24 अवतार धाम का किया लोकार्पण। क्रिकेटर आकाशदीप की शादी संपन्न, वाराणसी में अक्षता राज के साथ लिए 7 फेरे। बिहार के रोहतास से धूमधाम से निकली बारात। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण की तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षाकर्मियों का जंगल में मॉकड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यास किया गया। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का पूर्वाभ्यास किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बल। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। आईसीसी की ओर से ताजा वनडे रैंकिंग ऐलान, 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल ने नंबर 2 पर बनाई जगह। गिल के अलावा रोक को भी टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर काबिज। ताजा आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 स्पॉट पर बरकरार। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का संयुक्त रूप से नंबर 1 पायदान पर काबिज हैं बुमराह। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल 7वें स्थान पर, उनके पीछे यशस्वी जायसवाल 8वें स्थान पर। इस बीच कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर दाल रोटी रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई है। रोहित गुदारा गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गोलीबारी का वीडियो पोस्ट कर हमलावर ने खुद को राजा पहलवान बताया। गैंगस्टर का दावा है कि रेस्टोरेंट मालिक ने छात्रों को बकाया तनख्वाह ना देने के कारण मालिक को सबक सिखाने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कनाडा के ब्रैम्पटन में 10 लाइट बीम टेरेस स्थित दाल रोटी रेस्टोरेंट के बाहर यह फायरिंग हुई। इसकी जिम्मेदारी राजा पहलवान और निक्का संधू ने ली है। कनाडा की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

0: तो ये फायरिंग का वीडियो खुद रोहित गुजारा गैंग ने जारी किया है और जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि समय पर वेतन ना देने के कारण उन्होंने डराने के मकसद से ये फायरिंग की है। खुद राजा पहलवान इसकी जिम्मेदारी ले चुका है। छात्रों की सैलरी ना देने का आरोप इस रेस्टोरेंट के मालिक पर लगा है। रेस्टोरेंट का नाम दाल रोटी रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, जो कनाडा में स्थित है। तो लगातार फायरिंग यहां इस रेस्टोरेंट के बाहर की गई। रोहित गुदारा गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। हालांकि किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल यही कि इस तरीके से फायरिंग करके वहां पर दहशत फैलाई गई। इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर मलबे में दबने से अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 बताई जा रही है। कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल ये भीषण हादसा हुआ था जिसके बाद से तमाम जो कंस्ट्रक्शन है उसे रोक दिया गया था। हालांकि कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं इसकी संख्या पर स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 2 की हालत गंभीर सुबह बताई जा रही थी, इसी वजह से अब 5 से बढ़कर मरने वालों का आंकड़ा 8 हो गया है। सेना की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। बड़े बड़े गर्डर और टीन शेड आप देख सकते हैं जो इस वक्त गिरे हुए हैं, इनके नीचे लोग दबे हो सकते हैं। इस संख्या कितनी है इस पर फिलहाल जानकारी नहीं है। ये गोदाम हादसा जिसमें मरने वालों का अब आंकड़ा बढ़ चुका है, घायलों की भी संख्या है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन शेड गिरने से अब तक 8 की जान चली गई है। बात बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर की। इस मामले में न्यायिक जांच की अधिसूचना कल ही जारी कर दी गई। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस वालों पर FIR दर्ज हो चुकी है और सियासत भी हो रही है। एक दिन पहले महापंचायत हुई, वहीं कल भोजपुर SP ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया।
1: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर SP भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने SP से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर SP साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
2: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
1: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
3: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है।
1: इस महापंचायत में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
4: न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: वहीं RJD नेता सुधार सिंह ने STF अधिकारी कुंदन कृष्ण का नाम लेकर सरकार को घेरा।
5: इधर उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
1: विपक्ष तो विपक्ष, खुद मंत्री अशोक चौधरी अपनी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं।
6: एक जगह घटना होगी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहाँ जहाँ घटना होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
1: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
0: 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
8: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: आगे आगे
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से
12: शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: विमल बोलो जुबां केसरी।
12: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: आम्ही एनडीआरएफ दुप्पट केलं. तिचं जाहीर नाना समाधानकारक आपल्याला कारवाई
1: अभिनंदन करेल.
2: मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर विधानसभा में जोरदार बहस के बीच महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो गई है.
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक कानून, ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका हमारी है. देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, यह भूमिका शिवसेना की है.
2: महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर जमकर हंगामा हुआ. दरअसल बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में तीन तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक से ज्यादा शादी और बदसलूकी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है. इसके जवाब में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऐलान किया कि सरकार एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएगी. ये कमेटी महाराष्ट्र में यूसीसी को कैसे लागू किया जाए इस पर स्टडी करेगी और सरकार फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपना अगला कदम तय करेगी. इसके बाद यूसीसी और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सदन में बहस तनावपूर्ण हो गई. एनसीपी विधायक सना मलिक ने चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है. उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है. इस टकराव को और बढ़ाते हुए मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया, गजवाए हिंद करने वाले जो लोग कानून और संविधान को मानने से इनकार करते हैं उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है. वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया. जिस तरह सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, उससे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेगी.
4: महाराष्ट्र विधानसभा में छिड़ी ये बहस एक बात तो साफ करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला सुरक्षा, ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं. अब ये देखना जरूरी होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट राज्य की राजनीति किस तरह से बदलती है. हालांकि देखना ये भी होगा कि क्या इस फैसले से सही मायने में समाज को जोड़ा जाता है या फिर इससे सिर्फ राजनीतिक हवा बदलती है. कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
10: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है। जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे, तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही पद तक जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा निकलो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
3: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ 100 या 1000 रुपए का नहीं, बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का दावा है, तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
4: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहां लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
3: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: खतरनाक भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार, हजारों मौत की आशंका, सुनामी की चेतावनी। इमरजेंसी के 51 साल पर पीएम मोदी का पोस्ट, लोकतंत्र को चलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस, पोस्ट किया उन्होंने। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 8 मौतों की पुष्टि, 5 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी खंगाल रही है 10 साल के एनओसी का डेटा, हर विभाग के जिम्मेदार अफसरों का ब्यौरा मांगा, एलडीए के 19 इंजीनियर पर एक्शन की तैयारी। आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज सुबह सुबह ही ऐसी दर्दनाक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर कुदरत का कहर टूटा है। वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया है। हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में हम तबाही का मंजर आपको दिखाएंगे, कैमरे में कैद लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही बात होगी भारत में मौत की लापरवाही की। लखनऊ और कोलकाता में भ्रष्टाचार का कातिल चेहरा सामने आया है जिसने कई जिंदगियां छीन ली। और बताएंगे कि कैसे मामला राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जमीन घोटाले तक पहुंच चुका है। लेकिन पहले सबसे पहले बात करते हैं सदी के सबसे बड़े भूकंप की।

0: और बात दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जहां सदी के सबसे बड़े भूकंप की खबरें आ रही है और तबाही मची हुई है। चीख पुकार है, मौत का मातम है, इमरजेंसी है। आप जब सो रहे थे, दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में चीख पुकार और तबाही मची हुई थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में हजारों लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुएला के समय के मुताबिक बुधवार शाम 6:04 पर भूकंप के दो ताकतवर झटके महसूस किए गए। पहला झटका, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज की गई, जबकि 40 सेकंड के बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा भयानक झटका आया। भूकंप का केंद्र राजधानी कराकस से करीब 168 किलोमीटर दूर था। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने जानकारी देते हुए बताया है कि कराकस और लागुएरा में भीषण तबाही हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस भयानक मंजर की। देख सकते हैं कि जब ये भूकंप आया तो जो इमारतें थी वो हिलने लगी, लोग भागकर बाहर आ गए। शाम का वक्त था लेकिन छुट्टी का दिन भी था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से दौड़कर इमारतों के बाहर भाग रहे हैं। 7.2 का पहला झटका जिससे इमारतें गिर गई, और ये बाद की तस्वीरें जो बाद में राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। कई लोगों के मलबों में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से वहां इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त काम कर रही होंगी। लोगों का डर देखिए, खौफ का मंजर देखिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरफ भागे, क्योंकि हर जगह बस गिरती हुई इमारतें नजर आ रही हैं। और ये तो वो इलाके हैं जहां पर ऊंची इमारतें नहीं है, लेकिन ये जहां ऊंची इमारतें थी वहां लोगों का डर देखिए। कुछ ऐसा ही मंजर एयरपोर्ट में भी नजर आया राजधानी के, जहां आप देख सकते हैं कि इमारत के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो गए, लोग डर कर बाहर भागने लगे। और ये तस्वीरें पूरी पूरी तरह से ध्वस्त हुई इमारतों की, बहुमंजिला इमारतें जो ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तो वेनेजुएला में कैसा कहर बरपा है इसका आंकलन बाकी है। हर तरफ मलबा है, तबाही है, मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश है, मौत है, हजारों जाने अटकी हुई है, ऐसी अटकले हैं और हजारों जाने शायद चली भी गई हैं।
1: तबाही और बर्बादी की यह खौफनाक तस्वीर वेनेजुएला की है। चंद सेकंड के भीतर दो बार जलजला आया और चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे जान बचाने के लिए दो लड़कियां भाग रही हैं और पीछे इमारत धराशायी होती नजर आ रही है। वेनेजुएला के मैक्सिको एयरपोर्ट की तस्वीरें भी डरावनी हैं। भूकंप आया तो हड़कंप मच गया, जान बचाने के लिए लोग दौड़ते भागते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, लोग भाग रहे हैं और पीछे मलबे का गर्द और गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। लोगों में खौफ साफ नजर आ रहा है, अपनी आंखों के आगे लोग इमारतों को गिरते हुए देख रहे हैं। भूकंप शाम के वक्त आया जब आमतौर पर बाजारों और अन्य कारोबारी जगहों पर चहल पहल होती है, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा पसरा है। जब भूकंप आया तो बहुत से लोग अपने घरों में छुट्टी मना रहे थे। ये छुट्टी 1821 की उस सैन्य जीत की याद में थी जिससे वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली थी। भूकंप का झटका वेनेजुएला के स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम 6:04 पर आया था। बड़ी बात यह है कि 40 सेकंड के अंतराल में भूकंप के दो तेज झटके आए। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इसका केंद्र वेनेजुएला की राजधानी कराकास से 168 किलोमीटर दूर कैरेबियन तट पर स्थित मोरोन इलाके के पश्चिम में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर थी जबकि दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। इसे वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के इस दोहरे झटके से जानमाल के व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक बड़ा रिहायशी इलाका भूकंप की चपेट में आया है। राजधानी काराकस में भी बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: वेनेजुएला में आए भूकंप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है, इच्छुक और सक्षम भी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तुरंत तैयारी करने का निर्देश दिया है। वो लिखते हैं कि हम अपने नए और अच्छे दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये भी मानते हैं अपने पोस्ट में कि शुरुआती रिपोर्ट जो आ रही है वहां से वो अच्छी नहीं है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, पहले ही कई संकटों से जूझ रहा था वेनेजुएला और अब ये प्राकृतिक आपदा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि शायद जो आसपास के देश मदद कर सके उनमें से सबसे अहम डोनाल्ड ट्रंप का देश अमेरिका ही है।
2: निश्चित रूप से, और जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी ली थी वेनेजुएला की जनवरी में वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद, ये वाजिब भी बनता है कि अमेरिका जो है वो मदद का हाथ बढ़ाए इस संकट के समय में। हालांकि सबसे पहले मददगार के तौर पर एल सल्वाडोर सामने आया है और एल सल्वाडोर की तरफ से 300 रेस्क्यूअर्स की टीम फिलहाल भेजी जा रही है, जिसका स्वागत जो वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की, उनकी तरफ से भी किया गया है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ है, इसका कोई आंकड़ा अभी तक अंजलि सामने नहीं आया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों के आधार पर जो आकलन किया जा रहा है वो बेहद भयावह नजर आता है, क्योंकि केवल नुकसान जो है वो कैराकास जो राजधानी है वहां नहीं हुआ है, बल्कि काफी व्यापक इलाके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक चाहे एयरपोर्ट हों चाहे भारी जो आबादी वाले इलाके हैं उन तमाम इलाकों के अंदर, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव की टीमें अभी भी तमाम इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं, उतने संसाधन वेनेजुएला के पास नहीं है। ऐसे में ये काफी भीषण संकट है। जो अलग अलग आकलन आ रहे हैं उसके मुताबिक 10,000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा। हालांकि अभी तक जैसा मैंने कहा आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक और चीज, एक और फिनोमेना अंजलि यहां देखने को मिला है कि आज की सुबह भारतीय वक्त के अनुसार यदि बात की जाए तो धरती के पटल के ऊपर काफी जगह भूकंप देखने को मिले हैं, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, जो भूकंप की दृष्टि से, भूगर्भी दृष्टि से सबसे संवेदनशील इलाका है। जापान में भी कुछ घंटे पहले 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया से लेकर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के इलाके में कई जगह भूकंप के झटके आए, और साथ ही यह डबलेट भूकंप जो है वेनेजुएला के अंदर आया जिसे इस सदी का सबसे भीषण भूकंप कहा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि धरती की सतह के ऊपर कुछ भूगर्भी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो इस समय चिंता बढ़ाने वाली है।
0: बिल्कुल। और प्रणय, हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में भी जब भूकंप आए हैं तो कौन से ऐसे वो बड़े बड़े भूकंप हैं जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं डेटा। देखिए, साल 2025 सिलीगुड़ी के पास आया 7.1 की तीव्रता का, ये भयंकर माना जाता है, मौत 125। 2005 कश्मीर में 7.6, ये बेहद स्ट्रांग माना जाता है और आंकड़ा भी देखिए उसी के हिसाब से है। 2001 गुजरात, ये तो सभी के जहन में अब तक याद है लोगों को, करीब 20,000 मौतें हुई थी इसमें। इसके अलावा आपको बता दें 1950 असम में आया 8.6 की तीव्रता और मौत का आंकड़ा देखिए। 1934 में बिहार में आया 8 का रिक्टर स्केल पर मापा गया एक भूकंप जिसमें 10,000 से 12,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो भारत इन इन सालों में दहला था। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, लौटते हैं भारत की ही एक अहम खबर की तरफ जहां लखनऊ से कोलकाता तक मौत की लापरवाही है। लखनऊ में भ्रष्ट सिस्टम में 15 नौजवानों की सांसें छीन ली हैं, वहीं कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ही मौत की वजह बन गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। तो कोलकाता के तारातला ये इलाका है जहां बुधवार को निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जिनमें 2 की हालत अभी भी गंभीर है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया है। मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के वक्त गोदाम में कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी सामने अभी नहीं आई है। इस हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। निर्माण कार्य में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तथा अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। NDRF, सेना, SDRF, पुलिस और दमकल विभाग सभी मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए SIT भी गठित कर दी गई है।
3: রেস্কিউ করা গেছে, তার মধ্যে 5টা ব্রড ডেথ আছে আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2 ক্রিটিক্যাল আছে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। 18 জন আউট অফ ডেঞ্জার আছে, 2 ক্রিটিক্যাল আছে।
0: और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, 15 लोग करीब, क्या उनके बारे में कोई अपडेट आया है? साथ ही क्या कार्रवाई अब कर रही है सरकार?
4: जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। इंडियन आर्मी की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस, इसके अलावा लोकल पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सभी लोग लगे हुए हैं। एक चैनल बनाया गया है जिस चैनल के जरिए खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर गिरा है, तो इसको बड़े बड़े कटर्स के जरिए काट कर निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब तक 8 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। इसमें जो डेवलपर था इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, वो भी शामिल है, उसको भी ब्रॉड डेड जब वो अस्पताल में लाया गया, उसकी मौत हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पूरी डिटेल्स इसके बारे में देंगे। कंपनसेशन की घोषणा भी शायद हो सकती है। आज विधानसभा है, विधानसभा में थोड़ी देर में ही शुभेंदु अधिकारी पूरी जानकारी भी देंगे। हालांकि अभी तक ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग जो फंसे हुए हैं भीतर में, जो देर रात तक खबर है या सुबह तक खबर थी कि वो, उनको चैनल के जरिए खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है।
0: जी अनुपम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात लखनऊ अग्निकांड की, जिसकी जांच तेज हो गई है। जांच के तीसरे दिन SIT ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को तलब कर गहन पूछताछ की। तीनों विभागों के अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट में कई कमियां मिलने पर SIT ने उसे संशोधित कर दोबारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। SIT बिल्डिंग के अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत एवं बचाव कार्य में हुई देरी और संसाधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं की गहन जांच कर रही है। SIT ने विभागों से पिछले 10 वर्ष में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियों, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई और उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। और अब बात अयोध्या राम मंदिर की, जहां चढ़ावे की चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक मामला गर्मा गया है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह SIT के सामने सबूत पेश करेंगे। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान जमीनों का काफी घालमेल हुआ है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

0: और हमारे सहयोगी साहिल ने बात की सांसद संजय सिंह से, सुनिए क्या कह रहे हैं वो।
1: पहले 2021 में यहाँ पर चंदा चोरी का जो मामला था उसको उजागर किया था और उस समय मैंने ये बताया था कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में चंपत राय जी ने सुल्तान अंसारी से खरीदी थी। 5 मिनट पहले वही जमीन कुसुम पाठक और रवि पाठक से सुल्तान अंसारी ने खरीदी थी और 5 मिनट के बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में वही जमीन खरीदी थी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय एक रस्म अदायगी के लिए SIT भी बनी थी जिसमें ये तथ्य सामने आए थे कि तमाम प्रभावशाली लोगों ने, IAS ने, कुछ BJP के नेताओं ने यहाँ पे जमीनें ली थी और उसका कमर्शियल यूज करने के लिए बाद में वो सारी जमीनें खरीदी गई थी। तो उस जांच का भी क्या हुआ पता नहीं। फिर एक कागजात मैंने अभी उजागर किया जिसमें 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई है। एक कागजात और उजागर किया जिसमें 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई है। और ये सारे कागजात मैं SIT को देना चाहता था, अभी तक तो समय नहीं मिला था लेकिन आपके कार्यक्रम में आने से पहले मुझे तुरंत अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था SIT के जो अध्यक्ष हैं उनका, उन्होंने मुझे 11 बजे समय दिया है और सारे कागजात लेने की बात उन्होंने कही है। तो मैं सारे सबूत SIT के सामने रखूंगा और किस तरीके से ये घोटाला हुआ है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि चढ़ावे में चोरी का मामला आया है सामने, दानपात्र में चोरी का मामला सामने आया है, 60 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आया है, 200 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आया है, प्रभु श्री राम की।
2: ये बात ठीक है कि आप SIT के सामने अब सारी चीजें रखेंगे, अच्छी बात है क्योंकि जो आरोप लगाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो SIT के सामने जाकर वो सारी बातें रखें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लापरवाही बरती गई है या जानबूझकर गैंग को खुला छोड़ा गया था?
1: देखिए, अगर महिपाल सिंह जैसा व्यक्ति जो RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है, जो लेखा प्रभारी था और 2021-20 में ही उसने शिकायत की थी कि भाई 2021 में शिकायत की थी चंपत राय जी से कि भाई यहां चढ़ावे में चोरी हो रही है, बाद में उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। अब वो सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं। एक दीनानाथ वर्मा इंजीनियर था कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेता था, बता रहे हैं कि उसके पास एक मामूली सा मकान था, उसके घर में लिफ्ट लगी हुई है, बता रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ की जमीनें उन लोगों ने खरीदी है जिनकी तनख्वाह 18,000-20,000 रुपए थी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दिन में सब कुछ हुआ? ज्ञानेश कुमार भी इसके मेंबर थे। 2020 से लेकर 24 तक मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय है जो मोदी जी के बहुत करीबी है, वो तो 20 से लेकर 24 तक यहाँ मेंबर थे और उनका काम था कि जमीनों के मामले में, विकास के मामले में ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे?
2: पूरे मामले पर
1: कोऑर्डिनेट कर रहे थे।
2: राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, संजय सिंह जी, नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है उनसे भी हमने बात की थी और उनका यह कहना है कि दान प्रबंधन के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? क्योंकि जो सर्वे है उसमें लोग कहते हैं कि ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है।
1: सर, जब गोबर में से पैसा बरामद हो गया लाखों रुपए, चढ़ावे चोरी का पैसा बरामद हो गया लवकुश मिश्रा के घर से, अवनीश शुक्ला के घर से लाखों रुपए बरामद हो गया और लोगों के यहां से पैसे बरामद हो गए, तो क्या इसमें FIR नहीं होनी चाहिए? अब तक किसी को जेल हुई? चंपत राय से लेके सारे लोग अभी भी यहां मौजूद है, मंच पे कल भाषण दे रहे थे वो लोग। आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? ये
2: आपको नहीं
1: ये
2: लगता कार्रवाई होगी?
1: समय से
2: आपको नहीं लगता
1: लंबे होगी? लंबे समय
2: आपको,
1: से
2: आपको, आपको लगता है कार्रवाई होगी?
1: ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हुए लोगों के संरक्षण में चोरी चल रही थी और इस चोरी पे पर्दा डाला गया। मैंने जब 2021 में खोला था क्यों कार्रवाई नहीं हुई उस वक्त? जब महिपाल सिंह ने बताया था क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस वक्त? तो इसका मतलब पर्दा डाला जा रहा है, इसका मतलब ये चंदा चोरी का माल ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है ईडी पार्टी को।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक। Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

18 जून 2026 ये वही तारीख है जब लोहागढ़ किले में रिश्ते का खून हुआ। पुणे में कत्ल की ये खौफनाक साजिश रची गई थी। चंद महीने पहले ही सिया के साथ केतन की सगाई हुई थी। नवंबर में शादी की तारीख भी तय थी। केतन ने सिया के साथ जीने मरने का फैसला किया था, लेकिन वो अपनी मंगेतर की साजिशों से अनजान था। उसने मौत से ठीक पहले उसे बर्थडे विश भी किया था।

ऐसे खुशनुमा पलों के बीच ही खूनी साजिश चल रही थी। लोहागढ़ की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हम सफर बनने से पहले सिया ने अपने मंगेतर को मौत के मुंह में धकेल दिया। सिया की लाइफ में एक तरफ केतन अग्रवाल था जिससे उसकी सगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ चेतन चौधरी था जिसे वो प्यार करती थी। मर्डर के इल्जाम में अब सिया और चेतन चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे चेतन की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि ये हत्या नहीं हादसा है। केतन की हत्या को लेकर सवाल कई हैं, लिहाजा पुलिस अब सिया को मुख्य साजिशकर्ता मानकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिया के

0: चेतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और चेतन चौधरी के साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती थी, इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी और फिर 18 जून को दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आज तक संवाददाता ओमकार वाबले लोहागढ़ किले में उस जगह पहुंचे जहां आरोपी चेतन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और इस साजिश से पर्दा हट सका। वारदात वाले दिन जब चेतन चौधरी किले में पहुंचा था तो उसने टिकट भी नहीं लिया था। गार्ड ने टिकट के लिए टोका था लेकिन उसने कह दिया था कि वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। आज तक से खास बातचीत में लोहागढ़ किले के गार्ड धीरज जाधव ने बताया है कि वारदात वाले दिन क्या हुआ। अब गम में डूबे पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। कृष्णा पंचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सबसे खतरनाक भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 की मौत, 100 घायल, हजारों मौतों की आशंका। इमरजेंसी के 51 साल पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, लोकतंत्र को चलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। अब तक 8 की मौत की पुष्टि, 5 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा। देश को झकझोरने वाले केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच के लिए किले में पहुंची फोरेंसिक टीम। मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल के क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुणे पुलिस।

0: और अब बात करेंगे पुणे के सिया केतन और चेतन की लव स्टोरी और मर्डर की। बात एक ऐसे कत्ल की जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ये मानने को ही तैयार नहीं है कि एक 20 साल की लड़की ने अपने 26 साल के मंगेतर को मार दिया और मौत भी ऐसी कि रूह कांप जाए। केतन अग्रवाल हत्याकांड में उसकी मंगेतर सिया और सिया का प्रेमी चेतन चौधरी पकड़ा गया है। सिया और केतन दोनों पुणे की बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जीवन में कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे भी बहुत थे, लेकिन सिया ने केतन की हत्या क्यों की, वो भी शादी से कुछ महीने पहले।
1: एक परफेक्ट लव स्टोरी, एक वुड बी कपल, फरवरी में सगाई हुई, नवंबर में शादी थी, पूरी तैयारियां चल रही थी। 20 साल की सिया, 26 साल का केतन, दोनों की नई जिंदगी शुरू हो रही थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था, तो केतन एक महीने तक हर रोज नया सेलिब्रेशन करता रहा, कभी गाड़ी में फूल देता, कभी रेस्टोरेंट में केक काटता। लेकिन सिया के बर्थडे से एक दिन पहले केतन की मौत हो गई। कहा गया कि केतन पुणे के इसी लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिरा और इस हादसे में मारा गया। जांच हुई तो पता चला कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या की।
2: उसके सिवा एक 20 साल की लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरे चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना।
1: पुणे में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक 20 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा मर्डर कैसे कर सकती है, एक 20 साल की लड़की इतनी प्लानिंग के साथ अपने मंगेतर की हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन पुलिस की माने तो यही हकीकत है। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से, जहां पुणे के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल और ड्राई फ्रूट और मसालों के होलसेल कारोबारी की बेटी सिया गोयल की सगाई होती है। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी, दोनों संपन्न परिवार थे, पुणे की बड़ी बिजनेस फैमिलीज थी। तय हुआ कि नवंबर 2026 में दोनों की शादी करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन बुक हो चुका था, करोड़ों रुपए की एडवांस पेमेंट हो चुकी थी, दो दो चार्टर्ड विमान बुक थे, नवंबर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन सिया की जिंदगी में कोई और था। सिया 22 साल के चेतन चौधरी नाम के लड़के से प्रेम करती थी, परिवार ने सिया की शादी तय कर दी, लेकिन सिया ने अपने मंगेतर या उसके परिवार को अपने प्रेमी के बारे में कुछ नहीं बताया। सिया अपने मंगेतर के साथ प्रेम की पूरी एक्टिंग करने लगी और इस बीच सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी लगातार केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो प्यार का पूरा नाटक कर रही थी। यहां तक कि 6 जून को दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। दोनों पुणे से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा क्योंकि केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। जिस बैग में पासपोर्ट रखा था उसमें रखे पैसे, क्रेडिट कार्ड सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन पासपोर्ट नहीं था तो बाली नहीं जा पाए। अब पता चला है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट गायब किया था ताकि उनका प्री वेडिंग शूट न हो।
2: फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए, रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा।
1: परिवार को ये अंदाजा ही नहीं था कि सिया बहुत पहले से ही ये प्लानिंग कर रही है। वो बाहर बाहर से केतन से प्यार और शादी का नाटक कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी केतन से शादी हो, इसीलिए वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर रही थी।
3: जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये कतर बाली ना जा पाए।
1: सिया और चेतन पूरा प्लान बना चुके थे केतन को रास्ते से हटाने का, लेकिन सवाल था कि हत्या कहां करें। दोनों ने पुणे के लोहगढ़ फोर्ट को चुना जहां लोग घूमने के लिए ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वहां ऊपर खाई भी है, रास्ता भी सुनसान था, सोचा कि यहां से गिराकर केतन को मार देंगे। 14 जून को सिया और केतन पुणे के लोहगढ़ फोर्ट घूमने गए थे। सिया ने उसी दिन केतन को मारने की प्लानिंग रची थी। खाई के पास सिया ने केतन को धक्का दिया लेकिन वो झाड़ियां पकड़कर बच गया। जैसे ही सिया ने देखा कि केतन ने झाड़ियां पकड़ ली हैं, वो तुरंत चिल्लाने लगी। सिया ने बहाना बनाया कि उसने सांप देखा जो केतन को काट लेता, इसीलिए उसने धक्का दे दिया। केतन को तब भी समझ में नहीं आया कि सिया ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था। शायद केतन सिया के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे ये नहीं दिखा कि सिया क्या प्लानिंग कर रही है। 14 जून की सिया की प्लानिंग फेल हो चुकी थी। फिर आई 18 जून की तारीख। 19 जून को सिया का बर्थडे था। 19 जून को सिया और केतन का परिवार सिया का बर्थडे मनाने के लिए महाबलेश्वर जाने वाले थे, लेकिन सिया ने केतन से 18 जून को एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद की। केतन के परिवार ने मना भी किया कि जब अभी 14 जून को गए थे तो फिर क्यों जाना, लेकिन सिया ने बहाना बनाया कि उसके कुछ दोस्तों ने उसके बर्थडे की प्लानिंग की है जो लोहगढ़ फोर्ट में मनाना है, इसीलिए परिवार ने दोनों को जाने दिया।
2: लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में, उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
1: लेकिन वहां लोहगढ़ फोर्ट में इस बार सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी बुलाया हुआ था। चेतन चौधरी इन दोनों के आसपास मंडराता रहा, कभी इनसे 20 मीटर आगे, कभी थोड़ा पीछे। फिर एक जगह करीब 350 फीट की खाई के पास, जहां कोई भी नहीं था, दोनों ने मौका देखा और केतन को धक्का मारकर गिरा दिया। केतन जैसे ही नीचे गिरा, सिया ने शोर मचा दिया कि उसका बॉयफ्रेंड फोटो लेते हुए पैर फिसल कर खाई से नीचे गिर गया।
4: पे अभी हम खड़े हैं इसी स्पॉट पे, इसी जगह पे दोनों खड़े थे। 31 मई को सबसे पहले यहाँ आए थे, तभी सिया गोयल ने यहाँ रेकी कर ली थी। उसके बाद उसने प्लान उसके जहन में आया और फिर 14 जून की तारीख आई। 14 जून को भी यही दोनों मिले, पूरा ट्रेक करके लोहगढ़ के ऊपर आ गए और फिर सिया ने कोशिश की, उसने पहले दिखाया कि यहाँ सांप है, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी वो केतन अग्रवाल को खाई में ढकेल नहीं सकी। उसके बाद एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जिस चेतन के साथ सिया के पिछले दिवाली के बाद ही संबंध जुड़ चुके थे, दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और फिर उसने चेतन चौधरी की मदद करने की कोशिश की, और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साथ में यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों से आए, और यही इसी जगह से उसने केतन को धक्का दिया। जोर से धक्का देने के बाद केतन नीचे झाड़ी आपको नजर आ रही है, उस झाड़ी में जा गिरा, और उसके बाद सिया गोयल यहाँ से ऊपर चढ़ के और एक हनुमान जी का मंदिर है वहां चली गई और वहां से जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बगेतर नीचे गिर गया है।
1: लेकिन सिया को यह नहीं पता था कि जब इस केस की जांच होगी तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सिया की एक एक साजिश का पता चल जाएगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
0: सिया और उसके प्रेमी ने बहुत बारीकी से केतन के मर्डर की प्लानिंग की थी। केतन के खिलाफ दोनों ने मिलकर बहुत सी साजिशें रची, यहां तक कि उसके मर्डर की एक कोशिश पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन केतन को संकेत नहीं मिले। वो सिया के प्यार में शायद साजिश ही नहीं देख पा रहा था। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि केतन के हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस को सिया और उसके प्रेमी पर शक कैसे हुआ।

0: केतन के मर्डर के बाद भी सिया ने यह भनक तक नहीं लगने दी कि कहीं से कोई शक उसके ऊपर हो। हालांकि केतन के कुछ रिश्तेदारों ने यह बात नोट की थी कि केतन की मौत के बाद सिया के चेहरे पर कुछ दुख नहीं दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर सिया पूरी तरह से खुद को दुखी बता रही थी। बल्कि सिया ने तो इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट भी किया कि तुम मुझे बर्थडे पर छोड़कर चले गए, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी के बहुत नजदीक आ गए थे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे तब क्यों छोड़ा जब मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। लेकिन शायद सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी ये भूल गए थे कि कातिल खुद को कितना भी शातिर समझे, एक न एक दिन वो पकड़ा जाता है। यहां भी यही हुआ, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो ये हुडी वाला शख्स उन्हें केतन और सिया के आसपास दिखा। पुलिस को शक हुआ कि 33 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क लगाए हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था।
1: केतन के आगे जाने के बाद बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है। और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहां के टिकट काउंटर में जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी, टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ?
2: जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ, टिकट लेके जाओ करके। वो का इतना गया नहीं, फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए, उसको तो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। इस वजह से हम उसको बोला नहीं क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहे हैं और आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाए नहीं। ज्यादा समय टिकट लेके करके बोला था, वो आगे खेला था, इसकी वजह से उसको हम रुकवाए नहीं, ज्यादा समय सीधा चला गया नीचे।
0: केतन का परिवार गम में था लेकिन पुणे पुलिस की जांच लगातार चल रही थी। हालांकि परिवार की तरफ से भी ये शक जताया गया कि उनका बेटा केतन फिसल कर कैसे गिर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करता था, उसे ऐसी जगहों पर चलने का अच्छा खासा अनुभव था।
3: संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशय पर जो है दिख रहा है।
0: फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो और ही कहानी पता चली। सिया के एक फोन नंबर पर इसी साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी और ये नंबर केतन का नहीं था, तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी का निकला। पुलिस ने सीधे चेतन को पकड़ा तो उसने पुलिस को सारी कहानी खुद ही बयां कर दी और फिर इस खतरनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। पता चला कि पूरी प्लानिंग सिया और चेतन ने मिलकर की थी।
4: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे, वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया, इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया।
0: केतन के परिवार को बेटे के इस तरह से जाने का दुख तो है, लेकिन उन्हें ये अपने साथ विश्वासघात लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस सिया को वो अपनी बहू मान चुके थे उसने उनके इकलौते बेटे को मार डाला। परिवार को ये दुख है कि अगर सिया ने एक बार भी शादी न करने की इच्छा जताई होती तो वो खुद ही शादी से पीछे हट जाते, लेकिन सिया को अग्रवाल परिवार की भावी बहू बनने का नाटक करती रही और पीठ पीछे उनके इकलौते बेटे की हत्या की साजिश रचती रही।
5: एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी लड़की है, मैं इसको ये सब मान चुकी थी, वो भी बहुत अच्छे से बात, मेरी बड़ी जॉइंट फैमिली सबसे अच्छे से बात करने की, ऐसे कभी लगा नहीं। अगर सिया ने मुझे थोड़ा भी हिंट पहले दे देती थी भले मैं कैसे ना कैसे उसका कर देती, लेकिन आज उसे मेरा बेटा लिया है ना, उसको ना, क्योंकि मेरा बेटा मतलब मेरे को एक ही बेटा है, वो 26 साल का, वो मुझे पता था वो ना ड्रिंक करने का ना कोई पार्टी में जाने का, और ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक ये सब लेती है, हमको बात छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने, तो हमको वो बहुत शॉक लगा है।
4: अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है, इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए, इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: पुणे की यह घटना समाज के लिए बहुत से सवाल खड़े करती है। सिया की उम्र सिर्फ 20 साल, अभी तो उसका जीवन शुरू हो रहा था, कोई कमी नहीं थी, न उसके अपने घर में और न ही होने वाले ससुराल में। एक प्यार करने वाला पति होता, सास ससुर होते, अरबों का बिजनेस था, लेकिन उसने गुनाह का रास्ता चुना। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
8: Bharat ki apni electric sawari.
9: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
8: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
9: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
12: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers, with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
14: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
15: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
14: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
19: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
20: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
21: Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
22: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
23: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
24: Right field, and it will...
23: From the first pitch of the season to the stretch run.
24: And that's the ball game.
23: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
17: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सबसे खतरनाक भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकास में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 की मौत, 700 घायल, हजारों मौत की आशंका।
1: इमरजेंसी के 51 साल पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, लिखा लोकतंत्र कुचलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर।
0: कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। अब तक 8 की मौत की पुष्टि, 5 आरोपी गिरफ्तार। जांच के लिए एसआईटी गठित।
1: आज चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी के सामने सबूत पेश करने जाएंगे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। कथित जमीन घोटाले के कागजात पेश करेंगे, एजेंसी ने बढ़ाया तफ्तीश का दायरा।
0: देश को झकझोरने वाले कीर्तन अग्रवाल मर्डर केस की जांच के किले में पहुंची फोरेंसिक टीम। मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुणे पुलिस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दो शक्तिशाली भूकंप से कांपा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा ढहा। 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप, हजारों लोगों की मौत की आशंका। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे, 40 सेकंड में दो बार कांपी धरती। मुख्य झटके से 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और आया था भूकंप, सुनामी का खतरा जताया गया। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके के आसपास देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी हैं। कुछ इलाके में धूल का गुबार छा गया और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर तुरंत सड़कों पर निकल आए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी लहरों की आशंका जताई थी। कोलकाता के तारातला हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत। हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित, नए जांच अधिकारी नियुक्त। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपी गई जिम्मेदारी। तारातला हादसे में 5 गिरफ्तारियां, एफआईआर नामजद 4 आरोपियों समेत केएमसी प्लान मंजूरी का ब्रोकर भी दबोचा गया। तारातला हादसे से लेकर दिलीप घोष ने कहा एक एक चीज की जांच होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए।
0: एसआईटी ने विभागों से पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियों, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई, उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। एसआईटी ने जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट मांगी गई। जांच का फोकस अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर। विभागों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट न होने पर एसआईटी ने जताया असंतोष, विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा। एसआईटी जल्दी मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करेगी। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अफसर दोषी, एलडीए ने की सख्त एक्शन की सिफारिश। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, लोगों की मौत आग लगने से नहीं दम घुटने से हुई। अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, 86 गेस्ट हाउस, होटल, बैंकेट हॉल का रजिस्ट्रेशन हुआ निरस्त। निरस्त हुए सराय एक्ट के लाइसेंस के बाद इनके संचालन पर लगाई गई रोक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई।
1: अयोध्या राम मंदिर घोटाले की जांच में नया एंगल जुड़ा, डोनेशन की जांच के बीच एसआईटी ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत मांगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी का बड़ा कदम, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया। राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की ऑडिट मांग वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए किया इनकार, नियमों के तहत सुनवाई का निर्देश। अयोध्या मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, राम के नाम पर लूट खसोट, आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। राम मंदिर दान गबन मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, बोले चंपत राय पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाए सरकार। संबल में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हिस्से पर फिर चला बुलडोजर, प्रशासन ने पूरी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बड़ी सियासत, आज कसेरुआ गांव पहुंच सकता है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन का तंज, बोले कुछ लोग मुसलमानों का ठेका लेकर बैठे हैं।
0: पटना कोचिंग विवाद में फैजल खान मामले में कोर्ट ने मांगी अपडेटेड केस डायरी, 27 जून को अगली सुनवाई। ज्ञान बिंदु अकादमी के निदेशक रोशन आनंद समेत तीन को जमानत, फैजल खान मामले की सुनवाई जारी। फर्जी एक्सपोर्ट ऑर्डर के नाम पर ठगी करने वाला कॉल सेंटर बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने 18 आरोपियों को दबोचा। विदेशी खरीदार बनकर व्यापारियों से लाखों की ठगी, मास्टरमाइंड समेत 18 गिरफ्तार। दिल्ली के यमुना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बुलडोजर एक्शन, डीडीएमए ने 300 से ज्यादा घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों की रक्षा की मांग की। स्पीकर से बैठक के बाद अरविंद सावंत ने कहा बिना संबंधित पक्ष की सुनवाई के कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। स्पीकर ने यूबीटी सांसदों को बताया बागी गुट की ओर से अभी तक कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ, स्पीकर से संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत बागी गुट को अलग मान्यता नहीं दी जा सकती। महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए, पूछा क्या हम सच में साथ हैं।
1: केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच के लिए किले में पहुंची फोरेंसिक टीम, मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल के क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुणे पुलिस। पुणे मर्डर केस में नया खुलासा, हत्या से एक दिन पहले कैफे में रची गई थी ये साजिश। पुलिस जांच के अनुसार 17 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात की, केतन अग्रवाल की हत्या की रची साजिश। जांच में सामने आया सिया ने लोहगढ़ किले की जानकारी साझा की थी, पहले वहां रेकी भी की थी। लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में पुलिस का दावा, सीसीटीवी और बयान में विरोधाभास, 8 से 10 मिनट की मौजूदगी पर सवाल। आधी रात दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत। लद्दाख के द्रास सेक्टर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार नदी में गिरी, एक शव बरामद, तीन की तलाश जारी। फिरोजाबाद में आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क, डीएमएसएसपी ने किया ताजिया रूट का निरीक्षण। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में दूसरे दिन भी बड़ा प्रदर्शन, एसपी नेता का कोचिंग सेंटर सील, क्षमता से अधिक एक क्लास में बैठे थे 150 स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जेल में बंद कैदी की मौत के बाद परिजनों का बवाल, परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए सड़क को जाम किया।
0: कर्नाटक की कावेरी नदी में एक परिवार के 5 सदस्य डूबे, फोटो खिंचवाने के दौरान हुआ हादसा। मुहर्रम पर्व को लेकर झांसी पुलिस अलर्ट पर, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर, भारी फोर्स के साथ संवेदनशील और मुस्लिम इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च। बिहार के समस्तीपुर में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर बवाल, बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 12 चोरी की मोटरसाइकिल और लाखों का पार्ट्स बरामद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में घर पर सूखा नारियल का पेड़ गिरा, नींद में सो रहे 10 साल के मासूम की मौत। गुजरात के नर्मदा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सोलांबा के पास एक महीने पहले बना नाला बहा। अरुणाचल के केई पेन्योर में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, बड़े पैमाने पर पानी भरने के कारण 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर क्षतिग्रस्त। अचानक आई बाढ़ से नीपको परियोजना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित, भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध। प्राकृतिक आपदा के बीच बचाव और राहत कार्य जारी, प्रभावित स्थान पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से तैनात। फ्लैश फ्लड के बीच पन्योर जलाशय में एक व्यक्ति और उसका पालतू कुत्ता बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गए, वीडियो हुआ वायरल।
1: एमपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 3 से 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। इंदौर के कई इलाकों में जमकर बरसे बदरास, सड़कों पर भरा पानी। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से बाजारों में बाढ़ जैसे हालात, कई दुकान पानी में डूब। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के सेंट्रल वीस्टा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत, डीएमआरसी ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। नया मेट्रो कॉरिडोर से सेंट्रल वीस्टा में बढ़ेगी मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हब पहुंचना हो जाएगा आसान। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, डीएमआरसी का नया अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर अहम सरकारी इलाकों को जोड़ेगा। 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होंगे 9 भूमिगत स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, भारत मंडपम शामिल। नए मेट्रो प्रोजेक्ट से केंद्रीय कर्मचारियों का सफर होगा आसान, दिल्ली के प्रशासनिक और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम।
0: प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की पूजा पाठ। निर्जला एकादशी पर गंगा घाट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर तैनात दिखे एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में निर्जला एकादशी के मौके पर सरयू में लगाई गई डुबकी, विधि विधान से की गई पूजा पाठ। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू।
1: फिल्म मिर्जापुर का आज टीजर होगा रिलीज, फिल्म के किरदारों मुन्ना भाई, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर्स जारी। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने थाईलैंड में मनाई शादी की दूसरी सालगिरह, एक दूसरे की आंखों में डूबे दिखे। प्रेग्नेंट समांथा रूथ ने मैटरनिटी ब्रेक का किया ऐलान, एक्ट्रेस ने कंफर्म की प्रेगनेंसी, बोली मैं जल्द वापस आऊंगी। अगले साल 25 जून 2027 को रिलीज होगी पंजाबी फिल्म रन्ना च धन्ना, दलजीत दोसांझ निभाएंगे अहम रोल।
0: रबात पासपोर्ट को लेकर मचे बवाल की विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सवालों का जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कल या पिछले 12 साल में तय नहीं हुआ कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है कि पासपोर्ट उन लोगों को दिया जा सकता है जो नागरिक नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों से ये साफ हो गया कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। 67 में भी यही प्रावधान था, एमईए की ओर से यह जानकारी दी गई है। पासपोर्ट उन्हें भी दिया जा सकता है जो नागरिक नहीं है, इसलिए नागरिकता के लिए मान्य नहीं है।
1: और हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे कई सवाल उठ रहे थे, कई अहम हस्तियां उठा रही थी ये बात। हम लोगों ने जावेद अख्तर का ट्वीट देखा, इसके अलावा कई दूसरे विपक्षी नेताओं का भी। तो अब क्या कहा जा रहा है नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से?
3: जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आया कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर लगातार जो है सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और अब सरकार की तरफ से जो भी हमारे सामने तथ्य आए हैं उसमें ये कहा गया है कि पिछले 12 सालों में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि पासपोर्ट को जो है वो सिटीजनशिप से हटाकर जो है वो नागरिकता के प्रमाण पत्र से हटाकर जो है ट्रेवल डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया हो। ये 1967 के अंदर जो पासपोर्ट अधिनियम है उसके अनुसार पासपोर्ट गैर नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है, यानी कि जो भारत के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, उनको भी जो है वो इशू किया जा सकता है। और 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों ने स्पष्ट कर दिया था कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का ये कहना है, जो भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया वो नियमों और कानूनों के तहत जो है वो कहा गया है, चाहे वो 1967 में पासपोर्ट अधिनियम हो या 2013 के अंदर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट आए हैं पासपोर्ट को लेकर, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो उन्हीं आधार पर जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है ये जानकारी जो है वो दी गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें कि विदेश मंत्रालय के बयान से पहले विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी और कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने पोस्ट लिखा है, सरकार के अनुसार कोई भी दस्तावेज नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। 2030 तक नागरिकता का सबूत सिर्फ एक ही दस्तावेज होगा, बीजेपी की सदस्यता लेने वाला। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर बूथ लेवल अधिकारी किसी की नागरिकता पर शक करते हैं, उसका वोट देने का अधिकार छीन लेते हैं। सिब्बल ने ऐसे चुनाव में बीजेपी की जीत से जोड़ते हुए कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो तंज कसते हुए दोनों नेताओं ने ट्वीट किया है, ओवैसी ने और कपिल सिब्बल ने। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब बीजेपी पर उंगली उठने लगी है नागरिकता के सवाल को लेकर। ये कहा जा रहा है कि इसी तर्ज पर कई जगहों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, यहां पर नागरिकता का मतलब सिर्फ बीजेपी की सदस्यता हासिल करना है।
1: तो ओवैसी का आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहे हैं जहां वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की सदस्यता का कार्ड है, आगे जाकर के 2030 तक बस यही एक दस्तावेज रह जाएगा जो नागरिकता का सबूत होगा। तो सवाल उठाए जा रहे हैं यहां पर विपक्षी पार्टियों से, वो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, कहते हैं कि आखिर नागरिकता का सबूत है क्या। इधर MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये आपकी नागरिकता का सबूत कहीं से नहीं है। आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स, कई दस्तावेज हैं जो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, जिनमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरी कई दस्तावेज हैं। तो अब रुक करते हैं कनाडा से आ रही एक बड़ी खबर का। कनाडा के दाल रोटी नाम के एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई है। रोहित गोदारा गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी भी ली है, गोलीबारी का वीडियो भी पोस्ट किया है। हमलावर ने खुद को राजा पहलवान बताया है। गैंगस्टर्स का दावा है कि रेस्टोरेंट मालिक ने छात्रों की बकाया तनख्वाह न देने की वजह से मालिक को सबक सिखाने के लिए ही इस वारदात को अंजाम दिया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में 10 लाइट बीम टेरेस स्थित दाल रोटी नाम के इस रेस्टोरेंट के बाहर ये फायरिंग हुई है और जिम्मेदारी राजा पहलवान और निक्का संधू नाम के शख्स ने ली है। वहीं कनाडा पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है।
0: अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जाहिर तौर पर धमकी देने के वजह से ये पूरा इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन क्या वाकई जिस तरीके से सरेआम ये फायरिंग की गई अभी तक पुलिस के हाथ खाली है?
4: बिल्कुल, देखिए कनाडा पुलिस लगातार इस तरह के इंसिडेंट पर अपनी जांच कर रही है, क्योंकि वहां पर भारत से फरार होकर कई गैंगस्टर वहां मौजूद है, टेररिस्ट मौजूद है। उसके अलावा कनाडा में भी कई गैंगस्टर हैं और जो लगातार एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अगर इस ताजा घटना की बात करें तो कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में ये रेस्टोरेंट है, नामी रेस्टोरेंट है, जहां पर ये फायरिंग हुई है और फायरिंग का वीडियो और साथ ही साथ जो क्लेम है वो रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने सोशल मीडिया पर डाला है। दावा तो ये किया गया है कि कई छात्रों का इसने पैसा दबाया है, लेकिन कनाडा पुलिस के मुताबिक इसके पीछे एक्सटॉर्शन वजह मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उससे एक्सटॉर्शन मांगी गई थी और उसने एक्सटॉर्शन नहीं दिया, जिसके बाद ये फायरिंग कराई। न सिर्फ रोहित गोदारा गोल्डी बरार बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी पूरी तरह से कनाडा में एक्टिव है। बीते दिनों कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग की गई, धमकी दी गई। उसके अलावा भी जो वहां पर बिजनेसमैन है उनके इलाकों पर, उनके दफ्तर, उनकी फैक्ट्री पर फायरिंग होती है, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, कभी रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग की तरफ से, और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया जाता है। जो ताजा ये घटनाक्रम है इसके पीछे रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग है, जिसने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और दावा किया है कि छात्रों का पैसा इस रेस्टोरेंट के ऑनर ने मारा है, दबाया है, इस वजह से ये फायरिंग की गई है। जी,
0: इस बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अधिसूचना कल ही जारी कर दी गई थी। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सियासत भी हो रही है। एक दिन पहले महापंचायत हुई, वहीं कल भोजपुर एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिया।
5: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी,
6: फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
5: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
7: मना किया गया है जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो। देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है।
5: इस महापंचायत में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
8: न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
5: वहीं आरजेडी नेता सुधार सिंह ने एसटीएफ अधिकारी कुंदन कृष्ण का नाम लेकर सरकार को घेरा।
9: इधर से पकड़ लेना है एडीजी को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
5: विपक्ष तो विपक्ष, खुद मंत्री अशोक चौधरी अपनी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं।
10: एक जगह घटना होगी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे तो जहाँ जहाँ घटना होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलान के यहाँ नहीं गए।
5: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
11: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
12: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
14: La Que Buena.
13: ESPN Radio.
15: We know LeBron has to be the best player on the planet to
13: have. The Daily.
16: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
13: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
8: इन एसोसिएशन विथ हिंट, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zubaan kesri.
9: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Patrakarta ke gur yahan nahi sikhe, to kya sikhe? Naam hi kaafi hai. India Today Media Institute register karne ke liye visit karein www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की थी। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ, जब ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। जिस बेसमेंट को पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूरी मिली थी, वहां लाइब्रेरी चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था। जगह के अवैध इस्तेमाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर।
2: स्पीच, बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता गोदाम हादसे में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। हादसे के बाद गोदाम में कितने मजदूर थे इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 5 की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। निर्माण

0: में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ और अन्य संभावित जिम्मेदारियों की पड़ताल की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग सभी मिलकर राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई।
1: हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: वेनेजुएला में सदी के सबसे बड़े भूकंप, देश के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही, कई जगहों पर दिखी रूह कपाने वाली तस्वीरें। कराकास में भीषण भूकंप के बाद मची अफरा तफरी, घरों से नीचे निकलकर बचकर भागते हुए दिखे लोग, भागते कार सवार के ठीक बगल में गिरी दीवार, बाल बाल बची जान। कराकस की गलियों में तबाही के बीच से भागा एक बाइक सवार, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती हुई दिखी। पैक्वेटिया एयरपोर्ट पर मौजूद एक शख्स ने दिखाई वहां की तबाही की तस्वीरें, कोने कोने में दिखी विनाश लीला, और गंभीर हालत के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। वेनेजुएला के मेक्वेटिया एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही, धरती हिली तो जान बचाकर भागे यात्री, एयरपोर्ट की बिल्डिंग तबाह। कारागास में दिखी विनाश की तस्वीरें, इमारतों के मलबे में दबी कई जिंदगियां, रेस्क्यू टीम्स ने संभाला मोर्चा, मलबे को हटाने का काम तेज, दमकल कर्मी जिंदगी बचाने में जुटे। कारागास में मलबे में दबी लड़की को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, बेजुबान की भी बचाई जान। विनाश लीला देख वेनेजुएला के लोग फूट फूट कर रोए, लगाते रहे रेस्क्यू टीम से मदद की गुहार। भूकंप के झटकों के बाद कई इमारतें जमींदोज, कई अन्य ऊंची इमारतों को भी नुकसान, कुछ बिल्डिंगें झुकी। जोरदार झटके के बाद वेनेजुएला में खौफ, सड़क पर दिखी मोटी दरारें, डरे सहमे लोग भागते हुए दिखे, अफरा तफरी के बीच मदद की गुहार लगाते रहे लोग।
2: कारकास भूकंप के बाद मलबे में दबे एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, फौरन पहुंचाया अस्पताल। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने भागकर बचाई जान, कारकास में जान बचाकर भागी महिला, अन्य लोग भागते दिखे। वेनेजुएला में सुबह आए के बाद एक दो झटकों ने मचाई तबाही, रिक्टर पैमाने पर पहले भूकंप की तीव्रता 7.2, दूसरे की 7.5 तीव्रता, उसके बाद कई आफ्टर शॉक आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी संख्या में मौत की आशंका, राष्ट्रपति ने बताया 32 की मौत, 700 लोग जख्मी। विनाश लीला के बीच वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल का ऐलान किया, हालात बेहद चिंताजनक, मेडिकल सर्विसेज और अन्य सेवाएं हाई अलर्ट पर। भूकंप से इमारतें गिरने के बाद कारकास में छाया अंधेरा, धूल से भरा इलाका, देर तक मची अफरा तफरी, सड़कों पर मौजूद गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 40 सेकंड में दो झटकों के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी, भूकंप के दौरान जान बचाने में जुटे लोग सभी घरों से निकलकर सड़क पर पहुंचे। कई लोग अपने परिवार के साथ बाइक से भागते दिखे, सड़क में आई दरारों ने लोगों को डराया, भूकंप से हुई तबाही देखकर लोग बेबस और लाचार दिखे। भूकंप के दौरान समंदर के बीचों बीच फंसा शख्स, धरती हिली तो फंती लहरों ने डराया, बेबस हुआ नाविक, देर तक अटकी रही जान। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में ला गुएरा में भूकंप से विनाश, राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने दी जानकारी, जान गंवाने वालों के परिजनों को राष्ट्रपति ने दी सांत्वना। और इन दिनों अयोध्या सुर्खियों में है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि राम मंदिर के दान चोरी मामले में एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी थी कि जमीन घोटाले का जिन सामने आ गया, दान चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंचती दिख रही है।
1: एसआईटी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज बुलाया है। संजय सिंह जमीन घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, अब एसआईटी ने सीधे संजय सिंह को ही बुला लिया है। बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह को 11 बजे का वक्त दिया गया था एसआईटी से मुलाकात का, और उन्हें कहा गया था कि आप दस्तावेज पेश कीजिए। संजय सिंह भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि जमीन घोटाला हुआ है।

0: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
1: ये 19 जून की बात है, यानी आज से 6 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैगाम आता है और इन 6 दिनों में मामला काफी आगे बढ़ जाता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई, मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी जांच के दायरे में बताए गए, गणना और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में विस्तृत और बारीकी से खामियों की पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ गंभीर सवाल बने हुए हैं। वो ये कि एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, एसआईटी रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, जो चेहरे आरोपों के घेरे में हैं उन्हें ट्रस्ट के कामकाज से दूर क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द विपक्ष हमले पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव एसआईटी विदाउट एफआईआर का आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के मोर्चे पर पूरी ताकत से उतर आए हैं।
2: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब है।
3: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
1: यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी योगी सरकार को राहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल कल यानी 26 जून को अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के सांसद संजय सिंह को एसआईटी ने आज बुला लिया है, क्यों ये आप खुद संजय सिंह से सुनिए।
4: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो इसलिए कल मुझे एसआईटी ने बुलाया भी है 25 जून को 11 बजे और मैं जाके वहां पर सारे साक्ष्य जो जमीन घोटाले से संबंधित मेरे पास हैं वो उनको दूंगा। 2 करोड़ की जमीन कैसे 5 मिनट में 18.5 करोड़ में सुल्तान अंसारी से खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन कैसे 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई। यहीं अयोध्या के किसानों को 4,40,000 रुपए बिस्वा सरकार ने मुआवजा दिया, योगी जी की सरकार ने, और वहीं पर चंपत राय अलोक बंसल से 55,47,000 में जमीनें खरीद 47,55,000 में जमीनें खरीदा।
1: यानी अब मामला दान चोरी से जमीन घोटाले के आरोपों तक पहुंचता दिख रहा है। संजय सिंह को बुलाने का मतलब यही निकलता है कि एसआईटी की जांच का दायरा सिर्फ दान चोरी तक शायद ही सीमित रहे। अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या पर चल रही मौजूदा सियासत में नई गर्मी आना तय है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: तो बड़ी खबर ये आ रही है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं मुलाकात एसआईटी के साथ करने के लिए अयोध्या में, जहां कहा यह जा रहा है उनके द्वारा कि वो दस्तावेज और सबूत देंगे एसआईटी को, क्योंकि उनका कहना है, आरोप है कि जमीन घोटाला भी हुआ है।
6: मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हैं सबूतों के साथ। संजय जी, सबूतों के साथ आज क्या चंदा चोरी के भी सबूत हैं, जमीन घोटाले के सबूत हैं?
7: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत हैं और कुल 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और 2 जमीनें ऐसी हैं जो आपस में उनके मामले जुड़े हुए हैं, तो 11 दस्तावेज जमीनों के जुड़े हुए हैं।
6: 11 जमीनों के दस्तावेज घूम रहे हैं। चंदा चोरी का भी कोई सबूत है?
8: जमीन घोटालों
9: दान पेटी से जुड़ा हुआ कुछ है? संजय जी, दान पेटी से क्या
6: कुछ? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो तमाम 13 दस्तावेजों को लेकर पहुंचे, 13 जमीनों के दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं, एसआईटी हेड, लखनऊ के मंडल आयुक्त, विजय विश्वास पंत के सामने, जो सबूतों के साथ साथ अपने बयान भी दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।
10: संतोष, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरह के दावे संजय सिंह की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं, ये जमीन खरीद से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, और जो पर्टिकुलर फिगर भी वो कोट कर रहे हैं उससे ही जुड़े तमाम दस्तावेज हैं, या आगे पिछले की पूरी तैयारी वो करके लाए हैं?
6: देखिए, संजय सिंह पूरी तैयारी करके लाए हैं। करीब 13 जमीनों के दस्तावेज ऐसे हैं जो सेल डीड्स हैं, और सेल डीड यानी कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन खरीदी गई और उससे पहले जो मालिक था उसने कितने में खरीदी, वो भी एक प्री सेल डीड भी लेकर के आए। तो पूरी 13 लगभग जमीनों के दस्तावेज हैं जिसको लेकर संजय सिंह SIT के सामने पेश हो चुके हैं, बयान दर्ज हो चुके हैं। करीब आधा घंटे तक संजय सिंह ने अपने दस्तावेज दिए, समझाया, बताया, और उसके बाद बयान दिए। जो मंडलायुक्त हैं लखनऊ के, SIT हेड हैं विजय विश्वास पंत, उनको बयान दे दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो दान पात्र में जो चढ़ावा चोरी का मामला था, उसके अलावा जो लैंड स्कैम हुआ है, जो जमीनों की खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ है, वहां तक ये अब जांच का दायरा जा रहा है। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो दस्तावेजों के साथ SIT के सामने पेश हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इतने तमाम लोग कैरेक्टर्स आए, चाहे वो इंजीनियर रहे हो काम करने वाले, या अकाउंटेंट रहे राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले, मीडिया के सामने बयान दिए, लेकिन SIT ने इन सभी को बुलाया था। महत्वपूर्ण बात तो दीनानाथ वर्मा या कोई भी नहीं पेश हुआ, संजय सिंह डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश हुए हैं।
5: बिल्कुल संतोष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो संजय सिंह पहुंच गए हैं SIT। SIT ने अपनी जांच में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इसलिए सबको हैरानी इस बात को देकर हो रही है कि आखिर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही।
10: लंबे वक्त से विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि बीजेपी नेता के खत पर PMO ने ट्रस्ट से जमीन खरीद, दूसरे खर्च और दान को लेकर ब्यौरा मांगा था, लेकिन ट्रस्ट ने देने से इनकार कर दिया, वो भी SIT जांच का हवाला देकर।
0: SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
3: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है।
4: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं।
1: 7 जून को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से गठित SIT ने जांच शुरू की। 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। 21 जून तक SIT को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी। 29 जून को SIT की जांच पूरी होनी है। 4 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं। पर सवाल ये है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, क्यों सामने नहीं आता? इस सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि SIT की जांच का हवाला देकर ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को चंदा चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक के आरोपों पर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया था। पूरा मामला आप इन दो खत से समझ सकते हैं। ये पहला खत बीजेपी नेता रजनीश सिंह का है जो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था। दरअसल रजनीश सिंह ने दो खत PMO को लिखे जिनमें ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई सभी जमीन और संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। मंदिर निर्माण, प्रशासनिक खर्चे और दूसरे मदों में खर्च का भी विवरण मांगा गया। पत्र में कहा गया कि दान का हिसाब सार्वजनिक करना जरूरी है, ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि आस्था का सवाल है। रजनीश सिंह के खत पर अयोध्या के ADM लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी ने चंपत राय से संपर्क किया था, लेकिन चंपत राय ने यह कहकर कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया कि फिलहाल SIT जांच चल रही है और मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। जिस चंपत राय ने SIT जांच का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे, वही चंपत राय अब आरोपों के घेरे में है। इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT ने जो रिपोर्ट दी है उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी पता चलेगा कि क्या वाकई जो जांच के दायरे में हैं उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए, ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, तो सवाल इसलिए है कि 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा जाता है। लेकिन उसके बाद मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद रहते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है, यानी मुख्यमंत्री के सामने दूरी दिखाई जाएगी। बाकी जांच के दायरे में जो हैं, वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी?
11: चहावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से चंपत राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र को भी एसआईटी जांच के वक्त ब्यौरा देने से मना कर दिया, साफ है कि अब ये जांच और बनती जा रही है। अब देखना यह है कि अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है तो क्या होगा।
1: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
10: कुमार अभिषेक, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अगर पीएमओ के वाया जिलाधिकारी के थ्रू पत्र भेजा गया या फिर ये ब्यौरा मांगा गया कि कब और कैसे जमीन खरीद हुई है या फिर किस तरीके से वहां पर चढ़ावा पहुंचा है, उसका कैसे रखरखाव किया जा रहा है, तो ये ब्यौरा देने से क्या चंपत राय वाकई मना कर सकते हैं ये दलील देकर कि इस वक्त जांच चल रही है?
11: नहीं, किया तो उन्होंने यही है कि इस वक्त जांच चल रही है इसलिए हमें ब्यौरा नहीं दे सकते, और इसी पर ये सवाल उठने भी शुरू हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को जो लेटर गया है उस लेटर को वापस जिला अधिकारी को भेजा गया और उनसे उनके जरिए दोबारा से चंपत राय से संपर्क कराया गया। तो निश्चित तौर पर चंपत राय इस पूरे मामले के सबसे बड़े कड़ी वही हैं, उन्हीं को सब कुछ सब सारी जवाबदेही उन्हीं पर है। ऐसे में अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो चंपत राय को ही उसका जवाब देना होगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो गोपाल राव हैं, क्या इनके कामों को लेकर के कुछ कहा है, ये बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट अब आ गई है इसके बाद कहीं ना कहीं ये तमाम चेहरे, इनको कोई ना कोई एग्जिट दिया जाएगा, चाहे वो ग्रेसफुल एग्जिट हो या फिर जो एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कुछ चीजें इसमें हो। दूसरी तरफ वीएचपी ने भी अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है, उसने भी जांच और एफआईआर तक की मांग की है। तो देखना है कि अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है और चंपत राय पर ही सारी जिम्मेदारी है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद आखिर उनका होता क्या है।
5: जी कुमार अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वीएचपी ने अपनी एक वहां पर जो बैठक होनी थी उसे भी कैंसिल कर दिया, आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि जांच अच्छी तरीके से हो, लेकिन जो शक और शुबा पैदा हो रहे हैं उसके बाद जो बड़े बड़े नाम है वो आप ही की रिपोर्ट में हमने देखा, वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
11: देखिए, अभी तो ट्रस्ट एग्जिस्ट कर रहा है और चंपत राय और उनकी पूरी टीम जो है जो ट्रस्ट की है वो अभी भी मौजूद है। दूसरे राउंड का जो जांच है वो अभी शुरू होने वाली है जो कहा जा रहा है प्रिलिमिनरी जांच के बाद। ऐसे में चूंकि अभी वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट के तमाम लोग विद्यमान हैं, आगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक चंपत राय निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। दूसरी बात, चंपत राय की क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार उनको एक तरीके का शील्ड, एक तरीके का कवच भी मिल रहा है, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो चाहे दूसरे तमाम जो बड़े नेता है, सब उनको उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने पर लोग कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जब इतना बड़ा कांड हो गया है, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो किस क्यों उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है, या सचमुच उन्हें एसआईटी में क्लीन चिट मिल चुकी है जिसकी जानकारी है उनको, इसलिए वो इस वक्त मंदिर के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा, लेकिन लोगों को इंतजार एसआईटी रिपोर्ट का है कि आखिर उस रिपोर्ट में है क्या और उस पर कार्रवाई क्या होती है।
5: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
13: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
2: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
1: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
3: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
5: एक एनकाउंटर सम्राट सरकार के गले की हड्डी की तरह यूं फंसा कि नाना करते पुलिसकर्मियों पर एक्शन की हामी भरनी पड़ी। एक एनकाउंटर पर अपनों के बीच ऐसे घिर गई सम्राट सरकार कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 7 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 7 दिन बाद खुद बिहार पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज है और जांच आगे बढ़ रही है। ये क्यों और कैसे हुआ ये बताने से पहले आप भोजपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस बयान को गौर से देखिए। ये बयान जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष यानी SHO राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की तस्दीक करता है और ये मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए पहली जीत है जो पुलिस कर्मियों पर एक्शन की लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां आशा देवी ने लिखित अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि 17 जून को पुलिस टीम भरत तिवारी को अपने साथ जवेनिया गांव ले गई थी, वहां भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे घेर लिया और गोली मार दी, लेकिन भरत तिवारी के परिवार के आरोप, एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश, इन तमाम बातों का शायद उतना असर नहीं होता जितना कि बीजेपी के भीतर उठी आवाज का हुआ है। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं थे, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त थी जो खुलकर नाराजगी जता रहे थे और शायद यही वजह थी कि 5 पुलिसकर्मियों को मुकदमे की जद में आना पड़ा। आरा से शशिभूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: को भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस से में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 की मौत, 700 घायल, हजारों के हताहत होने की आशंका। नागरिकता पर फिर छिड़ी नई बहस। पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने पर भड़का विपक्ष। सरकार ने कहा पासपोर्ट कभी नहीं रहा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट। 1967 के एक्ट में भी नहीं था ये प्रावधान। इमरजेंसी के 51 साल पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा लोकतंत्र कुचलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। चढ़ावा चोरी पर पीएमओ के संज्ञान को भी मंदिर ट्रस्ट ने किया था अनसुना। एक चिट्ठी से खुलासा। आरोपों के घेरे में चंपत राय। एसआईटी को जमीन घोटाले के सबूत देने पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। देश को झकझोरने वाले केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच के लिए किले में पहुंची फोरेंसिक टीम। मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल के क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुणे पुलिस।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में मैं हूं अंजलि इस्टवाल और शुरुआत करते हैं वेनेजुएला में भयंकर भूकंप की खबर से। वेनेजुएला के स्थानीय समय के मुताबिक कल शाम आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 7 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने हजारों मौतों की आशंका जताई है।
2: बीते कुछ घंटों के दौरान धरती पर कुछ अजीब हुआ। पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक बड़े इलाके में जमीन कांपी, लेकिन सबसे भीषण भूकंप आया वेनेजुएला में, जहां महज चंद सेकंड के फासले में पहले 7.2 और फिर 7.5 की रिक्टर स्केल पर तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसने बड़े इलाके में तबाही मचा दी। ताश के पत्तों की तरह कई इमारतें ढह गई। मरने वालों का आंकड़ा कितना है ये अभी तक नहीं पता है। हालांकि वेनेजुएला के लिए मदद उमड़ने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि वेनेजुएला को मदद दी जाएगी। साथ ही पास पड़ोस के मुल्कों की तरफ से भी जो राहत और बचाव की सामग्री है वो वेनेजुएला इस समय पहुंचाई जा रही है। बीते कुछ
0: रिक्टर स्केल पर 7 से भी ज्यादा तीव्रता का यह भूकंप था और वो भी 40 सेकंड के भीतर 2 बार आया। भूकंप आया तो पहले सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन कुछ देर बाद सुनामी का अलर्ट वापस ले लिया गया। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष।
3: चूंकि झटका लगभग 7.5 रिक्टर का था तो पूरी टर्बुलेंस समंदर में देखने को मिली, इसीलिए ऊंची लहरें यहां पर उठी थी। एक बार को लोगों को लगा क्या ये सुनामी है, लेकिन ये लहरें इतनी ऊंची नहीं थी कि सुनामी की तरह जो 10 से 12 फीट आकर के ये जो शहर के इलाके हैं इन पर प्रभाव डालें। लेकिन चूंकि आप 60 से 70 किलोमीटर पर आपने उसका असर देखा है, इसलिए ऊंची लहरें उठी और समंदर के किनारे वहां पर कई सारे मछुआरे थे और इन्हीं मछुआरे में वो डर गए। देखिए ये 3 से 4 फीट की ऊंची लहरें हैं, ये उतना नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन आसपास के सारे इलाकों जब ये टकरा रही थी तब इनकी जो ऊंचाई थी वो 4 से 5 फीट तक जाती दिखाई दी है। तटीय इलाकों को समंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो नुकसान हुआ है वो उसके भीतर का है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि वेनेजुएला को अगर पूरे मैप को समझें तो एकदम बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। इसीलिए किनारे के इलाके सुरक्षित हैं, बीच का इलाका, और उस वजह से क्या हुआ कि आसपास जो साउथ अमेरिका के दूसरे देश हैं उन्होंने वो झटके महसूस किए, लेकिन वो कम रिक्टर पर थे, वहां कहीं पर 2.5 रिक्टर या 3 रिक्टर महसूस किया गया। इस इलाके को आप देखेंगे तो पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप की तीव्रता का असर ऊंची इमारतों पर हुआ है, वो नीचे गिरे हैं, संख्या ज्यादा, और हो सकता है कि अगले जब मसलन आप एयरपोर्ट के इलाके को देखिए पूरी इमारत है कि लोग भाग करके जाएं कहां, और जब ये मलबा 7.5 एक का समझिए कि 7 मिनट के भीतर 2 भूकंप महसूस किए गए हैं, तो अगर लोग निकलने की कोशिश करते जैसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो का पालन करते हैं कहीं दब जाते हैं, ऐसे में वो तबाही ज्यादा बड़ी हो सकती है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब बात कोलकाता के तारातला इलाके में कल हुए हादसे की। निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने से मृतकों की संख्या अब 9 पहुंच चुकी है। मलबे में दबे 21 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर लापरवाही के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: जी देखिए, कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन जो वेयरहाउस गिरा है, इसमें कुल मिलाकर अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। 20 लोगों को घायल रूप से निकाला गया है, उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। कोलकाता पुलिस के तरफ से एक एसआईटी की गठन की गई है और ये एसआईटी ने अभी तक रात भर छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से शंभुनाथ बेहरा वो शख्स है जिसको ये जमीन जो था लीज पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने 2024 के अगस्त में 30 साल के लीज पे दिया था। अब ये देखा जा रहा है, हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है और खासकर ये देखा जा रहा है कि कहीं स्ट्रक्चरल गलती थी या फिर जो प्लान सैंक्शन किया गया था वो कहीं घूस देकर उस प्लान को सैंक्शन किया गया था या नहीं। इन तमाम पहलुओं पर अभी गौर कर रही है पुलिस और इसी के साथ एनडीआरएफ, भारतीय सेना, कोलकाता पुलिस और खासकर दमकल के लोग यहां रात भर बचाव कार्य में जुटे हुए थे। लगभग ज्यादातर लोगों को निकाला गया है, फिर भी ऊपर के ढांचे को हटाने से पहले अंदर कोई और फंसे है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना चाहती हैं अधिकारी।
0: कोलकाता में गोदाम हादसे पर शुभेंदु सरकार एक्शन में है। इस हादसे को लेकर लापरवाही का आरोप है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। कोलकाता नगर निगम के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है।
5: इस हादसे के बाद शुभेंदु सरकार बड़े एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। खास तौर पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, खास तौर पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनके काम को रोकने का को कहा गया है, ऑडिट किया जाएगा। क्योंकि पिछली सरकार में जो अनुमति मिली थी वो कैसी अनुमति थी, क्या प्लान में फॉल्ट था नहीं था, ये सब देखा जाएगा। क्योंकि ये जो इमारत गिरी है, ये जो वेयरहाउस की छत गिरी है, इसके प्लान में भी फॉल्ट नजर आया है। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से जो लीज पे लिया था जिसने वो भी है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्टर था, जो इंजीनियर था वो भी है। तो ऐसे में अब बड़े एक्शन की संभावना ऐसी बिल्डिंग्स पर भी देखने को मिल रही है जिनके प्लान में फॉल्ट नजर आ रहा है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में जारी है खबरों का सफर। अब अगली रिपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। BDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है बुलडोजर। दरअसल इस इलाके में बाढ़ के समय जल भराव की वजह से हर साल जानमाल का नुकसान होता है, उससे बचाव के लिए कार्रवाई की जा रही है। DDMA ने 300 से ज्यादा घरों को पहले ही खाली करने का नोटिस जारी किया था।
6: ये तस्वीरें हैं दिल्ली के यमुना बाजार की, जिस वक्त यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये पूरा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो ओजोन में है। यहाँ पर किसी प्रकार का, यमुना की ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन यहाँ तकरीबन पिछले कई सालों से 300 के आसपास परिवार जो है वो रह रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अब परमिशन जो है वो दी है अतिक्रमण को हटाने की, जिसके बाद इस वक्त MCD और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर एंक्रोचमेंट जो है वो हटाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि वो लगभग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। तो प्रशासन का ये मानना है कि कई सारे मकान जो है वो काफी जर्जर हालत में थे और ऐसे में यहाँ पर जो खतरा है वो लोगों की जान का बना रहता है, इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो फिलहाल जो है वो की गई है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट। लखनऊ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह सबूत पेश करने के लिए पहुंच गए हैं। आज तक से बातचीत में संजय सिंह ने कहा जमीन के घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। कुल 13 जमीनों के सौदे से जुड़े दस्तावेज उनके पास हैं। जमीनों के कागजात का सबूत लेकर आए हैं वो। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोगों को भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है उसको उजागर करेंगे।
7: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हैं सबूतों के साथ। संजय जी, सबूतों के साथ आज क्या चंदा चोरी के भी सबूत हैं, जमीन घोटाले के सबूत हैं?
8: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत हैं और कुल 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और 2 जमीनें ऐसी हैं जो आपस में उनके मामले जुड़े हुए हैं, तो 11 दस्तावेज जमीनों के जुड़े हुए हैं।
7: 11 जमीनों के दस्तावेज सुन रहे हैं। चंदा चोरी का भी कोई सबूत है?
9: जमीन घोटालों से
7: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो तमाम 13 दस्तावेजों को लेकर पहुंचे, 13 जमीनों के दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं एसआईटी हेड लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत के सामने, जो सबूतों के साथ साथ अपने बयान भी दर्ज कराएंगे।
0: तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष का। संतोष, मीटिंग ने 11 बजे शुरू होना था, वक्त गुजर चुका है काफी, कुछ पता चल रहा है क्या हुआ है अंदर?
7: देखिए, करीब आधा घंटे तक संजय सिंह की और विजय विश्वास पंत जो एसआईटी हेड है उनके बीच में बातचीत हुई है, बयान हुए हैं, डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 11 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई, और उन सेल डीड के अलावा जो प्री सेल डीड है यानी कि जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जिससे जमीन खरीदी और उस शख्स ने किससे खरीदी उसके भी डॉक्यूमेंट दिए गए। तो इस तरीके से 11 जमीनों के डॉक्यूमेंट्स संजय सिंह के द्वारा एसआईटी हेड को दिए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि चंदा चोरी के साथ साथ जमीनों का भी बड़ा घोटाला है और जमीन घोटाले से जुड़े ही ये तमाम दस्तावेज दिए गए हैं। करीब आधा घंटे तक मुलाकात हुई है, बयान दर्ज हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं अब एसआईटी के द्वारा। सबसे अहम बात कि इस पूरे मामले में, चंदा चोरी के मामले में, एसआईटी जो गठित हुई उस एसआईटी ने तमाम लोगों को बयान देने के लिए बुलाया था, जिसमें चाहे वो पूर्व इंजीनियर रहे हो राम मंदिर ट्रस्ट के या पूर्व अकाउंटेंट रहे हो, जो तमाम मीडिया में आकर के बयान दे रहे थे उन तमाम लोगों को बुलाया था, जिसके बाद जो सबूत हो वो आकर के दें। लेकिन सिर्फ संजय सिंह अपने डॉक्यूमेंट्स के लेकर के पहुंचे, ये तमाम लोग कोई भी अभी नहीं पहुंचा है। तो कहा जा सकता है कि संजय सिंह आज डॉक्यूमेंट्स के साथ एसआईटी को अपना बयान दे दिया है, दस्तावेज दे दिए हैं।
0: जी, शुक्रिया संतोष। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही। मुहर्रम को लेकर यूपी में जबरदस्त अलर्ट है। यूपी के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। कानपुर से सिमर चावला बता रहे हैं पूरी खबर।
10: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम का जुलूस अपने पारंपरिक मार्गों से ही निकाला जाए और किसी भी नई परंपरा को अनुमति ना दी जाए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीस समिति और ताजिया कमेटी की बैठक करके लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भ्रामक खबर या अफवाह उड़ाई जाए तो समय रहते उस पर कार्रवाई होने पाए। शासन का स्टैंड एकदम क्लियर है कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
0: और अब अगली खबर देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति से भी जुड़ी हुई। आज आपातकाल की 51वीं बरसी है। इस मौके पर बड़ी खबर आई है आपातकाल के बारे में। अब स्कूलों में 9वीं शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा के लिए जारी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की नई पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को प्रमुखता से जगह दी है। अब तक इसे स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस विषय में पढ़ाया जाता था। देश में 25 जून 1975 की रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का ऐलान किया था।
11: इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को 51 साल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश के हर नागरिक को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर वार किया गया था और किस तरीके से डेमोक्रेसी पर एक काला टीका लगाया गया था। एनसीईआरटी की किताबों में भी क्लास 9 से अब यह बताया जाएगा कि इमरजेंसी आखिरकार क्यों लगाई गई थी और उसके पीछे के कारण क्या थे। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का मानना है कि हिंदुस्तान को अब सक्षम होना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि कभी भी हिंदुस्तान में इमरजेंसी टाइप घटना दोबारा ना हो सके।
0: और अब बात पासपोर्ट को लेकर मचे हुए सियासी बवाल की। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर विपक्ष में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी कर कहा है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है कि पासपोर्ट उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो नागरिक नहीं है।
12: विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। ये महज एक ऐसा कागज है जिसे दिखाकर विदेश में यात्रा की जा सकती है, लेकिन इसे नागरिकता का आधार या सबूत नहीं माना जा सकता। और इस सफाई के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई। तमाम नेताओं ने, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं ने, ये सवाल किया है कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जिसे दिखाकर भारतीय नागरिकता साबित की जा सकती है। एक सवाल विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या SIR में एक्सक्लूजन के बाद पासपोर्ट के आधार पर अपनी नागरिकता को सिद्ध किया जा सकता है, तो विदेश मंत्रालय ने इस पर साफ किया कि पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। ये महज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारतीयों के लिए विदेश में यात्रा करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है।
0: और बात बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस की। बिहार की सियासत में ये मामला लगातार गर्म है। इस पर ताजा अपडेट दे रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण।
13: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार ने न्यायिक आयोग से जांच कराने का ऐलान किया था। कल कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि जो भरत तिवारी का परिवार है वो इसे नाकाफी बता रहा है और वो सीधे सीधे एनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस अधिकारियों और जो पुलिस के जवान इसमें शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कल बिलौटी गांव में महापंचायत का भी आयोजन किया गया। प्रशांत किशोर भी कल भरत तिवारी के परिजनों से मिले थे।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर गैंग वॉर से जुड़ी हुई। रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा के एक दाल रोटी नाम के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गोलीबारी का वीडियो पोस्ट कर हमलावर ने खुद को राजा पहलवान बताया। गैंगस्टर्स का दावा है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने छात्रों की बकाया तनख्वाह नहीं दी और इसी की वजह से मालिक को सबक सिखाने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में 10 लाइट बीम टेरेस स्थित दाल रोटी नाम के रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी राजा पहलवान और निक्का संधू ने ली है। वहीं कनाडा की पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
14: कनाडा में एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस बार फायरिंग रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने करवाई है। दोनों गैंग की तरफ से बकायदा सोशल मीडिया पर राजा पहलवान नाम के गैंगस्टर ने पोस्ट किया है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि दाल रोटी नाम के रेस्टोरेंट के इस मालिक ने कई छात्रों की तनख्वाह नहीं दी है। मालिक को पहले वार्निंग दी गई लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तब फायरिंग करवाई गई। पोस्ट के अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक अज्ञात हमलावर ताबड़तोड़ रेस्टोरेंट के सामने फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी धमकी दी गई है कि अगर रेस्टोरेंट के ऑनर ने पैसा नहीं लौटाया तो आगे अंजाम बुरा होगा।
0: और अब खबर फीफा वर्ल्ड कप की। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। मायामी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के एक तरफा मुकाबले में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से मात दी और जीते हीरो युवा स्ट्राइकर विनिसियस जूनियर रहे जिन्होंने 2 गोल दागे और नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं 1 गोल मथायस कुन्हा ने भी किया।
15: फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने अपना शानदार दबदबा बरकरार रखते हुए नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3 गोलों से हराया और नंबर 1 की टीम बनकर वो अपने ग्रुप से आगे की तरफ अब निकलेगी। 7 अंक है इस वक्त ब्राजील के पास और नॉकआउट राउंड में उनकी जगह पक्की है। विनिशियस जूनियर ने 2 गोल दागे, वहीं मैथियस कुन्हा ने एक शानदार फिनिश किया जिसकी वजह से स्कॉटलैंड को हराने में ब्राजील कामयाब रही। इसके अलावा सबसे रोमांचक बात यह रही कि लंबे समय से चोट की वजह से बाहर बैठे नेमार वो भी कल सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनकर इस मैच में उतरे थे। अगर बाकी मैचों की बात की जाए तो एक तरफ बोसानिया और हर्जेगोविना वो लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से अपने आगे के रास्ते को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोरक्को और स्विट्जरलैंड भी लगातार अच्छा खेल दिखा रही हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
16: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
17: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, yeah! and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर।
0: बारह बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर पुणे से। पुणे के केतन मर्डर केस को लेकर जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक टीम के साथ क्राइम ब्रांच के अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। केतन के माता पिता के शक के आधार पर जांच आगे बढ़ी और अब चेतन चौधरी हत्या के आरोपों से इनकार कर रहा है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मौकाए वारदात पर सीन रिक्रिएट करके भी जांच की जा सकती है।
18: केतन अग्रवाल और सिया गोयल की इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शुरू में किसी को लग भी नहीं रहा था कि इतनी मासूम शक्ल वाली सिया गोयल अपने होने वाली पति की ही कातिल हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे तहकीकात आगे गई, ये इन्वेस्टिगेशन आगे गया, उसके बाद ही अलग अलग परतें जुड़ती गई और फिर पुणे लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची लोहगढ़ किले पे। फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी और उसी के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस के जांच में अलग अलग परतें जुड़ती गई और दर्पण पे से ये सब कुछ धूल बैठी थी वो साफ हो गई। और धूल साफ होने के बाद एक चेहरा सामने आया जिसका नाम है चेतन चौधरी।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money, money, money, money, every month.
6: Soch batlo aur bank bhi.
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
7: जहाँ खबर वहाँ खबरदार.
11: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
12: केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर था, जबकि सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है. इस साल के अंत में दोनों की शादी होने वाली थी. शादी को लेकर शाही तैयारियां चल रही थी. पुलिस के मुताबिक सिया गोयल अरेंज मैरिज करना नहीं चाहती थी. जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के ही रहने वाले चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है. पुलिस की थ्योरी कहती है कि केतन को मारने की साजिश 31 मई को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान रची गई थी. 14 जून को केतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन 19 जून को केतन एक बार फिर किले पर गया और इस बार सिया और चेतन की प्लानिंग फुल प्रूफ थी. सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को लोहागढ़ बुलाया और दोनों ने मिलकर केतन को किले से नीचे धकेल दिया.
13: मेन तो हमको सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ.
14: फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए, क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे. उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा.
12: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है. फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड में सिया और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन शामिल था. ब्यूरो रिपोर्ट आज तक.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोपों पर संजय सिंह का दावा, 13 सौदों के दस्तावेज लेकर पहुंचे लखनऊ। आम आदमी पार्टी सांसद

बैंक का आरोप, ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के सबूत, एसआईटी के सामने पेश किए दस्तावेज। राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की ऑडिट मांग वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, नियमों के तहत सुनवाई का निर्देश। अयोध्या मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, राम के नाम पर लूट खसोट, आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। राम मंदिर दान गबन मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, बोले चंपत राय पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाए सरकार। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी ने विभागों से पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियां, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई और उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों का मांगा पूरा ब्यौरा। एसआईटी ने जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट दोबारा मांगी गई। जांच का फोकस अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर विभागों के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया। अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट न होने पर एसआईटी ने जताया असंतोष, विस्तृत जानकारी देने को कहा। एसआईटी जल्द ही मृतकों के परिजनों, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी करेगी दर्ज। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 19 इंजीनियर, 6 बीसीएस अफसर दोषी, एलडीए ने की सख्त एक्शन की सिफारिश। लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लोगों की मौत आग से नहीं, दम घुटने से हुई। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, 86 गेस्ट हाउस, होटल, बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन हुआ निरस्त। निरस्त हुए सराय एक्ट के लाइसेंस के बाद इनके संचालन पर लगाई रोक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर की गई ये कार्रवाई। लखनऊ हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, 924 कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा जांच के आदेश। संविधान हत्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। आपातकाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले अंबेडकर के सपनों पर भी प्रहार हुआ। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से पर भी चला बुलडोजर, प्रशासन ने पूरी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बड़ी सियासत, आज कसेरुआ गांव पहुंच सकता है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन का तंज, बोले कुछ लोग मुसलमानों का ठेका लेकर बैठे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ट्रस्ट के दोषियों का पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी और मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया जाएगा।
1: जो भी वाह, उसी की गंभीरता के दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की। एसआईटी की प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट 20 पन्ने की प्रस्तुत हो गई है। जो भी उसमें खामियां, त्रुटियां या जिम्मेदारियां इंगित की गई हैं, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। जो अपेक्षित निर्णय हैं, जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय वो भी लिए जाएंगे, लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जन भावना को चोट नहीं आने देंगे। ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर दो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे।
0: और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के जिम्मेदारों के इस्तीफे की उम्मीद जताई है। आलोक कुमार ने ट्रस्ट की व्यवस्था में भी बदलाव की मांग की है।
2: यह त्यागपत्र अगर किसी ने देना है तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जांच अब प्रभावित रहे, पर मैं उन दोनों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसा उनको ठीक लगेगा करेंगे, वह पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम विश्वास के आधार पर केवल नहीं चल सकता। यह आवश्यक है कि वहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी है वो वहां हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, फूल प्रूफ सिस्टम हो कि एक पैसे की भी गड़बड़ ना हो सके, तब हम जनता का विश्वास वापस उस मंदिर में ला पाएंगे।
0: इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने आज जमीन घोटाले के दस्तावेज पेश किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पिछले 1.5 घंटे से एसआईटी दफ्तर के अंदर मौजूद है। संजय सिंह ने कहा है कि कथित घोटाले से जुड़े 13 दस्तावेज लेकर वो एसआईटी के सामने पेश हुए हैं।

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित SIT ने आज आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हैं सबूतों के साथ। संजय जी, सबूतों के साथ आज क्या चंदा चोरी के भी सबूत हैं, जमीन घोटाले के सबूत हैं?
1: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत हैं और कुल 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और 2 जमीनें ऐसी हैं जो आपस में उनके मामले जुड़े हुए हैं, तो 11 दस्तावेज जमीनों के जुड़े हुए हैं।
0: 11 जमीनों के दस्तावेज सुन रहे हैं। चंदा चोरी का भी कोई सबूत है?
2: जमीन घोटालों
0: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो तमाम 13 दस्तावेजों को लेकर पहुंचे, 13 जमीनों के दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं SIT हेड लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत के सामने, जो सबूतों के साथ साथ अपने बयान भी दर्ज कराएंगे।
3: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चोरी और जांच की कहानी अब फ्लैशबैक में जा रही है। एक तरफ राम मंदिर बनने के बाद दान पात्र में लगातार चोरी की SIT जांच चल रही है, तो अब जांच की आंच चढ़ावे से आगे चंदे तक और चंदे से आगे जमीन खरीद में कथित घोटाले तक जा पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बनी SIT यूं तो दान में हो रही चोरी की जांच के लिए बनाई गई थी, लेकिन ट्रस्ट में इतने तरह की खामियां मिली कि SIT को भी शायद तरह तरह के घोटाले का शक बढ़ गया है। शायद इसलिए SIT ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दस्तावेज सबूत लेकर कथित जमीन खरीद घोटाले की भी पड़ताल करने की कोशिश की और उन्हें बुलाया है। तो अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 29 जून को जब SIT मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो असत्य राम भक्तों की असीमित आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के झूठ मक्कारी साजिश घोटाले और चोरी के संपूर्ण अयोध्या कांड का पर्दाफाश होने वाला है। इस बीच नया खुलासा हुआ है कि दान में चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट ने शुरू से आनाकानी का रवैया अपनाया हुआ था। खुलासा हुआ है कि जिला प्रशासन की मांग के बावजूद चंपत राय ने मंदिर में दान चढ़ावा आय और व्यय का ब्यौरा देने से मना कर दिया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ADM ने ट्रस्ट से ब्यौरा मांगा था, लेकिन SIT जांच का हवाला देकर ट्रस्ट ने कोई जानकारी नहीं दी थी। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। इस नए खुलासे का क्या मतलब है कुमार अभिषेक, क्या ट्रस्ट ने चोरी छिपाने की कोशिश की थी?
4: देखिए, शक और शुभा तो एकदम से ट्रस्ट के जो तमाम जो बड़े सदस्य हैं, चाहे चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, ऐसे तमाम लोगों पर शक तो पैदा हो चुका है, क्योंकि जब इसके बारे में लेटर लिखे गए, PMO तक लेटर भेजे गए, PMO के तरफ से उस लेटर का संज्ञान लेने के लिए DM को भेजा गया और DM की तरफ से जब ADM ने पूछा तब उनकी तरफ से कहा गया कि हम इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दे सकते, SIT जांच चल रही है। देखिए, गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब निश्चित तौर पर एक ऐसा पल आने वाला है कि अब जो जिसे कहते हैं दूध का दूध दही का दही अलग कर देना, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देना, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि ट्रस्ट के जो सबसे बड़े सदस्य हैं जिन पर उंगलियां उठ रही हैं उनके बारे में खुलकर चीज़ें सामने नहीं आएंगी। क्या जो SIT रिपोर्ट आई है, क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा ऐसे लोगों को क्लीन चिट दिया गया है या फिर इनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं? देखिए, ये गोपनीय रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री तक पहुंची है, लेकिन इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्हें क्लीन चिट मिली है या नहीं। एक दूसरी बात जो सामने आ रही है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं, ट्रस्ट इतने ज़्यादा संदेह के घेरे में है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि
3: जी
4: ट्रस्ट के जो लोग हैं वो ग्रेसफुल एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन
3: जी, बिल्कुल, और इस पूरी जांच पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका। तो सियासी आरोपों से भक्तों की शिकायत और फिर प्रशासनिक खतों और किताबों तक, अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में जो ट्रस्ट की ओर से आनाकानी वाला रवैया अख्तियार किया गया उससे इस ट्रस्ट पर ट्रस्ट घटता जा रहा है। क्यों, ये इस रिपोर्ट से समझिए।

0: जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर सब दास, कबीरा और जाने नहीं एक राम नाम की आस। असंख्य आस्थाओं की आस उसी राम के नाम पर टिकी है, राम ही न्याय करेगा। क्योंकि श्रद्धालुओं की भक्ति भावना दान समर्पण से खिलवाड़ के जघन्य अयोध्या कांड में दो बातें तय हो चुकी हैं। एक तो ये कि राम धन के चोर बख्शे नहीं जाएंगे, दूसरी ये कि मौजूदा ट्रस्ट का कायम रहना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, ट्रस्ट की मनमानी, नाकामी, लापरवाही और अनदेखी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते जा रहे हैं।
1: जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं, प्रेम रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा।
0: भ्रष्टाचार के नए अयोध्या कांड में खुलासा हो रहा है कि जब मौजूदा दान चोरी के आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए तो चंपत राय ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी के नेता ने पीएम को शिकायत की, तब भी ट्रस्ट ने गड़बड़ी के आरोपों की अनदेखी कर दी। पीएमओ के दखल पर जब यूपी प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच शुरू हुई तो जिला प्रशासन ने ट्रस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन ट्रस्ट ने मना कर दिया।
2: चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।
0: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर जैसे विशाल आस्था के केंद्र की देखरेख का काम जिस चंपत राय के ट्रस्ट के हवाले छोड़ा गया था वो लापरवाह ही नहीं बेपरवाह हो चुका था। यही वजह है कि अयोध्या के एक बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी। 9 जून को लिखी चिट्ठी में मांग की गई कि राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के निस्तारण के लिए पूरे मामले की सीबीआई, ईडी या अन्य सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए, दान राशि मिलने से जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए, जांच के बाद मिले चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। शिकायतकर्ता ने तब साफ कहा था कि विपक्षी दल राम मंदिर में दान चोरी के आरोप जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका चुनावी नुकसान बीजेपी को हो सकता है।
3: उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, ऐसे में अगर ये चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। इसलिए मैंने चुनाव से पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के क्रिस्टल क्लियर करने की मांग प्रधानमंत्री से की है।
0: लेकिन 9 जून की शिकायत के बावजूद राम मंदिर में दान चोरी मामले पर जब कोई जांच की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि अखिलेश यादव लगातार चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहे थे, फिर उसी शिकायतकर्ता ने 12 जून को एक और चिट्ठी लिखी, क्योंकि तब तक शक का दायरा और बढ़ चुका था। शिकायतकर्ता ने 12 जून को फिर लिखा कि इस मामले में ट्रस्ट बनने से अब तक की दान राशि के रसीदों का ब्यौरा, दान पात्र के अलावा ऑनलाइन चेक नकद के सारे दान का ब्यौरा, सोना चांदी आभूषण बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा लेखा जोखा, ट्रस्ट के सभी बैंक खातों में वित्तीय लेन देन का विवरण, ट्रस्ट की अर्जित संपत्तियों का विवरण, मंदिर बनने चलाने में खर्च का विवरण और सभी ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच की जाए। इसी दोहरी शिकायत के बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया और अब जांच में गंभीर लापरवाही का खुलासा हो रहा है।
4: तो मुझे लगता है कि ये दिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हर व्यक्ति शंका कर रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया होगा, मेरा दान कहाँ गया होगा, मैंने जो आभूषण दिए थे वो कहाँ गए होंगे, शायद ये क्वेश्चन मार्क आज किसी के मन में न होता अगर ट्रस्ट पहले दिन पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया होता।
0: अफसोसनाक ये है कि एसआईटी की जांच में जिस तरह की लापरवाही, अनदेखी और मनमानी के खुलासे हुए हैं, उसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना धीरज खो दिया है। अब देखना यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी का पुलिस प्रशासन और सरकार पहली एफआईआर कब और किसके खिलाफ दर्ज करती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की इकाई की एक नई लिस्ट जारी हो गई है, नई टीम जो गठित की गई है। यूपी बीजेपी संगठन की नई लिस्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 19 महामंत्री, माफ कीजिएगा, उपाध्यक्ष तय किए गए हैं। और आपको बता दें कि चुनाव आने वाले हैं जिसकी तैयारी तेज है और संगठन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें नई टीम की लिस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। 8 महामंत्री भी तय किए गए हैं 19 उपाध्यक्षों के साथ। हमारे सहयोगी मानशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है चुनावों की?
6: देखिए, अगर देखा जाए तो जो 6 के 6 क्षेत्र में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, ब्रज क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो, काशी हो, अयोध्या हो, रोहिलखंड क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो है वो इस नई टीम के अंदर, जो पंकज चौधरी की नई टीम बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें दिखाई दे रहा है। बड़ी चीज ये है कि बहुत से जो MLCs हैं, MLA हैं, या जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है उन, या पूर्व में सांसद रहे हैं, उनको तरजीह दी गई है, कुछ नए युवा चेहरों को जगह दी गई है। उसके साथ साथ जो है, अगर आप देखेंगे तो मीडिया पैनल जो है, प्रवक्ताओं का पैनल है, उसको बहुत कम किया गया है। क्षेत्रीय जो महामंत्री हैं उनको, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है उनको रखा गया है। तमाम अगर आप देखा जाए तो एक तरीके का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, सभी जातिगत समीकरणों को साधा गया है। 6 के 6 जो क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके साथ साथ अनुभवी लोगों को भी इसमें रखा गया। राजेश चौधरी मार्च से जो है वो विधायक है, उनको जगह दी गई है। उसके साथ साथ पत्रकारों को भी
5: रोकेंगे। आपको यहाँ पर हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे जो ये नई लिस्ट जारी हुई है इसको पढ़ के आपको क्या लगता है, किन किन बातों पर ध्यान रखा है इस नई टीम को बनाते हुए बीजेपी ने?
2: अंजलि, देखिए जो लिस्ट सामने है उसमें सबसे बड़ी बात है नीरज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, और उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये अभी तक का इस पूरे लिस्ट की सबसे अहम बात है। इसके अलावा देखें तो पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक चुनी गई थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के वक्त जब उन्होंने बगावत की थी उसके बाद अब उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो जो जो लिस्ट है उसको अगर आप देखेंगी तो इसमें OBC और दलित, इन दोनों की जो भागीदारी है वो बड़ी तादाद में दिखाई देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है बीजेपी के लिहाज से, अगर आप देखें तो पश्चिम से नवाब सिंह नागर जो कि गुजर बिरादरी से आते हैं उनको बनाया गया है, ब्रज से लोधी जो कि OBC बिरादरी है उनसे बनाया गया है, कानपुर से रामकिशोर साहू OBC से आते हैं उनको बनाया गया है, एक ब्राह्मण जो कि अवध से हैं अवधेश द्विवेदी उन्हें बनाया गया है, काशी से भी OBC अशोक चौरसिया, और गोरखपुर से विनोद राय जो कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं। तो 6 में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सबसे अहम होते हैं, 4 अगर आप देखें तो OBC बिरादरी से हैं। तो ये एक इसका बड़ा टेक अवे है इस पूरे इसका। लेकिन जो महामंत्री बनाए गए हैं उसमें कई लोगों को रिपीट भी किया गया है, जैसे संजय राय हैं, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, अगर इन तमाम नामों को देखेंगे, राजेश चौधरी मार्ट से विधायक, ऐसे तमाम लोग जो अपने अपने इलाके में मजबूत रहे हैं उनको जगह दी गई है। और ज़्यादातर कह सकते हैं कि बीजेपी की लिस्ट से OBC का रिफ्लेक्शन है। सुरेश राणा जो पश्चिम से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं, पिछली बार मंत्री थे, उनको इस बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, ऐसे पुराने नाम हैं जिनको कि इसमें जगह दिया गया है। प्रियंका रावत जो सांसद रही हैं दलित बिरादरी से हैं, वो भी उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो कुछ की टेकअवेज अगर आप इससे देखें तो राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे, पहले बेटे जो बड़े बेटे पंकज सिंह थे, वो पहले उपाध्यक्ष थे, पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, लेकिन उनको संगठन में जगह नहीं दी गई है, जबकि नीरज सिंह को जगह दी गई है उनके छोटे बेटे को। और वजह यह है कि लखनऊ और लखनऊ के आसपास में नीरज सिंह का अपना भी जनाधार है और पिता राजनाथ सिंह का कह सकते हैं एकदम सबसे ज़्यादा काम जो लखनऊ में देखते हैं तो नीरज सिंह है। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य मुझे दिखाई दे रहा है कि अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके दोनों बेटे कहीं ना कहीं अब बीजेपी में कह सकते हैं कि अहम पदों पर इस वक्त अब दिखाई देंगे। हालांकि पंकज सिंह सिर्फ विधायक हैं, लेकिन अब नीरज सिंह संगठन में आ गए हैं। अंजलि,
5: अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस लिस्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल का गणित किस तरीके से सेट करने की कोशिश की गई है?
2: देखिए, पूर्वांचल में अगर आप देखें तो बीजेपी को बहुत नुकसान होता रहा है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में भारी है। उसी लिहाज से अगर आप क्षेत्रीय अध्यक्ष को देखें तो क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल यानी कि काशी से अशोक चौरसिया, जो कि ओबीसी से आते हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है काशी, लेकिन काशी क्षेत्र में कई जिले आते हैं, तो वहाँ पर भी ओबीसी को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा अगर हम नामों को देखें तो नामों में बहुत सारे नाम आपको पूर्वांचल से भी दिखाई देंगे। पूजा पाल, हालांकि वो प्रयागराज के इलाके से आती हैं, लेकिन माना जाता है कामेश्वर सिंह ये गोरखपुर के पास से हैं, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, ये भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी इन नामों को सीधे नहीं कह सकते, लेकिन पूर्वांचल को भी ठीक ठाक तवज्जो इसमें दिखाई दे रही है। कई यादव नाम भी हैं, यानी कि सबों को समाहित करने की कोशिश दिखाई दी है। जो महासचिव बनाए गए हैं, महामंत्री बनाए गए हैं, जैसे चार महामंत्री बनाए गए हैं, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी। इसमें भी अगर महामंत्रियों की लिस्ट देखें तो चार में संजय राय को छोड़ करके तीन ओबीसी से आते हैं, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी, ये तीनों ओबीसी बिरादरी है। तो इस बार का जो लिस्ट है बीजेपी का, ये दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में जब ओबीसी ने बीजेपी का साथ छोड़ा था बड़ी तादाद में, बीजेपी 24 पार्लियामेंट का चुनाव एक तरीके से हारी थी, तो वो चीज़ इस बार करेक्टिव मेजर के तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम जो बड़े पद हैं, वो चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, इसमें ओबीसी का बोलबाला दिखाई दे रहा है। वैसे मंत्री में तमाम बिरादरियों का ख्याल रखा गया है जो बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय अध्यक्ष, महासचिव और जो महामंत्री और जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें बीजेपी ने अपना, जिसे कहते हैं ना, जातीय संतुलन साधना बहुत बेहतर तरीके से उसने साधा है। अब ये देखना ये होगा कि इसमें किस गुट के ज़्यादा हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लाया गया था प्रदेश अध्यक्ष को कुर्मी चेहरे के तौर पर। तो ओबीसी का जो एक समायोजन है वो इसमें बड़ी तादाद में है, दलित बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। इसको हालांकि एक एक करके भी मिलाना होगा कि संख्या कितनी है, लेकिन मोटे तौर पर अंजलि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो अपना संगठन की लिस्ट जारी की है 2027 के चुनाव को देखते हुए, ये अखिलेश यादव के पीडीए को के जवाब के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अंजलि
5: जी, आशुतोष, माफ कीजिएगा अभिषेक, आप ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जाति की जो गणित है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। बाराबंकी की बात करें तो आपने बताया कि प्रियंका रावत को वहां से बनाया गया है, तो क्या कोशिश यही है कि जिन इलाकों में अगर उस जाति के लोग ज्यादा हो वहां का प्रतिनिधित्व दिया जाए? क्या ये आप अगर लिस्ट पे सरसरे तौर पर देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो वहां की जाति की जो गणित है वो आपको उसमें नजर आ रही है?
2: नहीं, बिल्कुल आ रही है। देखिए, पश्चिम में सुरेश राणा बनाए गए हैं जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, सतपाल सैनी हैं, ये भी पश्चिम से आते हैं और सैनी बिरादरी का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। ब्रज बहादुर हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये तमाम नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोहित बेनीवाल पहले से जाट बिरादरी से आते हैं, वो भी पश्चिम से आते हैं। अगर आप उसके बाद अगर आप देखें तो चाहे कोरी, रावत, शाक, कोरी और रावत अगर आप देखें तो ये दोनों दलित बिरादरी से हैं, दुर्विजय शाक। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूजा पाल, इसके अलावा अगर आप देखें सुरेश मौर्य, राजेश यादव, ऐसे तमाम नाम हैं जो कि ओबीसी से हैं, लेकिन ब्राह्मणों को अभी।
5: जी बिल्कुल, कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार इस पर हमारी नजर है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.
8: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
10: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
11: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
12: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
13: Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points.
12: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
14: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
15: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

27 के लिए यूपी में बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, ओबीसी को तरजीह। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज शामिल, 6 क्षेत्र अध्यक्षों में 4 पिछड़ी जाति से। मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ट्रस्ट के अधिकारियों पर होगा एक्शन, पहली बार बोले योगी के मंत्री। चढ़ावा चोरी पर पीएमओ के संज्ञान को, चंपत राय ने किया था अनसुना, चिट्ठी से खुलासा। नागरिकता पर फिर छिड़ी नई बहस, पासपोर्ट नागरिकता का सबूत ना मानने पर भड़का विपक्ष। सरकार ने कहा पासपोर्ट कभी नहीं रहा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट 1967 के एक्ट में भी यही प्रावधान। इमरजेंसी के 51 साल पर पीएम मोदी का पोस्ट, लोकतंत्र कुचलने की याद दिलाता है संविधान। हत्या दिवस, आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। 100 साल के सबसे विनाशकारी भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला, राजधानी काराकस में गिरी मारते, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 की मौत, 700 घायल, हजारों के हताहत होने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने यूपी के अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और सपा की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्रियों को लिस्ट में जगह दी है, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में से 4 पिछली जाति के हैं।

तो पूजा पाल भी यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष बना दी गई है। सुरेश राणा को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्षों में से चार पिछड़ी जाति के हैं। और अब रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।

शक्तिशाली भूकंप सिकाफ वेनेजुएला राजधानी काराकास में गिरी इमारतें एयरपोर्ट की छत का हिस्सा रहा 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप हजारों लोगों की मौत की आशंका वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे 40 सेकंड में 2 बार कांपी धरती भूकंप का केंद्र यूमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसी इलाके में आसपास की कई बड़ी तेल रिफाइनरीज मौजूद कुछ इलाकों में धूल का गुबार छाया रहा कई इमारतों को भारी नुकसान की आशंका भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवर को लेकर तुरंत सड़क पर निकल आए वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद के लिए तैयार एनडीआरएफ की टीम जल्द हो सकती है रवाना कोलकाता के ताराकिला हादसे में 9 की मौत 29 लोगों को बाहर निकाला गया हादसे में राहत कार्य तेज सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया मृतकों के परिजनों के 10 लाख घायलों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित नई जांच अधिकारी नियुक्त डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपी गई जिम्मेदारी तारातला हादसे में 5 गिरफ्तारियां एफआईआर नामजद 4 आरोपियों समेत केएमसी प्लान मंजूरी का ब्रोकर भी दबोचा तारातला हादसे से लेकर दिलीप घोष ने कहा एक एक चीज की जांच होनी चाहिए कोई बचना नहीं चाहिए केतन अग्रवाल मर्डर मामले की जांच में किले में पहुंची फोरेंसिक टीम मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है उसके साथ पुणे पुलिस पुणे मर्डर केस में नया खुलासा हत्या से एक दिन पहले कैफे में रची गई थी साजिश पुलिस जांच के अनुसार 17 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के कैफे में मुलाकात कर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची जांच में सामने आया सिया ने लोहगढ़ किले की जानकारी साझा की थी पहले वहां रेकी भी की थी लोहगढ़ फोर्ट मर्डर मामले में पुलिस का दावा सीसी और बयान विरोधाभास 8 से 10 मिनट की मौजूदगी पर सवाल भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच टीम बुलौटी गांव पहुंची घटनास्थल का किया निरीक्षण भोजपुर एनकाउंटर मामले की जांच तेज परिजनों से मिले अधिकारी सीबीआई जांच की मांग उठी परिवार ने पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज कर फांसी की सजा की मांग की भरत तिवारी के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर सीएम और शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल प्रशांत किशोर ने कहा एनकाउंटर पर केवल निचले अधिकारियों को जिम्मेदार न ठहराया जाए स्वतंत्र जांच राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोपों पर संजय सिंह का दावा 1300 सौदों के दस्तावेज लेकर पहुंचे लखनऊ आप सांसद संजय सिंह का आरोप ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के सबूत एसआईटी के सामने पेश करेंगे दस्तावेज राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की ऑडिट मांगने वाली वीआईएल पर एससी ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार नियमों के तहत सुनवाई का निर्देश अयोध्या मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप राम के नाम पर लूट खसोट राम मंदिर दान गबन मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला बोले चंपत राय पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाए सरकार एसआईजी ने विभाग के पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियों अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा मांगा जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन नगर निगम बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ लेकिन उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट दोबारा मांगी गई है जांच का फोकस अवैध निर्माण बिजली कनेक्शन राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर विभागों के बयानों में विरोधाभास सामने आया अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम स्पष्ट न होने पर एसआईटी ने जताया संतोष विस्तृत जानकारी देने को कहा एसआईटी जल्द मृतकों के परिजन घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान करेगी दर्ज लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई 19 इंजीनियर 6 PCS दोषी एलडीए ने सख्त एक्शन की सिफारिश की लखनऊ अग्निकांड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा लोगों की मौत दम घुटने से हुई लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई 86 गेस्ट हाउस होटल्स बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन निरस्त हुए सराय एक्ट के तहत लाइसेंस के बाद इनके संचालन पर लगाई गई रोक मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की लखनऊ हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट 924 कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा जांच के आदेश

संगठन की नई टीम गठित, नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री। यूपी बीजेपी संगठन की लिस्ट में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और उपाध्यक्ष बनाया गया। पूजा पाल यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष बनी, सुरेश राणा को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। लिस्ट में जाति समीकरण का रखा गया है ध्यान, ओबीसी और दलित समुदाय को दी गई प्राथमिकता। बीजेपी ने अपने 6 मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की, रोहित मिश्रा बने प्रदेश अध्यक्ष, प्रकाश पाल को बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान हत्या दिवस पर सीएम योगी का हमला, का कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला है। आपातकाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले अम्बेडकर के सपनों का पर प्रहार हुआ है। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हिस्से पर बुलडोजर, प्रशासन ने पूरी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बड़ी सियासत, आज कसेरुआ गांव पहुंच सकता है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन का तंज, बोले कुछ लोग मुस्लिमों का ठेका लेकर बैठे हैं। पटना कोचिंग में फैजल खान मामले में कोर्ट ने मांगी अपडेटेड केस डायरी, 27 जून को अगली सुनवाई। ज्ञान बिंदु अकेडमी के निदेशक रोशन आनंद समेत 3 को जमानत, फैजल खान मामले की सुनवाई जारी। फर्जी एक्सपोर्ट ऑर्डर के नाम पर ठगी करने वाला कॉल सेंटर बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने 18 आरोपियों को दबोचा। विदेशी खरीदार बनकर व्यापारियों से लाखों की ठगी, मासूमाइन समेत 18 गिरफ्तार। दिल्ली के यमुना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बुलडोजर एक्शन, डीडीएमए ने 300 से ज्यादा घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया। भगवान मान रिपोर्ट मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली और जींद की दोनों लैब बिना लाइसेंस संचालन। पुलिस जांच में सामने आया अवैध संचालन, लैब में नहीं हो रहे थे मानकों का पालन, एसीपी क्राइम ने दी जानकारी। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। आरोप तय करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली गई, जैकलीन बोली अन्य कानूनी विकल्प अपनाएंगी। रेयारा बुग्याल ट्रैक से लापता बबीता पांडे की तलाश तेज, झील खाली करके चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन, भालू की गुफाओं तक पुलिस, एसडीआरएफ की गहन तलाशी। लापता युवती मामले सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर पुलिस सख्त कार्रवाई की चेतावनी। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीकरण रखने पर कार्रवाई के आदेश। एमसीजी का सख्त नियम, 25 नस्लों पर सार्वजनिक स्थानों में रोक, पट्टा और म्यूजल पहनाना होगा अनिवार्य। पिटबुल और रॉटवीलर जैसी नस्लों पर सख्ती, निगम ने और भी सख्त रुख अपनाया। सुल्तान में रेस्टोरेंट मैनेजर की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्रेटर नोएडा के गोल्डन आई मॉल में 9वीं मंजिल पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका। विशाखापट्टनम में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, शादी के 40 दिन बाद घर में मिला शव। जामनगर में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल।

रास्ते में युवक की चाकू गोद कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। दार्जिलिंग में नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन से सड़क बंद, काली मंदिर के पास यातायात ठप। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी, यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील। मुंबई में नहीं थम रहा है बारिश का दौर, शहर के कई इलाकों में भारी जलजमाव। जलभराव से कई बारिश ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में कई घरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर में बारिश ने मचाया कोहराम, तापमान में आई भारी गिरावट। एमपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 से 4 दिन तक होगी भारी बारिश। इंदौर के कई इलाकों में जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भरा पानी। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से बाजार में बाढ़ जैसे हालात, कई दुकान में पानी घुसा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत, एमआरसी ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। नया मेट्रो कॉरिडोर से सेंट्रल विस्टा में बढ़ेगी मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हब पहुंचना होगा आसान। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, डीएमआरसी का नया अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर अहम सरकारी इलाकों को जोड़ेगा। 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाईकोर्ट, भारत मंडपम शामिल। नए मेट्रो प्रोजेक्ट से केंद्रीय कर्मचारियों का सफर होगा आसान, दिल्ली के प्रशासनिक और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बड़ा कदम। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई डुबकी, श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर किया पूजा पाठ। एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, घाटों पर तैनात दिखे एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय पुलिस। अयोध्या में निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षाकर्मियों का जंगल में मॉकड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह, बड़ी संख्या में पंजीकरण किया जा रहा है। फिल्म मिर्जापुर का टीजर होगा लॉन्च, फिल्म के किरदारों में मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर जारी। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने थाईलैंड में मनाई शादी की दूसरी सालगिरह, एक दूसरे की आंखों में डूबे दिखे। प्रेगनेंट सामंता रूथ मैटरनिटी ब्रेक पर जाएंगी, एक्ट्रेस ने कंफर्म की प्रेगनेंसी। अगले साल 25 जून 2027 को रिलीज होगी पंजाबी फिल्म रन्ना गन्ना।

0: सबसे पहले बात करेंगे यूपी की सियासत की। बड़ी खबर यहां से आ रही है, यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और सपा के बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री हैं। इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। कई महिला चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें 46 मंत्री, क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल समेत 19 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जैसी महिला नेता को जगह मिली है। राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी और महामंत्री की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, अंकुर शर्मा, अनिल यादव समेत 46 नेताओं को मंत्री बनाया गया। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जातीय समीकरण, ओबीसी, महिलाएं, सब कुछ सम्मिलित कर लिया गया है कुमार अभिषेक?
1: बिल्कुल, जो लिस्ट दिखाई दे रही है वो लिस्ट इस बार जिसे कह सकते हैं कि फुल ऑफ ओबीसी और दलित, इसलिए क्योंकि बीजेपी को इन बिरादरियों ने 2024 में छोड़ा और बहुत मुझे लगता है कि एक प्लान बीजेपी ने बनाया, तैयार किया और इस बार जो इनकी पूरी संगठन की लिस्ट आई है उसमें इनकी छाप दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर इसे माना जाएगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, जो कि खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बीजेपी 2024 चुनाव के बाद उनको लेकर के आई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उनकी छाप साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनकी राय, उनकी छाप दिखाई देती है। तो अगर आप देखें तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रदेश संगठन मंत्री हों, दोनों ओबीसी बिरादरी से आते हैं और जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ साफ प्रदेश अध्यक्ष की अपनी छाप दिखाई देती है और बीजेपी के लिए शायद ये पीडीए के कार्ड के लिए ज़रूरी भी था। आप नाम देख लें, सुरेश राणा कभी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते थे, उनका नाम सबसे ऊपर है। सतपाल सैनी बिरादरी से आते हैं, पश्चिम से हैं। ब्रज बहादुर ये ब्राह्मण बिरादरी से हैं। धर्मेंद्र सिंह कुर्मी बिरादरी से हैं। मोहित बेनीवाल जाट हैं। देवेश कोरी दलित हैं। प्रियंका रावत दलित हैं। इसी तरीके से दुर्विज शाक्य उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं ओबीसी से हैं। रमेश सिंह और नीरज सिंह ये ठाकुर हैं, दोनों उपाध्यक्ष हैं। नीरज सिंह के बारे में बता दें कि राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव सक्रिय अगर लखनऊ में कोई नेता दिखाई देता है तो उसमें नीरज सिंह का नाम ऊपर आता है और चूंकि राजनाथ सिंह के बेटे हैं तो कह सकते हैं कि उनका पूरा जो संगठन और उनकी सियासत एक तरीके से लखनऊ में नीरज सिंह संभालते हैं। तो बहुत समय से इनके नाम की चर्चा थी और राजनाथ सिंह के जो छोटे बेटे हैं अब राष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले बड़े बेटे इनके पंकज सिंह प्रदेश महासचिव थे, इस बार उनको जगह नहीं मिली लेकिन वो नोएडा से विधायक हैं। अर्चना मिश्रा ये रहने वाली मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश की हैं लेकिन उन्हें भी चूंकि बहुत समय से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स कर रही हैं उन्हें भी जगह दी गई है। पूजा पाल दूसरा बड़ा नाम है, पूजा पाल बिरादरी से आती हैं और प्रयागराज से आती हैं। पूजा पाल को लेकर के जानकारी होगी, राजू पाल इनके पति थे जिनकी हत्या का जो पूरा आरोप था वो अतीक अहमद पर था। उसके बाद से पूजा पाल पिछली बार सपा पर जीती लेकिन राज्यसभा टिकट में बगावत हुई तो अब वो बीजेपी के खेमे में हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, ओबीसी बिरादरी से आती हैं। शंकर गिरी ये गोस्वामी ब्राह्मण बिरादरी ही मानी जाती है। कामेश्वर सिंह पूर्वांचल से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, ये भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, ये तमाम नाम इस बार ओबीसी के नाम काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि कृष्ण बिहारी राय भूमिहार बिरादरी से आते हैं। आलोक गुप्ता, राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कि अलग अलग इलाकों से हैं लेकिन अभिजात मिश्रा जो कि लखनऊ में यूथ पॉलिटिक्स बीजेपी के यूथ में नेता के तौर पर इनकी बड़ी पहचान रही है, इस बार महामंत्री बनाए गए हैं।
0: जब ये लिस्ट बनाई गई जाहिर तौर पर जातीय समीकरण तो ध्यान में रखा गया लेकिन इस लिस्ट में पंकज चौधरी के अलावा किस किस की चली है, किसके हित ध्यान में रखे गए?
1: देखिए पंकज चौधरी की चली है और जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं उनकी चली है ये माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कभी अपनी इच्छा सार्वजनिक नहीं की है, मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा जैसा बताया जाता है कि फलाने को संगठन में आप लोग ये नाम हमारी तरफ से है, इसलिए कोई ऐसा बड़ा नाम जो कि बहुत मुख्यमंत्री के करीबी हो दिखाई नहीं देता। हालांकि जो ऊपर पहला नाम है सुरेश राणा, ये मंत्री जब थे तो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे। हालांकि अभी जो छाप है वो आप मान सकते हैं कि धर्मपाल सिंह जो कि संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, इनकी ये छाप इस पूरे लिस्ट पर दिखाई देती है। अगर आप देखें तो युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, इसमें भी सिर्फ युवा मोर्चा को देखा जाए तो ब्राह्मण रोहित मिश्रा बनाए गए हैं, बाकी तमाम लोग ओबीसी बिरादरी से इसमें, हालांकि ओबीसी मोर्चा भी है, दलित मोर्चा भी है तो नेचुरल है कि उसी बिरादरी से आएंगे। महिला मोर्चा में सरोज कुशवाहा को जगह दी गई है का नाम है। तो इस बार की जो पूरी ये छाप है, ये मान लीजिए कि बीजेपी ने पूरी तरीके से ओबीसी कार्ड खेल दिया है, और ओबीसी कार्ड जो बीजेपी ने खेला है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का पीडीए है, क्योंकि इसी पीडीए ने 2024 में हराया था और अब ये बीजेपी का अग्रेसिव ओबीसी कार्ड है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you, now and new at Target. Shop today.
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
7: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Sokudo.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Vimal, bolo zuba kesri.
6: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Hum sikhayenge aapko mass communication ke expert banne ka hunar. Join kijiye India Today Media Institute.
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: कुरुंगकुमे, लोअर सुबनसिरी, कामले और अपर सुबनसिरी बाकी राज्य से कट गए हैं। नेशनल हाईवे 13 के ईटानगर होज याजली हिस्से पर भूस्खलन की खबर है। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस, पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100

27 के लिए यूपी बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, ओबीसी को तरजीह। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज शामिल, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में 4 पिछली जाति से। मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर होगा एक्शन। पहली बार बोले योगी के मंत्री, चढ़ावा चोरी पर पीएमओ के संज्ञान को भी चंपत राय ने किया अनसुना, चिट्ठी से खुलासा। नागरिकता पर फिर नई बहस छिड़ गई, पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत ना मानने पर भड़का विपक्ष, सरकार ने कहा पासपोर्ट कभी नहीं रहा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट 1967 के एक्ट में भी यही प्रावधान। इमरजेंसी के 51 साल पर पीएम मोदी का पोस्ट, लोकतंत्र को चलने की याद दिलाता है संविधान, हत्या दिवस, आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। 100 साल के सबसे खतरनाक भूकंप से कांपा वेनेजुएला, राजधानी काराकास में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार, अब तक 32 की मौत, 700 घायल।

इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उस खबर की अब बात करेंगे जिसने फैमिली और रिलेशनशिप में स्कूल की एक पूरी बुनियाद ही हिला दी है। पुणे में होने वाली पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को ही मार डाला, यानी कि अपने मंगेतर को मार डाला। पिछले कई दिन से ये कहानी, ये घटना सुर्खियों में बनी हुई है। हत्याकांड को इतनी बारीकी से अंजाम दिया गया कि हत्या नहीं बल्कि हादसा दिखाई दे, और इसके लिए बकायदा प्लानिंग की गई, बैकअप प्लान भी बनाए गए। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी काम करेगा, बी असफल हुआ तो सी। और इस खबर ने लगभग सभी को झकझोर कर रख दिया है।

0: एक प्रेम कहानी जो पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। एक रिश्ता जो जुड़ने से पहले ही टूट गया। न इस सफर पर रिश्तों के पैर पड़े नहीं कि जिंदगी फिसल गई।
1: तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है।
0: पुणे की सिया, पुणे का चेतन और पुणे का ही केतन कोयल।
1: तुझे चाहता कोई और है।
0: सिया के साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा था केतन। उसकी हर ख्वाहिश हर इच्छा केतन के लिए आदेश था। फरवरी में सगाई, नवंबर में होना था गठबंधन, लेकिन सात जन्मों के बंधन जुड़ने से पहले सिया ने सब समाप्त कर दिया। जिस उम्र में जिंदगी नए सपने देखती है, नए रिश्ते नए दोस्त बनते हैं, जिसके नाम की मेहंदी सिया के हाथों में लगनी थी, उसी के खून से सिया का दामन दागदार हो गया। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं पुणे के उस हत्याकांड की, जिसमें 20 साल की लड़की ने शादी के जोड़े की बजाय हथकड़ियों को चुना।
2: केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की सगाई हुई थी और नवंबर में शादी होनी थी। दोनों रईस घर आने से थे, अरबों का कारोबार था, वेडिंग डेस्टिनेशन तक बुक हो गए थे। 17 करोड़ में वेडिंग का डेस्टिनेशन बुक किया गया था। मेहमानों और रिश्तेदारों के लिए चार्टर प्लेन भी बुक किए गए थे, लेकिन ये शादी नहीं हो सकी। सिया गोयल जिन हाथों में केतन के नाम की मेहंदी लगाने वाली थी, वही हाथ खून से सन गए और ये खून उसके मंगेतर केतन का है।

एक हंसता मुस्कुराता जोड़ा, 20 साल की सिया गोयल, 26 साल का केतन अग्रवाल। ये जोड़ी जो जिंदगी के नए अध्याय लिखने निकला था। फरवरी में सगाई हो चुकी थी, नवंबर में शादी तय थी। राजस्थान के उदयपुर में शादी का वेन्यू भी तय था। मेहमानों और रिश्तेदारों के लिए अलग अलग चार्टर प्लेन बुक किए गए थे। इस जोड़ी को देखकर कहीं से नहीं लगता कि इनके प्रेम में कोई कमी है, एक दूसरे के प्रति कोई खोट है। केतन अग्रवाल पुणे के कारोबारी खानदान का इकलौता बेटा था। बाप दादा का अरबों का बिजनेस है, सारी सुख सुविधाएं हैं। सिया गोयल का खानदान भी मसाला कारोबारी है। शादी बराबरी की हैसियत में हो रही थी। सिर्फ सिया और केतन नहीं, दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। शादी से पहले ही सिया का अपने होने वाले ससुराल में आना जाना हो गया था। नए परिवार के सदस्यों से मिलना जुलना, मेल मिलाप, सब कुछ।

0: 19 जून को सिया का बर्थडे था तो केतन ने एक महीने तक हर रोज नया सेलिब्रेशन किया, कभी गाड़ी में फूल देता। कभी रेस्टोरेंट में केक काटता। सिया और केतन की शादी विशुद्ध रूप से अरेंज मैरिज थी, लेकिन एंगेजमेंट के कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को इतने करीब से जानने लगे कि केतन के लिए सिया ही जिंदगी बन गई। सिया की खुशियां केतन की खुशी बन गई, सिया की छाए केतन के लिए आदेश बन गया। केतन सिया के लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन सिया के मन में कुछ और था। सिया का अफेयर पुणे के ही एक चेतन चौधरी से था। पुलिस की माने तो चेतन और सिया एक साथ पढ़ाई करते थे। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्रेम हो गया। दोनों करीब 8-9 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। इधर सिया केतन अग्रवाल के और उसके परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि सिया के मन में क्या चल रहा है। सिया अक्सर केतन को अपने साथ घुमाने ले जाती। केतन के परिवार वाले कभी कभी मना भी कर देते थे। 19 जून को सिया का बर्थडे था और उसके बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को केतन की मौत हो गई। तब कहा गया कि केतन पुणे के इसी लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिरा और इस हादसे में मारा गया।
1: इन्वेस्टिगेशन ये दिखा रहा है कि सिया गोयल ही इस पूरे मामले की मेन कॉन्स्पिरेटर है। उसी ने प्लान किया, उसी ने एग्जीक्यूट किया और चेतन चौधरी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी उसमें हेल्प ली। अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ 350 फीट गहरी खाई है, जिस खाई में केतन अग्रवाल के शादी के सपने दफन हो गए। क्योंकि सिया जब उसके साथ यहाँ आई थी तब उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, वो उसे यहाँ से धक्का दे देगी। हम लोहगढ़ किले पे हैं, जिस लोहगढ़ किले की ये खाई आपको नजर आपको दिख रही होगी, इसी खाई में इसी स्पॉट पे इस वारदात को अंजाम दिया गया जहां 31 मई को पहली बार ये दोनों ट्रेक के लिए आए थे, तब सिया ने रेकी की, फिर 14 तारीख को वापस आ गए, फिर 14 तारीख को सिया ने कोशिश की लेकिन उससे हो नहीं पाया, फिर 18 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया गया यहीं से, जहां आप देख सकते हो नीचे गांव है अलग अलग। पुणे की ये मावल तहसील की दूसरी बाजू है, इसी तरफ उसे धक्का दे दिया गया।
0: जांच हुई तो पता चला कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या की है। परिवार को ये अंदाजा ही नहीं था कि सिया बहुत पहले से ये प्लानिंग कर रही है। वो बाहर बाहर से केतन से प्यार और शादी का नाटक कर रही थी, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी केतन से शादी हो। इसीलिए अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर रही थी।
2: ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक के सब लेती है, हमको बात छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने, तो हमको वो बहुत शॉक लगा है।
3: उसके अफेयर्स के बारे में भी छुपाया था,
2: पूरा छुपाया गया था हमसे, हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी, ना वो ड्रिंक लेती थी, अफेयर्स थे उसके, जैसे यहाँ के 4 महीने सगाई थी उसमें भी पूरी छुपाई गई थी, हमको एक बार भी सिया ने भी नहीं बताया। और जबकि मैंने 2-3 बार सिया को बता दिया था बीच में भी, सिया मेरे घर में ड्रिंक और पार्टीज नहीं चलती, मैं नहीं भेजूंगी, ये मैंने साफ साफ बोल दिया था। सगाई होने से पहले भी मैंने उसको बोल दिया था, उसके पेरेंट्स को भी बोल दिया कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता, मैं खुद रोड वो ड्रिंक पीने वाले इंसान से।
0: मासूम सी दिखने वाली सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को मार डाला। पुणे की इस घटना ने परिवार और रिश्तों की हर शाखा को छकझोर दिया है। कभी सोनम रघुवंशी हनीमून पर पति को मार डालती है, तो कभी सिया गोयल शादी से पहले मंगेतर को मार डालती है और फिर ऐसा दिखावा करती है जैसे हमने कुछ किया ही ना। पुलिस, परिवार और रिश्तेदारों को शक ना हो, इसलिए सिया अपने सोशल मीडिया पर केतन का स्टेटस लगाती थी, ऐसा दिखाने का प्रयास करती थी कि वो सदमे में है। केतन के परिवार वाले भी यही मान रहे थे कि यह हादसा है, लेकिन 21 जून को जब पुणे पुलिस ने जांच शुरू की तो सिया का खूनी प्लान सामने आ गया। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
4: केतन और सिया की एंगेजमेंट की तस्वीरें, वीडियो और बहुत सारे ऐसे रील्स हैं जिन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि दोनों प्यार में नहीं थे, लेकिन सच यही है कि सिया केतन के साथ सिर्फ छलावा कर रही थी। वो केतन से नहीं, चेतन चौधरी से प्यार करती थी और उसी के साथ मिलकर सिया ने अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया। सवाल यही कि अगर केतन पसंद नहीं था तो फिर सिया उससे अलग हो जाती, शादी के लिए मना कर देती, हत्या जैसा अपराध करके क्या हासिल हुआ? पुलिस की जांच सिया का पूरा प्लान खोल चुकी है।
0: रिश्तों के बनने और मिटने की एक ऐसी कहानी है जिसमें 20 साल की एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम देती है कि भरोसे का भी कत्ल हो जाए। इसमें रिश्तों की नर्सरी है, जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का कत्ल है। इस कहानी में कुल 3 किरदार है, सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी। इनमें से केतन अब दुनिया में नहीं, सिया और चेतन केतन को ठिकाने लगा दिया। केतन अग्रवाल और सिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घड़ी आती, सिया ने अपने होने वाले पति केतन को ठिकाने लगा दिया। सिया ने केतन को कैसे मारा, केतन को मारने के लिए सिया ने कितने प्लान बनाए, सिया का प्लान बी क्या था, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौहान इस हत्याकांड के खुलासे में कैसे अहम कड़ी साबित हुआ, आज हम सब कुछ बताएंगे। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये मानेगा ये लड़की अपने होने वाले पति की हत्या कर देगी? क्या इन हंसी खुशी के इन पलों में कहीं से लग रहा है कि सिया और केतन के बीच में कोई अविश्वास, दरार या तनाव है? तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिया ने ही अपने होने वाले पति को मार डाला, लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच का सार यही है कि सिया ने केतन को मार डाला।
1: अग्रवाल और सिया गोयल की इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शुरू में किसी को लग भी नहीं रहा था कि इतनी मासूम शक्ल वाली सिया गोयल अपने होने वाली पति की ही कातिल हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे तहकीकात आगे गई, ये इन्वेस्टिगेशन आगे गया, उसके बाद ही अलग अलग परतें जुड़ती गई और फिर पुणे लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची लोहगढ़ किले पे। फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी और उसी के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस के जांच में अलग अलग परतें जुड़ती गई और दर्पण पे से ये सब कुछ धूल बैठी थी वो साफ हो गई, और धूल साफ होने के बाद एक चेहरा सामने आया जिसका नाम है चेतन चौधरी।
0: पुणे में जून की गर्मी में हुडी, मुंह पर मास्क, पीठ पर बैग लेकर एक शख्स लोहगढ़ के किले में दाखिल होता है। ये शख्स कोई और नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पुणे पुलिस ने जब लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चेतन चौधरी सिया और केतन के आसपास दिखा। कुछ फुटेज में चेतन और सिया इशारों में बातचीत करते हुए भी दिखे। बस यही से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने चेतन चौधरी की हर गतिविधि को ट्रैक करना शुरू किया।
5: ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है।
0: पुणे पुलिस ने सबसे पहले इस चेतन चौधरी को उठाया क्योंकि लोहगढ़ किले में चेतन का होना, हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा सब संदिग्ध था। पुलिस को शक हुआ कि 35 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क पहने हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था।
1: और केतन के आगे जाने के बाद बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है, और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ।
0: केतन का परिवार गम में था, घर का इकलौता बेटा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन परिवार को एक बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि केतन फिसल कर गिरा तो गिरा कैसे, क्योंकि केतन अग्रवाल अच्छा ट्रैकर था, पहाड़ों पर ट्रैकिंग में वो एक्सपर्ट था। सकरे रास्तों पर चलना, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना उतरना केतन के लिए नई बात नहीं थी।
6: संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने।
0: फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो कुछ और ही कहानी पता चली। सिया की एक फोन नंबर पर इस साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी और ये नंबर केतन का नहीं था, तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी निकला। चेतन से जब पुलिस ने सख्ती से बात की तो सारी कहानी खुल गई। ओंकार वावले, पुणे आज तक।
4: सिया और चेतन दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। केतन को मारने के लिए सिया ने कई प्लान्स बनाए थे, कई तारीख तय की गई, अगर इस दिन नहीं हुआ तो उस दिन सही। क्या था सिया का ये प्लान? केतन के घर वाले क्यों सिया को पहचान नहीं सके? देखिए रिपोर्ट।

0: केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक तैयार था, लेकिन प्लान बी में ही सिया ने केतन को रास्ते से हटा दिया। केतन को कैसे मारना है, किस जगह पर ले जाना है, ये सब कुछ पहले से तय था। चेतन चौधरी और सिया गोयल ने लोहगढ़ के किले को इस काम के लिए सबसे मुफीद माना। फरवरी में जब सिया की सगाई हुई तभी उसने और चेतन ने तय कर लिया था कि केतन को हटाना है। सबसे पहले 31 मई को केतन और सिया लोहगढ़ के किले में गए, लेकिन इस बार सिया ने कुछ नहीं किया। 5 जून को फिर से उसी किले में जाने की योजना थी, लेकिन इस बार केतन अग्रवाल के घर वालों ने अनुमति नहीं दी। 14 जून को सिया ने फिर से केतन को लोहगढ़ के किले पर बुलाया और पहली बार केतन को किले के ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी, सिया ऐसे क्यों कर रही है, वरना हमको इस विश्वास था उससे। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सिया को, उस केतन को ऐसे कर दिया।
2: 14 जून को जब सिया ने केतन को किले के ऊपर से धक्का दिया तो केतन बच गया। केतन एक ट्रैकर था और ऐसी आपात स्थिति में बचने के लिए वो ट्रेंड था। केतन ने किसी झाड़ी के सहारे खुद को वहां पर रोक लिया और वो बच गया। जब सिया ने देखा कि केतन बच गया है तो वो चिल्लाने लगी और मदद मांगने का नाटक करने लगी, ताकि किसी को शक ना हो कि सिया ने ही केतन को धक्का दिया था। केतन जैसे तैसे ऊपर आया और सिया ने केतन से कहा कि उसने सांप देख लिया था और केतन को बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया।
0: 14 जून को केतन के साथ लोहगढ़ किले में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में केतन ने किसी को कुछ नहीं बताया। घर वालों को ये बात पता नहीं चल पाई कि सिया ने केतन को लोहगढ़ किले से धक्का दिया था और केतन बाल बाल बच गया था। सिया का प्लान ए फेल हो चुका था। पहले प्रयास में सिया केतन को नहीं खत्म कर सकी। इसके बाद सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन से फिर मिली। पुणे के लोनावाला में एक रेस्टोरेंट में दोनों ने फिर प्लान बनाया। इस बार सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी किले पर मौजूद था। किले पर जाने से पहले चेतन ने पूरे किले की अच्छे से रेकी की थी, किस जगह से धक्का देना है सब कुछ पहले से निर्धारित था। 18 जून को सिया ने फिर से जिद करके अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को उसी लोहगढ़ किले पर बुलाया। सिया पर भरोसा करके केतन लोहगढ़ चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को मार डाला।
1: बिल्कुल भी नहीं डरता, उसका बहुत अच्छा था। उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है। ऐसे ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया, यहाँ तक केतन को भी एक बार भी नहीं लगा। हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके उसके पापा ने बोलता पूछा, मैंने हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है। यहाँ देखिए उसके पेरेंट्स लोग ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स का भी हमको कभी नहीं लगा।
0: सिया और केतन का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। केतन अग्रवाल अपनी होने वाली पत्नी सिया पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसे हर दिन सरप्राइज देता था। सिया के दगाबाजी की घटना 6 जून को भी हुई, जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन ने इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने सिया को मना कर दिया कि वो बाली ना जाए, जिसके बाद सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और पासपोर्ट खोजने लगे तो सिया ने कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया, उसी में पासपोर्ट था। जो केतन सिया के लिए सब कुछ करने को तैयार था, जो सिया के साथ साथ फेरे लेने के सपने देख रहा था, उसी सिया ने केतन को मौत के घाट उतार दिया और नाटक करती रही कि केतन के जाने से सदमे में है। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
3: इस खास फीचर से बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है। जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे, तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो के ही हैं। कहां हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा दिख लो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।

बीजेपी की नई टीम में कई चौंकाने वाले नाम, ओबीसी को तरजीह। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का भी नाम शामिल। 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों में 4 पिछड़ी जाति से। मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ट्रस्ट के अधिकारियों पर भी होगा एक्शन। पहली बार बोले योगी के मंत्री, चढ़ावा चोरी पर पीएमओ के संज्ञान को भी चंपत राय ने

नागरिकता का सबूत ना मानने पर भड़का विपक्ष। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट कभी भी नहीं रहा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट, 1968 के एक्ट में यही प्रावधान। इमरजेंसी के 51 साल पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लोकतंत्र कुचलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर। सौ साल के सबसे खतरनाक भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल, हजारों के हताहत होने की भी आशंका।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। दोपहर के इस प्राइम टाइम शो में हम आपको बताएंगे दोपहर तक की तमाम बड़ी खबरें और उसका विस्तृत जानकारी भी देंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। आपको बताते हैं कि न्यूज रूम लाइव में कौन कौन सी बड़ी खबर हम आपका विश्लेषण करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे अब अयोध्या के अंदर चंदा चोरी के बाद अब जमीन घोटाले को लेकर भी नए खुलासे किए जा रहे हैं। उसके बारे में भी संजय सिंह ने कई रिपोर्ट एसआईटी के सामने पेश किया, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिर बात होगी कानपुर में लखनऊ अग्निकांड के बाद लगातार कानपुर के कई कोचिंग सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन मंत्री के भाई की जो कोचिंग सेंटर को दोबारा से डीसील कर दिया गया, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे पासपोर्ट को लेकर सिटीजनशिप यानी नागरिकता की एक नई बहस छिड़ गई, इसको लेकर भी सियासी घमासान बड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे वेनेजुएला में आई तबाही को लेकर कि आखिरकार 100 सालों में कैसी बड़ी तबाही ने वहां पर लोगों में कोहराम मचा दिया, कैसे बड़ी अफरा तफरी है, इसको लेकर 2:30 बजे हम आपको स्पेशल कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं, आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। 2027 के आप कह सकते हैं कि को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है, नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 2027 को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी टीम के नामों के लेकर ऐलान किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि जो यूपी की टीम है उसको लेकर कई नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी मिशन 2027 के लिए यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर चुके हैं राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बड़े नामों का ऐलान इसमें किया गया, जिसमें नीरज सिंह के साथ साथ पूजा पाल सिंह का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। और देखें, हम आपको लगातार वो लिस्ट के अंदर जो नाम शामिल है इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो नाम जो है 2027 के लिए इसमें शामिल किए गए हैं, यानी बीजेपी की जो टीम है उसमें राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनको भी इसमें उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया। पूजा पाल का नाम भी शामिल किया गया, समाजवादी पार्टी में रही थी लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हो गई, उनके नाम को भी इसमें शामिल किया गया। कई नामों को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए नई टीम है और इसमें खास तौर पर ओबीसी के चेहरों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। 19 नए आप कह सकते हैं चेहरे, दलित नेता प्रियंका रावत को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम आपको बता रहे हैं कई चेहरों को इसमें पहली बार शामिल किया गया। एमएलए यानी जाट नेता राजेश चौधरी को भी महामंत्री के तौर पर इसमें शामिल किया गया। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं संजय राय फिर से महामंत्री बनाए गए हैं। कई चेहरों को रिपीट भी किया गया है जिसमें संजय राय का नाम शामिल है। रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। दरअसल 2027 की तैयारियों को लेकर ये नए नामों का ऐलान किया गया जिसमें कई चेहरों को पहली बार मौका दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं। कुमार, देखिए कहा जा रहा था कि इस बार ओबीसी के नए चेहरों को या ज्यादा चेहरों को शामिल किया जाएगा, दलित चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्या समीकरणों को ध्यान में रखा गया इस बार की लिस्ट में?
1: अब बिल्कुल, देखिए लगभग 50% से ज्यादा दलित और ओबीसी हैं और खास करके 50% के आसपास अकेले ओबीसी इस पूरे मोर्चे में हैं। पूरे संगठन की जो लिस्ट आई है उसमें किए गए हैं 46 संगठन के पद हैं। इसके अलावा कार्यालय मंत्री प्रवक्ता ऐसे तमाम लोगों को जोड़कर 58 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर आप देखें तो अकेले 28-29 नाम ओबीसी बिरादरी से आते हैं। 10 ब्राह्मण हैं, 8 ठाकुर हैं। इसके अलावा दलित जो चेहरे हैं उनकी संख्या तकरीबन 6 है। तो 50% से ज़्यादा इस बार दलित और ओबीसी हैं और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब देना है तो उन्हें भी इसी तरीके के संगठन के साथ आगे बढ़ना होगा। याद करिए 2024 का चुनाव जब बीजेपी पिछड़ गई, हारी, और ऐसे में कहा गया कि जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में बीजेपी का साथ छोड़ा है। इस बार जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी तो वो खुद भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं। इसके अलावा धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री भी ओबीसी बिरादरी से हैं और इस बार कई नए चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है। तो माना जा रहा है कि नए कलेवर से नए लोगों के साथ बीजेपी 2027 के चुनाव में जाएगी।
0: बिल्कुल अभिषेक, आपका रुख दोबारा से करेंगे और इस खबर के ऊपर और भी विश्लेषण आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो पुणे हत्याकांड को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि पुणे हत्याकांड को लेकर एक नया सीसीटीवी सामने आया, केतन हत्याकांड को लेकर एक नई तस्वीरें और नई जानकारी सामने आई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को बताया जा रहा है कि सिया और चेतन का एक नया वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे केतन की हत्या से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। जो दोनों आपको इसमें बैठे हुए नजर आ जाएंगे, दोनों की जानकारी इसे एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। कैफे में सिया और चेतन बैठे दिखाई दे रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज इस समय सामने आया, पुणे के एक कैफे में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं जिसमें सिया और चेतन दोनों मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि कैसे सिया और उनके जो बॉयफ्रेंड है चेतन का एक नया वीडियो सामने आया। हालांकि देखिए केतन के हत्या से पहले का, ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जो ये जानकारी देगा, हालांकि ये सबूत के तौर पर कि आखिरकार कैसे सिया और चेतन एक साथ बैठे हुए थे और कैसे लगातार उनकी मुलाकात हुई, यानी उस हत्याकांड से पहले, पूरी वारदात से पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे इन दोनों के मिलने जुलने की एक कह सकते हैं संलिप्तता को दर्शाएगा। और यही वजह है कि पुणे के केतन हत्याकांड में इसको एक अहम महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवेश भी जुड़ गए। दिवेश का रुख करते हैं। दिवेश देखिए ये सीसीटीवी फुटेज तो दिखा रहा है कि हत्याकांड से पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, कॉन्स्पिरेसी में दोनों एक तरीके से इन्वॉल्व थे, ये तैयारी की गई थी, यानी पूरी तरीके से प्री प्लान तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
2: नहीं बिल्कुल, आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले 17 जून को एक कॉफी शॉप में सिया गोयल और चेतन ये दोनों मिले और दोनों ही आरोपी वहां पर मिलकर इस प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया है। सिया गोयल के जो मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, सर्च किस्ती खंगाली गई, तो लोहगढ़ फोर्ट के इलाके, लोहगढ़ फोर्ट के स्पॉट, उनके बारे में रिसर्च करती हुई वो मोबाइल तो दिखाई दे रही है। और ये जो मीटिंग है जो 17 जून के कॉफी शॉप में हुई है चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच में, ये मर्डर की प्लानिंग को लेकर की ये पुलिस बता रही है। पुलिस को ये शक है कि यहीं पर वो प्लानिंग की गई कि 18 जून को चेतन अग्रवाल का मर्डर कैसे किया जाए, कैसे से उस पहाड़ से कैसे केतन अग्रवाल को धक्का देकर नीचे गिराया जाए ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, ये पता लगा, ये पुलिस ने रिवील किया है। पुलिस तो ये भी बता रहे हैं कि ये जो कॉफी शॉप का फुटेज है ये भी अब एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सबूत है, बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है इस पूरे केस में, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि सिया गोयल केतन चौधरी मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से केतन अग्रवाल को मर्डर किया जाए, केतन अग्रवाल के मर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। और लोहगढ़ फोर्ट प्लानिंग के तहत सिया गोयल केतन अग्रवाल को लेकर लोहगढ़ फोर्ट पहुंची, उसके बाद केतन चौधरी वहां पर मिलता है। चेतन चौधरी और सिया गोयल, आपको बता दें ये एक अहम सबूत वहां पर भी सीसीटीवी में मिला है लोहगढ़ फोर्ट के टिकट काउंटर के पास, जहां पर चेतन चौधरी हाथ से इशारा कर रहा है, सिया गोयल भी हाथ से उसे इशारा करती है। यही वो मेन सबूत था, यही वो ब्रेक थ्रू था पुलिस के लिए, जिससे ये शक हुआ कि सिया गोयल के साथ कोई और भी शामिल था, वो हुडी पहना हुआ व्यक्ति कौन था, उसके फोन रिकॉर्ड जांचे गए, उसका सीडीआर निकाला गया, तब पता चला कि चेतन चौधरी के संपर्क में थी, चेतन चौधरी को डिटेन कर पूछताछ की गई, सिया गोयल को उठाकर पूछताछ की गई और तब जाकर दोनों ने ये कंसर्ट किया है कि दोनों ने चेतन अग्रवाल का मर्डर किया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले का कॉफी शॉप का, पुणे के कॉफी शॉप का फुटेज है, इसके भी वीडियो आज तक के पास है और ये वीडियो एक अहम सबूत है चेतन अग्रवाल मर्डर के।
0: जी बिल्कुल दिवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिवेश देखिए बता रहे थे कि ये चेन ऑफ इवेंट जब बनाई जाती है किसी भी कॉन्स्पिरेसी या किसी भी आप कह सकते हैं घटनाक्रम को बताने के लिए, सबूतों को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए ये पुलिस के हाथ में एक महत्वपूर्ण सबूत लगा है जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि कैसे दोनों मिले और कैफे में दोनों ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो अयोध्या से। दरअसल आपको याद होगा कि चंदा चोरी के बाद अब मामला बढ़ता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि चंदा चोरी के बाद अब जमीन घोटाले की या जमीन भ्रष्टाचार को मामला भी सामने आया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसको लेकर एसआईटी को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि कैसे जो धालमेल की गई है जमीन विवाद को लेकर, जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर, वो भी एक बड़ा कंसर्न है और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर चंपत राय के इन्वॉल्वमेंट की बात भी किया। ये उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी को अपने कई साक्ष्य जो है सबूत के तौर पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह जब एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी को रिपोर्ट देने जा रहे थे या साक्ष्य देने जा रहे थे, उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और वही दस्तावेज हैंडओवर करते हुए की तस्वीरें भी उन्होंने साझा किया।
3: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
4: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5.60 करोड़ रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: और देखिए इस मामले को लेकर अब यूपी के पर्यटन मंत्री ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं, और जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
5: जो भी हुआ उसी की गंभीरता के दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की, एसआईटी की प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट 20 पन्ने की प्रस्तुत हो गई है। जो भी उसमें खामियां त्रुटियां या जिम्मेदारियां इंगित की गई हैं उस पर चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, जो अपेक्षित निर्णय हैं जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय वो भी लिए जाएंगे, लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जन भावना को चोट नहीं आने देंगे, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर दो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, देखिए कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के कामकाज के तरीके थे वो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ चंदे को लेकर बल्कि जमीन को लेकर और कई चीजों को लेकर अनियमितताएं बढ़ती थी, और ऐसा नहीं है, अनियमितताएं बहुत रिसेंट थी, लंबे समय से सारी चीजें चल रही थी और शायद इसके ऊपर नजर किसी की भी नहीं पड़ी।
3: देखिए अनियमितताओं की तरफ ही एसआईटी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इशारा भी किया है। वो अनियमितताएं न सिर्फ चढ़ावा के मैनेजमेंट में यानी कि चढ़ावा चोरी के जो मामला था उसमें, बल्कि अनियमितता जमीनों की खरीद फरोख में। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो 13 जमीनों के डॉक्यूमेंट दिए हैं एसआईटी हेड विजय विश्वास पंत को, उसमें तो उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए कि नजूल की जमीन खरीद ली गई, जो जमीन नगर उस समय के तत्कालीन मेयर के भतीजे ने खरीदी वो 20 लाख में खरीदी, 1 करोड़ रुपए में बेच दी महज 4 दिन के अंदर। तो इस तरीके के जो आरोप लगाए गए वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड वो एलिगेशन है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स विजय विश्वास पंत को दे दिए गए हैं जो एसआईटी हेड है। तो ये इरेगुलरिटी न सिर्फ फंड मैनेजमेंट में बल्कि उस फंड के जो फंड आ रहा था उसके द्वारा जो खरीदी गई जमीनें हैं उसमें भी लगाए जा रहे हैं कि जमीनों की खरीद फरोख्त में बड़ा घोटाला हुआ है। और चूंकि ये जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उस चढ़ावे की रकम से जिसकी चोरी के लिए एसआईटी गठित हुई है, तो ये पूरा मामला जो फंड आ रहा था, जो चढ़ावा चढ़ रहा था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा था,
6: जो लोग जहां पे आ रहे हैं जिस कपड़े में आ रहे हैं वो उसी कपड़े में नोट गिनने बैठ जा रहे हैं, चोरी करके घर चले जा रहे हैं, तमाम लोगों के घरों से पैसे बरामद होने की बात आ रही है। तो अब ऐसे में अनियमितताएं न सिर्फ फंड मिसमैनेजमेंट की बल्कि डोनेशन के मिसमैनेजमेंट के बल्कि जमीनों के
0: देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विवाद है, कई ऐसी चीजें अनियमितताएं जिनका उजागर होना अभी एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगली खबर का रुख भी करते हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रस्ट को लेकर भी कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से मनमानी और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स ना करना एक बड़ा कंसर्न बन गया। इसको लेकर एक नेता ने, खासतौर पर रजनीश सिंह ने, एक चिट्ठी पीएमओ को लिखी थी कुछ दिन पहले और उन्होंने इसमें अनियमितताओं के उजागर होने की बात कही थी, जिसके बाद अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से, अयोध्या प्रशासन की तरफ से भी ट्रस्ट से जवाब मांगा गया था, लेकिन ट्रस्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
7: क्या पूरा मामला है और क्यों आपने पत्र लिखा और क्या जवाब आया?
8: देखिए 9 जून को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दो पत्र लिखे, एक 9 जून को लिखा था, एक 12 जून को लिखा था। 9 जून वाले पे जांच चल रही है, जो एसआईटी की टीम और पीएमओ की टीम जो समय समय पे आकर के जांच कर रही है, एक तो वो था। 12 जून वाले पत्र में मैंने ये कहा था कि अब चूंकि इतना बड़ा एक वापो की स्थिति पूरे देश में बन गई है और इस नाते जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन से लेकर के आज तक जो भी चीजें ट्रस्ट के द्वारा की गई हैं, चाहे वो खरीद फरोख्त हो, चाहे समर्पण निधि हो या जो भी हो, क्योंकि समय समय पर कोई आरोप लगा दे रहा है, कुछ भी लगा दे रहा है, तो ये बड़ी गंदी चीज है और बहुत अक्षम्य है ये सब, और खास करके अयोध्या की गरिमा को लगातार ठेस पहुंच रही है। तो मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पे डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की एसआईटी जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते।
7: तो अभी आपने ये पत्र जो है प्रधानमंत्री को भेजा था, इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई में क्या लिखा आया है आपको?
8: रिप्लाई में यही आया है कि भी ट्रस्ट के अंदर एसआईटी की जांच चल रही है और साथ
0: तो देखिए चंदा चोरी के मामले पर अब वीएचपी भी लगातार ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। वीएचपी की तरफ से, उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, आलोक कुमार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाए बल्कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।
9: एक लॉजिकल स्टेप है, हमारे हाथ में अभी वो रिपोर्ट एसआईटी की नहीं है, पर सबने ऐसा बताया है कि उसमें उन्होंने लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है, सीसीटीवी की फुटेज के आधार पे किया है। अब वो स्टेज आ गई है कि पुलिस में एफआईआर करें, हम चाहेंगे कि ये एफआईआर जल्दी हो और हम ये भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे योग्य से योग्य पुलिस अफसरों को, जिन एक्सपर्ट्स की जांच में जरूरत हो उन एक्सपर्ट्स को लगा करके जांच, सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पर आरोप है उन सब की जांच की जाए।
0: चलिए अब रुख करते हैं लखनऊ और कलकत्ता में हुई लापरवाही से मौतों के बारे में। दरअसल लखनऊ अग्निकांड में जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई, उसके बाद कोलकाता से भी ऐसी लापरवाही की खबरें मिली जहां पर एक गोदाम जो निर्माणधीन गोदाम था उसकी छत गिरने से लगातार 9 लोगों की उसमें मौत हो गई और कई लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों खबरों के अंदर एक ही चीज कॉमन नजर आती है, वो है लापरवाही। कैसे प्रशासन और वहां के अधिकारी मिली भगत से लापरवाही बरती गई जिसमें मासूम जिंदगियां चली गई। दोनों खबरों के अंदर आपको बताएं कि कोलकाता में निर्माणधीन गोदाम हादसे पर एक्शन भी हुआ है, कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यहां तक कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद इसको लेकर कई एसआईटी को आदेश दिया है कि इसमें ऐसे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई, हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर मौजूद सभी जो काम है या फिर जो निर्माण के काम है उस पर भी इस तरीके का रोक लगाई गई, हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। और कोलकाता में निर्माणधीन गोदाम हादसे में एक्शन भी लिया जा रहा है, कई अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और आपको हमें 3 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे 8 मौत और 21 लोग इसमें बचाए जा चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस इलाके का जायजा लिया, निर्माण कार्यों को पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है, यानी जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। चले न्यूज रूम लाइव में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी आपसे मुलाकात होगी और आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबरें, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
11: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
12: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर था, जबकि सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल के अंत में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी को लेकर शाही तैयारियां चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल अरेंज मैरिज करना नहीं चाहती थी। जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के ही रहने वाले चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि केतन को मारने की साजिश 31 मई को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान रची गई थी। 14 जून को केतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन 19 जून को केतन एक बार फिर किले पर गया और इस बार सिया और चेतन की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को लोहागढ़ बुलाया और दोनों ने मिलकर केतन को किले से नीचे धकेल दिया।
11: मेन तो हमको सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ।
12: फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए, क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे। उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा।
10: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड में सिया और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: से निकलकर बचकर भागते हुए दिखाई दिए लोग। भागते कार सवार से ठीक बगल में गिरी दीवार, बाल बाल बची जान। कराकस में एक गलियों में तबाही के बीच से भागा बाइक सवार, एक महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर भागती हुई नजर आई। मैक्वेटिया एयरपोर्ट पर मौजूदा एक शख्स ने दिखाई वहां की तबाही की तस्वीरें, कोने कोने में दिखाई दी विशाल विनाश लीला। गंभीर हालातों में के बाद एयरपोर्ट बंद किया गया। वेनेजुएला के मैक्वेटिया एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही, धरती हिली तो जान बचाकर भागे यात्री, एयरपोर्ट की बिल्डिंग तबाह। कराकस में देखी विनाश की तस्वीरें, इमारतों के मलबे में दबी कई जिंदगियां, रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, मलबे में हटाने का काम काज तेज, दमकल कर्मी जिंदगी बचाने में जुटे। कराकस में मलबे में दबी लड़की को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, बेजुबान की बचाई गई जान। विनाश लीला देख वेनेजुएला के लोग फूट फूट कर रो पड़े, रेस्क्यू टीम मदद की गुहार लगा रहे हैं। भूकंप के झटकों के बाद कई इमारतें जमींदोज हुई, कई अन्य ऊंची इमारतों को भी नुकसान, कुछ बिल्डिंगें झुक भी गई। जोरदार झटकों के बाद वेनेजुएला में खौफ सड़क पर दिखी, मोटी मोटी दरारें, डर से सहमे भागते नजर आए लोग। कराकस में भूकंप के बाद मलबे में दबे एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, फौरन पहुंचाया गया अस्पताल। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी बचाई अपनी जान। कराकस में जान बचाकर भागी महिला, अन्य लोग भी भागते दिखाई दिए। वेनेजुएला में सुबह आए एक भूकंप के बाद दूसरे दो बड़े झटकों ने मचाई तबाही। रेक्टर पैमाने पर पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 दर्ज की गई, उसके बाद दूसरा झटका 7.3 तीव्रता का आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में भूकंप की बड़ी संख्या में मौतों की आशंका है। राष्ट्रपति ने बताया 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग जख्मी। विनाश लीला के बीच वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल का ऐलान किया, हालात बेहद चिंताजनक, मेडिकल सर्विसेज और अन्य सेवाएं हाई अलर्ट पर। भूकंप से इमारतों में गिरने के बाद कराकस में छाया अंधेरा, धूल से भरा इलाका देर तक मची रही अफरा तफरी, सड़कों पर मौजूद गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। 40 सेकंड में दो झटकों के दौरान चारों तरफ मची अफरा तफरी। भूकंप के दौरान जान बचाने में जुटे रहे लोग सभी घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंचे। कई लोग अपने परिवार के साथ बाइक से भागते दिखाई दिए। सड़कों में आई दरारों ने लोगों को डराया, भूकंप में हुई तबाही। भूकंप के दौरान समंदर के बीचों बीच फंसा एक शख्स, धरती हिली तो उफनती लहरों में डराए, बेबस हुआ नाविक। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और में भूकंप की विनाश, राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिस ने दी जानकारी। जान गंवाने वालों के परिजनों को राष्ट्रपति ने दी सांत्वना।
1: वेनेजुएला में भूकंप वाली विनाश लीला, वेनेजुएला की एक शाम भूकंप का इंतकाम। कांपी धरती, मची तबाही, अफरा तफरी। ऊंची इमारतें जमींदोज, मलबे में दबी जिंदगी। कराकस में धूल का गुबार, छाया अंधेरा। हजारों जिंदगी बेघर, उजड़े शहर शहर। ना इमारतें बची, ना एयरपोर्ट, चारों ओर तबाही। सड़कों में दरार, खौफनाक कुदरती प्रहार। जान बचाकर भागे लोग, चारों ओर अफरा तफरी। तबाही से जूझ रहा वेनेजुएला, अपार संकट। वेनेजुएला के सामने सदी का सबसे बड़ा संकट। ये विनाश काल है, ये आफत काल है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर।
1: वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा भूकंप, देश के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही, कई जगहों पर दिखा रूह कपा देने वाली तस्वीरें। काराकस में भीषण भूकंप के बाद मची अफरा तफरी, घरों

0: इतने बड़ी तबाही हुई है, 100 साल में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी गई। कहा जा रहा है कि इसमें करीबन 32 लोगों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा दिया गया, 700 ज्यादा लोग घायल है, लेकिन आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। खास बात यह भी कि लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। देश के अलग अलग वेनेजुएला के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही है जो सच में भयानक है, और ये दिखाती है कि आखिरकार तबाही कितनी ज्यादा बढ़ी रही होगी। ये भूकंप बुधवार को करीबन 6:02 पर आया, और कहा जा रहा है कि पहली तीव्रता जो थी, पहला जो झटका था वो 7.2 का था, उसके बाद एक बार फिर से 7.5 के तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, और तबाही की तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि तबाही कितनी ज्यादा विनाशकारी रही होगी। ये तस्वीरें आपको देखें कि वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वेनेजुएला में हुई तबाही के बाद लगातार जो वहां की राष्ट्रपति है उन्होंने पूरे इलाके में, पूरे देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया है। आंकड़ा करीबन 32 लोगों के मारे जाने का है, 700 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार अपनी सेना की मदद और वहां की जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अब भी लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले आपको वेनेजुएला की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: Se cayeron edificios.
2: ये वेनेजुएला का विनाश काल है। एक एक तस्वीरें रूह कपाने वाली है। संकट का ये काल रुलाने वाला है। भूकंप के जोरदार झटकों से वेनेजुएला में जो हालात पैदा हुए हैं उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में वेनेजुएला ने ऐसा विनाश देखा। करीब 125 साल में वेनेजुएला इतना विवश कभी नजर नहीं आया। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार को आए दो जोरदार झटकों ने राजधानी काराकस और ला गुआइरा में जान और संपत्ति का बेहिसाब नुकसान किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वेनेजुएला की इस त्रासदी की दर्दनाक तस्वीरें। राजधानी काराकस का हाल देखिए, वहां भीषण भूकंप के झटकों ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे घरों से निकलकर लोग जान बचाकर भागते नजर आए। धरती हिली तो इमारतों की दीवारें तरकने लगी, तभी एक कार सवार के ठीक बगल में दीवार जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि वो मलबे की चपेट में नहीं आया। वहां मौजूद दूसरे लोग भी जान बचाकर भाग निकले। उसी दौरान तबाही के बीच से बाइक सवार युवक भी भागता नजर आया। ऐसी त्रासदी के बीच हर किसी के सामने जान बचाने की चुनौती थी। एक महिला तो अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती दिखी। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप की एक तस्वीर मैक्वेटिया एयरपोर्ट से आई। जब धरती हिली उस वक्त सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे। कोई फ्लाइट पकड़ने वाला था, कोई काराकस पहुंचा था। भीषण भूकंप के बाद एयरपोर्ट की इमारत तरकने लगी। देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। हर कोई एयरपोर्ट के अंदर से बाहर की ओर भागा ताकि वो मलबे में दब न जाए। स्थिति गंभीर थी। धरती स्थिर हुई तो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक शख्स ने स्थिति का मुआयना किया। उसने अपने कैमरे में वहां के हालात दिखाए और दुनिया को दिखाया कि इस भूकंप में कैसी तबाही मची है। एयरपोर्ट के कोने कोने में विनाश लीला दिखी। सामान बिखरे पड़े थे, कंप्यूटर और दूसरे सामान तबाह हो चुके थे। ऐसे भीषण संकट के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, यानी एयरपोर्ट बंद होने से काराकस दुनिया से कट गया। काराकस ने हाल के कुछ वर्षों में इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अब इस भूकंप से वहां बड़ा कहर टूटा है। भूकंप के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई और उन इमारतों के मलबे में जिंदगियां तप्त हो गई। इस संकट के बाद बचाव दल ने अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाला। प्रभावित इलाकों में जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई। मलबे को हटाने का काम तेज हुआ। दमकल कर्मी और मेडिकल टीमें जिंदगी बचाने में जुट गई। काराकस में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम ने मलबे के बीच से एक लड़की का रेस्क्यू किया, उसे बाहर निकाला। बाहर आई लड़की का रो रोकर बुरा हाल था। रेस्क्यू टीम ने बेजुबान की भी जान बचाई। काराकस में ही भूकंप के बाद मलबे में दबे एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला को बड़ा सदमा दिया है। इस सदमे का सामना वहां के लोग कर रहे हैं। जिस वक्त धरती कांपी, उस वक्त ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। एक बिल्डिंग से महिला तेज कदमों से खुले इलाके में भागी। दूसरे लोग भी अपने अपने फ्लैट से तेजी से बाहर निकले। ऐसी विनाश लीला ने पूरे वेनेजुएला को रुला दिया। लोग फूट फूट कर रोते दिखे। एक महिला चीख चीख कर बचाव दल के स्टाफ से मदद की गुहार लगाती दिखी। भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर असर हुआ है। कई इमारतें जमींदोज हुई हैं, तो अथाह संख्या में ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

0: इस भूकंप से वेनेजुएला के अर्थतंत्र पर भी गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि वहां सड़कों पर दरार भी आई है। ऐसा हाल कई इलाकों का है। आज तक ब्यूरो।
1: वेनेजुएला में इस दर्द का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही है और दिखा रही है कि ये भयानक, कितना ज्यादा भयानक मंजर है। हालांकि अब तक कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, ये सारे आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो जरूर दिखा रही है कि ये त्रासदी या फिर ये पूरा घटनाक्रम कितना ज्यादा भयानक है।

0: भूकंप ने इमारतों की नींव को हिला दिया। हालात ऐसे हो गए कि ऊंची ऊंची इमारतें बेदम होने लगी और भर भरा कर गिरने लगी। पहले जहां ऊंची इमारतें खड़ी थी, भूकंप के बाद कई जगहों पर वहां मलबे का ढेर लग गया। कराकस में जहां इमारतें गिरी वहां अंधेरा छा गया। दरअसल धूल से इलाका भरने की वजह से संकट बढ़ गया। वहां देर तक अफरा तफरी मची रही। चालीस सेकंड में दो झटकों के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। स्थिति ऐसी थी कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंच रहे थे ताकि इस कुदरती खतरे को टाला जा सके। कई लोग अपने परिवार के साथ बाइक से भागते दिखे। सड़क में आई दरारों ने लोगों को डरा दिया। भूकंप से हुई ऐसी तबाही देखकर लोग बेबस और लाचार नजर आए। भूकंप के दौरान एक तस्वीर समंदर से आई। धरती हिली तो समंदर में लहरें डराने लगी। उन लहरों के बीचों बीच एक शख्स फंस गया। उफनती लहरों ने उसे डरा दिया। वो नाविक बेबस था। हालात के आगे उसकी एक नहीं चली। वो देर तक समंदर के बीच फंसा रहा। पहले झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज की गई, जबकि 40 सेकंड के बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा भयानक झटका आया। उसके बाद कई आफ्टर शॉक भी आए। भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से 168 किलोमीटर दूर था। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और लागोएरा सबसे बड़े विनाशकाल से जूझ रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद हुई तबाही की जानकारी दी और बताया कि 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। विनाश लीला की सबसे खौफनाक तस्वीरें राजधानी काराकस से आई हैं। जानकारी के मुताबिक कई इमारतें ढह गईं और अब वहां राहत बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। वेनेजुएला के 126 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और अब अधिकतम 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने देश को तबाह किया है। विनाश लीला के बीच वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। गंभीर हालात को देखते हुए मेडिकल सर्विस और अन्य सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। खोज और बचाव कार्यों की देखरेख के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने डॉक्टरों और नर्सों से अपील की है कि वो भूकंप में घायल लोगों के इलाज में मदद के लिए स्थानीय अस्पतालों और इमरजेंसी रूम में तुरंत रिपोर्ट करें। आज तक ब्यूरो।
1: वेनेजुएला में आई इस त्रासदी के बाद दुनिया भर के तमाम देश अब वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हर संभव मदद वेनेजुएला तक पहुंचाई जाएगी। वहीं अमेरिका भी हर जगह पर मदद पहुंचाने का ऐलान कर चुका है।

0: वेनेजुएला ने ऐसी त्रासदी पहली बार नहीं देखी। इससे पहले भी कई बार भूकंप के जोरदार झटकों ने देश को गहरा सदमा दिया है। 1967 में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। तब वेनेजुएला में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस भूकंप में पालोस ग्रांडेस और अल्तामिरा इलाके में कई इमारतें जमींदोज हो गई थी। इस बार 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप से वेनेजुएला तबाह हुआ है। 7.5 तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। अब आपको बताते हैं कि इतनी तीव्रता वाले भूकंप का क्या असर हो सकता है। 7.5 तीव्रता का भूकंप 1967 में आए भूकंप से करीब 32 गुना ज्यादा ताकत से धरती को कंपाता है। नतीजा ये होता है कि मजबूत से मजबूत इमारतें, सड़कें और पुल पर गंभीर असर पड़ता है। USGS की माने तो दुनिया में ऐसे भूकंप हर साल औसतन 10 से 20 बार आते हैं, लेकिन अगर इनका केंद्र किसी बड़े शहर के पास हो तो भारी तबाही मचा सकते हैं। वेनेजुएला में यही हुआ है। वहां आए तो बड़े झटकों से बड़ी तबाही मची है। संकट की इस घड़ी में कई देशों ने मदद की पहल की है। भारत मदद को आगे आया है। अमेरिका ने भी मदद की बात कही है। मैक्सिको, पनामा, कतर, टर्की, कोलंबिया, ब्राजील, ब्रिटेन, क्यूबा, बारबाडोस और अन्य कई देशों ने मदद की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की त्रासदी पर संवेदना जताते हुए मुश्किल में साथ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस
1: जब भी किसी देश में ऐसी त्रासदी आती है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। वेनेजुएला के सामने भी कुछ ऐसी ही चुनौतियां खड़ी हैं। इन चुनौतियों को समझाने के लिए हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: तो आखिरकार वेनेजुएला में आई इस आपदा के बाद राहत बचाव कार्य कैसे होगा, कितनी मुश्किलें हैं। वेनेजुएला ये माना जाता है कि ऊर्जा संसाधनों से कच्चे तेल से लबरेज है, भरा हुआ है, लेकिन क्या उसके पास ऐसे संसाधन है। दरअसल बेहद गरीब देश, इसीलिए जब ऐसी तस्वीरें आई है तो वहां पर राहत बचाव कार्य मुश्किल है। दरअसल USGC का आकलन है कि अनुमानतः कम से कम 10,000 लोग इसका शिकार हो सकते हैं। तो इस विनाश लीला जो है उसमें कितनी चुनौतियां, हम आपको ये बताते हैं। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, दरअसल वहां पर संचार तंत्र पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, तो ऐसे में के अलग अलग हिस्सों में आखिर ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। इसी के साथ साथ जब इस तरह की तस्वीरें आई हैं तो राहत बचाव कार्य में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रबंधन। आपको याद हो तुर्की से लेकर के नेपाल तक जब भी भूकंप आए दुनिया भर के देशों ने अपनी मदद भेजी। वहां के 3 एयरपोर्ट धराशायी हैं, वो पूरी तरह से जो है खत्म हो चुके हैं, तो आप वहां पर जो बड़े विमान होंगे वो कैसे जाएंगे। दीर्घकालिक पुनर्निर्माण, जब भी रिहैबिलिटेशन इनको करना होगा, जब यहां पर राहत बचाव का ये देखिए ये 12 से 14 मंजिला ऐसी इमारतें हैं जो जमींदोज हो गई हैं, आखिर इन्हें दोबारा कैसे बनाया जाएगा। चैलेंज जो है सीमित आर्थिक संसाधन, बेहद गरीब मुल्क वेनेजुएला आखिर कैसे पटरी पर आएगा। उसके पास ऊर्जा संसाधन है, रिफाइनरियों को कितना नुकसान हुआ है अभी आकलन इसका नहीं हो पाया है। उसी के साथ साथ कमजोर आधारभूत ढांचा, गरीब देश होने के नाते उसके पास NDRF SDRF जैसी वैसी बड़ी फोर्स नहीं है, बड़ी मशीनरी नहीं है जो राहत बचाव कार्य को अपना सके, ना उनकी उस तरह की दक्षता है। साइक्लोन की तैयारियां होती हैं समंदर किनारे, लेकिन प्रशासनिक समन्वय अंतरिम सरकार है वेनेजुएला की सरकार, आपको याद हो वहां पर अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया और उसके बाद पर अंतरिम सरकार है, तो प्रशासनिक समन्वय कैसे बनाया जाएगा। चौथी चुनौती, संचार तंत्र पूरी तरह इस मलबे का शिकार हो चुके हैं, कई जगह धराशायी हो चुके हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। बिजली वहां पर है नहीं, गैस की सप्लाई लाइन काट दी गई है। इसी के साथ साथ पांचवी चुनौती आखिर में क्या होगी। पांचवी चुनौती होगी अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रबंधन, जब बड़े बड़े जहाज मदद लेकर के पहुंचेंगे उसको किस कहां कैसे डिप्लॉय किया जाए, क्या इस तरह की दक्षता वेनेजुएला के पास है। संभवतः जवाब है कि नहीं, ऐसे में एक बड़ी मुसीबत। छठवीं, जब ये सब कुछ खत्म होगा फिर से वेनेजुएला को पटरी पर खड़ा करने के लिए क्या कोई योजना है, क्या कोई प्लान है। ये अपने आप में सबसे बड़ी ऐसी चुनौतियां हैं जो मुश्किल हैं, चैलेंज। तो ये वो चुनौतियां हैं वेनेजुएला के आगे, एक ऐसा देश जिसके पास ऊर्जा संसाधन तो हैं लेकिन ऐसी तबाही से बचाव के लिए, बचने के लिए, आगे की तैयारियों के लिए साधन नहीं है। और इसीलिए अब उसकी नजर पूरी दुनिया पर आने वाले उन मुल्कों पर है जो उसे मदद भेजेंगे। ऐसे में भारत, अमेरिका, तुर्की, जापान, कोरिया समेत देश के दुनिया भर के कई सारे मुल्कों ने उसे ये मदद का ऑफर किया है कि वो अपनी मदद की टीम वहां पर भेज सकते हैं, राहत बचाव के लिए भेज सकते हैं और इसी के साथ साथ रिहैबिलिटेशन प्लान पर काम कर सकते हैं। और ऐसे में वेनेजुएला के सामने एक ऐसा संकट खड़ा है कि संभवतः मरने वालों की संख्या आने में भी काफी समय लग जाएगा। ये बर्बादी की ऐसी तस्वीर है जो वेनेजुएला ने 100 साल बाद देखी है।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach
7: Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वायरल वीडियो पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो को लेकर उनको धार्मिक तौर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
8: ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਟੀ ਨਾ ਦਿਸੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰਲੀ ਠੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਮਾਸਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ
9: ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਓ।
1: ਚਲੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀ ਆਜ ਤੱਕ।
3: ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: हेक्स ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। स्कोर मस्ट हैव्स फ्रॉम फेवरेट डे आइसक्रीम टू एल्फ ब्यूटी टू लीवाइज डेनिम शॉर्ट्स। समर्स बेस्ट परफेक्टली पिक्ड फॉर यू नाउ एंड न्यू एट टारगेट। शॉप टुडे।
10: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
11: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
12: After multiple assassination attempts, they can't even get...
13: They're reliable.
14: Always when I need them.
11: To live sports action.
15: One-hand jam by LeBron on the break.
16: That's another three, Steph Curry.
11: And your favorite music.
17: Well, the dawn begins to crack.
11: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.

मध्य प्रदेश से उठी एक सियासी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। इसे समझने के लिए इन तीन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश हैं जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछ रही थी और उसकी सफाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी अखिलेश यादव दे रहे थे। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस हैरान, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया ब्रांड दोस्ती देखने वाले हैरान कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर अखिलेश बीजेपी के सीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि मोहन यादव भ्रष्ट हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि एमपी में जिस बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस दो दिनों से हुक्का पानी लेकर चढ़ी हुई है, पीसी पर पीसी कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, भयानक जमीन घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार तक के सवाल उठा रही है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि ये यादव सीएम को बदनाम करके यूपी के सीएम को बदलने का बहाना है। अखिलेश के इस बयान के पीछे का मकसद और यूपी के अंदर उसके सियासत समझने में यूपी की एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक मशाल जलाए चल रहे हैं।

0: पहले यूपी बीजेपी की नई टीम के कई चौंकाने वाले नाम, ओबीसी को तरजीह। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में 4 पिछड़ी जाति से। मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वाले ट्रस्ट के अधिकारियों पर होगा एक्शन। पहली बार बोले योगी के मंत्री। चढ़ावा चोरी पर पीएमओ के संज्ञान को भी चंपत राय ने किया अनसुना। चिट्ठी से हुआ खुलासा। नागरिकता पर फिर छिड़ी नई बहस। पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत ना मानने पर भड़का विपक्ष। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट कभी नहीं रहा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेशन। 1968 के एक्ट में नहीं है प्रावधान। देश को झंझोर देने वाले केतन अग्रवाल मर्डर केस में सामने आया साजिश का एक नया वीडियो। बॉयफ्रेंड के से कैफे में मिली थी मंगेतर को मारने वाली सिया अग्रवाल गोयल, वहीं बना मर्डर का प्लान। 100 साल के सबसे खतरनाक भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, हर जगह भगदड़ और चीख पुकार। अब तक 32 लोगों की मौत, 700 लोग घायल। घायलों के हताहत होने की आशंका। नमस्कार, 3 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं एक बड़ी खबर जो पंजाब जा रही है, जहां पर सीएम भगवंत मान ने अपने ऊपर वायरल वीडियो को लेकर एक नया बड़ा बयान दिया है। वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि धार्मिक तौर पर मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
1: ये उसे दी टिकटॉक ते सी गुड समरे ने टिकटॉक ते अपनी ते पाया सी, ओदे चो किसी बंदे ने कट के फिर दित्ती है। तो बाद जिहड़ी जिहड़े मास्क वाली है इस 18-19 दे बाद दी गल्लां ने उहने पाया अपने ते नहीं ओदे कोई तरीक नहीं है। बहुत सारे बंदे सानू मिले सीगे उदो विच ही ओह भी मिलिया सी। एपसपोर्ट दे एपसपोर्ट च रहिंदा फग्गू वाला इहदा पिंड है संगरूर कोले ते इह इत्थों भगौड़ा भगूड़ा भी होया इत्थों फरीदकोट जेल चो भज्जिया होया।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए भगवंत मान तो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है खासतौर पे, इससे पहले बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि वो मैनेज कर रहे थे इस वीडियो को।
2: और उन्होंने बाकायदा कुछ सबूत लाए और सबूतों के साथ ये दावा किया है कि जो उनका वीडियो है वो फर्जी वायरल किया गया और जो वीडियो है वो फर्जी है। लेकिन इसके बीच अभी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो गुरुग्राम के एसीपी क्राइम है उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं गुरुग्राम पुलिस ने और ये दावा किया है कि पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो वीडियो है उस वीडियो के आधार पर फेक रिपोर्ट बनाने के लिए पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे और उसके बाद 2 ऐसे लोगों को तैयार किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा। हमारे सहयोगी देखिए बता रहे थे कि इसको लेकर गुरुग्राम के अधिकारी की तरफ से भी एक नया बयान आया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब रुख करते हैं 100 शहर 100 खबरों का। दो शक्तिशाली भूकंप से कांप उठा वेनेजुएला। राजधानी कराकस में गिरी इमारतें, एयरपोर्ट की छत का हिस्सा भी ढहा। 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता से भूकंप के झटके लगे हैं। 40 सेकंड में 2 बार कांपती नजर आई धरती। मुख्य झटके में 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का आया था एक और भूकंप। भूकंप का केंद्र रहे शुमारे शहर में करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके में आसपास देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी मौजूद हैं। कुछ इलाकों में धूल का गुब्बार ऐसा था कि कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर तुरंत सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद के लिए तैयार। एनडीआरएफ की टीम जल्द हो सकती है रवाना। कोलकाता के तारातला इलाके के अंदर हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई, अब तक 29 लोग निकाले गए। हादसे में राहत कार्य तेज हो गया, सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा। हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, नए जांच अधिकारी नियुक्त कर डिटेक्ट डिपार्टमेंट में सौंपी गई है जिम्मेदारी। तारातला हादसे में 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं, एफआईआर नामजद 4 आरोपियों समेत केएमसी प्लान मंजूरी को का ब्रोकर भी दबोचा गया है। तारातला हादसे में को लेकर दिलीप घोष ने कहा है कि एक एक चीज की जांच की जानी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच को लेकर किले में पहुंची फॉरेंसिक की टीम, मंगेतर को खाई में धकेलने वाली सिया गोयल के क्राइम सीन के रिक्रिएट कर सकती है पुणे पुलिस। पुणे मर्डर केस में नया खुलासा हुआ, हत्या के एक दिन पहले कैफे में रची गई थी साजिश, सीसीटीवी फुटेज आई है सामने। पुलिस जांच के अनुसार 17 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के कैफे में मुलाकात कर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि सिया ने लोहगढ़ किले में जानकारी साझा की थी, पहले वहां की रैकी भी की थी। लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में पुलिस का दावा, सीसीटीवी और बयान में विरोधाभास है, 8 से 10 मिनट की मौजूदगी पर सवाल है। प्रतिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच की बिलौटी गांव पहुंची है, घटनास्थल का किया जा रहा निरीक्षण। भोजपुर एनकाउंटर मामले में जांच तेज कर दी गई है, परिजनों से मिले अधिकारी, सीबीआई जांच की मांग फिर उठी है। परिवार ने पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज करने और फांसी को की सजा की मांग दोहराई है। भरत तिवारी के परिजनों ने मिले प्रशांत किशोर, सीएम और शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनकाउंटर को केवल निचले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। राम मंदिर जमीन घोटाले में आरोपों पर संजय सिंह का दावा, 13 सौदों के दस्तावेज लेकर पहुंचे लखनऊ। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के सबूत, एसआईटी के सामने पेश करेंगे दस्तावेज। राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की ऑडिट मांग वाली पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार, नियमों के तहत सुनवाई का निर्देश दिया है। अयोध्या मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, राम के नाम पर लूट, खसोट और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। राम मंदिर दान गबन मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हमला, बोले चंपत राय पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाए सरकार। एसआईटी में विभागों के पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग को दी गई सभी अनुमतियां, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई और उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों पर मांगा गया है पूरा ब्यौरा। एसआईटी ने जांच तेज करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन उनकी रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संशोधित रिपोर्ट दोबारा मांगी गई है। जांच का फोकस अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, राहत बचाव में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर और विभागों के बयानों पर भी विरोधाभास सामने आया है। अधिकारियों की रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम पर स्पष्ट न होने और एसआईटी में जताया असंतोष, विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। एसआईटी जल्द ही मृतकों के परिजनों और घायल प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की करेगी दर्ज। यूपी बीजेपी संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया, नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री हैं। यूपी बीजेपी संगठन की लिस्ट, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल को भी यूपी बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया, सुरेश राणा को भी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। लिस्ट में जाति समीकरण का रखा गया ध्यान, ओबीसी और दलित समुदाय को दी गई है प्राथमिकता। बीजेपी ने अपने 6 मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है, रोहित मिश्रा बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रकाश पाल को बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नागरिकता पर फिर छिड़ गई है बहस, पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने पर भड़का विपक्ष। सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट कभी भी सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं था, 1967 के एक्ट में यही प्रावधान है। इमरजेंसी के 51 साल पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, लोकतंत्र को चलने की याद दिलाता है संविधान हत्या दिवस। आपातकाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, अब एनसीईआरटी की किताबों में आपातकाल का चैप्टर। संविधान हत्या दिवस पर सीएम योगी का हमला, कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला है। आपातकाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले अम्बेडकर के सपनों पर भी प्रहार हुआ। संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हिस्से को फिर से चला है बुलडोजर। प्रशासन ने पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बड़ी सियासत आज कसेरुमा गांव पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ओबीसी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन का तंज, बोले हैं कि कुछ लोग मुस्लिमों का ठेका लेकर बैठे हैं। पटना कोचिंग विवाद में फैजल खान मामले में कोर्ट में मांगी अपडेट, केस डायरी 27 जून को अगली सुनवाई। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निर्देशक रोशन आनंद समेत कई को जमानत, फैजल खान मामले पर सुनवाई जारी है। फर्जी एक्सपोर्ट ऑर्डर के नाम पर ठगी करने वाला कॉल सेंटर बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने 18 आरोपियों को दबोचा है। विदेशी खरीदार बनकर व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी की गई है, मास्टरमाइंड समेत 18 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के यमुना बाजार में हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बुलडोजर एक्शन, डीडीएमए के 300 से ज्यादा घरों को खाली कराने का नोटिस जारी किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रिपोर्ट मामले पर बड़ा खुलासा, दिल्ली और सिंध की दोनों लैब बिना लाइसेंस संचालित की गई है। पुलिस जांच में सामने अवैध संचालन, लैब में नहीं हो रहे थे मानकों का पालन, एसीपी क्राइम ने दी है जानकारी। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका वापस ले ली है। आरोप तय करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी याचिका वापस ले ली गई। जैकलिन बोली है कि अन्य कानूनी विकल्पों को वो अपनाएंगी। दयारा बोगयाल ट्रैक में लापता बबीता पांडे की तलाश जारी है। झील खाली कर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन, भालुओं की गुफाओं तक पुलिस और टीम गहन तलाशी ले रही है। लापता युवती मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर पुलिस सख्त है, कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गुड़गांव में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, बिना पंजीकरण रखने पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। एमसीजी का सख्त नियम, 25 नस्लों पर सार्वजनिक स्थानों पर रोक, पट्टा और म्यूल पहनना होगा अनिवार्य। पिटबुल और रॉटवीलर जैसे नस्लों के सख्ती और निगम ने और भी सख्त रुख अपनाया है। सुल्तानपुर में रेस्टोरेंट मैनेजर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया है केस। ग्रेटर नोएडा के गोल्डन आई मॉल में 9वीं मंजिल से लगी आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका। विशाखापट्टनम में नवविवाहित संदिग्ध हालात में मौत, शादी के 40 दिन बाद घर में मिला है शव। जामनगर में दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली के गौतम पूरी इलाके में युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दार्जिलिंग में नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन से सड़क बंद कर दी गई, काली मंदिर के पास यातायात ठप हो गया है। जेसीबी में मलबा हटाने का काम जारी है, यात्रियों ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ है भारी जल भराव। जलगांव में भारी बारिश ने मचाई है तबाही, निचले इलाकों में और घरों में घुसा है पानी। जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने मचाया कोहराम, तापमान में आई है भारी गिरावट। एमपी में भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, अगले 3 से 4 दिनों में होगी भारी बारिश। इंदौर के कई इलाकों में जमकर बरसे हैं बादल, सड़कों पर भरा है पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से बाजारों में बाढ़ जैसे हालात, कई दुकानों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के सेंट्रल वेस्टर्न मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, डीएमआरसी ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। नया मेट्रो कॉरिडोर से सेंट्रल विस्टा में बढ़ेगी मेट्रो की कनेक्टिविटी, दिल्ली के इस हब पर आसान होगा पहुंचना। सेंट्रल सिटी के सेक्रेटेरिएट बनेगा ट्रिपल इंजेक्शन का स्टेशन, डीएमआरसी का अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर अहम सरकारी इमारतों को जोड़ेगा। 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होंगे 9 भूमिगत स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट और भारत मंडपम इसमें शामिल होंगे। नए मेट्रो प्रोजेक्ट के केंद्रीय कर्मचारियों को सफर करना होगा आसान, दिल्ली के प्रशासनिक और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रयागराज में निर्जला एकादशी पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से पूजा पाठ भी किए। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ की। निर्जला एकादशी पर गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर तैनात दिखे SGRF, गोताखोर और स्थानीय पुलिसकर्मी। अयोध्या में भी निर्जला एकादशी पर लोगों ने सरयू में लगाई है डुबकी, विधि विधान से पूजा पाठ की। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में है तैयारी, 3 जुलाई को शुरू होगी ये पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, IED और विस्फोटक और गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों पर काबू के लिए युद्धाभ्यास किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। फिल्म मिर्जापुर का आज टीजर होगा रिलीज, फिल्म के किरदार में मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर जारी किए गए। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने थाईलैंड में मनाई अपनी शादी की दूसरी सालगिरह, एक दूसरे की आंखों में डूबे दिखे कपल। प्रेग्नेंट समांथा ने मैटरनिटी ब्रेक का किया ऐलान, एक्ट्रेस ने कंफर्म की है प्रेगनेंसी, बोली मैं जल्द वापस आऊंगी। अगले साल 25 जून 2027 को रिलीज होगी पंजाबी फिल्म रन्ना चा धन्ना, दलजीत दोसांझ निभाएंगे अहम रोल।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पुणे के अंदर केतन हत्याकांड की, जिसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सिया और उसके आशिक चेतन को चौधरी को एक लेकर एक नया वीडियो के सामने, 17 जून को यानी केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के एक थर्ड वेव कैफे में मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कैफे में बैठकर दोनों ने हत्या का प्लान भी बनाया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले को का एक वीडियो कई बार देखा और कैफे में रहने के दौरान चेतन के साथ उस जगह के बारे में जानकारी भी शेयर की। और सिया और चेतन अब सलाखों के पीछे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। केतन को मारने के लिए सिया ने कई प्लान बनाए थे और कई तारीखें तय भी की गई थी। अगर इन दिनों नहीं होता तो अगले दिन को ट्राई किया जाता। क्या था सिया का पूरा प्लान? केतन के घर वालों को क्यों सिया को नहीं पहचान सके? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक तैयार था, लेकिन प्लान बी में ही सिया ने केतन को रास्ते से हटा दिया। केतन को कैसे मारना है, किस जगह पर ले जाना है, ये सब कुछ पहले से तय था। चेतन चौधरी और सिया गोयल ने लोहगढ़ के किले को इस काम के लिए सबसे मुफीद माना। फरवरी में जब सिया की सगाई हुई तभी उसने और चेतन ने तय कर लिया था कि केतन को हटाना है। सबसे पहले 31 मई को केतन और सिया लोहगढ़ के किले में गए, लेकिन इस बार सिया ने कुछ नहीं किया। 5 जून को फिर से उसी किले में जाने की योजना थी, लेकिन इस बार केतन अग्रवाल के घर वालों ने अनुमति नहीं दी। 14 जून को सिया ने फिर से केतन को लोहगढ़ के किले पर बुलाया और पहली बार केतन को किले के ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही सी सिया, ऐसे क्यों कर रही है, वरना हमको इस विश्वास था उससे। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सिया को, उस केतन को ऐसे कर दिया।
2: 14 जून को जब सिया ने केतन को किले के ऊपर से धक्का दिया तो केतन बच गया। केतन एक ट्रैकर था और ऐसी आपात स्थिति में बचने के लिए वो ट्रेंड था। केतन ने किसी झाड़ी के सहारे खुद को वहां पर रोक लिया और वो बच गया। जब सिया ने देखा कि केतन बच गया है तो वो चिल्लाने लगी और मदद मांगने का नाटक करने लगी, ताकि किसी को शक ना हो कि सिया ने ही केतन को धक्का दिया था। केतन जैसे तैसे ऊपर आया और सिया ने केतन से कहा कि उसने सांप देख लिया था और केतन को बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया।
0: 14 जून को केतन के साथ लोहगढ़ किले में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में केतन ने किसी को कुछ नहीं बताया। घर वालों को ये बात पता नहीं चल पाई कि सिया ने केतन को लोहगढ़ किले से धक्का दिया था और केतन बाल बाल बच गया था। सिया का प्लान ए फेल हो चुका था। पहले प्रयास में सिया केतन को नहीं खत्म कर सकी। इसके बाद सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन से फिर मिली। पुणे के लोनावाला में एक रेस्टोरेंट में दोनों ने फिर प्लान बनाया।
3: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
5: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
9: सवारी ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबां केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
1: ये 19 जून की बात है, यानी आज से 6 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैगाम आता है और इन 6 दिनों में मामला काफी आगे बढ़ जाता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई, मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी जांच के दायरे में बताए गए, गणना और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में विस्तृत और बारीकी से खामियों की पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ गंभीर सवाल बने हुए हैं। वो ये कि एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, एसआईटी रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, जो चेहरे आरोपों के घेरे में हैं उन्हें ट्रस्ट के कामकाज से दूर क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द विपक्ष हमले पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव एसआईटी विदाउट एफआईआर का आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के मोर्चे पर पूरी ताकत से उतर आए हैं। यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी योगी सरकार को राहत नहीं है। एसआईटी की जांच का दायरा सिर्फ दान चोरी तक शायद ही सीमित रहे। अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या पर चल रही मौजूदा सियासत में नई गर्मी आना तय है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

व्यवस्था से खिलवाड़ पर होगा तगड़ा एक्शन। नागरिकता पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, केंद्र का दावा पासपोर्ट कभी नहीं रहा सिटीजनशिप का सबूत, 1967 के एक्ट का दिया हवाला, विपक्ष ने उठाए सवाल।

लाख रुपए में हुई डील, मान की सफाई, धार्मिक तौर पर बदनाम करने की साजिश। करोड़पति केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया, साजिश का सीसीटीवी वीडियो, बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी मंगेतर सिया गोयल।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरें असरदार। महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट में जाने वाले सांसद संजय दीना पाटिल का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पत्रकारों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों को सवाल न पूछने, कैमरा बंद करने की धमकी देते दिख रहे हैं और वीडियो में कह रहे हैं कि अगली बार आओगे तो मार खाओगे। साथ ही कहा, जो करना है कर लो। संजय दीना पाटिल हाल ही में उद्धव गुट से बागी होकर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं।
1: ए भाई, बस ना, बंद करना था, बंद कर, नहीं तो भाई मी विसरून जाईल। मी खासदार आहे, तुम्ही काय आहे? पहिला बार सांगितलंय मी। आमा भाजो,
2: हॅलो, अरे भाऊ थँक्यू,
1: चालले चालले, इज्जत करतो, इज्जत करा, काय होतोय बरं? तुम्ही उगाच बोलताच आहे, लिहे रेकॉर्ड कर, इज्जत करतो, उगाच डोक्यात जाऊ नका, उगाच डोक्यात जाऊ नका, घराखाली उगाच देतो, ठेवतोय तुम्हाला, जेवायला देतोय, काय उगाच त्यांच्याकडे जाल, ते बोलतात ना, मला मी बोलणार नाहीये, आता परत आले का मारून पाठवणार तुम्हाला पण, जे बोलायचं लिहायचं ते लिहा, लिहा रेकॉर्ड करा, सांगा तिकडे कमिशनर कडे जाऊन कंप्लेंट करा, इज्जत करतोय तुम्हाला, सहन करतोय, खूप दिवस सहन केलं तुम्ही, हा बाजू।
0: और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया आई है, सुनिए।
3: गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, आप
4: मुझे लगता है ये मिलने तोड़ने की संस्कृति है, और क्या भाजपा इससे सहमत है या कार्रवाई करेगी ये देखना जरूरी है, लेकिन इतनी गाली गलौज इतना सब दिखाने से ज्यादा अगर खुद में दम हो तो इस्तीफा दे और चुनाव लड़े।
3: पार्टी का जो व्यवहार है आपने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, आप
4: मुझे लगता है ये मिलने तोड़ने की संस्कृति है, और क्या भाजपा इससे सहमत है या कार्रवाई करेगी ये देखना जरूरी है, लेकिन इतनी गाली गलौज इतना सब दिखाने से ज्यादा अगर खुद में दम हो तो इस्तीफा दे और चुनाव लड़े।
0: हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़े हैं। ऋत्विक, क्या कुछ संजय दीना पाटिल की तरफ से कुछ कहा गया है इस पर? अभी तक कोई रिएक्शन वो दे रहे हैं? कब की बात है ये, क्या घटना है?
5: जी बिल्कुल, देखिए आज जब संजय राउत ने संजय दीना पाटिल के खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को भेजा और मांग की कि लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, मीडिया के माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है, जिसको लेकर जब मीडिया कर्मी संजय दीना पाटिल से उनकी प्रतिक्रिया पूछने गए थे तब उन्होंने अपना आफा पूरी तरह से खो दिया और कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों पर ही गालियों की बौछार करने लगे, मारने की धमकी देने लगे, और ये सारी चीजें जो है ये कैमरा में कैद हो चुकी है, जिसके बाद अब ये मुद्दा महाराष्ट्र के विधान भवन में गूंज रहा है। यहाँ पर चाहे फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, या सभी पार्टी के जो विधायक हो, उनको पूछा जा रहा है और सभी लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि खुद एकनाथ शिंदे ने भी इस बात का खंडन किया है और उनका कहना है कि उन्हें उकसाया गया, संजय राउत लगातार पिछले कुछ दिनों से गाली गलौज कर रहे हैं और संजय दीना पाटिल को उकसा रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने गाली दी, लेकिन फिर भी इस तरह से मीडिया कर्मियों को गाली देना गलत है, ये एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इस पूरी घटना की वो जानकारी लेंगे और किसी भी तरह की गाली गलौज करना ये सही नहीं है, ये सीएम फडणवीस कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसको लेकर सड़क पर अब आंदोलन भी होते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की महिला कार्यकर्ता वो भी अब संजय राउत के खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच रही है।
0: ठीक है, ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर मचा तूफान, अभी शांत होता उससे पहले ही जमीन घोटाले का चैप्टर खुलता दिख रहा है। चढ़ावा मामले में जहां ट्रस्ट के कामकाज पर नए सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि खुलासा हुआ है कि पीएमओ ने अहम ब्यौरा मांगा तो ट्रस्ट ने वो देने से इनकार कर दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए, जमीन घोटाले को लेकर सबूत पेश किए। चढ़ावा मामले से लेकर जमीन घोटाले तक मामला गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने सबूत पेश किए हैं, आरोप लगाया है कि कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान जमीन का घालमेल हुआ। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब बात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज की। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी नेता के की चिट्ठी पर पीएमओ ने ट्रस्ट से जमीन खरीदी दूसरे खर्च और दान को लेकर ब्यौरा मांगा था, लेकिन ट्रस्ट ने देने से इनकार किया, वो भी एसआईटी जांच का हवाला देकर। क्या है ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
2: जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर सब दास, कबीरा और जाने नहीं एक राम नाम की आस। असंख्य आस्थाओं की आस उसी राम के नाम पर टिकी है, राम ही न्याय करेगा। क्योंकि श्रद्धालुओं की भक्ति भावना दान समर्पण से खिलवाड़ के जघन्य अयोध्या कांड में दो बातें तय हो चुकी हैं। एक तो ये कि राम धन के चोर बख्शे नहीं जाएंगे, दूसरी ये कि मौजूदा ट्रस्ट का कायम रहना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, ट्रस्ट की मनमानी, नाकामी, लापरवाही और अनदेखी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते जा रहे हैं।
6: जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं, प्रेम रामलला की नजर से कोई नहीं बचेगा।
2: भ्रष्टाचार के नए अयोध्या कांड में खुलासा हो रहा है कि जब मौजूदा दान चोरी के आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए तो चंपत राय ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी के नेता ने पीएम को शिकायत की, तब भी ट्रस्ट ने गड़बड़ी के आरोपों की अनदेखी कर दी। पीएमओ के दखल पर जब यूपी प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच शुरू हुई तो जिला प्रशासन ने ट्रस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन ट्रस्ट ने मना कर दिया।
7: चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।
2: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर जैसे विशाल आस्था के केंद्र की देखरेख का काम जिस चंपत राय के ट्रस्ट के हवाले छोड़ा गया था वो लापरवाह ही नहीं बेपरवाह हो चुका था। यही वजह है कि अयोध्या के एक बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी। 9 जून को लिखी चिट्ठी में मांग की गई कि राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के निस्तारण के लिए पूरे मामले की सीबीआई, ईडी या अन्य सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए, दान राशि मिलने से जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए, जांच के बाद मिले चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। शिकायतकर्ता ने तब साफ कहा था कि विपक्षी दल राम मंदिर में दान चोरी के आरोप जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका चुनावी नुकसान बीजेपी को हो सकता है।
8: उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, ऐसे में अगर ये चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। इसलिए मैंने चुनाव से पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के क्रिस्टल क्लियर करने की मांग प्रधानमंत्री से की है।
2: लेकिन 9 जून की शिकायत के बावजूद राम मंदिर में दान चोरी मामले पर जब कोई जांच की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि अखिलेश यादव लगातार चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहे थे, फिर उसी शिकायतकर्ता ने 12 जून को एक और चिट्ठी लिखी, क्योंकि तब तक शक का दायरा और बढ़ चुका था। शिकायतकर्ता ने 12 जून को फिर लिखा कि इस मामले में ट्रस्ट बनने से अब तक की दान राशि के रसीदों का ब्यौरा, दान पात्र के अलावा ऑनलाइन चेक नकद के सारे दान का ब्यौरा, सोना चांदी आभूषण बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा लेखा जोखा, ट्रस्ट के सभी बैंक खातों में वित्तीय लेन देन का विवरण, ट्रस्ट की अर्जित संपत्तियों का विवरण, मंदिर बनने चलाने में खर्च का विवरण और सभी ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच की जाए। इसी दोहरी शिकायत के बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया और अब जांच में गंभीर लापरवाही का खुलासा हो रहा है।
9: तो मुझे लगता है कि ये दिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हर व्यक्ति शंका कर रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया होगा, मेरा दान कहाँ गया होगा, मैंने जो आभूषण दिए थे वो कहाँ गए होंगे, शायद ये क्वेश्चन मार्क आज किसी के मन में न होता अगर ट्रस्ट पहले दिन पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया होता।
2: अफसोसनाक ये है कि एसआईटी की जांच में जिस तरह की लापरवाही, अनदेखी और मनमानी के खुलासे हुए हैं, उसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना धीरज खो दिया है। अब देखना यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी का पुलिस प्रशासन और सरकार पहली एफआईआर कब और किसके खिलाफ दर्ज करती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: अब कुल मिलाकर सवाल ये उठ रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही, अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ और जिन चेहरों पर सवाल उठ रहे हैं वो अभी तक अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं।
10: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
11: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए।
12: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है।
13: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं।
14: 7 जून को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू की। 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 4 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं। पर सवाल ये है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, क्यों सामने नहीं आता। इस सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि एसआईटी की जांच का हवाला देकर ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को चंदा चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक के आरोपों पर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया था। जिस चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे, वही चंपत राय अब आरोपों के घेरे में है। इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी पता चलेगा कि क्या वाकई जो जांच के दायरे में हैं उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए, ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, तो सवाल इसलिए है कि 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन उसके बाद मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद रहते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है, यानी मुख्यमंत्री के सामने दूरी दिखाई जाएगी। बाकी जांच के दायरे में जो हैं, वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी।
7: चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिला अधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से चंपत राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र को भी एसआईटी जांच के वक्त ब्यौरा देने से मना कर दिया, साफ है कि अब ये जांच और बड़ी बनती जा रही है। अब देखना यह है कि अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है तो क्या होगा।
14: कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि कोई गुनहगार बच नहीं पाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी ही क्यों न हो।
15: जो भी हुआ उसी की गंभीरता के दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की। एसआईटी की प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट 20 पन्ने की प्रस्तुत हो गई है। जो भी उसमें खामियां, त्रुटियां या जिम्मेदारियां इंगित की गई हैं, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। जो अपेक्षित निर्णय हैं, जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय हैं, वो भी लिए जाएंगे। लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जन भावना को चोट नहीं आने देंगे, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर दो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके, उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे।
0: एसआईटी गठन जो जमीन के मामले में, अयोध्या के जमीन घोटाले मामले में हुआ है, उस पर संजय सिंह ने क्या कहा और क्या सबूत रखे, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने।
16: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप। तो जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
17: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन, जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5.60 करोड़ रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: वक्त हो चला है एक ब्रेक का, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, that Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
18: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
21: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ सौ या हजार रुपए का नहीं बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेरा फेरी का दावा है तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
6: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
5: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा, पीएमओ की चेतावनी चंपत राय ने की थी अनसुनी, योगी के मंत्री बोले आस्था से खिलवाड़ पर होगा तगड़ा एक्शन। नागरिकता पर छिड़ी कानूनी जंग फिर, केंद्र का दावा पासपोर्ट कभी नहीं रहा सिटीजनशिप का सबूत, 1967 के एक्ट का दिया हवाला, विपक्ष ने उठाए सवाल।

0: कर दी। पत्रकारों को धमकाने वाला वीडियो आया सामने, आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। सौ साल के सबसे विनाशकारी भूकंप से कांपा वेनेजुएला, कराकास में मची चीख पुकार, 32 मौतें, 700 घायल, बढ़ सकता है आंकड़ा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: कैसे टूटा 126 साल का रिकॉर्ड? क्यों आए एक मिनट में दो भीषण झटके? क्या हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतें भी बिखर गई? सबसे बड़े हवाई अड्डे पर कैसे मची भगदड़? मलबों में बदले शहर, तो आखिर कितनी मौत? क्या 1 लाख तक जाएगा मौत का आंकड़ा? छुट्टी के दिन का आंकड़ों से क्या कनेक्शन? कहां है वेनेजुएला में मौत की फॉल्ट लाइन? संकट में कौन करेगा वेनेजुएला की मदद? क्या तेल लूटने वाला अमेरिका वादा निभाएगा? वेनेजुएला में महाप्रलय।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा महाप्रलय आया है। जब भारत ने कल रात जब भारत के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वेनेजुएला में शाम के 6 बज रहे थे, तभी 43 सेकंड के भीतर एक बार नहीं धरती दो बार ऐसे कांपी कि 126 साल का इतिहास बिखर गया। जो पहली बार भूकंप आया वो 7.2 का था रिक्टर स्केल पर, और 45 सेकंड के अंदर जो दूसरा आया उसकी तीव्रता तो और ज्यादा थी, 7.5। दोहरे बैक टू बैक झटकों से हंसते खेलते शहर, एक शहर नहीं शहर के शहर, मलबों के ढेर में बदल गए। उस खौफनाक शाम के बाद वेनेजुएला ने अपने इतिहास की सबसे खौफनाक और सह रात बीती रात काटी है। अब जब भारत में शाम के 4 बज रहे हैं तो कराकास में सुबह की पहली किरण फूट रही है, लेकिन ये जो सवेरा है ना, ये उम्मीद का नहीं है। रूह कपा देने वाली बर्बादी की तस्वीरें समय सामने आ रही हैं और हम आपको एक के बाद एक वो तस्वीरें दिखाएंगे। अमेरिकी एजेंसी जो है USGS, सबसे डरावनी चेतावनी है उसका मौत का आंकड़ा, उसका आकलन यह है कि इतना तीव्र था यह भूकंप और भूकंप के दो झटके कि मौत का आंकड़ा 1 लाख लोग मारे गए हैं, यह आंकड़ा पार हो सकता है। पूरे देश में समय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जो मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या रनवे और क्या इमारतें मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हम आपको एक एक कर वेनेजुएला में आए भूकंप की वो 5 दिल दहला देने वाली तस्वीर आप दिखा रहे हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब वेनेजुएला पहले भूकंप के झटके से हिला था, ये देखिए। एकाएक भूकंप का झटका आया और बड़ी बड़ी इमारतें डोलने लगी और कुछ इमारतों के हिस्से, बालकनी का हिस्सा, कमजोर हिस्सा, वो गिरने लगा। ये तो हुई पहली तस्वीर। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर, ये कराकास का है। कराकास का जो माइकेटिया एयरपोर्ट है वहां भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के जोरदार झटके से इस महाप्रलय की तस्वीर देखिए, लोग जान बचाकर भागे तो कहां भागे, क्योंकि जिस दिशा में जा रहे थे वहां पर छत के टुकड़े गिर गिर के, ये देखिए, अगर एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो कभी बालकनी का कोई हिस्सा गिर रहा था, कभी छत का कोई हिस्सा गिर रहा था। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। जो तीसरा वीडियो है ये समंदर से कैद किया गया है, सामने जरा गौर से देखिएगा, ये वेनेजुएला का लागुएरा शहर दिख रहा है। भूकंप के दौरान एक एक कर पहले भूकंप से वो दीवार बिल्डिंगें हिलने लगी और 45 सेकंड में जब दूसरा बड़ा झटका आया तो वो इमारतें ढहने लगी। नाव पर सवार लोग अपने ही शहर की तबाही देख रहे थे, जिसे अब डिजास्टर जोन का कोर एरिया घोषित कर दिया गया है। अब जो चौथा वीडियो है ये लागुएरा शहर का ला अडुआडो होटल का है। आप होटल की पहली और बाद की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलीशान बहुमंजिला 5 सितारा होटल और 45 सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ये देखिए, ये है वो ला एडुआर्डो होटल, उसके पहले की तस्वीर, और ये महज 45 सेकंड में उस होटल का नामो निशान नहीं रहा, मलबे में तब्दील हो गया। अच्छा, जो पांचवा वीडियो है, तबाही के बाद जो दर्दनाक सच्चाई है, रात की सच्चाई वेनेजुएला की, लोग बेहद परेशान क्योंकि अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। किसी के मां बाप तो किसी के बच्चे, किसी की पत्नी तो किसी के पति, किसी के भाई बहन, हजारों जिंदगियां मलबे के ढेर में दबी हुई हैं, लापता है, लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। रेस्क्यू टीमें पूरी रात लोगों को ढूंढती रही। दूसरी तरफ जिनके अपने इस मलबे में दबे हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये इन तस्वीरों को देखे उनको पता ही नहीं चल रहा करें तो क्या करें। बस यही ईश्वर से प्रार्थना कि उनके परिजन सुरक्षित हो। वही एक के बाद एक लोग यही बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक था, सोने की तैयारी कर रहे थे, घर जा रहे थे और एकाएक एक के बाद एक बिल्डिंगें गिरने लगी। अब आपको दिखाते हैं वेनेजुएला में आए भूकंप के 10 बड़े क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। अमेरिका का जो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र है USGS, उसका जो अनुमान है वो सबसे खौफनाक है। USGS के मुताबिक मलबे में दबकर मौत का आंकड़ा 10,000 कम से कम, और उनका आकलन यह है जिस तरह की इमारतें गिरी हैं, जितना विस्तृत नुकसान हुआ है, 1,00,000 लोग मारे जा चुके हैं, यह उनका आकलन है। दूसरी बड़ी बात, एक मिनट में डबल प्रलय बेहद दुर्लभ होते हैं और वो भी इस स्तर पर, मतलब जो पहला झटका था वो 7.2 का था रिक्टर स्केल पर, और ठीक 43 सेकंड बाद जो दूसरा झटका आया वो और तीव्र था, 7.5 तीव्रता का, ये मुख्य झटका है। हालांकि झटके इसके बाद भी आए लेकिन ये दो बड़े झटके थे। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक एक मिनट के भीतर दो ऐसे महाभूकंप आना विज्ञान में भी अत्यंत दुर्लभ इसे माना जाता है। इतिहास को भी अगर खंगाले तो दो बड़े झटके बेहद दुर्लभ हैं। तीसरी बात, यह वेनेजुएला का 126 वर्षों का सबसे भीषण महाभूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद वेनेजुएला के इतिहास में आया सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप है। हालांकि इससे पहले 1967 में एक और बड़ा भूकंप वेनेजुएला में आया था, वो 6.6 तीव्रता का था। उसकी तबाही का रिकॉर्ड 2026 के इस डबल भूकंप ने तोड़ दिया है। चौथी बात, छुट्टी के दिन मौत का आंकड़ा छुट्टी की वजह से कई गुना बढ़ गया था। दरअसल हादसे के वक्त वेनेजुएला में बैटल ऑफ कारबोबो की नेशनल हॉलिडे वो मनाया जा रहा था, तो लोगों की छुट्टी थी, लोग अपने घरों में थे और उसी छुट्टी की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। मलबे में जो हताहत लोग हैं उसकी संख्या ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक होने की आशंका है। इस बात का बहुत जबरदस्त डर है नेशनल हॉलिडे की वजह से। पांचवी बात, महज 10 किलोमीटर नीचे प्रलय का केंद्र बताया जा रहा है। मुख्य भूकंप का केंद्र जमीन से 10.3 किलोमीटर की गहराई पर था। कहा यह जाता है भूकंप सतह के जितना करीब होता है, कंपन उतनी अधिक होती है और नुकसान उतना ही ज्यादा विनाशकारी होता है। छठी बड़ी बात, जहां तबाही का केंद्र था यानी सेंट फिलिप और मोरोन के ग्रामीण इलाकों में बिना पिलर वाली चिनाई और मिट्टी की ईंटों से बने हजारों मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। नुकसान गांव के क्षेत्र में भी बड़ा रहा। सातवीं बात, जो मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह पूरी तरह से ठप है। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त साइमन बुलेवार हवाई अड्डा। स्ट्रक्चरल डैमेज यहां बहुत ज्यादा है और इसी स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से तत्काल प्रभाव से इस एयरपोर्ट को, साइमन बुलेवार एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आठवीं बड़ी बात, पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हालात बेकाबू होते देख वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रीगेज, उन्होंने पूरे देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात, जो नवी बड़ी बात है, कम गहराई और हाई इंटेंसिटी के कारण भूकंप के झटके वेनेजुएला की दरअसल सीमा लांघकर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक में महसूस किए गए थे। दसवीं बात, सबसे ज्यादा तबाही जो है वो ला गुएरा में मची है, जहां शायद ही कोई इमारत, और आप सोचिए इतने बड़े शहर में शायद ही कोई इमारत इस समय सही सलामत खड़ी है। इसे डिजास्टर जोन ला गुएरा को पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है। इतना भीषण वेनेजुएला का यह भूकंप रहा है। वेनेजुएला के इस दर्द का फिलहाल कोई अंत नहीं है, क्योंकि समय गुजरने के साथ, दिन निकलने के बाद जो विनाश लीला वहां पर रही है उसकी असल तस्वीरें आज सूर्योदय के बाद सामने आ रही हैं, और हर तस्वीर और ज्यादा दर्द दे रही है। ऐसा संकट जिसकी वजह से बड़े पैमाने में एक पूरे देश में तबाही मची, हालांकि यह तबाही कितनी ज्यादा है, कितनी मौतें हुई, अभी अभी जो खबर आ रही है, आज सवेरे जो ताजा आंकड़े अभी आ रहे हैं, वेनेजुएला में अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि वहां के प्रशासन ने की है। 164 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। डर इस बात का है क्योंकि कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त है। वेनेजुएला में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा शुरू में 32 बताया गया था और ये अब तक बढ़कर 164 हो गया है, लेकिन अभी तो बस वहां सूर्योदय हुआ है। अब टीमें अलग अलग इलाकों में जाएंगी, कहा यह जा रहा है। सैकड़ों लोग, डर इस बात का है, सैकड़ों लोग इस समय वहां पर जमींदोज इमारतों के नीचे मलबे में फंसे हुए हैं। जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रीगेज, उनके मुताबिक 164 लोगों की मौत हो गई है, 700 से ज्यादा घायल हैं। इस पर जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आई है, देखिए ये रिपोर्ट।

0: भूकंप ने इमारतों की नींव को हिला दिया। हालात ऐसे हो गए कि ऊंची ऊंची इमारतें बेदम होने लगी और भरभरा कर गिरने लगी। पहले जहां ऊंची इमारतें खड़ी थी, भूकंप के बाद कई जगहों पर वहां मलबे का ढेर लग गया। कराकस में जहां इमारतें गिरी, वहां अंधेरा छा गया। दरअसल धूल से इलाका भरने की वजह से संकट बढ़ गया। वहां देर तक अफरा तफरी मची रही। चालीस सेकंड में दो झटकों के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। स्थिति ऐसी थी कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंच रहे थे ताकि इस कुदरती खतरे को टाला जा सके। कई लोग अपने परिवार के साथ बाइक से भागते दिखे। सड़क में आई दरारों ने लोगों को डरा दिया। भूकंप से हुई ऐसी तबाही देखकर लोग बेबस और लाचार नजर आए। भूकंप के दौरान एक तस्वीर समंदर से आई। धरती हिली तो समंदर में लहरें डराने लगी। उन लहरों के बीचों बीच एक शख्स फंस गया। उफनती लहरों ने उसे डरा दिया। वो नाविक बेबस था। हालात के आगे उसकी एक नहीं चली। वो देर तक समंदर के बीच फंसा रहा। पहले झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज की गई, जबकि 40 सेकंड के बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा भयानक झटका आया। उसके बाद कई आफ्टर शॉक भी आए। भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से 168 किलोमीटर दूर था। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और लागोएरा सबसे बड़े विनाशकाल से जूझ रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद हुई तबाही की जानकारी दी और बताया कि 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। विनाश लीला की सबसे खौफनाक तस्वीरें राजधानी काराकस से आई हैं। जानकारी के मुताबिक कई इमारतें ढह गई और अब वहां राहत बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। वेनेजुएला के 126 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और अब अधिकतम 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने देश को तबाह किया है। विनाश लीला के बीच वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। गंभीर हालात को देखते हुए मेडिकल सर्विस और अन्य सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। खोज और बचाव कार्यों की देखरेख के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने डॉक्टरों और नर्सों से अपील की है कि वो भूकंप में घायल लोगों के इलाज में मदद के लिए स्थानीय अस्पतालों और इमरजेंसी रूम में तुरंत रिपोर्ट करें। आज तक ब्यूरो।
1: अच्छा, वैज्ञानिकों की माने तो 40-45 सेकंड में एक के बाद एक दो भीषण भूकंप के झटके आना और बड़े झटके आना ये आमतौर पर होता नहीं है। आखिर क्यों वेनेजुएला में एक के बाद एक पहला झटका 7.2 तीव्रता का और जो दूसरा झटका था वो 7.5 तीव्रता का आया और आसपास के सैन फिलिपे में और दूसरा मोरोन में एक के बाद एक ये दो झटके आए। फिर ये वेलेंसिया का इलाका है जिसको अब एपिसेंटर माना जा रहा है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि जहां भूकंप के झटके आए वहां पर दरअसल फॉल्ट लाइंस छिपी हुई हैं। फॉल्ट लाइंस यानी दो प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स के आपस में टकराने से एक बुकोनो फॉल्ट लाइन कहलाती है, दूसरी सैन सेबास्टियन फॉल्ट लाइन कहलाती है और ये दोनों वेनेजुएला के, और यहां अगर आप देखें तो ये कैरेबियन सागर है। वैसे देखने में ये इलाका दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। कैरेबियन कोस्ट को तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इस इलाके में दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ये जो मोरोन शहर है उसके पास बहुत नुकसान हुआ। नक्शे पर आप इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। जो बुकानो फॉल्ट लाइन है वो वेनेजुएला के एंडीज पर्वत की जब आप बात करते हैं तो उससे होते हुए उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे ही ये जो फॉल्ट लाइन है ये शहर के पास कैरेबियन के तट पर पहुंचती है, देखिए ये कैरेबियन सागर है और उसके तट पर जब ये फॉल्ट लाइन पहुंचती है तो वहां पर घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री का वैज्ञानिकों के मुताबिक एक बहुत तीव्र मोड़, एक तीखा मोड़ लेती है और यहीं पर सैन सेबास्टियन फॉल्ट लाइन की शुरुआत होती है और यहीं पर कहा यह जा रहा है कि पहला झटका सैन फिलिपे के पास, इस जगह पर पहला झटका आया जो 7.2 तीव्रता का था। यह बुकानो फॉल्ट लाइन का था। जो दूसरा झटका था वो सैन सेबास्टियन फॉल्ट लाइन पर था और यह 7.5 तीव्रता का आया था। कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स में टकराव से यह भीषण भूकंप आया और कहा यह जा रहा है वैज्ञानिकों के मुताबिक यह 126 वर्षों में आया सबसे विनाशकारी भूकंप है। और एक के बाद एक दो झटके, पहला जैसे हमने आपको बताया तीव्रता 7.2, दूसरा जो झटका था तीव्रता 7.5, पैमाना ऐसा, विनाश लीला बेहिसाब। और वेनेजुएला में यही हुआ। वेनेजुएला से आई जो तस्वीरें हैं इसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। जिंदगी बेबस, सरकार लाचार, रेस्क्यू टीमें लगी तो हुई हैं लेकिन एक के बाद एक बड़ी चुनौती, उनको और सामान भी चाहिए, बचाव कार्य में उनको मदद भी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की मदद उनके सामने आएगी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन पहले यह रिपोर्ट।
2: Se cayeron edificios. ये वेनेजुएला का विनाश काल है। एक एक तस्वीरें रूह कपाने वाली है। संकट का यह काल रुलाने वाला है। भूकंप के जोरदार झटकों से वेनेजुएला में जो हालात पैदा हुए हैं उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में वेनेजुएला ने ऐसा विनाश देखा। करीब 125 साल में वेनेजुएला इतना विवश कभी नजर नहीं आया। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार को आए दो जोरदार झटकों ने राजधानी काराकस और ला गुआयरा में जान और संपत्ति का बेहिसाब नुकसान किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वेनेजुएला की इस त्रासदी की दर्दनाक तस्वीरें। राजधानी काराकस का हाल देखिए, वहां भीषण भूकंप के झटकों ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे घरों से निकलकर लोग जान बचाकर भागते नजर आए। धरती हिली तो इमारतों की दीवारें तड़कने लगी, तभी एक कार सवार के ठीक बगल में दीवार जमींदोज हो गई। गनीमत रही वो मलबे की चपेट में नहीं आया। वहां मौजूद दूसरे लोग भी जान बचाकर भाग निकले। उसी दौरान तबाही के बीच से बाइक सवार युवक भी भागता नजर आया। ऐसी त्रासदी के बीच हर किसी के सामने जान बचाने की चुनौती थी। एक महिला तो अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती दिखी। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप की एक तस्वीर मैक्वेटिया एयरपोर्ट से आई। जब धरती हिली उस वक्त सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे। कोई फ्लाइट पकड़ने वाला था, कोई काराकस पहुंचा था। भीषण भूकंप के बाद एयरपोर्ट की इमारत दरकने लगी। देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। हर कोई एयरपोर्ट के अंदर से बाहर की ओर भागा ताकि वो मलबे में दब न जाए। स्थिति गंभीर थी। धरती स्थिर हुई तो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक शख्स ने स्थिति का मुआयना किया। उसने अपने कैमरे में वहां के हालात दिखाए और दुनिया को दिखाया कि इस भूकंप में कैसी तबाही मची है। एयरपोर्ट के कोने कोने में विनाश लीला दिखी। सामान बिखरे पड़े थे, कंप्यूटर और दूसरे सामान तबाह हो चुके थे। ऐसे भीषण संकट के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, यानी एयरपोर्ट बंद होने से काराकस दुनिया से कट गया।
1: वैसे वेनेजुएला के सामने आई इस त्रासदी के बाद दुनिया के कई देश मदद के लिए सामने आए हैं, भारत उनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बात की, हर संभव मदद का वादा भी किया है। अमेरिका भी टीम तैयार कर रहा है और कुछ ही देर में रेस्क्यू और मेडिकल टीमें वेनेजुएला पहुंचने लगेंगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
5: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
7: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: गया फैसला, केस दर्ज होने के बाद बड़ी कार्रवाई का खुलेगा रास्ता। ২০২৭ के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान, नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी, पत्रकारों को धमकाने वाला वीडियो आया सामने, आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। करोड़पति केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया, साजिश का सीसीटीवी वीडियो, बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी मंगेतर सिया गोयल। 100 साल के सबसे विनाशकारी भूकंप से कांपा वेनेजुएला, 164 की मौत, भारत ने मदद का बढ़ाया हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, जल्द रवाना हो सकती है एनडीआरएफ की टीम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर।
2: कैफे में मिले केतन के कातिल, यूट्यूब पर सर्च की मौत की लोकेशन, रची लोहगढ़ किले में खून की साजिश, मंगेतर ने किया भरोसे का कत्ल, प्रेमी के साथ मिलकर महापाप,

मैं हूं गौरव सावंत और हम बात कर रहे हैं मर्डर के प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की। जी हां, अपने मंगेतर के मर्डर का जो प्लान बनाया था, अगर ए नहीं चला तो बी और बी नहीं चला तो सी। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे पुलिस को एक वीडियो मिला है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के मर्डर से पहले यानी 17 जून को सिया गोयल और सिया गोयल का मित्र चेतन चौधरी पुणे के एक कैफे में मिले थे। हम आपको उसका वीडियो भी दिखाएंगे। इस मुलाकात का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिया गोयल और चेतन चौधरी कैफे में नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि थर्ड वेव कैफे में करीब एक घंटे तक दोनों ने मर्डर की बाकायदा प्लानिंग की थी। दोनों करीब 4:35 पर कैफे के अंदर घुसे, वहां से 5:30 के आसपास निकले। जांच करने वालों का कहना यह है कि इस दौरान सिया गोयल ने यूट्यूब पर बाकायदा लोहगढ़ किले के वीडियो सर्च किए थे, फिर चेतन के साथ लोकेशन शेयर की थी और यह सब उसी कैफे में मौजूदगी के दौरान किया गया। और सीसीटीवी के आधार पर और मोबाइल फोन के आधार पर यह जानकारी पुलिस ने अब जुटा ली है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, थर्ड वेव कैफे है यह पुणे का। 4:35 पर दोनों उस कैफे

0: के अंदर घुसे, यहीं पर अपने मोबाइल फोन पर उन्होंने लोहगढ़ को सर्च किया और उसके बाद अपने मंगेतर को लोकेशन भेजी गई। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 17 जून का है। इसके अगले ही दिन यानी 18 जून को लोहगढ़ में केतन अग्रवाल की हत्या हो गई थी। पुलिस ने पहले तो इसे एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया और एक्सीडेंटल डेथ का ही केस दर्ज भी किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 32 डिग्री तापमान में जब चेतन एक हुडी पहनकर दिखा गया कि अगर वो अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है, तब शक बढ़ा। वो वहां कर क्या रहा था, ये बात हुई। इसके अलावा जब केतन की मौत के बाद सिया उसके घर पहुंची तो केतन की बहनों ने कई सवाल किए और बहनों को लगा कि जवाब ठीक ढंग से आ नहीं रहा है। जब सिया के जवाब से बहनों का शक बढ़ा तो परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। फिर पुलिस ने दोनों को जांच के लिए बुलाया। जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया और जब पूछताछ की तो 29 जून तक दोनों की पुलिस रिमांड मिली। पुलिस ने दावा यह किया है कि सिया के पास केतन के मर्डर का एक प्लान ए था, अगर वो ना कारगर हो तो उसने एक प्लान बी बनाया पुलिस के मुताबिक और एक प्लान सी। सोचिए इतनी तैयारी थी कि मर्डर के 3-3 प्लान बने थे। 31 मई को पहली बार वो केतन को लोहगढ़ किले में ले गई थी, वो था प्लान ए। उसी दिन उसके दिमाग में केतन को धक्का देकर मारने का प्लान आ गया था 14 जून को, ऐसा पुलिस का दावा है। 14 जून को उसने केतन को बकायदा धक्का भी दिया, लेकिन वो झाड़ियां पकड़कर वो जब गिर रहा था तो डालियों से उसकी जो चोट है वो उसको कम लगी, उसको पकड़कर वो बच गया। जब उसने सिया से धक्का देने की वजह पूछी तो सिया ने झूठ बोल दिया उसको कि मैंने एक सांप देखा, मैं डर गई थी और तुम्हें बचा रही थी उस सांप से। पुलिस के मुताबिक केतन को अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से, अपनी मंगेतर से और प्यार हो गया कि देखो इसने मेरी जान बचाई। लेकिन उसके मन में क्या पक रहा था, 18 जून को सिया और चेतन केतन की हत्या करने में दरअसल कामयाब भी हो गए, ऐसा पुलिस का दावा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक प्लान सी भी था और उस प्लान सी के तहत केतन को एक सड़क हादसे में मारने का प्लान सिया ने बना रखा था। पुलिस इसका भी सबूत जुटा रही है। केतन और सिया की जो इंगेजमेंट की तस्वीरें हैं उसके कई सारे वीडियो सामने आए, बहुत सी रील्स सोशल मीडिया पर हैं। जब आप उन रील्स को ध्यान से देखेंगे, मतलब आप इन तस्वीरों को देखिए, जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो क्या आपको कभी भी लगता है कि इन दोनों को प्यार नहीं है? लेकिन चेहरे पर क्या और चेहरे के पीछे क्या? सिया केतन को धोखा दे रही थी तो केतन ही नहीं, वो तो दरअसल केतन से नहीं चेतन चौधरी से प्यार करती थी और उसी के साथ मिलकर पुलिस का दावा यह है कि सिया ने अपने होने वाले पति यानी अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारने का एक प्लान बनाया। सवाल यह कि अगर सिया को नहीं केतन पसंद था और उसे चेतन चौधरी पसंद था तो सिया अलग क्यों नहीं हो गई? दोनों ही बहुत अमीर परिवारों से आते हैं, अलग हो जाती। हत्या करने की साजिश क्यों रची गई? हत्या करके उसको क्या हासिल होना था? पुलिस की जांच में अब सिया के प्लान और उसकी सोच का जो पूरा खेल है उसका खुलासा हुआ है। उस पर देखिए यह रिपोर्ट।
1: रिश्तों के बनने और मिटने की एक ऐसी कहानी है जिसमें 20 साल की एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम देती है कि भरोसे का भी कत्ल हो जाए। इसमें रिश्तों की नर्सरी है, जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का कत्ल है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं: सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी। इनमें से केतन अब दुनिया में नहीं, सिया और चेतन केतन को ठिकाने लगा दिया। केतन अग्रवाल और सिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घड़ी आती सिया ने अपने होने वाले पति केतन को ठिकाने लगा दिया। सिया ने केतन को कैसे मारा, केतन को मारने के लिए सिया ने कितने प्लान बनाए, सिया का प्लान बी क्या था, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौहान इस हत्याकांड के खुलासे में कैसे अहम कड़ी साबित हुआ, आज हम सब कुछ बताएंगे। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये मानेगा ये लड़की अपने होने वाले पति की हत्या कर देगी? क्या इन हंसी खुशी के इन पलों में कहीं से लग रहा है कि सिया और केतन के बीच में कोई अविश्वास, दरार या तनाव है। तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिया ने ही अपने होने वाले पति को मार डाला, लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच का सार यही है कि सिया ने केतन को मार डाला।
2: अग्रवाल और सिया गोयल की इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शुरू में किसी को लग भी नहीं रहा था कि इतनी मासूम शक्ल वाली सिया गोयल अपने होने वाली पति की ही कातिल हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे तहकीकात आगे गई, ये इन्वेस्टिगेशन आगे गया, उसके बाद ही अलग अलग परतें जुड़ती गई और फिर पुणे लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची लोहगढ़ किले पे। फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी और उसी के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस के जांच में अलग अलग परतें जुड़ती गई और दर्पण पे से ये सब कुछ धूल बैठी थी वो साफ हो गई। और धूल साफ होने के बाद एक चेहरा सामने आया जिसका नाम है चेतन चौधरी।
1: पुणे में जून की गर्मी में हुडी, मुंह पर मास्क, पीठ पर बैग लेकर एक शख्स लोहगढ़ के किले में दाखिल होता है। ये शख्स कोई और नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पुणे पुलिस ने जब लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चेतन चौधरी सिया और केतन के आसपास दिखा। कुछ फुटेज में चेतन और सिया इशारों में बातचीत करते हुए भी दिखे। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने चेतन चौधरी की हर गतिविधि को ट्रैक करना शुरू किया।
3: ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज की बॉडी मिली थी वो ठिकाना है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है कैसे आएगा, धक्का दे, कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है।
1: पुणे पुलिस ने सबसे पहले इस चेतन चौधरी को उठाया क्योंकि लोहगढ़ किले में चेतन का होना, हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा सब संदिग्ध था। पुलिस को शक हुआ कि 35 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क पहने हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था।
2: और केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ।
1: केतन का परिवार गम में था। घर का इकलौता बेटा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन परिवार को एक बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि केतन फिसल कर गिरा तो गिरा कैसे, क्योंकि केतन अग्रवाल अच्छा ट्रैकर था। पहाड़ों पर ट्रैकिंग में वो एक्सपर्ट था। सकरे रास्तों पर चलना, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना उतरना केतन के लिए नई बात नहीं थी।
4: संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने।
1: फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो कुछ और ही कहानी पता चली। सिया की एक फोन नंबर पर इस साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी और ये नंबर केतन का नहीं था तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी निकला। चेतन से जब पुलिस ने सख्ती से बात की तो सारी कहानी खुल गई। ओंकार वागले, पुणे आज तक।
0: और जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि सिया और चेतन अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। इस बीच कई चौंका देने वाले खुलासे और हुए हैं। केतन को मारने के लिए सिया ने एक नहीं कई प्लान बनाए थे, तारीखें अलग अलग तय कर दी थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करेंगे, अगर इस दिन नहीं हुआ तो उस दिन क्या करेंगे। क्या था सिया का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी? केतन के घर वाले क्यों सिया को शुरू में पहचान नहीं सके, देखिए इस रिपोर्ट में।

चेतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक तैयार था, लेकिन प्लान बी में ही सिया ने केतन को रास्ते से हटा दिया। केतन को कैसे मारना है, किस जगह पर ले जाना है, ये सब कुछ पहले से तय था। चेतन चौधरी और सिया गोयल ने लोहगढ़ के किले को इस काम के लिए सबसे मुफीद माना। फरवरी में जब सिया की सगाई हुई तभी उसने और चेतन ने तय कर लिया था कि केतन को हटाना है। सबसे पहले 31 मई को केतन और सिया

0: लोहगढ़ के किले में गए, लेकिन इस बार सिया ने कुछ नहीं किया। 5 जून को फिर से उसी किले में जाने की योजना थी, लेकिन इस बार केतन अग्रवाल के घर वालों ने अनुमति नहीं दी। 14 जून को सिया ने फिर से केतन को लोहगढ़ के किले पर बुलाया और पहली बार केतन को किले के ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसने 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझाने की ऐसे कर रही थी, सिया ऐसे क्यों कर रही है, वरना हमको इस विश्वास था उससे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सिया को उस केतन को ऐसे कर दिया।
2: 14 जून को जब सिया ने केतन को किले के ऊपर से धक्का दिया तो केतन बच गया। केतन एक ट्रैकर था और ऐसी आपात स्थिति में बचने के लिए वो ट्रेंड था। केतन ने किसी झाड़ी के सहारे खुद को वहां पर रोक लिया और वो बच गया। जब सिया ने देखा कि केतन बच गया है तो वो चिल्लाने लगी और मदद मांगने का नाटक करने लगी, ताकि किसी को शक ना हो कि सिया ने ही केतन को धक्का दिया था। केतन जैसे तैसे ऊपर आया और सिया ने केतन से कहा कि उसने सांप देख लिया था और केतन को बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया।
0: 14 जून को केतन के साथ लोहगढ़ किले में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में केतन ने किसी को कुछ नहीं बताया। घर वालों को ये बात पता नहीं चल पाई कि सिया ने केतन को लोहगढ़ किले से धक्का दिया था और केतन बाल बाल बच गया था। सिया का प्लान ए फेल हो चुका था। पहले प्रयास में सिया केतन को नहीं खत्म कर सकी। इसके बाद सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन से फिर मिली। पुणे के लोनावाला में एक रेस्टोरेंट में दोनों ने फिर प्लान बनाया। इस बार सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी किले पर मौजूद था। किले पर जाने से पहले चेतन ने पूरे किले की अच्छे से रेखी की थी, किस जगह से धक्का देना है सब कुछ पहले से निर्धारित था। 18 जून को सिया ने फिर से जिद करके अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को उसी लोहगढ़ किले पर बुलाया। सिया पर भरोसा करके केतन लोहगढ़ चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को मार डाला।
1: बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, उसका बहुत अच्छा था। उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है। ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया, यहाँ तक केतन को भी एक बार भी नहीं लगा। हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके उसके पापा ने बहुत बार पूछा, मैंने हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है, यहाँ तक उसके पेरेंट्स लोग ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स का भी हमको कभी नहीं लगा।
0: सिया और केतन का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। केतन अग्रवाल अपनी होने वाली पत्नी सिया पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसे हर दिन सरप्राइज देता था। सिया के दगाबाजी की घटना 6 जून को भी हुई, जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन ने इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने सिया को मना कर दिया कि वो बाली ना जाए, जिसके बाद सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और पासपोर्ट खोजने लगे तो सिया ने कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया, उसी में पासपोर्ट था। जो केतन सिया के लिए सब कुछ करने को तैयार था, जो सिया के साथ साथ फेरे लेने के सपने देख रहा था, उसी सिया ने केतन को मौत के घाट उतार दिया और नाटक करती रही कि केतन के जाने से सदमे में है। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
3: संकेत तो कई थे लेकिन केतन समय रहते उन्हें भांप नहीं पाया, लेकिन पुलिस कह रही है इस समय वो एक एक सबूत जुटा रही है ताकि अदालत में सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई जा सके। और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
5: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
6: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Right field, and it will...
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups.

0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
1: ये 19 जून की बात है, यानी आज से 6 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैगाम आता है और इन 6 दिनों में मामला काफी आगे बढ़ जाता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई, मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी जांच के दायरे में बताए गए, गणना और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में विस्तृत और बारीकी से खामियों की पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ गंभीर सवाल बने हुए हैं। वो ये कि एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, एसआईटी रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, जो चेहरे आरोपों के घेरे में हैं उन्हें ट्रस्ट के कामकाज से दूर क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द विपक्ष हमले पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव एसआईटी विदाउट एफआईआर का आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के मोर्चे पर पूरी ताकत से उतर आए हैं। यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी योगी सरकार को राहत नहीं है। एसआईटी की जांच का दायरा सिर्फ दान चोरी तक शायद ही सीमित रहे। अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या पर चल रही मौजूदा सियासत में नई गर्मी आना तय है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Today's Match Day Preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
4: जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी उसमें कोई संदेह नहीं
5: अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए
6: बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई
7: चंदा चोर प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ले रहे हैं
8: 7 जून को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ 15 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू की 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है 4 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं पर सवाल ये है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला क्यों सामने नहीं आता इस सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि एसआईटी की जांच का हवाला देकर ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को चंदा चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक के आरोपों पर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया था पूरा मामला आप इन दो खत से समझ सकते हैं ये पहला खत बीजेपी नेता रजनीश सिंह का है जो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था दरअसल रजनीश सिंह ने दो खत पीएमओ को लिखे जिनमें ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई सभी जमीन और संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था मंदिर निर्माण प्रशासनिक खर्चे और दूसरे मदों में खर्च का भी विवरण मांगा गया पत्र में कहा गया कि दान का हिसाब सार्वजनिक करना जरूरी है ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि आस्था का सवाल है रजनीश सिंह के खत पर अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी ने चंपत राय से संपर्क किया था लेकिन चंपत राय ने यह कहकर कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया कि फिलहाल एसआईटी जांच चल रही है और मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती जिस चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे वही चंपत राय अब आरोपों के घेरे में है इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए तभी पता चलेगा कि क्या वाकई जो जांच के दायरे में हैं, उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए ये वीडियो 23 जून का है अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं 23 जून को इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं आप शायद सोच रहे होंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों तो सवाल इसलिए है कि 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रखा जाता है लेकिन उसके बाद मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद रहते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है यानी मुख्यमंत्री के सामने दूरी दिखाई जाएगी बाकी जांच के दायरे में जो हैं, वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज FIR संभव। SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। केस दर्ज होने के बाद बड़ी कार्रवाई का खुलेगा रास्ता। 2027 के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान। नई टीम में पिछड़ों का दबदबा। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। शिवसेना उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी। पत्रकारों को धमकाने वाला वीडियो आया सामने। आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। करोड़पति केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सामने आया साजिश का CCTV वीडियो। बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी मंगेतर सिया गोयल।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल एक बहुत बड़े यक्ष प्रश्न पर है। प्रश्न यह है कि भारत का नागरिक आखिरकार है कौन। आज भारत की अधिकांश जनता के पास एक ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि वही भारत के नागरिक है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब देश के अलग अलग कानूनों के हिसाब से बने पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता की पहचान नहीं है। यही बखेड़ा फिर खड़ा हुआ है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता की पहचान नहीं है। अब सियासी दल फिर से सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भारतीय नागरिकता की पहचान आखिर है क्या, जब भारत सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और भारत सरकार इस हालत में नहीं है कि एनआरसी करके प्रमाण पत्र जारी कर ले, तो आज भारतीयों के पास नागरिकता को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज कौन सा है। चूंकि मामला कागज दिखाने वाली सियासत से जुड़ा हुआ है तो विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी की मेंबरशिप हो तभी आप भारतीय नागरिक अब माने जाएंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई कहते हैं कि कहीं ये सब बयान एनआरसी लाने की तैयारी के लिए तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी सवाल बहुत है और उसी पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: हम भारत के लोग कौन? 134 करोड़ 54 लाख लोग जिनके पास आधार कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 97 करोड़ लोग जिनके पास वोटर कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 14 करोड़ 70 लाख जिनके पास पासपोर्ट है। जवाब है नहीं। भारत का नागरिक कौन है, ये पहली एक बार फिर राजनीतिक हवा की उलझन में उलझ रही है। नई बहस पुरानी कहानी से जुड़ी है। जब पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं, इसी पर विवाद हुआ। कपिल सिब्बल कहने लगे पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है। जावेद अख्तर ने लिखा सच में तो पासपोर्ट बिना तय किए जारी हो रहे हैं कि धारक भारतीय है या नहीं। ओवैसी दो कदम आगे बढ़े और बीजेपी की सदस्यता वाले कार्ड की फोटो डालते हुए तंज किया कि नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज निर्णायक नहीं, 2030 तक एक ही दस्तावेज नागरिकता का सबूत होगा।
2: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
1: कानून कहता है हाँ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान और यात्रा का दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं। यह और बात है कि भारत का चुनाव आयोग जब भारत के नागरिकों का वोटर कार्ड बनाता है तो पहचान के तौर पर उसी पासपोर्ट को मंजूर करता है। हालांकि 12 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा कि भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता कानून से नियंत्रित होती है, आधार, पैन, वोटर कार्ड से नहीं। पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। यह और बात है कि भारतीयों में ये भ्रम है कि पासपोर्ट मतलब भारतीयता की पहचान। यहां तक कि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयता की पहचान पर अब नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज न बताने पर उन्हें शक होने लगा कि कहीं फिर से कागज तो नहीं मांगे जाएंगे।
2: क्या वो एनआरसी को एक बैकडोर के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे मेरे मन में, क्योंकि मैं असम से हूँ, व्यक्तिगत मेरी वो आशंका है, और इसलिए बार बार जो अलग जो डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, एक एक करके सरकार कह रही है कि कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
1: भारत के विपक्षी दलों को ये शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब से नागरिकता कानून बना और कागज नहीं दिखाने के नाम पर दिल्ली से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद नागरिकता के दस्तावेज तलाशे जाने लगे। पता चला कि आधार कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत की नागरिकता जन्म वंश रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन या किसी जमीनी हिस्से के विलय पर निर्भर करती है। इसमें जन्म वंश के आधार पर नागरिकता तय करने का मानदंड है कि व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो।
0: इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागरिकता के नियम 2009 के मुताबिक 5 चीजों में नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर आज की स्थिति में भारत का नागरिक जाकर यह कह सके कि मैं ही भारत का नागरिक हूं, क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि यह कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और वो सिर्फ नागरिकता के कानून के तहत ही तय किया जाएगा। तो आखिरकार ये बहस एक बार फिर क्यों शुरू की गई है? एनआरसी तो लागू नहीं हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमें चर्चा करना जरूरी है। रोहन गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। निकहत अब्बास कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रही है। शादब चौहान एआईएमआईएम के नेता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। रजत सेठी और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या भारत में नागरिकता तय कराने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है? दूसरा सवाल, क्या एनआरसी के प्रमाण पत्र के बिना नागरिकता का प्रमाण नहीं बन पाएगा? और तीसरा अहम सवाल, 11 दस्तावेज आपको याद होगा, 11 दस्तावेज कब आए थे? 11 दस्तावेजों से भारतीय नागरिक वोटर बन सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर आपको वोटर बनना है तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, यह माना गया है। लेकिन इसके बावजूद जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले दिए गए थे, उसमें एक पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है, तो पासपोर्ट के आधार पर भारतीय नागरिक नागरिक क्यों नहीं बन सकता? ये आसान सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन अब पूरी चर्चा राजनीतिक बन चुकी है। देखिए, शुरुआत एआईएमआईएम के तरफ से दरअसल होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर बताते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। शादाब चौहान, आप उसे समझा पाए। हम दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आपने ये ट्वीट क्यों किया, जरा वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैं हूंगा, मेरे पास अगर वो डॉक्यूमेंट होगा, तभी माना जाएगा कि ये भारतीय नागरिक है। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, ये ट्वीट है।
3: देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बात इसलिए कही है क्योंकि आप पैन कार्ड को नहीं मानते हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, वोटर कार्ड को नहीं मानते हैं, जबकि वोटर कार्ड के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसमें पासपोर्ट को इंक्लूड किया था, और इंडियन वोटर वही हो सकता है जो इंडियन सिटीजन होगा। आप बता दीजिए, जितने लोग पैनल में बैठे हैं किसी के पास भी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? बीजेपी के मेरे मित्र बैठे हैं रोहन भाई, क्या उनके पास कोई सबूत है कि वो भारत के नागरिक है? मुझे बता दीजिए किसके पास है। आप जब किसी चीज को मानेंगे नहीं, अब तक तो ये कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देती थी बीजेपी अब तक, अब वो नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ अब वो ये सर्टिफिकेट भी देगी कि कौन भारतीय है कौन नहीं है। बीजेपी का मेंबर बन जाइए आप भारतीय बन जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट आप बताएंगे तो सही, आप किसी चीज को माने नहीं है। और पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्लॉज है, आप पढ़ेंगे उसमें इंडियन सिटीजन की बात कही गई है। अगर जो लोग सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं वो एक अलग कंडीशन के अलावा छोड़ दिया जाए तो आप उसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप ये बता दीजिए कि भारत के अंदर कौन इंडियन सिटीजन होगा, ये कौन तय करेगा? हम जो भारत में पैदा हुए, भारत के टैक्स पेयर्स हैं, भारत में जीवन जी रहे हैं, भारत के लिए योगदान दे रहे हैं, इंडियन आर्मी में जो लोग हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भारतीय हैं या नहीं है। जो सदन में बैठे उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी नहीं है, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप इंडियन है या नहीं है? आपको बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा कि इंडियन है या नहीं है, क्योंकि अब तक तो वो नेशनलिज्म का देते थे, आप सिटीजन कब के देंगे?
0: इसीलिए तो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि एनआरसी लागू कर देते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक है। तब तो आप लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं हम, पेपर नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों डॉक्यूमेंट दिखाएं हम?
3: देख, समस्या ये है कि सरकार की नियत ये है कि एक वर्ग के लोगों को डुअल सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए और आप ये CAA के जरिए बाकी लोगों को इंक्लूड करा दिया जाए, और जो लोगों की नागरिकता जाएगी ओबीसी क्लास और एससी क्लास की, उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाए और उनको एक एहसान के तौर पर सिटीजनशिप दे दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रीप्लान्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें मुसलमानों और दलित और ओबीसी क्लास इंपैक्ट होगा और एनआरसी एक
0: करने पासपोर्ट के एक्ट सेक्शन पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 2A के तहत जो एक्ट में यहां पर पढ़ रहा हूं उसमें तो साफ नजर आता है कि अथॉरिटीज पासपोर्ट आपको रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उन्हें पता चले कि आप सिटीजन नहीं है। मतलब कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है उसे अथॉरिटीज कह सकती है कि हम तो और आमतौर पर आपके पास तो पासपोर्ट होगा, मेरे पास भी पासपोर्ट है, मुझे पता है कि सारे आपको जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, आपको ये दिखाना पड़ता है आप कहां रहते हैं क्या करते हैं, पुलिस आके वेरिफिकेशन करा के जाती है और उसके बाद आपको पासपोर्ट थमा दिया जाता है, उसके बावजूद भी पासपोर्ट सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं माना जाएगा?
4: बिल्कुल साहिल भाई, आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा और आज विपक्ष को यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है उसका मैं कारण दे दूं। आज हम जानते हैं 25 जून का दिवस है,
0: ठीक,
4: इमरजेंसी का एक काला जो अध्याय लिखा गया था कांग्रेस सामने उसको इनको छिपाना है। उनके बड़े नेता है राहुल गांधी, उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई कि सुनामी आने वाला है, क्रूड के दाम 4 महीने के नीचे चले गए, महंगाई दर जो है कंट्रोल में है, आज उनके नेता ने माफी मांगी, आज मध्य प्रदेश के सीएम के पुत्र का अपमान करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप रोड नामकरण हो गया हैदराबाद में, सीएजी गृहलक्ष्मी स्कीम में कर्नाटक में इनका करप्शन बाहर आ गया। तो साहिल भाई आज कांग्रेस को अपनी दुकान आज के दिन चलाने के लिए, नहीं तो ये आपकी जो डिबेट है इमरजेंसी पे होने वाली थी, तो ये तो इनकी मजबूरी थी कि ये करना पड़े। बाकी जो आप जो तथ्यों की आप बात करें,
0: तो ओवैसी क्यों ट्वीट करना चाहिए, कांग्रेस का छोड़ दीजिएगा, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस को एक मिनट
4: सुन लीजिए,
0: एक एक मिनट
4: दिखा रहा हूँ,
0: मुझे बता दीजिएगा कि
4: दिखा रहा हूँ,
0: अरे ओवे रोहन गुप्ता जी एक सेकंड, कांग्रेस का मुद्दा है नहीं यहाँ पर, ओवैसी जावेद अख्तर न जाने कितने लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, जावेद अख्तर तो कांग्रेस के है नहीं, जावेद अख्तर का ट्वीट दिखा दीजिएगा, वो पूछ रहे अगर ऐसा है तो भाई मेरे पास जो पासपोर्ट है उसके आधार पर, हाँ मतलब उनका जवाब दीजिए ना, कांग्रेस को छोड़ दीजिएगा, इमरजेंसी पे डिबेट हम लोग हर साल कर चुके हैं।
4: मैंने जवाब नहीं देने का नहीं बोला साहिल भाई, मैंने कांग्रेस की मजबूरी, अब जवाब पे आ रहा हूँ, ये मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूँ जो 2025 की है, कोलकाता की न्यूज है, जहाँ पे 400 से ज्यादा बांग्लादेशी फेक इंडियन पासपोर्ट के साथ पकड़े गए और ये पासपोर्ट जो इश्यू हुए थे कलकत्ता की पासपोर्ट ऑफिस से फर्जी डॉक्यूमेंट पे इश्यू हुए थे। मैं आपको ये खबर इसलिए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पासपोर्ट जब हम लेने जाते हैं तब ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पर जिस प्रकार की हमारी सरकारें रही हैं, अगर 400 बांग्लादेशी को इंडियन का फेक पासपोर्ट इश्यू हुआ तो हमको सबको देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोसेस जो हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं। और 2013 में आज जो कांग्रेस उछल उछल के बात कर रही है, जब उनकी सरकार थी 2013 में तभी हाईकोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, अंतिम नहीं है, इट कैन बी वन ऑफ द एविडेंस, इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। और 1967 में जो केस हुआ था उस केस के बाद में इंडियन पासपोर्ट एक्ट का गठन किया गया और वहां के प्रोविजन है धारा 20 के तहत इंडियन गवर्नमेंट हैज पावर टू इश्यू पासपोर्ट इवन टू द नॉन सिटीजन इन स्पेशल केस। तो इवन बाय डेफिनेशन आल्सो ये जरूरी नहीं है कि भी जो वो प्रमाण एकमात्र प्रमाण है, इट कैन बी वन ऑफ द एविडेंस। और साहिल भी ये सवाल कौन लोग पूछ रहे हैं, कल जब SIR की प्रक्रिया हो रही थी तब यही कांग्रेस पार्टी के नेता उछल उछल के कह रहे थे कि क्या SIR की प्रक्रिया से नागरिकता तय की जाएगी, इंडियन सिटीजन एक्ट तय करेगा। अब आप पासपोर्ट पे आ गए तो आप इमोशनल हो गए, तो आज ये डिबेट का जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है, इनकी मजबूरी है क्योंकि किसी और मुद्दे से उनको ध्यान भटकाना है।
0: ठीक है निखिल अंबर जी, आप जरा समझा दीजिएगा आपकी मजबूरी क्यों नहीं है और अगर है तो क्यों है वो भी समझा दीजिएगा।
5: साहिल भाई बड़ी अचंभे की बात है कि पिछले 12 वर्षों में विश्व गुरु बन गए मोदी जी बिना कागज के, लेकिन वही विश्व गुरु भारत की जनता को, भारत के नागरिक को ये नहीं बता पाए कि भारत का नागरिक अपनी नागरिकता किस कागज से साबित करे। अरे फोन में घुस गई है साहिल भाई बीजेपी, इतने सालों से KYC हो गया, फोन नंबर जो है वो बैंक से लिंक हो गया, बैंक आधार से लिंक हो गया, आधार पैन से लिंक हो गया, पासपोर्ट बन गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, डिजिटल इंडिया के ढोल पीट दिए, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं बता पाई कि भारत की जनता अपनी नागरिकता कौन से कागज से साबित करे। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ का ढोल पीट दिया, बताओ तो कौन सा कागज दिखाना है। और ये वही सरकार है ना, और ये वही पार्टी है जिसका जो रिकॉग्निशन है वो NRC के बेसिस पे है, वो अपने आप को अपने जो उनके नेता है और इनकी जो नेतागिरी है, इनकी जो राजनीति है वो NRC सिटीजनशिप एक्ट और CA के इर्द गिर्द भिन भिन आती रहती है मक्खी की तरह। अरे जब भिन भिन आ ही रही है आपकी राजनीति तो बताओ ना कौन सा कागज दिखाना है, ऐसे ढोल पीट के क्या होगा। असल में क्या है ना साहिल भाई, इनकी नीयत ही नहीं है कि ये बताएं कि कौन सा दस्तावेज दिखाना है। मैं तो कह रही हूं जनता के सामने ये खुद एक्सपोज हो गए। कांग्रेस पार्टी बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलती है और आज दोबारा आपके चैनल के माध्यम से जनता को बोलना चाहती हूं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी EVM के साथ गड़बड़ कर रही है और वोटर मैनिपुलेशन कर रही है। कल को अगर भारत की जनता को अपनी नागरिकता साबित करनी है तो उसको भारत की जनता को अपना वोट EVM में डालना पड़ेगा, कमल का बटन दबाना पड़ेगा। वो लिस्ट निकालेंगे बीजेपी वाले, वो लिस्ट निकालेंगे मोदी जी और अमित शाह, और उसी लिस्ट के आधार पर हमको नागरिकता दे दी जाएगी। वरना बताइए 12 सालों में ऐसा तो है नहीं साहिल भाई कि इन्होंने सीए का कानून टच ही
6: नहीं, लेकिन निकट
5: ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रंथ था।
6: ये बात तो कोई पहली बात नहीं है रोहन गुप्ता यहाँ पर कह रहे थे, उस मुद्दे का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये पहली बार तो कहा नहीं गया है। पासपोर्ट दिन था उस दिन, एक बार फिर पासपोर्ट के बारे में सरकार की भूमिका क्या है वो सरकार की तरफ से रखी गई थी, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, ये बात भी सही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट एक सबूत हो सकता है नागरिकता का, लेकिन वो कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता मिलेगी। नॉन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट दिया जाता है, हालांकि उस पे लिखा होता है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन हम इन्हें विशेष स्थिति में पासपोर्ट मुहैया करा रहे हैं, ये उस पे लिखा जाता है। तो निकट आज की स्थिति में कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए 134 करोड़ लोगों के पास में आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? नहीं है। 97 करोड़ लोगों के पास में वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन चुनाव आयोग उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मानती है क्या? नहीं मानती है। 15 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, लेकिन 15 करोड़ लोग नागरिक है यह प्रमाण पत्र माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो क्या इस देश में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है अभी कांग्रेस पार्टी को, कि जिसके वजह से हम कह सके आंख बंद करके कि अगर यह डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप भारत के नागरिक है? क्या यह स्थिति आज भारत में आ चुकी है या नहीं, क्योंकि एनआरसी को कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था।
5: साहिल भाई, कांग्रेस पार्टी ने ना लगातार अपने नागरिकों को वो स्पष्ट किया है कि नागरिकता आपके पास है, और हर तरीके से आधार कार्ड भी शुरुआत सिस्टम जो किया था वो कांग्रेस पार्टी ने करा था, बीजेपी ने नहीं करा था, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रही हूं आज, क्योंकि ये तो बीजेपी कहती है ना, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैं तो सरकार में हूं नहीं, सरकार में तो बीजेपी, जैसे मैंने कहा इनकी तो राजनीति सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर टिकी हुई है, ये तो उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। जब उसके इर्द गिर्द भिन भिना रहे हैं मधुमक्खी की तरह आप, तो आज जब आपने जीएसटी बदल दिया, जब आप ट्रिपल तलाक लिया है, आपने 370 हटा दिया, आपने जितने कुछ अमेंडमेंट्स भी कर दिए लॉज में, जब आप ये सारे काम कर ही चुके थे तो आप ले आते हैं। जब आप कह रहे हो आज आपकी सरकार को स्पष्ट करना पड़ रहा है आपकी सरकार में कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, जब आप ये स्पष्ट कर रहे हो, मेरा एक साहिल जी सिंपल सा सवाल है कि जनता में एंग्जाइटी क्यों डालनी है, कागज दिखाओ कागज दिखाओ की, पहले बताओ कि कौन सा कागज दिखाना है, पहले बताओ कि आपने क्या 12 वर्षों में इस चीज के लिए क्या एक सिस्टम बनाया गया कि सिटीजनशिप आप दे रहे हैं, या आप ये सिस्टम बना रहे हैं सिटीजनशिप आप उनकी छीनेंगे।
6: ये एनआरसी को लागू कराने का फैसला 2019 में लिया गया था, तो आखिरकार आप देखिए, आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट, चलिए मान लिया ठीक है, और ये पहले भी भूमिका रही है, कुछ तो डॉक्यूमेंट हमें दीजिए ना। एक तरफ तो सरकार कहती है कि देखिए पासपोर्ट देश की इज्जत है, जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, मैं आपको चाहिए तो सुना देता हूं, और दूसरी तरफ कहती है कि भाई वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा क्या कहते हैं सबूत है। तो कोई तो डॉक्यूमेंट बना दीजिए ना, सरकार क्यों नहीं करती इस बात को भाई? एनआरसी भी फुल प्रूफ होगा, उसकी क्या गारंटी है? असम में क्या होगा आपको पता है?
4: मैं वही बताता हूँ, पासपोर्ट देश की इज्जत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट की शक्ति क्या वो है, पर इसको नागरिकता का प्रमाण नहीं होने से देश की इज्जत नहीं रहेगा, ये तो मतलब ही नहीं है। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को घुमा घुमा के पूछे कहाँ चली गई 370 ये वो, और उन्होंने ही मांग कर दी एनआरसी की, मैंने मांग नहीं करी। ये डिबेट किस चीज पे हो रही, जिस प्रकार से एक इमोशनल आउटबर्स्ट आया, अरे देखिए सरकार ये कह रही, दिस इज अ टेक्निकल पोजीशन विच इज करेक्ट, जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी
6: तो नागरिकता का प्रमाण क्या है आज की स्थिति में? रोहन गुप्ता जी, सरकार के तरफ से इतना बता दीजिएगा नागरिकता का प्रमाण क्या है? साहिल जोशी इस देश के नागरिक है, इसका प्रमाण में क्या दूं लोगों के सामने जाकर?
4: सिटीजंस एक्ट के तहत देयर इज नो सिंगल लिस्टिंग, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, दैट इज अ मल्टीपल थिंग्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको साहिल भाई,
6: ऐसे सरकार ने देखकर तो पासपोर्ट मिलता है ना रोहन जी,
4: मैं आपको जवाब दे रहा हूँ,
6: कल आपको भी पूछा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक है कि देखिए एक मिनट रोहन गुप्ता जी, आपके पास पासपोर्ट है, मैं मान के चलता हूं आपके पास पासपोर्ट होगा, मैं मान के चलता हूं आपके पास आधार कार्ड होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास पैन कार्ड भी होगा। ये चारों डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी क्या रोहन गुप्ता ये दावा कर सकते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं? क्या आप ये दावा कर सकते हैं?
4: मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखा, मैं आपको बता रहा हूँ साहिल भी, आपका जवाब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, यहाँ पे सरकारों की जो इच्छा शक्ति उसके ऊपर आ रहा हूँ। अगर 400 बांग्लादेशियों को कलकत्ता पासपोर्ट ऑफिस से गलत डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के ऊपर पासपोर्ट इश्यू होगा, क्या उसका वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है? यही देश है जहां पे एसआईआर में 65 लाख लोग जब निकाले जाते हैं तब ये राजकीय पार्टी घुसपैठियों के सारे सरकार बनाने के लिए एसआईआर का विरोध करी, इलेक्शन कमीशन का विरोध करी। अरे आपका विरोध किस चीज का है? क्या सरकार में जो सरकार का काम है धीरे धीरे चीजों को क्लीन करना, और जब भी ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है तब ये उछल उछल के विपक्षी दल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एसआईआर किसके लिए था? क्या हमने नहीं देखा गाजीपुर बॉर्डर पे वहां पे कितनी लंबी लाइन लगी पश्चिम बंगाल में? वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि सबको मालूम चल गया डॉक्यूमेंट तो था पर वो फर्जी डॉक्यूमेंट था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उनके एमएलए के डॉक्यूमेंट के आधार पर
6: असम के भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी एनआरसी रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? असम के भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उसका? क्यों नहीं उसको
4: वो जारी की जा रही है? जो हुआ साहिल भाई उसके बाद में जो ये फैक्ट आए गए कि जिस प्रकार से परफेक्शन से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गलतियां पाई गई, उसको वापस किया जाएगा। इट इज अबाउट द वेरी ग्रेजुअल, इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। 140 करोड़ भारतीयों की नागरिकता को ठीक करना इट विल टेक अ टाइम। और जब एनआरसी का बात की बीजेपी ने तब ये लोग उछल उछल के उसको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में चले गए। आपको समझना पड़ेगा तो जब तक सारी सरकारों की इच्छा नहीं होगी तब तक ये चीज पर नहीं पहुंच सकते हैं।
6: ठीक है निकट जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे आशुतोष और रजत सेठी के पास भेजा।
5: कोई नहीं, मैं तो रोहन भाई प्लीज आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से वहां गए हैं, मैं यहां आई हूं, हमें सिर्फ इतना ही पता है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है वो नहीं पता। स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा पढ़ तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं। अस्पताल में डॉक्टर है इलाज कर तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं।
4: सीरियस डिबेट करिए ना, ये कोई भाषण रैली में दे रही है क्या? पत्रकारिता आपको नहीं मालूम है
5: भारत के नागरिक है या नहीं है पता नहीं?
4: अरे भैया आपकी सरकार ने 2013
5: में ढोल पीट रहे हो,
4: भाषण मत करिए। आप बताइए 2013 में आपकी सरकार ने स्वीकार किया था उसी का डिबेट कर रही है? 2013 का उनसे सवाल पूछ लीजिए, भाषण का मंच तो है, उनके पास सवाल का जवाब
5: आपने बदलने की तैयारी कर ली थी तो आपने कागज क्यों नहीं? 2013
4: का जवाब दे दीजिए निगर जी, तो अभी आप गई है कांग्रेस में 2013 में, उसका जवाब दे दीजिए। क्या हुआ था उसका जवाब दे दीजिए, क्या आपकी सरकार ने माना था?
6: ठीक है शोर
5: आपके मीडिया प्रमुख
6: निकट अब्बास जी, रोहन गुप्ता जी, निकट अब्बास एक मिनट देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए जब से वो विदेश मंत्रालय का बयान आया है ना उसके बाद से देश का हर नागरिक थोड़ा सा कंफ्यूज है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर वो भारतीय नागरिक है कि नहीं। इस डिबेट से और कंफ्यूज ना हो इसकी कोशिश हम करेंगे प्लीज। आशुतोष, क्या यह मामला सिर्फ टेक्निकल बनकर रह जाएगा या सचमुच में यह ज्यादा डीपर मामला है, इस पे थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से देखने की जरूरत है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनआरसी लागू कराने की तैयारी इसी बयान के बाद एक तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक लागू इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि उसकी दिक्कतें सभी को पता है और असम में क्या हो गया वो भी सभी को पता है। क्या इसके अलावा हमें इस पे कुछ देखना चाहिए?
7: देखिए साहिल, जो चालाक सरकारें होती हैं वो बहुत करीने के साथ वो हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश करती है, जहां क्राइसिस नहीं होती वहां क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस चक्कर में फंसा हुआ है कि राम मंदिर के मसले पे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, नीट और उन सब सवालों को लेकर सरकार फंसी हुई है। तो आप पूरे डिबेट को ही, डिबेट जो नैरेटिव है उसको ही आप बदल दीजिए, और ताकि लोग अब जो है वो नागरिकता के सवाल पर उलझ के रह जाएं तो राम मंदिर के ऊपर चर्चा ना हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे उस पर चर्चा ना हो। दरअसल ये एक कोशिश, ये दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस देश के अंदर कोई ये मानेगा कि मेरे पास पासपोर्ट है और मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? अगर ऐसी स्थिति है कि मेरे पास पासपोर्ट में इस देश का नागरिक नहीं हूं, अगर मेरे पास आधार कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास पैन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में नागरिक नहीं हूं, मेरे पास राशन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट के मेरे पास है फिर भी मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो फिर इस देश में 140 करोड़ में एक भी आदमी नागरिक नहीं है। तो भारत सरकार दरअसल कहना चाहती है कि यह देश नागरिक विहीन सरकार देश हो चुका है, यहां कोई भी नागरिक नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं जिसके आधार पर साबित कर दे कि वो भारत की वो भारतीय है या भारतीय नहीं है। लेकिन ये कोशिश, ये क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और लोगों को जो है वो राम मंदिर के मसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं,
6: ये डिबेट बड़ी दिलचस्प होते जा रही है। क्योंकि जो नागरिक शास्त्र में मैंने स्कूल में पढ़ा था, भारत की प्रथम नागरिक इस देश की राष्ट्रपति होती है,
7: साहिल को कैसे पता चलेगा?
6: देखा आप थोड़े सर को हाथ लगा रहे थे।
7: साहिल साहिल ये
8: आप लोग ना देखिए साहिल जी मेरा एक बड़ा एक हम्बल ओपिनियन यहाँ पे है। आप लोग आशुतोष जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए तकनीकी डिबेट्स होती है ना, तकनीक तरीके से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि टेक्निकलिटीज सामने रखी जा सके। ठीक है, आपको अगर टेक्निकलिटीज में 1951 में शुरू करना पड़ेगा, 1951 में जब रजिस्टर बनाया गया सिटीजन्स का, तो आप उस टाइम पासपोर्ट बांट देते तो वही सिटीजनशिप बन जाती है। सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट ये स्टेट की एक अथॉरिटी होती है और जो नागरिक होते हैं उनको वो बेस्टो की जाती है, वो स्टेट उनको नागरिकता देता है। और नागरिकता देने के का जो जेनेसिस था, वो जेनेसिस जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1951 में, एक कारण था 1951 में जब इन्होंने पीपल्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया, और उसके बाद उस सिटीजन रजिस्टर का हर 10 साल में अपडेशन होना जरूरी था। और आप सिटीजन कैसे बनते हैं, आप आपका उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा है, दो ही रास्ते हैं, नेचुरलाइजेशन अगर आप यहां पे 11 साल रहे हो तो आप उसके माध्यम से आप सिटीजन बन सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी सिटीजन के बच्चे हो और उसका रजिस्टर अपडेशन लगातार होता रहता है। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, ये स्वतः ही आप नागरिक हैं, इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी कागज होगा वो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, और बहुत सारी इसमें गड़ी हुई टेक्निकलिटीज और नुएंसेस हैं, वो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब ये
6: तो चलिए बेसिक सवाल से शुरू करते हैं,
8: क्यों आया?
6: ठीक है,
8: नहीं साहिल,
6: मैं टेक्निकल
8: क्यों आया,
6: मैं टेक्निकल
8: नहीं, क्योंकि यहां
6: साहिल जी मैं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, फिर
8: बॉर्डर स्टेट्स में मैं काम कर चुका हूं, मैं आपको वहां से बताता हूं, आधार की दुकानें लगी हुई थी, जो आधार जिस तरह से रोल आउट किया गया, सहजता को रखते हुए, ईज ऑफ आधार इंश्योरेंस को रखते हुए ध्यान में कई लोगों को आधार मिला, आधार से क्या हुआ, बेसिस बन गया पासपोर्ट ले लेने का, तो लोकल लेवल पे जाते थे, आधार का कार्ड दिखाते थे और उसके बेसिस पे पासपोर्ट, क्या ये बोनाफाइड तरीका है? अगर है तो उसमें जो भी लीकेजेस हुई है,
6: रजत
8: क्या हुई है,
6: आप
8: वो राइट नहीं मान सकता,
6: आपने आपने अगर आप अगर मूलभूत मुद्दा
8: राइट है,
6: आप अगर मूल मुद्दा आप अगर बेस से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बड़े दिलचस्प बात है, इसलिए मुझे सवाल पूछना है। देखिए पासपोर्ट और आधार कार्ड में सबसे बड़ा फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है, जब आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है तब वहां की लोकल पुलिस आपके घर आकर वेरिफिकेशन की प्रोसेस कराती है, वहां की ब्रांच आपके यहां पर आप भेजकर आदमी को भेजकर पुलिस कर्मी को भेजकर वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, नंबर एक। लेकिन दूसरी बात, यहां पर आपने एक बहुत बेसिक डिबेट यहां पर छेड़ी है, मुझे उस पर जाना है, क्या कारण है कि ऐसी अगर बात है तो 1952 के बाद एनआरसी की प्रोसेस इस देश

0: बेसिकली एक ऑल्टरनेट वेंडर, इसलिए मैंने कहा ये पूरी की पूरी जो
1: अपने आप को
0: आपने
1: जो
0: बिल्कुल
1: लोग
0: सही कहा
1: राजनीतिक
0: कि
1: विशेषज्ञ
0: भाई
1: कहते
0: जब
1: हैं,
0: आज जब
1: जो
0: अगर
1: चैनल
0: आप
1: पे
0: अगर
1: डर फैलाने का
0: पासपोर्ट
1: काम
0: नहीं मानते
1: करते
0: हैं
1: हैं, अब
0: कि
1: इन्होंने
0: लोकल
1: अपनी बात की
0: लोकल
1: शुरुआत
0: इंटेलिजेंस
1: की।
0: का आदमी
1: मैं इनके
0: रोहन
1: बीच में
0: गुप्ता,
1: नहीं
0: मैंने
1: बोला,
0: इनपे
1: इनको
0: आपके नहीं
1: करवाइए,
0: बोला, मैं ना
1: इनको
0: रोहन
1: बताइए
0: गुप्ता,
1: उनका
0: मैं ना
1: समय।
0: अजीत
1: ठीक
0: बेदी
1: है,
0: बोला, आप चुप
1: आज
0: रहिए।
1: जो जवाब
0: शिवराम
1: दिया,
0: भैया, आप चुप
1: रोहन
0: रहिए,
1: गुप्ता,
0: मुझे नहीं बोला।
1: आप जरा
0: रोहन
1: सुनिए,
0: गुप्ता
1: पहले
0: जवाब देंगे, रोहन
1: इनका
0: गुप्ता जवाब
1: मुकाबला
0: देंगे,
1: यही
0: आप
1: है
0: डराने
1: अपना
0: की कोशिश
1: बोलने
0: कर
1: का,
0: रहे
1: आप
0: हैं,
1: पहले सुन नहीं रहे हैं,
0: सिर
1: इनको
0: के
1: पहले
0: बल
1: सुनवाइए, इनसे
0: पूरा
1: काम
0: पूरा
1: चलाओ आप
0: जो
1: लोगों का। ये
0: पूरा
1: तो मैं सिर्फ
0: पूरा
1: ये कह रहा हूँ
0: आशुतोष
1: भाई, मैं ये कह
0: आशुतोष
1: रहा
0: ये
1: हूँ कि
0: कहने की कोशिश
1: पासपोर्ट
0: कर
1: आपने
0: रहे हैं
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: सारा
1: कहा,
0: लॉजिक सिर
1: लोकल
0: के बल
1: पुलिस वाला
0: बनाने की
1: आता
0: कोशिश
1: है,
0: चल रही है, और
1: इन्वेस्टिगेशन
0: कहीं ना
1: करता
0: कहीं
1: है,
0: लोगों को
1: आपने
0: डराने
1: रिपोर्ट
0: की
1: देता
0: भी
1: है,
0: कोशिश इस
1: उसके
0: पे चल
1: आधार
0: रही
1: पे
0: है।
1: फैसला
0: रोहन गुप्ता
1: करेंगे,
0: इसका
1: आपको
0: जवाब देंगे,
1: रिपोर्ट देता है,
0: इनको चुप करवाएंगे, इनके साथ
1: ठीक है,
0: आवाज नहीं आ रही। देखिए अभी ये लोग जो डर
1: बोलिए
0: फैला
1: रोहन
0: रहे हैं,
1: गुप्ता,
0: शुक्रिया
1: आपका
0: दिनेश
1: जवाब।
0: साहब
1: बीच
0: कि
1: बीच में बकवास बकवास
0: मेरे
1: करते हुए
0: पास
1: चुप कराइए,
0: पासपोर्ट है तो भी मैं देश
1: ये
0: का
1: बीच में
0: नागरिक
1: सबको
0: नहीं हूँ,
1: डिस्टर्ब करते हैं
0: आधार
1: रोहन
0: कार्ड
1: गुप्ता,
0: है
1: बीच
0: तो भी
1: में
0: मैं
1: सबको
0: देश का
1: डिस्टर्ब
0: नागरिक
1: करते
0: नहीं
1: हैं,
0: हूँ, ये डर क्यों
1: कम
0: फैला
1: से
0: रहे
1: कम
0: हैं?
1: राष्ट्रीय
0: ये डर
1: पार्टी
0: क्यों
1: की
0: फैला
1: प्रवक्ता
0: रहे
1: है,
0: हैं?
1: थोड़ी
0: आज
1: तो
0: पूरा
1: कब्जियत
0: देश
1: खा
0: को
1: दो
0: सिर
1: यार,
0: से, मैं
1: थोड़ी
0: इनके बीच में
1: कब्जियत
0: नहीं
1: कर
0: बोला,
1: दो।
0: इनको चुप करवाइए आप, इनको आवाज नहीं आ रही शायद।
1: बोलिए रोहन गुप्ता,
0: सुनिए,
1: बोलिए।
0: अपने अभी इन्होंने डर फैलाया
1: नहीं
0: सारे
1: नहीं
0: भाई
1: रोहन गुप्ता,
0: कि
1: ना
0: देखिए
1: थोड़ी
0: मेरे
1: कब्जियत
0: पास
1: खींच जाइए
0: पासपोर्ट
1: भाई,
0: है, फिर भी देश
1: राष्ट्रीय
0: का
1: पार्टी की
0: नागरिक नहीं
1: प्रवक्ता
0: हूं,
1: है,
0: आधार है, ये डर क्यों फैला रहे हैं? आज ये कहा गया, और ये स्टैंड पूरी पुरानी सरकारों का एक टेक्निकल स्टैंड है कि भाई ये दिस इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। ये नहीं कहा कि एविडेंस नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सिर्फ पासपोर्ट है, तो क्या मैं देश का नागरिक हूं? कोई भी डॉक्यूमेंट सिटीजंस एक्ट के तहत नाइदर आधार कार्ड नॉर पासपोर्ट नॉट इलेक्शन कार्ड नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द सिटीजनशिप। वही कहा गया, डर क्यों फैला रहे हैं आप? और एनआरसी का भी आप खिलाफ करेंगे, जब सरकार ने इनिशिएट नहीं,
1: किया उसके खिलाफ आप तुष्टिकरण के नाते खड़े हो गए। साहिल भाई मैं वापस उस चीज पे आ रहा हूं,
0: तो
1: जो
0: आप
1: 400
0: एनआरसी लागू
1: लोगों को
0: कराएंगे कि नहीं कराएंगे? रोहन
1: हमें
0: गुप्ता,
1: हमेशा
0: आप
1: समय होगा
0: एनआरसी
1: तो
0: लागू कराएंगे कि नहीं कराएंगे?
1: वापस साहिल भाई, जो जो देश में विपक्षी सरकारों ने तुष्टीकरण करके एनआरसी के खिलाफ पूरा माहौल किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करके 100% देश के लिए हितावह है कि ये हो, पर उसमें जिस प्रकार से विपक्षी
0: कब
1: नेताओं
0: कराएंगे,
1: द्वारा तुष्टीकरण की
0: कब
1: राजनीति की
0: कराएंगे, और
1: जाती है,
0: कौन से डॉक्यूमेंट्स
1: बिल्कुल
0: के
1: होगा,
0: आधार पर
1: समय आएगा,
0: कराएंगे,
1: 100%
0: कब
1: होगा,
0: कराएंगे, और
1: वो
0: कौन से
1: प्रक्रिया
0: डॉक्यूमेंट्स के
1: होगी।
0: आधार पर कराएंगे?
1: देखिए वापस बोल रहा हूं, जो सिटीजन एक्ट में कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके हो, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट हो, आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स हो, आपके कास्ट डॉक्यूमेंट्स हो, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट बन सकता है, पासपोर्ट के बेसिस पे आधार कार्ड बन सकता है, और ये जो लोग इश्यू कर रहे हैं वो लोगों की
0: घुमा
1: इच्छा
0: फिरा
1: शक्ति,
0: कर
1: देखिए
0: चर्चा
1: आप
0: उसी बात पर आकर रह जाती है। आप जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र इस पे कर रहे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तो पासपोर्ट इशू किया जाता है। शायद आप
1: मैं आपको
0: चौहान,
1: वही
0: आप
1: तो
0: कुछ
1: बोल रहा हूं,
0: ऐड करना चाह
1: और
0: रहे थे, आप
1: 400
0: बता दीजिए,
1: लोगों
0: उसके बाद
1: को,
0: रजत सेठी के पास चलूंगा मैं।
1: मैं
0: हाँ
1: वापस साहिल भी 10 सेकंड आपके मिल रहा हूं,
0: साहिल
1: कोई
0: भाई,
1: टेंशन
0: रोहन
1: नहीं,
0: भाई सुन लीजिए, रोहित
1: बोलिए।
0: भाई, रोहन
1: एक
0: भाई,
1: एक
0: रोहन
1: मिनट
0: भाई,
1: शादाब, एक
0: साहिल
1: मिनट, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, 10 सेकंड, उनको और कुछ ऐड करना है प्लीज।
0: भी
1: रोहन
0: मैं सिर्फ
1: गुप्ता, आपकी
0: इतना
1: बात
0: कह रहा
1: खत्म
0: हूं,
1: कर, मैंने आपको एक एविडेंस दिखाया कि अगर कलकत्ता में बांग्लादेशियों को 400 फर्जी पासपोर्ट दिए गए क्योंकि आधार कार्ड वहां से इशू हुआ था, तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया को हम क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सरकारें रही हैं कि जिन्होंने तुष्टीकरण के नाते अपनी राजनीति के चलते देश का हित पीछे रख दिया, इसकी शुरुआत हुई है, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा,
0: ठीक
1: हंड्रेड
0: है, तो
1: परसेंट
0: अब तक
1: एनआरसी
0: एनआरसी
1: होना
0: लागू
1: चाहिए
0: न
1: और देश के
0: कराना,
1: लिए
0: ये भी तो
1: जरूरी है,
0: सरकार की नाकामी मानी जाएगी ना? अब तक
1: बिल्कुल
0: एनआरसी
1: नहीं,
0: लागू न कराना, ये भी तो सरकार की
1: बिल्कुल नहीं,
0: नाकामी मानी जाएगी।
1: सरकार को जिस प्रकार से,
0: आप असम में
1: देखिए
0: नहीं लागू
1: अभी
0: कर पाए
1: जो
0: एनआरसी,
1: आपकी आपकी
0: असम में तो
1: डिबेट में जो
0: डबल इंजन की
1: अभी
0: सरकार है, दो दो बार
1: वापस
0: डबल
1: बोल रहा
0: इंजन की
1: हूं,
0: सरकार
1: जो
0: है, फिर भी
1: आपकी
0: एनआरसी नहीं
1: आपकी
0: लागू करा
1: डिबेट
0: पाए।
1: में जो जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, जो देश में माहौल फैलाने का काम किया, उसमें भी तुष्टीकरण लेके आए, अरे एनआरसी आ जाएगा, इस धर्म के लोगों का ये चला जाएगा वो जो एसआईआर को मानने को तैयार नहीं है साहिल भाई, उनको अब ये एनआरसी मना पाएंगे? पर करेगी ये सरकार धीरे धीरे, एक एक स्टेप, बिकॉज घुसपैठियों का मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये हमने देख लिया, चुनावी मुद्दा नहीं है, अगर चुनावी मुद्दा होता तो चुनाव
0: शादाब,
1: के बाद में गाजीपुर बॉर्डर पर इतने घुसपैठिए नहीं बैठे होते, आज कांग्रेस और टीएमसी के मुंह पे
0: ठीक है,
1: तमाचा है,
0: शादाब जवाब
1: कब तक आप
0: दीजिएगा।
1: अपनी राजनीति के लिए देश को
0: जो
1: खतरे
0: मुझे
1: में
0: समझ में आ
1: डालते
0: रहा
1: हैं?
0: है, जितना जितना अब तक के डिबेट में मुझे समझ में आ रहा है, दरअसल बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि फेक पासपोर्ट बन जाते हैं, इसके लिए पासपोर्ट को भी पूरी तरीके से माना नहीं जा सकता। इस देश में और पूरी दुनिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है कि जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, और बड़े बड़े देशों ने इसकी कोशिश करके देख ली है। तो क्या हमें कुछ ना कुछ तो चीज माननी पड़ेगी? शायद आप चौहान जवाब दीजिएगा, उसके बाद रजत जी के पास चलूंगा मैं एक बार फिर।
2: साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है कि आपने सिस्टमेटिक फेलियोर को, डुप्लीकेसी की वजह से आप 140 करोड़ लोगों को आप नागरिकता पे डाउट कर लेंगे, और 400 आप फेक पासपोर्ट का बात कर रहे हैं, उनको किसी पुलिस ऑफिसर ने वेरीफाई किया होगा ना, उनपे कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड जनरेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है पासपोर्ट, इसमें बाकायदा पुलिस ऑफिसर वेरीफाई करने जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, और फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, कोई ऑटोमेटेड नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बात, मुझे पता था कि वो सेक्शन 20 का जिक्र करेंगे रोहन भाई, क्योंकि बाईपास तलाशने में और जलेबी की तरह घुमाने में बीजेपी के लोग एक्सपर्ट हैं। आप सेक्शन 20 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जहां इंडियन सिटीजन मैंडेटरी है। आप

0: प्रथम नागरिक और प्रधानमंत्री जी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भारत के प्रमाण है, भारत के नागरिक है, उनके पास भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों को आपने कभी गैस के लिए लाइन में लगाया, कभी नोट के लिए लाइन में लगाया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजनशिप का फिर आप आम नागरिक पे डाल देंगे SIR के थ्रू, जो अभी
1: आप
0: प्रोसेस
1: एनआरसी
0: होकर के आ
1: मानेंगे
0: रहा
1: कल
0: है।
1: होगा तो? आप
0: रोहन
1: एनआरसी
0: भाई,
1: मानेंगे? हाँ या
0: भारत के
1: ना,
0: लोगों को आप इसमें
1: आप
0: लगाएंगे और
1: मानेंगे?
0: धरना
1: सवाल
0: प्लेटो
1: सवाल
0: को
1: मत
0: आप
1: पूछिए,
0: तबाही
1: आप
0: कराएंगे,
1: एनआरसी
0: आप
1: मानेंगे?
0: अमेरिका के दबाव में
1: बताइए
0: कार्य
1: डिबेट पे,
0: करेंगे, ये सब नहीं
1: दो में
0: करने
1: से एक
0: वाला
1: बात
0: है।
1: बोलिए।
0: अच्छा आप
1: मैं आपको
0: बताइए, आप भारत के
1: क्वेश्चन
0: नागरिक
1: नंबर
0: करना चाह
1: पूछूं,
0: रहा हूँ, आप भारत
1: एनआरसी
0: के नागरिक
1: मानेंगे
0: नहीं
1: ना?
0: है?
1: क्या
0: मैं बोल
1: सवाल
0: रहा हूँ
1: बात
0: आप
1: कर रहे हैं
0: भारत
1: ना?
0: के नागरिक
1: हाँ
0: नहीं
1: या
0: है,
1: ना
0: साबित
1: बोलिएगा?
0: करिए।
1: हाँ या
0: साबित
1: ना
0: करिए आप
1: बोलिएगा?
0: भारत के नागरिक नहीं, मैं
1: आप
0: चुनौती
1: मानेंगे
0: दे रहा
1: नहीं,
0: हूँ आपको।
1: आपको मानो कि
0: आप
1: आप
0: भारत
1: एनआरसी
0: के नागरिक
1: मानेंगे?
0: नहीं है,
1: हाँ या
0: आप
1: ना,
0: साबित करिए आप।
1: आपको मानना भी नहीं है और
0: और
1: सवाल
0: मैं
1: पूछना
0: चैलेंज
1: भी
0: कर रहा हूँ कि
1: जबरदस्त
0: आप
1: नहीं
0: भारत के
1: होगा।
0: नागरिक नहीं है, प्रूव
1: आपके
0: करके
1: नेता को
0: दिखाइए
1: पूछिए कि क्या एनआरसी
0: सर।
1: मानेंगे
0: आप
1: और
0: प्रूव करिए कि
1: तुष्टीकरण की
0: आप भारत के
1: राजनीति करके
0: नागरिक
1: रोड
0: हैं।
1: पे निकल जाएंगे? डबल बात
0: भारत
1: नहीं
0: के
1: चल
0: लोगों
1: सकती।
0: के 140
1: आपका
0: करोड़ लोगों
1: कारण
0: से
1: है आप
0: आप
1: तुष्टीकरण
0: सर्टिफिकेट
1: की
0: तब
1: राजनीति
0: मांगना,
1: चलते
0: पहले
1: हुए,
0: आप साबित
1: किसी भी
0: कीजिए आप
1: नाम
0: भारत
1: जो
0: के
1: देश के लिए
0: नागरिक
1: अच्छी
0: हैं।
1: चीजों की उसका आप लोग विरोध करते
0: 140
1: इसीलिए
0: करोड़
1: आपने
0: लोगों से
1: एसआईआर का
0: नागरिकता
1: विरोध
0: का
1: किया।
0: सपूत बातें
1: और
0: मांगना,
1: आपके
0: पहले
1: सामने
0: आप साबित
1: पैंसठ
0: कर
1: लाख
0: दीजिए
1: लोग
0: भारत
1: पटे,
0: के
1: आप
0: नागरिक
1: देश
0: हैं
1: की
0: या नहीं है।
1: जनता ने अपना फैसला सुनाया,
0: रोहन भाई
1: यही
0: ऐसे
1: आपकी
0: चिल्लाने से कुछ
1: राजनीति
0: नहीं
1: है।
0: होने वाला,
1: हर
0: आप
1: चीज पे
0: साबित करिए
1: तुष्टीकरण
0: आप देश
1: लेके
0: के
1: आएंगे।
0: नागरिक हैं,
1: आप
0: आप
1: एनआरसी
0: सबूत
1: मानेंगे कि
0: दीजिए
1: नहीं
0: आप भारत
1: बताइए।
0: के
1: ठीक
0: नागरिक
1: है
0: हैं।
1: ठीक
0: मैं
1: है
0: चुनौती
1: ठीक
0: देकर
1: है
0: के
1: ठीक है,
0: आपको
1: आपका
0: सवाल
1: सवाल
0: पूछ रहा
1: पूछ
0: हूँ।
1: रहा हूँ। ओके, आप एनआरसी
0: आ
1: मानेंगे?
0: या ना
1: मुद्दा मुद्दा जो पेश किया गया है, शादाब चौहान जो मुद्दा पेश करे, एक सेकंड रोहन गुप्ता, एक सेकंड रजत सेठी, क्या हम ये मानकर चले कि एनआरसी लागू कराने में सरकार की नाकामी के वजह से, नाकामी के वजह से मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या इसी के वजह से आज भी यहां पर कंफ्यूजन फैला हुआ है? क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है, एनआरसी भी करने के लिए तैयार नहीं है।
2: नहीं नहीं साहिल जी, मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ, इस विषय को ना एक बहुत महीन लीगल विषय को लेके एक बहुत बड़ा बैनर और एजेंडा देने की कोशिश की गई है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई अगर पासपोर्ट होल्डर है, किसी त्रुटिवश उसको पासपोर्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोनाफाइड सिटीजन नेसेसरीली है। उसको सफिशेंट बनाने के लिए न्यायिक प्रावधान है, जिससे कि अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउटफुल सिटीजन पाया जाता है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ वो ये नहीं कह सकता कि देखो इंडियन स्टेट ने मुझे एक पासपोर्ट इशू किया, इसलिए मैं बोनाफाइड सिटीजन बाय द वेरी ओनरशिप ऑफ द पासपोर्ट में
1: तो
2: हूं।
1: ये डिबेट
2: वो
1: खत्म
2: सिटीजन के
1: कैसे
2: लिए
1: होगी
2: प्रॉब्लम है।
1: रजत? ये
2: देखिए
1: डिबेट खत्म
2: आपकी
1: कैसे
2: बात भी
1: होगी
2: सही है,
1: भाई? मैं
2: मुझे लगता
1: कभी
2: है
1: ना कभी
2: कि
1: तो एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेके खड़ा होऊंगा और बोलूंगा कि देखिए मेरे पास ये है, आप मेरी
2: हाँ
1: नागरिकता पर सवाल नहीं उठा सकते। कोई छुटभैया नेता आकर मुझे ये नहीं पूछ सकता कि आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण दीजिएगा। कोई तो एक
2: नहीं,
1: बोनाफाइड
2: नहीं
1: डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस पर विश्वास
2: और
1: रखोगे?
2: मैं मानता हूं
1: डिबेट
2: कि
1: तो ये भी बड़ी है
2: नाइन
1: ना।
2: नाइन नाइन नहीं साहिल जी, 99% से ज्यादा केस में कोई आपसे ये नहीं पूछने आ रहा है। वैसे भी आपको क्या लगता है पुलिस के पास काम नहीं है कि हर घर पे जाके नॉक करके पूछ रही कि आपकी सिटीजनशिप क्या है? कौन कर रहा है देश में ऐसा? नहीं है।
1: सर
2: लेकिन हाँ, जब जब जब सिस्टमेटिक क्लीनअप होगा,
1: रजत
2: जैसे
1: जी,
2: SIR हुआ, तो उसमें क्वेश्चंस
1: रजत
2: पूछे गए।
0: यही तो
2: रजत
0: हेपोक्रेसी
2: क्लीनअप
0: में
2: हुआ तो
0: कंफ्यूजन
2: थोड़ी
0: की।
2: ना पुलिस लगी हुई
1: आपने
2: है ये सब बताने के लिए।
1: बंगाल में जब चुनाव हो
2: इतना
1: रहे थे रजत,
2: ही
1: जब
2: समय
1: बंगाल में चुनाव हो रहे थे,
2: तो
1: आपने देखा
2: सिस्टमिक
1: नहीं क्या
2: क्लीनअप है
1: लखनऊ
0: वो।
1: में किस तरीके
0: अच्छा,
1: से
0: जितने लोग बैठे
1: पार्षद से
0: किसी के पास
1: लेकर मेयर
0: नागरिकता का
1: तक,
0: प्रमाण नहीं है
1: एक एक सेकंड
2: तो
1: शादाब,
2: उनको,
1: एक सेकंड
2: देखिए
1: शादाब, एक
2: जो
1: सेकंड,
2: पार्षद ने
1: आपने
2: किया,
1: देखा नहीं
2: जो
1: क्या
2: मेयर
1: जब
2: ने क्या
1: बंगाल में
2: गलत
1: चुनाव हो
2: किया,
1: रहे थे तब लखनऊ के भीतर पार्षद से लेकर मेयर तक सब लोग आई कार्ड चेक
2: बिल्कुल
1: करते
2: गलत
1: हुए घूम रहे
2: किया
1: थे और पूछ रहे थे
2: उनको,
1: कि बताइए
2: बिल्कुल
1: कि आप
2: गलत किया
1: सिटीजन है
2: उनको
1: कि नहीं।
2: अरेस्ट, साहिल जी उनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे कोई राजनीतिक
1: साहिल
2: प्रतिबद्धता बोल रहा हूं, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। हर कोई आदमी सड़क पे खड़े होकर सदस्यता ये नागरिकता की बहस नहीं छेड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल
1: साहिल
2: क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके एक ऐसा बैनर बनाएंगे कि जिससे कि देश का माहौल खराब हो। ये यहां पे भी थोड़ा जिम्मेदारी से
1: ठीक
2: विपक्ष
1: है,
2: बोलना चाहिए।
1: ये डराने की कोशिश के वजह से भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना आशुतोष? जवाब
0: साहिल देखिए देखिए, ये जो कल मान लीजिए कि कल कोई मुझे आके अरेस्ट कर ले, बोले आप तो भारत के नागरिक ही नहीं है, तो उसके बाद मैं सारे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डेमोक्रेटिक राइट सारे मेरे सीज हो जाएंगे और मैं साबित नहीं कर पाऊंगा मैं भारत का नागरिक हूं क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये दरअसल 140 करोड़ लोगों से उनकी नागरिकता को छीनने का एक षड्यंत्र है ये। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। आप वोटर से कहते हैं कि आप वोटर 27 लाख लोगों को बंगाल के अंदर उनको सारी जो सरकार से बेनिफिट मिलने वाली थी वो सारी छीन ली गई उनसे। पता नहीं कब साबित होगा कि वो भारत के नागरिक है नागरिक नहीं, वोटर लिस्ट उनका कब नाम आएगा किसी को नहीं मालूम। तब तक ना
1: ठीक है
0: उनको सरकार की तरफ से राशन कार्ड
1: ठीक है,
0: मिलेगा, ना उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिलेगा, ना उनके पास लीगल राइट्स होंगे। तो कल कोई कोई आपको भी कल कोई जेल में डाल देगा, बोल देगा आप
1: आखिरी
0: भारत के
1: एक
0: नागरिक
1: मिनट
0: ही
1: मेरे
0: नहीं,
1: पास है
0: अब
1: निखत,
0: आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म।
1: क्या कांग्रेस पार्टी को डर है कि इस बहाने एक बार फिर एनआरसी लागू कराने की कोशिश है? 20 सेकंड आपके पास, आखिर में रोहन गुप्ता।
0: साहिल भाई, जनता को डर है,
3: क्योंकि हर बार भारतीय जनता पार्टी कोई गूगली फेंक देती है। मेरा तो स्पष्ट सा सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता बता दे कि जब आपने सीए लाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट कर ही दिया था तो आपने जनता को, भारत के नागरिक को सर्टेनिटी देने के लिए क्या किया वो बता दे। बहुत साफ सी बात है साहिल भाई कि जब नियम साफ होती है तो नियम
1: ये बुनियादी सवाल है रोहन गुप्ता, ये तो बनता है। 2019 में नागरिकता का कानून बनाया गया, उसके बाद क्या किया है ये सवाल तो बनता है। रोहन गुप्ता जवाब।
4: बिल्कुल, आप इनके ही पाप आपने वही खोल के दे कर रही है और वही उजागर कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी के 2019 में एनआरसी का विरोध किया। आपकी पार्टी का स्टेटमेंट दिखाता हूं कि एनआरसी करने से धार्मिक तुष्टीकरण होगा और मुसलमानों का अधिकार मार दिया जाएगा। आप ही एनआरसी का विरोध कर रही है और आप ही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रमाण दें। पहले आपकी पार्टी को तय करने दीजिए कि आप किसके साथ खड़ी है। आप घुसपैठियों के सहारे सरकार नहीं चला सकती, हो गया आपका, फुल स्टॉप, दी एंड। कांग्रेस पार्टी की घुसपैठ की राजनीति खत्म हो चुकी है। आपके पाप की सजा देश की जनता नहीं भोगेगी 70 साल तक।
1: राजनीतिक बहस से उठकर, ठीक है रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता देखिए, राजनीतिक बहस से उठकर अगर इस पूरे डिबेट को देखें तो यह बात सही है कि एनआरसी होनी चाहिए, एक संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सरकार एक तरफ एनआरसी नहीं कर रही है, अभी तक एनआरसी लागू नहीं की गई है, और दूसरी तरफ कोई भी एक कार्ड या डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भारत का नागरिक उठकर यह कह सके कि भाई मैं भारत का नागरिक हूं, और उसी के आधार पर उसे वोटिंग का भी अधिकार मिले। हर बार जब भी कोई चुनाव होता है या चुनाव के बाद भी बार बार ये डिबेट शुरू हो जाती है कि भारत की नागरिकता आखिरकार मैं साबित करूं कैसे, इसका जवाब कहीं ना कहीं देना होगा, और एक बार फिर ये डिबेट छिड़ चुकी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: In association with Hind, बड़े आराम से
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
5: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

रिश्तों के बनने और मिटने की एक ऐसी कहानी है जिसमें 20 साल की एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम देती है कि भरोसे का भी कत्ल हो जाए। इसमें रिश्तों की नर्सरी है, जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का कत्ल है। इस कहानी में कुल 3 किरदार है, सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी। इनमें से केतन अब दुनिया में नहीं है। सिया और चेतन केतन को ठिकाने लगा दिया। केतन अग्रवाल और सिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घड़ी आती, सिया ने अपने होने वाले पति केतन को ठिकाने लगा दिया। सिया ने केतन को कैसे मारा, केतन को मारने के लिए सिया ने कितने प्लान बनाए, सिया का प्लान बी क्या था, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौहान इस हत्याकांड के खुलासे में कैसे अहम कड़ी साबित हुआ, आज हम सब कुछ बताएंगे। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये मानेगा ये लड़की अपने होने वाले पति की हत्या कर देगी? क्या इन हंसी खुशी के इन पलों में कहीं से लग रहा है कि सिया और केतन के बीच में कोई अविश्वास, दरार या तनाव है? तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिया ने ही अपने होने वाले पति को मार डाला, लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच का सार यही है कि सिया ने केतन को मार डाला। पुणे में जून की गर्मी में हुडी, मुंह पर मास्क, पीठ पर बैग लेकर एक शख्स लोहगढ़ के किले में दाखिल होता है। ये शख्स कोई और नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पुणे पुलिस ने जब लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चेतन चौधरी सिया और केतन के आसपास दिखा। कुछ फुटेज में चेतन और सिया इशारों में बातचीत करते हुए भी दिखे। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने चेतन चौधरी की हर गतिविधि को ट्रैक करना शुरू किया। पुणे पुलिस ने सबसे पहले इस चेतन चौधरी को उठाया, क्योंकि लोहगढ़ किले में चेतन का होना, हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा सब संदिग्ध था। पुलिस को शक हुआ कि 35 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क पहने हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था। केतन का परिवार गम में था। घर का इकलौता बेटा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन परिवार को एक बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि केतन फिसल कर गिरा तो गिरा कैसे, क्योंकि केतन अग्रवाल अच्छा ट्रैकर था। पहाड़ों पर ट्रैकिंग में वो एक्सपर्ट था। सकरे रास्तों पर चलना, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना उतरना केतन के लिए नई बात नहीं थी। फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो कुछ और ही कहानी पता चली। सिया की एक फोन नंबर पर इस साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी, और ये नंबर केतन का नहीं था, तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी निकला। चेतन से जब पुलिस ने सख्ती से बात की तो सारी कहानी खुल गई। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।

0: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई?
1: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन, जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे। तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद बेचमी के ही पद चल जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, बुरा दिख लो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
3: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ 100 या 1000 रुपए का नहीं बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का दावा है तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्टधातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
4: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
3: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: चोरी मामले में FIR संभव, SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय, केस दर्ज होने के बाद बड़ी कार्रवाई का खुलेगा रास्ता। 2027 के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान, नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। कोलकाता में गोदाम हादसे में अब तक 11 ने गवाई जान, 19 घायल, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊंचाई पर वैन लटकार कर किया धमाका, वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा, अब तक 4 पर FIR। 100 वर्ष के सबसे विनाशकारी भूकंप से कांपा वेनेजुएला, 168 की मौत, भारत ने मदद का बढ़ाया हाथ, पीएम मोदी ने जताया दुख, जल्द रवाना हो सकती है NDRF की टीम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है।
1: ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं।
2: इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, जितने बेईमान।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप और यहाँ मौजूद जनता को एक बार दिखा दीजिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर छात्राएं आई हुई हैं जो आज सवाल करेंगी। क्योंकि देखिए, भगवान राम के मंदिर का अलग अलग तरीके से कभी विरोध हुआ, कुछ लोग समर्थन में उतरे, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हुई। इन सब के बीच आस्था जीती और ये मंदिर बना 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में। लेकिन भगवान राम के मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला अब और ज्यादा गंभीर हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रांसपेरेंसी यानी जो पारदर्शिता है वो अब सवालों के घेरे में है, संदेह में है। और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि पीएमओ की तरफ से, आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है रजनीश सिंह, वो चिट्ठी लिखते हैं पीएमओ को, प्रधानमंत्री को सीधा, और उसमें वो कहते हैं कि मंदिर निर्माण की शुरुआत से जितना भी चंदा आया, जितना भी चढ़ावा आया, इन सबका लेखा जोखा कैसे मिलेगा। अब खबर ये आ रही है कि पीएमओ की तरफ से जो जिला प्रशासन है अयोध्या का, उससे ये कहा गया कि आप ये उपलब्ध कराएं। अब जिला प्रशासन ने क्या किया, उसने ट्रस्ट को ये दिया, क्योंकि ट्रस्ट ही सब कुछ चलाता है। तो जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से पूछा कि आप हमें पूरा ब्यौरा दीजिए, लेकिन जानकारी ये है कि इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अब ये विषय बहुत गंभीर हो जाता है। खुद अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आ रही है और ये पूछा जा रहा है इसके जरिए कि आय व्यय की जानकारी दी जाए, पीएमओ से आई चिट्ठी पर अब अयोध्या का जिला प्रशासन मंदिर ट्रस्ट के सचिव से जानकारी मांगता है, तो एसआईटी जांच का बहाना बनाकर जानकारी नहीं दी गई है। सवाल है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट कुछ छिपा रहा है। उधर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात यूपी सरकार ने की है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के चलते जिन जमीनों की लेन देन हुई उनमें भी कई बार घोटाले का आरोप गहरा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसआईटी से इसकी भी जांच की मांग की है। सवाल है कि क्या एसआईटी सारे आरोपों पर निष्पक्ष जांच कर सकेगी। और बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो ट्रस्ट छिपा रहा है, आखिर क्या सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है जो वो फौरन ही पीएमओ को भेज दे। चढ़ावा चंपत पर क्या ट्रस्ट के भ्रष्ट नपेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़, पीएमओ का संज्ञान, राम मंदिर ट्रस्ट बना अनजान, आज यही चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय शंकर तिवारी जी, राष्ट्र प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस हिस्से से अपनी दलील रखेंगे। तो दूसरी तरफ से स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, ये नेशनल प्रेसिडेंट है संत महासभा के। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आप सभी का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले कि आइए आपको जल्दी से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राम का नाम बदनाम ना करो, किसी भी आस्थावान हिंदू की भावना यही होती है। लेकिन चढ़ावा चोरी मामले की जितनी परतें खुल रही हैं, संदेह के उतने बादल घुमड़ रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया था। 23 जून को अयोध्या के डीएम कार्यालय को भेजी गई अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी की ये चिट्ठी देखिए। इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से अब तक की समस्त आय व्यय दान बैंक खातों भूमि क्रय विक्रय और संपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। चिट्ठी में साफ लिखा है कि सचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में एसआईटी जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी जानकारियां मांगी थी जिसे पीएमओ ने अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा। लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन को पीएमओ को जवाब देने के लिए ट्रस्ट से क्या जवाब मिला, आपने जान लिया?
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पे डाल दे जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की एसआईटी जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते।
0: इन्हीं परिस्थितियों में अब ट्रस्ट को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोग भी उठाने लगे हैं। वीएचपी ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
2: हम चाहेंगे कि यह एफआईआर जल्दी हो और हम ये भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे योग्य से योग्य पुलिस अफसरों को जिन एक्सपर्ट्स की जांच में जरूरत हो उन एक्सपर्ट्स को लगा करके जिन पर आरोप है उन सब की जांच की जाए। हम ये भी चाहेंगे कि जब कोर्ट में चालान फाइल करे पुलिस तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। अगर इन सब दोषियों को 4 महीने में हम कोर्ट से सजा दिलवाकर सलाखों के पीछे भेज सकेंगे तब हिंदू समाज को संतोष होगा।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
3: जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है उसमें कितना ही बड़ा हो ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों की आस्था श्रद्धा जिनने अपना दान दिया है चंदा दिया है उनकी भावना को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी तरह की उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। संजय सिंह ने एसआईटी को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री को वो संदिग्ध बता रहे हैं।
4: भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: 2024 में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर करोड़ों भक्तों के अयोध्या कूच को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब उन्ही भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ छल के आरोपों पर हंगामा मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई सामने आनी जरूरी है, जिम्मेदारियां तय होनी जरूरी हैं। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव रजनीश सिंह, जो कि बीजेपी नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखकर पूरा ब्यौरा मांगा था, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, मुझे बताया गया है कि 12 जून को आपने ये चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद क्या हुआ?
5: मैंने 12 जून को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यही मांग की थी कि ट्रस्ट जब से अस्तित्व में आया है तब से लेकर के आज तक समय समय पर ट्रस्ट के द्वारा समर्पण निधि के लिए अभियान चलाया गया था, जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी, क्योंकि विपक्ष लगातार इन्हीं सब आरोपों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट को लगातार आरोपित करता आ रहा है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग की कि प्रधानमंत्री जी एक आप इसकी कमेटी गठित कर दीजिए, जांच करा लीजिए, जिससे जो नेगेटिव नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के ऊपर और राम भक्तों के ऊपर विपक्ष लगातार मढ़ने की कुछ चेष्टा कर रहा है वो सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ट्रस्ट ने पीएमओ को इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया है, ऐसा पत्र मुझे जिला प्रशासन के द्वारा मिला है।
0: जिला प्रशासन ने आपको जानकारी दी है, ट्रस्ट की तरफ से किसने मना किया?
5: उसमें लिखा है ट्रस्ट के सचिव राय ने ही मना किया है।
0: तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के सचिव महासचिव के पद पर हैं चंपत राय, आपका कहना है कि चंपत राय ने ही मना किया है पीएमओ की तरफ से आए हुए डायरेक्शंस पर जवाब देने से?
5: जी,
0: क्यों मना किया है?
5: अब ये तो वही बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता है
0: कुछ छिपा रहे हैं।
5: तो को रखनी चाहिए उस प्रकार की, यही अफसोस है और इसी पारदर्शिता को ना रख पाने की वजह से इस मामले में इतना बढ़ती होती तो शायद इस प्रकार का दुर्दिन जो आज देखना पड़ रहा है वो अयोध्या वासियों समेत पूरे राम भक्तों को ना देखना पड़ता। उदाहरण के लिए आपको एक छोटी सी घटना बता दें, कल यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गायब हो गए, लेकिन काक भूषुंडी जी की प्रतिमा कुछ फोटोज आई है जो कार्सेवकपुरम में रखी है, अगर जिस समय पे विपक्ष ने इस तरीके का नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था अगर उसी टाइम पे वो फोटो ट्रस्ट के द्वारा या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा जारी कर दिया जाता तो इस तरीके की भ्रम की स्थिति ना होती। ठीक उसी प्रकार से अगर चढ़ावा चोरी की घटना जैसे सामने आई थी अगर उसी प्रकार से इन्होंने ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया होता तो शायद जो विपक्ष का एक नेगेटिव नैरेटिव आज सर चढ़ गया है वो चढ़ने ना पाता।
0: बिल्कुल धन्यवाद आपका रजनीश जी,
5: बेहद
0: धन्यवाद आपका रजनीश जी। और आप अयोध्या वासी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, और इसीलिए विजय शंकर तिवारी जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं कि अब पीएमओ के इंस्ट्रक्शंस पर जो चिट्ठी में ब्यौरा मांगा जा रहा है वो अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन आगे कर रहा है तो ट्रस्ट कह रहा है हम नहीं बताएंगे, मतलब सब अपने आप को भगवान ही समझने लगे हैं क्या?
6: अंजना जी, जहां तक मुझे ध्यान में है कि इस पर उन्होंने कहा है कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है और ये अभी कुछ दिन बाद ये सारी सबके सामने आ जाएगी, इसके बाद जो भी जानकारियां हैं वो सारी सारी जानकारियां दी जाएंगी। ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है, अभी रजनीश जी कह रहे थे कि वो तुरंत अगर सबके सामने आ जाता, रख दिया जाता, तो ये जो नैरेटिव फैलाया गया है वो नहीं फैलता, ये बात सही है। लेकिन एक बात, जब दो दिन तीन दिन के बाद जब ये सारा विषय आया कि यहाँ चोरी हुई है, तो मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चंपत जी ने, ट्रस्ट के महामंत्री ने स्वयं कहा कि इसकी एसआईटी जांच हो, बड़े अधिकारियों के द्वारा हो, कौन चोरी कर रहा है, क्या चोरी हो रहा है, ये शायद पहली बार हुआ है। अमूमन तो क्या होता है कि बहुत लंबा समय खिंचता है और जांच में अड़ंगे लगाए जाते हैं, जांच नहीं होने दी जाती। उन्होंने जांच के सामने स्वयं के साथ जो और जो लोग जहां पर चोरी हो रही थी उन सबको एसआईटी के साथ में जोड़ करके कहा एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी की जांच पूरी होते ही कल विश्वेंदु परिषद के अध्यक्ष माननीय आलोक जी ने कहा कि जांच पूरी हो गई है, अब जिनके नाम निकल के आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और त्वरित कार्रवाई के साथ त्वरित कोर्ट के द्वारा निर्णय हो, ताकि जो दोषी हैं, जो जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया है उनको कड़ा दंड दिया जाए, उनके पाप का जो घड़ा है वो भर गया है और वो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, ये माननीय आलोक जी ने कहा है।
0: चलिए ठीक है, अनुराग भदौरिया जी माइक संभालिए और आप बताइए कि देखिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और अच्छी बात है क्योंकि इसमें जनता भी इस मुद्दे पर चाहती है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, दोषी सामने आए, लेकिन ये तो आप देख रहे हो, कह रहे हैं कि भाई जांच पूरी हो गई है अब उसका इंतजार कीजिए।
7: सवाल ये उठता है कि जो लोग प्रभु की बहुत बात करते थे और प्रभु के नाम पर राजनीति जिन्होंने बहुत दिनों तक की, हम तो हमेशा से कहते थे प्रभु हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, आज वो लोग ना तो डिबेट में अपनी बात कहने के लिए आते हैं जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना वो ये बताने को तैयार हैं कि आखिरकार प्रभु के नाम पे इतना जो आपने हल्ला मचाया था, आज प्रभु के घर में अगर चोरी हुई तो आवाज़ कौन उठा रहा है? समाजवादी लोग, समाजवादियों ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई ना कि प्रभु के यहाँ पे जिस तरह की गड़बड़ी उनके दान पात्र में पाई गई है, तब यही ट्रस्ट के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बार बार चिल्ला रहे थे नहीं नहीं नहीं। अरे हमने कहा कि भाई अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसकी में इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है? अब धीरे धीरे देखो सभी लोग कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के कमल दास जो महंत जी, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि भाई निष्पक्ष हो पाई कि नहीं हो पाई, महंत योगी जी का भी यही सवाल था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यहाँ पे धीरेन्द्र दास जो निर्मोही अखाड़ा की, उन्होंने भी पारदर्शिता की मांग की, महंत परमहंस आचार्य जी उन्होंने भी पारदर्शिता की मांग की, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कहा कि यहाँ पे जांच की मांग हो, देवकी नंदन ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए, बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जांच हो और पता चलना चाहिए।
0: अब चल रही है,
7: नहीं नहीं एसआईटी की जांच चली, लेकिन हमने बोला एसआईटी के अलावा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करो तो और अच्छा होगा। भाई जांच प्रभु के मंदिर की बात है, प्रभु के घर की बात है, जांच और मजबूती तरीके से होनी चाहिए, आखिर हमारे आस्था का विषय है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु के मंदिर में कोई चीज गायब होगी, मेरी आस्था के साथ चोट है। वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं बड़ी आस्था से अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका चढ़ावा सही जगह प्रभु के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आस्था तो उसको तो विश्वास है, तो हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाएगा ना अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय के उस पर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बार बार जो एसआईटी की बात होती है तो एसआईटी की बात में एसआईटी ने जो फाइंडिंग पाई है तो मुझे लगता है जब वहां पे जब ये इनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि वहां पे जो ट्रस्ट के लोग थे कहते हैं हमने जांच की मांग की, तो हमने कहा आपने जांच की मांग की तो आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं कराई, एफआईआर के बाद एसआईटी आती है, बिना एफआईआर के एसआईटी आ गई है, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो हमारा तो बस इतनी सी बात है कि प्रभु के दरबार में अगर गड़बड़ी पाई जा रही है, यह गड़बड़ी किसके इशारे पर हुई है, यह गड़बड़ी जो चंदा चोरी हुआ है, जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है क्यों हुई है, किसके इशारे पर हुई है, इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन है, और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए।
0: मांग की थी जांच की,
7: बिल्कुल हम लोग तो मांग कर रहे हैं।
0: उन्होंने मांग की तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई?
7: मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने मांग की थी। फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमने एसआईटी की मांग की। हमने कहा चलिए आप बहुत अपने आप को, चूंकि आप नहीं नहीं आपकी निगरानी में वहां पे सब कुछ हो रहा है, तो आपने एफआईआर करा के बात। एफआईआर को भी छोड़ो, आप सबसे पहली बात तो ये है, अब तो सभी लोग कहने लगे ना, पहले तो समाजवादी कहती थी, अब तो इनके जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी कह रहे हैं कि एफआईआर
0: कर रहे हैं। सर
7: नहीं नहीं, विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब एफआईआर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए।
0: तो तब नहीं, अगर पीएमओ की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी आती है और ये कहा जाता है कि भाई आप ब्यौरा दीजिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन मांगता है, क्या ट्रस्ट इनकार कर सकता है इससे?
8: नहीं।
0: और दोनों पर आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा, एफआईआर ही नहीं दर्ज की है और एसआईटी जांच हो रही है, ये सवाल जो आज विपक्ष पूछ रहा है,
8: मैं,
0: क्या वो
8: मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ट्रस्ट ने मना नहीं किया, ट्रस्ट ने कहा कि एक जांच चल रही है, चूंकि एक जांच पूरी हो जाए उनको पूरा हम विवरण दे दें, उसके बाद जो दूसरी संस्था कोई भी संस्था विवरण मांगेगी हम उसको देंगे, मना नहीं किया गया। कहा एक जांच चल रही है ना, तो एक जांच पूरी हो जाने दीजिए, उनको हम उत्तर दे दें, दूसरे तुम्हें उत्तर दे देंगे। पीओ में हाउस से जो प्रधानमंत्री के यहां से पत्र है उसको मना कोई क्यों करेगा? कोई चोर मन में होगा तो करेगा ना, उन्होंने कोई मना नहीं नहीं मना नहीं, उन्होंने कहा कि एक जांच चल रही है, एसआईटी की जांच पूरी हो जाए उसके बाद जो आप कहेंगे हम दे देंगे, मना नहीं किया है। एक बात, तीसरी बात, मैं माननीय अनुराग जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जब पता लगा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे घर में कुछ गड़बड़ होगा तो हम थाने जाएंगे ना, आप ही जाके एफआईआर करा देते कि भाई ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इनको एफआईआर करो, जांच करो। आपने एफआईआर नहीं कराया, अब ट्रस्ट पे ही आप आरोप लगा रहे हो, तो ट्रस्ट ही कैसे आरोप एफआईआर कराएगा भाई? एफआईआर तो वो कराएगा जो आरोप लगा रहा है, तो आपको एफआईआर कराना चाहिए थी, अपने व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि ट्रस्ट से पहले वहां के लोगों से आपको पता लग गया, आपके पास कौन सी दूरबीन थी साहब, आपके पास कौन सा कैमरा था जो पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है?
7: नहीं तो आप क्या कहना
8: चाह रहे हैं? पहले से कुछ लोगों को भेज दिया गया हो, तुम गड़बड़ करना, बाद में हम बताएंगे क्या हो।
7: अच्छा,
8: ऐसा कोई राजनीति तो नहीं हो रही कहीं? यदि राजनीति हो रही है तो ठीक नहीं है, और आप धर्म के लिए बोल रहे हैं, मंदिर के लिए बोल रहे हैं, तो आपके लिए साधुवाद।
7: लेकिन धर्म और मंदिर के लिए बोल रहे हैं, ये तो मेरे आस्था का विषय है, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना धर्म के नाम पे। हमने तो वहाँ पे जब दान पात्र में गड़बड़ी हुई तो आवाज तो हमने
9: जब सैकड़ों कारसेवकों को मार रहे थे, तब ये आपका धर्म कहाँ था?
7: किसको? अब सुन लीजिए,
9: धर्म कहाँ था? वो जब मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि और मांगे पड़े तो मार देते, तब आपका धर्म कहाँ था?
7: मैं बता रहा हूँ ना, अभी नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में
9: और
7: विक्रम सिंह जी क्या बोल रहे थे,
9: टीवी डिबेट में
7: मिश्रा जी ने क्या बोला था, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसके आदेश पे गोली चली थी, झूठ मत फैलाइए यहाँ पे, झूठ मत फैलाइए यहाँ पे, झूठ मत फैलाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे गोली चली थी, झूठ मत फैलाइए यहाँ पे। अब आपकी चोरी पकड़ी गई तो बिल बुलाने लगे हो क्या? बिलबुला रहे हो क्या? चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई, बिल बुला रहे हो क्या? ये चोरी पकड़ी गई प्रभु के नाम पे, ये हर बात पे प्रभु के नाम पे जब हम इनको आवाज उठाते हैं तो ये भाई ये झूठ सच बोलना शुरू कर देते हैं। आप कह दीजिए चोरी नहीं हुई है, आप कह दीजिए जनता के सामने चोरी नहीं हुई है, मेहमान जाने के लिए कह दीजिए चोरी नहीं हुई है, पूरे विश्वास से कह दीजिए कि प्रभु के यहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई है, कह दीजिए आप विश्वास से,
9: नहीं
7: कहिए आप,
9: मैं कह
7: नहीं कह पाएंगे,
9: मैं कह रहा हूँ
7: नहीं कह पाएंगे।
9: दिक्कत
7: इस बात की होती है
9: हमने प्रभु के हमारे कुछ अन्याय बना है कि प्रभु की आदत हो गई है,
0: अगर आप दोनों को लड़ने और चिल्लाने का शौक है ना तो बाहर चले जाइए सर, दोनों चिल्लाते रहिएगा, ऐसे दो लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो आवाज नहीं आती, हमें तो समझ नहीं आता, अगर आप लोगों को चिल्लाना है तो मतलब मैं पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ बाहर चिल्लाइए जाकर। स्वामी चक्रपाणि जी, मेरा प्रश्न आपसे है, अनुराग जी मेरा प्रश्न आपसे है, स्वामी जी देखिए, एक तो भाई एक जांच चल रही है तो हम दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कई लोग अब इस निष्पक्षता पर सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं ना कि भाई जांच में क्या सामने आएगा नहीं आएगा, ट्रस्ट के लोग इतने ताकतवर वहां पर हो गए थे फ्रिस्किंग को लेकर खुद, जो कि नृपेंद्र मिश्रा जी जिन पर इतना सवाल उठ रहा है, वो वहां पर कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, वो मुझे कह रहे थे कि वहां कुछ जांच वाच कुछ नहीं होती थी, जिसको मन था वो जाता था, बिना चेकिंग के आता था जाता था, पैसा कलेक्शन जो भी हो रहा था। अब ऐसे में कैसे विश्वास करें और क्या पीएमओ आज जानकारी मांग रहा है तो देना नहीं चाहिए?
10: देखिए, एक कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सवाल इस बात का ही हमें समझना होगा कि एक अंधा भी एक बहरा भी इस बात को समझ सकता है कि आप जरा सोचिए कि नृपेंद्र मिश्रा उसके निर्माण वो है अध्यक्ष, निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जब वो अपने आप उसी ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे तो स्वाभाविक है बिना आग का धुआं नहीं निकलता, कुछ ना कुछ है तभी ऐसा हो रहा। अब स्पष्ट रूप से आप भी नहीं कह सकते कि जो बेदाग है जी सब एकदम किसी तरह क्लीन चिट दे सकते, और हम भी नहीं कह सकते कि जी वो बिल्कुल आरोपी है, लेकिन जब आरोप किसी पर लगता है तो भगवान राम का हम जो पूजा करते हैं वो राम का चित्र का नहीं करते, चरित्र का करते हैं, हमारे यहाँ चरित्र का विशेषता है। तो धोबी ने एक आरोप लगाया और माँ सीता को वनवास कर दिया गया। सवाल इस बात का हमें समझना होगा कि जब आरोप लग रहे हैं तो उसकी निष्पक्षता से जांच हो, और इसके जांच के लिए जिन पे आरोप लगा है कम से कम उनको सामने आकर के स्पष्ट रूप से राम भक्तों को करना चाहिए।
0: जांच पर भरोसा है? नहीं,
10: तो भरोसा है, लेकिन अभी जो बार बार पीएमओ से मान लीजिए जवाब आया और उस पे वो पीएमओ पे जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो भाई साच को आज कैसा? अगर जो सच्चा आदमी है तो तुरंत देगा कि हाँ जी लो ये हमारे, और एक नहीं दस जांच आएगा, दसों जांच को रिपोर्ट देगा।
11: देखिए पीएम जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से जो कहा गया है कि एक जांच चल रही है, तो स्वाभाविक है जब जांच चल रही है तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो एसआईटी के पास होंगे, तो समानांतर पेपर शेयर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है यदि उसका डिटेल सिर्फ यदि मांग लेते तो वो ब्यौरा दिया जा सकता है, लेकिन यदि ब्यौरा के साथ साथ यदि पीएमओ को वही डॉक्यूमेंट्स होगा तो क्या पता हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आज के समय जो है एसआईटी के पास हो। तो मैं अभी ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात, ये
0: इस चिट्ठी में लिखा तो जा सकता था। एक सेकंड
11: मैं अपनी बात,
0: मैं वापिस से काउंटर है ना, क्योंकि आपने ये दलील दी, उस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास नहीं है, उसमें कहा गया है कि एक समानांतर जांच चल रही है इसलिए हम अभी नहीं देंगे, ये लिखा है।
11: ठीक है, दूसरी बात, जरा सा एक मुद्दे पर हम आ जाते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी जब बात करती है नैतिकता की, चरित्र की, ये समाजवादी पार्टी, तब मुझे लगता है कि जैसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो वेद मंत्रोच्चार कर रहा हो। ये अखिलेश यादव क्या वाकई जांच चाहते थे क्या? पहला दिन उन्होंने कहा कि जांच कराइए तो एसआईटी बैठ गई, जब एसआईटी बैठ गई तब अखिलेश यादव का जरा बयान निकालिए, क्या चला सकते हैं आप तो रिसर्च टीम से बोलिए
12: क्या है बताइए।
11: उन्होंने कहा अब साधु संतों की जांच ये अधिकारी लोग करेंगे, ये साधु संतों की जांच करेंगे, अरे आपस के कमरे में बैठ करके अंडर हैंड डील कर लेते।
0: अनिल यादव जी
11: मुझे बात कर लेने दीजिए, 10 सेकंड
12: बात चोरी पे बोलिए, चोरी पे नहीं बोल रहे, किसने क्या क्या, चोरी पे बोलिए क्या हुआ है कि नहीं हुआ।
11: देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को राजनीति करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ये जान करके बहुत ठेस लगी है और सभी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मैं बार बार ये जो है पूरा हिंदू समाज की नजर इस पर है, इसलिए कोई यदि ये सोचता हो कि लिपापोती हो जाएगी, कोई ये सोचता हो कि उसको बचा लिया जाएगा, लेकिन साथ साथ मीडिया ट्रायल भी नहीं संभव है। तथ्य आ जाए, कभी कहा जाता है कि गोबर में से पैसा निकला, आधार क्या है आपके पास, कभी कहा जाता है कि 2 करोड़ उसमें से पैसा नहीं मिला गया है, कभी आप कहते हैं कि 200 करोड़ निकला है, कभी एक आकर के कहा एक, एक, एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आकर के कहता है 1000 करोड़ निकला है। अरे भाई 1000 करोड़ चंदा नहीं आए हैं, 1000 करोड़ कहां से निकल गया, 1000 करोड़ चोरी हो गई है क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो
12: कितना निकला यही बता दो
11: जा रहा है, मैं कह रहा हूं
12: कितना निकला बता दो।
11: नहीं नहीं मुझे जानकारी होती तो बता देते ना,
12: बोलिए कि हमें जानकारी नहीं है,
11: तो तुम्हें कहां से
12: जानकारी नहीं है, जानकारी का इंतजार करना चाहिए, बट ये तो मानिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये तो मानिए गड़बड़ी है
11: भाई,
12: ये तो मानिए गड़बड़ी है, हमारे आस्था पे चोट पहुंचाना तो मानिए,
11: तुम्हारी आस्था राम मंदिर के प्रति, तुम्हारी आस्था कब से होने वाली
12: राम मंदिर,
11: अरे तुम तो बाबरी मस्जिद उसको बोलते थे,
12: आशीर्वाद मिला
11: तुम्हारी आस्था कब से हुआ राम मंदिर, तुम्हारी आस्था राम मंदिर के प्रति कब से होने लगी, समाजवादियों के राम मंदिर के प्रति आस्था कब से,
10: अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं, हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लूटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लूटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लूटते हुए देख लिए हमने, और ये जो बच्चे बैठे हैं ना इनका भविष्य भी लूटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया, आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है, नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आपको आप
13: एफआईआर करते हैं कि चार लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर राम भगवान की बात सुनने दोगे ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं, और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई, ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आज देखिए ना, भक्त निकल निकल के आ रहे हैं, कोई काकभुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए, कोई बताइए चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया, इनके पेट ने निकल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बनके जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है, तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है, आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगा, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। कह दीजिए निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए, हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए।
14: झूठ नहीं बोलना है, प्रभु के नाम पे जाओ।
15: रामालय ट्रस्ट एक बना था,
16: ये राम मंदिर
15: जी ने बनवाया,
16: राम मंदिर के
15: साधु संतों से कितना पैसा मिला था उसका आज तक जवाब दियो। बोफोर्स कांड पर भी मैंने कहा,
14: बोफोर्स चले गए, प्रभु के मंदिर की बात
15: भी आरोप लगाया था,
13: अभी 1947 चले गए,
14: क्या प्रभु के नाम पर बोफोर्स चले गए?
15: अरे जिस पर आरोप लगाया था
14: उसको, अरे छोड़ो,
13: 1947 चले जाइए, इन बच्चों को कितना बेवकूफ बनाइएगा भाई साहब,
14: प्रभु
13: को कितना मूर्ख बनाइएगा इस देश की जनता को।
17: एक सेकंड,
13: इतिहास में
17: बोफोर्स का मामला पुराना हुआ, उस पर सरकार उनकी चली गई, अभी तक उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि मामला कैसा चल रहा है, लेकिन जो सीधा उन्होंने आरोप लगाया फिर मैं जनता के सवाल उसका जवाब दीजिए वीएचपी की तरफ से। बोलिए तिवारी जी।
16: नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि
17: तिवारी जी आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
16: एक मिनट,
17: मेरा सवाल तो सुनिए, आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है, आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को?
16: देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24-24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना इसका प्रयास कर रही थी। हम सारे देश से कार सेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया।
14: सवाल क्या पूछ रहे हैं कि चोरी हुई?

0: डिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग?
1: हाँ, ट्रस्ट के लोग
2: हैं
1: ना।
2: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: आ रहे, यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं, इसका हाथ उठाएगा। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज।
3: मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की, नहीं दे पाएंगे?
1: ठीक, आप लोग अपनी जगह पर रहें, मैं आ जाऊंगी वहां पे।
4: मैम, ट्रस्ट कह रही है, मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो FIR कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो SIT के लिए अपील कर सकते हैं तो FIR फाइल नहीं करा सकते उस चीज के लिए? और जो SIT की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे FIR फाइल हो सकती थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
5: सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप?
6: समाजवादी,
1: इधर से कोई,
6: बिल्कुल सही,
1: आ जाइए आप आइए।
6: और जीता कौन है? समाजवादी लोग।
1: माइक मैंने पकड़ा हुआ है, थैंक यू।
7: मैम, ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, अभी तो BJP की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी सरकार,
1: ठीक है। और कोई सवाल जल्दी से लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए पढ़िए।
8: मैम, मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली FIR पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग SIT कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये अनॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे SITs पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा इस SIT पे, ये भी मेरा एक सवाल है।
9: जैसा उन भाई का सवाल था, मैं ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार से सभी संत समान नहीं होते, राम रहीम भी एक संत थे, संत के वेश में कुछ और थे, हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी संत हैं और वो सब जानते हैं उनका कैलिबर कितना और किस प्रकार के संत हैं, तो इसी प्रकार से 5 उंगली बराबर नहीं है, चाहे वो मंदिर के किसी पदाधिकारी में उच्चतम स्तर पे हो सकता है उनका भी कहीं ईमान डोल गया हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी किसी भी या तो बदमाशी में या धर्म की आस्था को कोई भी किसी को ठेस पहुंचाते हुए योगी आदित्यनाथ जी इस पर पूर्ण कार्यवाही करेंगे और इसके ऊपर उचित से उचित कार्यवाही होगी और पूर्ण निष्पक्षता से ही होगी।
1: सवाल था नहीं, मतलब
9: मेरे जवाब
1: भरोसा
9: योगी जी के लिए, पूर्ण विश्वास है मेरा।
1: अच्छा,
9: योगी,
1: ठीक है, जल्दी एक आखिरी सवाल।
10: मेरा सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा?
1: ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से,
11: मेरा एक सिंपल सा सवाल,
1: माइक में ले।
11: मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि इतनी ज्यादा ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अभी तक?
1: अच्छा, ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए?
12: देखिए, मुझे लगता है कि उनको जो नियुक्ति की है वो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने की है, और ऐसा कुछ आक्षेप लगेगा उसका विवरण आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चंपत जी सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक हैं, जैसा ही कोई उंगली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे और करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्वेंदु प्रसाद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था, सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और हमें लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी अंगुली उठती है अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, तुरंत दे देना चाहिए। अखाड़े द्वारों के माध्यम से मठ मंदिर का संचालन हो, सनातन बोर्ड बने, सरकार को चाहिए तुरंत सनातन बोर्ड बना दे, सभी मठ मंदिरों की परंपरा के अनुसार उनका संचालन हो, उसमें अखाड़े के संत भी हो और समाज के लोग भी। हम विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, समाज को चेतना प्रदान करते हैं,
1: उसका बड़ा सम्मान करते हैं।
12: एक भी मठ में बताइए, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, उसमें पूज्य नित्यानंद हमारे नित्य गोपाल।

0: महाराज हैं अस्वस्थ रहते हैं,
1: योगपुर
0: जी महाराज वो भी अस्वस्थ रहते हैं, तो मुझे लगता है ट्रस्ट को चाहिए कुछ संतों को जो वास्तव में काम कर सकते हैं उनको भी जोड़ें और समाज के अच्छे लोगों को जोड़ें। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, केवल राम मंदिर आज यहाँ चोरी हुई या कल कहीं और होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, अंगुली तो उठती है हमारे ऊपर ना,
1: बिल्कुल सही।
0: हम समाज के लोगों धार्मिक अंगुली तो उठती है, इसलिए किसी पर ऐसी कोई घटना द्वारा न घटे, चाहे भारत सरकार कुछ करे, मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड के माध्यम से कोई मंदिर कोई चर्च कोई मदरसा
2: भदौरिया जी सपोर्ट करते
0: हैं चलाएंगे,
2: देखिए तो बड़ा समर्थन होता है। सवाल तो सुनिए गुरु, वक्फ बोर्ड का तो आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए।
1: मैं तो हमेशा से कहता हूँ जहाँ सनातन का सम्मान हो, सनातन का जहाँ पे हमारा सनातन के कोई उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल ये सनातन बोर्ड की बात बोली ना, मैंने कहा जहाँ प्रभु का सम्मान होगा, जिस बोर्ड में प्रभु का सम्मान होगा वो बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए,
0: उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी।
1: अरे मैं तो हमेशा से चाहता हूँ प्रभु
0: सहयोग करेंगे,
1: आवाज तो हम ही उठा रहे हैं प्रभु के सम्मान की,
0: विधानसभा लोकसभा में सहयोग करेंगे क्या,
1: मेरी बात
0: विधानसभा लोकसभा में आपके मेंबर्स उसका सहयोग करेंगे,
1: मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल लिया, मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाता है, सुनिए मेरा, चोरी बात होती है आवाज कौन उठाता है, अगर आपके यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई आवाज किसने उठाई, समाजवादियों ने, आपके यहाँ पे किसान के विश्वास की चोरी, छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी, ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी कब किस चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है बताइए आप, यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ लीक हुआ कब आवाज उठाई, समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, सन्नाटे में चले गए,
3: यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी,
1: हमेशा जहाँ चोरी होगी जहाँ अन्याय होगा समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं, नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई, आप तो चुप्पी साथ जाते हो, आप तो चुप्पा सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो, आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या आई, आप गायब है बीजेपी, चाहे यहाँ पे नील का पेपर लीक हुआ, सवाल तो ये उठता है,
4: हमारे जो सामने युवा साथी बैठे हैं
1: फैलाने वाले
4: उन्होंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है, आज तो सवाल पूछा जा रहा है, अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है, ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या क्या कीजिएगा, ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर है उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे,
0: चल रही है।
4: आपने कहा कि आपने कहा
0: कठोर कार्रवाई होगी,
4: पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है, आप देखिए सरकार कैसे बनी है, आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनको शर्म नहीं आती, जिस बात पे हम कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने, और एक बात और आ रही है निष्पक्ष जांच की बात आ रही है, नहीं सुनिए
3: नेशनल हेराल्ड में पेपर कौन है,
4: आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, मंदिर के कोर्ट में मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना चाहते हैं कि प्रभु राम की बात इसलिए कुछ भी बोलना,
5: मेरे पास
4: किसी बात कहना चाहता हूँ, अंजना जी आपके
2: आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए,
4: आपकी बात मानिए,
2: कहा मानते हैं, मेरी भी नहीं मानते,
1: उधर नहीं बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं,
2: भदौरिया जी
4: बहुत जरूरी बात है आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ, आप सोचिए उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं, तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है।
1: एक लाइन ऐड कर दो ना, उस अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदड़ में लोगों की मौत हुई थी, SIT बनी थी क्या, बनी थी ना, जांच आ गई क्या,
4: 85 से ज्यादा SIT बन चुकी है,
1: कितने साल हो गए उसको बने हुए,
2: स्वामी चक्रपाणि जी अब आप माइक उठाइए, उसके बाद से मैं आप दोनों के पास,
1: शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची है आपके,
2: स्वामी चक्रपाणि।
5: देखिए महामंडलेश्वर जी ने बात बहुत सही कही है कि निश्चित रूप से अखाड़ों को उसमें शामिल करना चाहिए, और हमारे 13 अखाड़े वो अखाड़े हैं जिन्होंने जब मुगल रहे मुगलों को भी धत्ता बताया, मुगलों को भी परास्त किया, अंग्रेज आए उनको भी परास्त किया और अपनी धर्म ध्वजा को लेकिन छोड़ा नहीं। आज भी कुंभ महाकुंभ अर्धकुंभ जो भी होता है आप चारों तरफ देखेंगे सनातन की पताका कोई लहराता है तो हमारे 13 अखाड़े के संत महापुरुष और सिद्ध महात्मा है सवाल। और उसी से हमारी देश के वहां पे कभी भी आप पूरे विश्व में जो कुंभ की जो चर्चाएं होती है आप कभी भी जाति नहीं देखोगे, लिंग विभेद नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो विशेष हमारी अखाड़ों की वही विशेषता है जो सनातन का मूल है। मूल विषय यह है, पूज्य हमारे महामंडलेश्वर जी ने जो बात बोला कि देखिए मूल विषय यह है कि अब आप देखिए मैं ऐसा रहा हूं कि आंदोलन में भी शामिल रहा अंजना जी
2: जी,
5: और कार सेवा भी किया और संजोग से प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से मैं मुकदमे में भी रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, और वहां से भी नोटिस आता था और मैं जाता था मध्यस्थता।
2: सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जांच हो, पारदर्शी हो, जल्द से जल्द सामने आए, क्योंकि अनेकों लोगों की आस्था जुड़ी है। वो तो ना हमें आज भी याद है जब पहली बार सभी ने भगवान राम की उस मूर्ति का दर्शन किया था। बहरहाल आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि क्या उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में आतंकी मानसिकता के लोग आ गए। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों अब पासपोर्ट होने भर से आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते, यानी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को हिसाब देने से क्यों इनकार कर दिया, और इसके बाद अंत में आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर थाली की हकीकत क्या है। हम आज डिफेंस में बहुत कुछ तरक्की की बात कर रहे हैं लेकिन क्या जो हमारी थाली है, जो भोजन उसमें आता है, उस मामले में हम आत्मनिर्भर हो पाए हैं। इन सब पर विस्तृत विश्लेषण रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
1: ये 19 जून की बात है, यानी आज से 6 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैगाम आता है और इन 6 दिनों में मामला काफी आगे बढ़ जाता है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई, मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी जांच के दायरे में बताए गए, गणना और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में विस्तृत और बारीकी से खामियों की पड़ताल हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ गंभीर सवाल बने हुए हैं। वो ये कि एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, एसआईटी रिपोर्ट के बाद आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, जो चेहरे आरोपों के घेरे में हैं उन्हें ट्रस्ट के कामकाज से दूर क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द विपक्ष हमले पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव एसआईटी विदाउट एफआईआर का आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के मोर्चे पर पूरी ताकत से उतर आए हैं। यानी कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी योगी सरकार को राहत नहीं है। एसआईटी की जांच का दायरा सिर्फ दान चोरी तक शायद ही सीमित रहे, अगर ऐसा हुआ तो अयोध्या पर चल रही मौजूदा सियासत में नई गर्मी आना तय है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: पुलिस जिस शख्स को टांग कर ले जा रही है वो बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक अपराध का आरोपी है। इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने और फिर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस अपराध की कहानी जितनी जघन्य है, इस केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी उतनी ही काबिले तारीफ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 साल की बच्ची माता पिता, दो बहनों और भाई के साथ मेहरौली के फुटपाथ पर सीडीआर चौक पर सो रही थी, तभी नशे में चूर ड्राइवर बबलू किसी राइड लेने के लिए वहां खड़ा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर बच्ची पर पड़ी, उसने बच्ची को जबरन वहां से उठाया और गाड़ी में डालने लगा। इस बीच बच्ची की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने पर बच्ची का पिता गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन तब तक आरोपी बच्ची को लेकर भाग चुका था। पिता ने इसके बाद पीसीआर कॉल की, तुरंत मेहरौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो आरोपी बच्ची को उठाते हुए दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी में गाड़ी की परछाई दिखी लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिखा। पुलिस ने जब पूरा फुटेज चेक किया तो पता चला कि गाड़ी यहाँ करीब 1 घंटे से खड़ी थी। गाड़ी सुबह करीब 4 बजे उस जगह पहुंची जहाँ बच्ची सो रही थी और करीब 5 बजे बच्ची को अगवा किया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की, रैपिडो, ओला, उबर से उस इलाके की डिटेल्स मांगी गई, उस रूट के आगे और पीछे की सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जल्द पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर की पहचान कर ली। गाड़ी पहचान होते ही विकासपुरी इलाके में उसकी जीपीएस लोकेशन और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया और आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार शाम पुलिस जब आरोपी को क्राइम स्पॉट पर ले जा रही थी तो आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: राम का नाम बदनाम ना करो, किसी भी आस्थावान हिंदू की भावना यही होती है, लेकिन चढ़ावा चोरी मामले की जितनी परतें खुल रही हैं, संदेह के उतने बादल घुमड़ रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया था? 23 जून को अयोध्या के डीएम कार्यालय को भेजी गई अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी की ये चिट्ठी देखिए। इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से अब तक की समस्त आय, व्यय, दान, बैंक खातों, भूमि क्रय विक्रय और संपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। चिट्ठी में साफ लिखा है कि सचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में SIT जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के BJP नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी जानकारियां मांगी थी, जिसे पीएमओ ने अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा, लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन को पीएमओ को जवाब देने के लिए ट्रस्ट से क्या जवाब मिला आपने जान लिया?
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पर डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की SIT जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते।
0: इन्हीं परिस्थितियों में अब ट्रस्ट को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोग भी उठाने लगे हैं। VHP ने मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
2: जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों की आस्था श्रद्धा, जिनने अपना दान दिया है, चंदा दिया है, उनकी भावना को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी तरह की उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। संजय सिंह ने SIT को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री को वो संदिग्ध बता रहे हैं।
3: भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: 2024 में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर करोड़ों भक्तों के अयोध्या कूच को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब उन्हीं भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ छल के आरोपों पर
4: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
3: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको SDM लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है, जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा, उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5,60,00,000 रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज FIR संभव। SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। केस दर्ज होने के बाद बड़ी कार्रवाई का खुलेगा रास्ता। के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान। नई टीम में पिछड़ों का दबदबा। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह शामिल। कोलकाता में गोदाम हादसे में अब तक 11 लोगों ने गंवाई जान। 19 घायल। पुलिस ने 5 लोगों किया गिरफ्तार। सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊंचाई पर वैन लटकाकर किया धमाका। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल। अब तक 4 पर FIR।

जयपुर में गिरफ्तार महिला ने मामले में खुलासा। जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की थी योजना। 27 जून तक पुलिस कस्टडी में आरोपी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज एफआईआर दर्ज कर सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपे 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी मामले में संलिप्त लोगों पर केस दर्ज नहीं किया गया है। उधर इसी मामले को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के बाद अब वीएचपी भी ये मांग कर रही है कि पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी के इस पूरे मामले में अब जमीन घोटाले के आरोप लगने लगे हैं।

0: राम मंदिर में कितना चढ़ावा चोरी हुआ? राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वाले कौन है? क्या राम मंदिर के निर्माण में जमीन घोटाला हुआ है? ये वो सवाल हैं जो बीतते वक्त के साथ गहराते जा रहे हैं। ताजा खबर यह है कि अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा सुनिए।
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पे डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है।
0: रजनीश सिंह की चिट्ठी पर पीएमओ ने संज्ञान लिया, जवाब मांगा गया, मगर ट्रस्ट ने यह कहकर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है। इसीलिए अब मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी सवाल उठाने लगे हैं।
2: एसआईटी ने कुछ नाम बताए हैं, ऐसा सुना है, कुछ एविडेंस का भी जिक्र किया है, इसलिए हमको लगता है कि अब एफआईआर होनी चाहिए।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
3: जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। उन्होंने एसआईटी को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री वो संदिग्ध बता रहे हैं।
4: एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5.60 करोड़ रुपए में।
0: राम मंदिर सनातन की आस्था का केंद्र है और अब उसी आस्था के साथ छल पर हंगामा मचा हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी का सच क्या है। आज तक ब्यूरो।
5: इधर बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान भी रखा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को शामिल किया गया है।
6: सत्ताईस का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: और बात पासपोर्ट को लेकर मचे सियासी बवाल की करेंगे, क्योंकि नागरिकता का पर्याप्त सबूत पासपोर्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज है।
0: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
7: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
8: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
0: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
9: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
0: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फी में बढ़ोतरी कर दी। अब 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए आपको 2500 रुपए देने होंगे, जबकि 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए लगेंगे। 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 3500 शुल्क लगेगा, जबकि 60 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए 6000 रुपए शुल्क होगा।

0: और अब बात पंजाब की सियासत की, जहां एक वीडियो ने भगवान मान की मुश्किलें लगातार बढ़ा रखी हैं। मान वीडियो को लेकर रोज नई थ्योरी लेकर ही आ जाते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के पीछे की एक नई कहानी बता दी।
1: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर जारी विवादित वीडियो के घमासान में अब एक नए वीडियो की एंट्री हुई है। भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि कैसे उनका मास्क पहनकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
2: बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लग गया है नंबर 3 पे, क्योंकि अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है, अखा नहीं बन गया, तो फिर उन्हें ऐनक लाई है काली ताकि अखा लुक जान, होटल का कमरा है।
1: सबसे बड़ी बात, भगवंत मान इस वीडियो को लेकर कई बार बयान बदल चुके हैं। पहले उन्होंने वीडियो सामने आने के बाद दावा किया था कि ये AI वीडियो है, फिर अकाल तख्त की पेशी में दावा किया कि ये वीडियो जर्मनी के एक शख्स का है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। अब मास्क वाली थ्योरी लेकर वो सामने आए, जबकि वीडियो को फेक साबित करने के लिए अकाल तख्त को जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भगवंत मान की ओर से सौंपी गई उसे लेकर अब हरियाणा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका दावा है कि फर्जी लैब से पैसे देकर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी।
3: ये कोई भी साइबर लैब किसी भी सरकारी ऑफिस से या सरकार की तरफ से वैध नहीं है, ये बिल्कुल फेक लैब्स के नाम से रिपोर्ट बनाई गई थी।
1: अब भगवंत मान के पुराने दोस्त भी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
4: भगवंत मान जो कि पंत विरोधी और गुरु धोखी करार दिए जा चुके हैं, वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें। अब वे एक मिनट में भी पंजाब के CM बने रहने के काबिल नहीं।
1: बहरहाल अब विवादित वीडियो ने पंजाब की सियासत को गर्म कर दिया, जिसमें भगवंत मान बुरी तरह फंसते नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: NCERT ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर सियासी रण छिड़ गया।
5: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। PM मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
6: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
5: BJP ने कांग्रेस को घेरा और UP के CM ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
7: याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
5: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
8: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
5: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि NCERT ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
9: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
5: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर है पुणे से, जहां पर केतन हत्याकांड पुलिस घटना को रिक्रिएट इस वक्त कर रही है। लोहगढ़ किले पर घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया जा रहा है और पिछले 3 से 4 घंटे से दोनों आरोपी यानी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी इस रिक्रिएशन में साथ में मौजूद है और इस दौरान फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। जांच में पुलिस की सहायता की जा रही है और इस बीच अब तक की जांच में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।
10: की हत्या से ठीक एक दिन पहले पुणे के थर्ड वेव कैफे का यह सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चेतन और सिया मिलकर यहीं करीब एक घंटे तक हत्या की साजिश रची थी। सीसीटीवी फुटेज में कॉफी की चुस्कियों के साथ सिया लोहगढ़ की तस्वीरें भी यूट्यूब पर दिखाती नजर आ रही है।
11: लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई, सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
10: खबरों की माने तो केतन की हत्या के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार किया गया था। प्लान ए में केतन को सिया ने धक्का दिया था, लेकिन केतन अच्छा ट्रैकर था, ऐसे में वो बच गया और सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाया, जिसके बाद प्लान बी के तहत केतन की हत्या हुई, जबकि प्लान सी में केतन को एक्सीडेंट के जरिए मारने की तैयारी थी, यानी किसी भी कीमत पर सिया केतन को जिंदा नहीं बख्शने वाली थी। पुलिस को सीसीटीवी में पता चला था कि लोहगढ़ में हुडी पहने युवक ने हाथ से इशारा किया, जिस पर सिया ने भी हल्का सा संकेत दिया। सिया ने योजना बनाई थी कि किले पर पहुंचने के बाद वो थकने का बहाना बनाकर बैठ जाएगी, इसे संकेत मानकर चेतन को धकेलना था। जांच में पता चला है कि जैसे ही सिया बैठी केतन भी रुक गया और उसी दौरान चेतन ने उसे धक्का देकर खाई में गिरा दिया। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
0: और बात मुहर्रम की, जिसके जुलूस में उज्जैन से हुड़दंग वाली तस्वीरें आई हैं। यहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
12: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे, इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोस में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
13: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
12: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है, ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब शेयर बाजार की, जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी के बाद क्रूड ऑयल में आई नरमी से शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 109 अंक की मजबूती के साथ 77,100 और निफ्टी 34 अंक चढ़कर 24,056 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर्स में मजबूती देखने को मिली। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ने भी बाजार को सहारा देने का काम किया। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में आज बढ़त देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपए 15 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। एशियाई करेंसीज के मुकाबले रुपए का आज बेहतर प्रदर्शन रहा। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। सोना 2,156 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,40,022 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी 6,550 रुपए टूटकर 2,15,485 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। डॉलर की मजबूती और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से सोने में यह गिरावट आ रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एलपीजी ग्राहकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत आई है। सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी सेक्टर वाइज पाबंदियां हटा दी हैं और सप्लाई को वेस्ट एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। इसके अलावा संकट की शुरुआत में रोकी गई ज्यादा एलपीजी की सप्लाई में ढील दी गई है, इससे संकट से पहले की खपत के स्तर पर 50% कर दिया गया है, जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। ये बहाली एलपीजी सप्लाई की स्थिति में हाल में हुए सुधार के बाद की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह फैसला लिया गया। और बाद मौसम के बिगड़े मिजाज की, महाराष्ट्र में मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। पहली बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है। जलगांव से बाढ़ की भयानक तस्वीर सामने आई है।
14: पहली ही बरसात में तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसी जलधारा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। देखिए ये जलगांव की तस्वीरें, पहली ही बरसात में ये आलम है। जलधारा के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है, पानी का वेग ट्रैक्टर को बहा ले जाने पर आमादा है। इसी जलगांव की दूसरी तस्वीर देखिए, बेहिसाब बरसात हुई और इस बरसात में ये बस यहाँ फंस गई। पानी में आधी बस डूबी हुई है और जान बचाने के लिए ये लोग बस की छत पर खड़े हैं। जलगांव के मुक्ताई नगर और रावेर में बादलों ने तबाही मचाई है। मौसम की मार अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ी है। यजाली में कल बादल फटने जैसी तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ रास्ते बंद हैं। देखिए कैसे लोग अपनी बाइक और सामान लाद कर निकल रहे हैं। दार्जिलिंग में भी कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन हुआ जिसके बाद रास्ता बंद है। अब यहाँ मलबा हटाने का काम हो रहा है। मुंबई में भी मानसून ने दस्तक दी तो परेशानियों का अंबार लग गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। अभी तो मानसून आया ही है और अभी से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आज तक देरो
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
18: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
19: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
20: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
21: Pure Ayurvedic Beauty.
22: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
5: Take a date, not bites.
6: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर उधर,
7: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
18: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
17: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबां केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। जो जितना भी निवेश है उसका 90% या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जब भारत 3% है? गोल्ड बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, आप डॉलर टर्म्स में देखें।
4: स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है?
3: आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। अब आपको खेलना कैसे है, नॉट टू लूज, कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना, उसको तरफ जाइए ही मत, ये पूरा स्कैम है। और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ।
5: देखिए बिल्कुल, मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहाँ पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: चंदा चोरी मामले में अब एक नई खबर आ रही है सामने की चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की थी। शुरुआती रिपोर्ट जो थी उसी के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसकी लगातार मांग भी की जा रही थी। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर यह एफआईआर हुई है और जो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट थी जो सीएम को सौंपी गई थी उसके आधार पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये एफआईआर नामजद है और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है?
1: लेकिन सबसे पहले तो बता रही थी तरीके से पूरे घटनाक्रम चल रहा था गांव चोरी में एसआईटी की प्राथमिकता रिपोर्ट बेहद संतुष्टि रही जिसके बाद
0: आपकी आवाज साफ नहीं है आशीष।
1: 316
0: तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अलग अलग धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि इसमें नामजद कौन से लोग हैं क्योंकि ये एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हुई है। लगातार ट्रस्ट भी इसी की मांग कर रहा था। अब शुरुआती रिपोर्ट के बाद आज ही अब से कुछ ही देर पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच हुई थी, कई पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट आई थी, सीएम को इसे सौंपा गया था लेकिन ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी। अब लगातार आरोप चंदा चोरी के लग रहे हैं जिसमें इस्तीफे की मांग भी चंपत राय की जा रही है और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, कौन सी धाराएं आप बता रहे थे?
2: बिल्कुल नया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है इससे बड़ी बात है कि आज तक पर हम इसको दिखा रहे हैं और इसमें अगर मेरे पास देखो तो यूपी सरकार के निर्देश पर पीसी एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है और जिसमें 306, 316, 317, 61 और 5 के तहत शिकायत दर्ज हुई है जिसके बाद ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। और लगातार इस पूरे मामले पर चूंकि शुरुआत से ही ये चल रहा था कि आज एफआईआर होनी थी और आज तक ने इसको सबसे पहले
0: आपके पास एफआईआर की डिटेल्स मौजूद है। आशीष, डिटेल्स बताइए कहां पर दर्ज हुई है एफआईआर, कौन कौन से लोग नामजद हैं, कौन सी धाराएं हैं, क्या डिटेल्स हैं इस एफआईआर की?
2: देखिए बिल्कुल, इसमें अभी शुरुआती एफआईआर की जो डिटेल है उसमें अभी नामजद मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ लेकिन जो श्री कृष्ण मोहन सदस्य है श्री राम जन्मभूमि के उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और जिसमें ये संतुष्टि की गई है कि दान चोरी में जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में बेहद सख्त संतुष्टि थी और ये साफ कहा गया कि इसमें जिस तरीके से दान चोरी वाला मामला आया है उसके तहत ही ये पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। मैंने आपको जो धाराएं बताई जिसमें अगर आप बात करिए 306, 316, 317 और 61 के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर इसमें मान के चलिए कि गिरफ्तारियां होनी है क्योंकि ये आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं इसपे इस पूरे मामले पर अगर हम बात करेंगे तो चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार का ये सख्त एक्शन है और इसी एक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जिसमें पूरी तरीके से अब उन लोगों को जो जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों के नाम भी अभी सामने आ जाएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन जिस तरीके से जो एफआईआर की डिटेल है वो जरूर सामने आ गई है और उसमें ये जरूर कहा गया है कि एक सख्त आदेश हुआ है यूपी सरकार की तरफ से,
0: आदेश भी हुआ है, एक्शन भी हुआ है लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचेंगे, कब तक गिरफ्तारियां संभव होंगी? अगर प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह एफआईआर की गई है तो वो रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? और चंपत राय जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नैतिकता के ही नाते वो इस्तीफा दे दे।
2: अब बिल्कुल नया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार जो बात कह रही थी लगातार योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था

0: हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद ही जो एफआईआर दर्ज हुई इसमें बड़े पैमाने पर, अब चूंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद माना जा रहा है कि लगातार अब इसमें गिरफ्तारियां होनी है, जिसको लेकर जब ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज की थी उसके बाद से ही
1: ठीक है,
0: ये
1: मैं रोकूंगी
0: माहौल बना हुआ
1: आपको।
0: था कि आखिर
1: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे समाजवादी पार्टी अब संतुष्ट है या फिर ये सब सिर्फ कागजी तौर पर चल रहा है, कुछ होने नहीं वाला है?
2: तो इसके मतलब आप इस बात को तो मानते होंगे कि समाजवादी लोग असली सनातनी और राम भक्त हैं। जहां भी गड़बड़ी होती है उन्होंने आवाज उठाई, और आज मानना पड़ा सरकार को भी और ट्रस्ट को भी कि जो हमने आवाज उठाई थी वो सच था। आज एफआईआर हुई तो इसके मतलब जो समाजवादी लोग कहते हैं हमेशा वो सच सच होता है, क्योंकि हम जनता की भावनाओं के साथ रहते हैं और हम प्रभु के आदर्श आचरण पर चलने वाले लोग हैं। वहां कभी भी जब भी गड़बड़ी हुई है समाजवादियों ने हमेशा इसकी आवाज उठाई है। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, जो समाजवादी ने जब आवाज उठाई थी कि यहाँ पे चंदा वहाँ पे दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, और जो लोग इसको कह रहे
1: होगी
2: थे नहीं
1: अब इसमें
2: समाजवादी
1: अनुराग
2: लोग
1: भदौरिया जी,
2: क्या,
1: आगे कार्रवाई होगी अब या सिर्फ एफआईआर करके इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा?
2: नहीं प्रभु राम के जो दान पत्र में चोरी हुई है समाजवादी लोग लगातार इस आवाज को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और आस्था के साथ हम राजनीति नहीं करते। आस्था मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। आस्था हमेशा हमेशा हम आस्था को, और आस्था हमारा हमेशा जो हमारा धर्म है वो आस्था का विषय है। इसलिए इस पे जो गड़बड़ी हुई थी हमने आवाज उठाई थी
1: ठीक है,
2: और आज एफआईआर हुई है, और हम इसको आगे और क्या क्या होता है इस पे समाजवादी पार्टी लोग नजर रखेंगे।
1: संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जमीन खरीद में भी घोटाला हुआ है, उसमें भी कई लोगों को फायदा पहुंचा है, समाजवादी पार्टी भी यही मानती है?
2: भाई उन्होंने उसके दस्तावेज दिए हैं, आज एसआईटी के सामने जाके संजय सिंह ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और ये बात तो बहुत पहले उठी थी। उसके बाद सरकार को उस पर कार्रवाई, पहले उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी जो सरकार ने नहीं की। जब एक आ गया था 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, जिस तरह की बातें हुई थी उस समय अगर सरकार इस पर एक्शन ले लेती, इसकी जांच कर लेती तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोग
1: चलिए, अब जो
2: विपक्ष के
1: हुआ
2: लोग
1: सो हुआ,
2: लगातार
1: आगे
2: समाज
1: क्या होना चाहिए, किस तरह का कड़ा एक्शन होना चाहिए?
2: बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, और जहां आस्था का मामला है वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु राम इसमें न्याय करेंगे और जो लोग इसमें शामिल है प्रभु राम उनको दंडित करेंगे।
1: ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्द एक्शन की तैयारी है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, एफआईआर की डिटेल्स कब तक हासिल हो जाएंगी? ठीक है, आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द एसआईटी अपनी जांच पूरी करे और एसआईटी महज एक खानापूर्ति की टीम ना बन जाए, कि हर बार अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई धांधली हो तो एसआईटी टीम का गठन कर दिया जाए, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाए और मामला जस का तस रहे। लेकिन अब हो सकता है कि इस एफआईआर के बाद जल्द कुछ बड़े नाम सामने आए, कुछ गिरफ्तारियां संभव हो, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी हुई है और आज संजय सिंह जिस तरीके से कई दस्तावेजों के साथ सामने आया, उन्होंने कहा कि जमीन खरीद में भी घोटाला हुआ है, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। तो ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पहले से लगातार ट्रस्ट ये मांग कर रहा था, जिस दिन से लगभग ये मामला उठा है तब से ये मांग की जा रही थी कि एफआईआर होनी चाहिए। अब शुरुआती रिपोर्ट के बाद ये एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन इसमें कौन कौन लोग नामजद हैं वो नाम अभी सामने नहीं आए हैं। एक बड़ा रैकेट है, एक बड़ा सिंडिकेट है, इस बात का इशारा तमाम एसआईटी की ये रिपोर्ट में अलग अलग पॉइंट्स में किया गया है कि कई लोग लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक इसमें शामिल रहे, कई फुटेजेस जो सीसीटीवी के थे वो गायब रहे, इसके अलावा बहुत से लोगों की मिली भगत रही, उसकी वजह से ही ये चंदा चोरी संभव हो सकी। और संभवतः हो सकता है कि कई बड़े लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि चंदा चोरी हो रहा है। उसमें सिर्फ रुपए शामिल नहीं थे बल्कि आभूषण भी शामिल थे, कई अन्य सोने और चांदी की चीजें शामिल थी जो लगातार चोरी की जा रही थी और हो सकता है उनकी कीमत इस वक्त करोड़ों में हो। यानी कि ये धांधली उस दिन से चल रही है जिस दिन से राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि लाखों की संख्या में आपको पता होगा कि वहां पर भक्त पहुंचते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनकी आस्था इन सब चीजों में है। दान पत्र में अक्सर ये डाल दिया जाता है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, आपको पता चला है किसके नाम इस एफआईआर में शामिल है या फिर कौन कौन सी धाराएं हैं, डिटेल में बता सके अगर आप?
3: हेलो
1: जी, आ रही है आपकी आवाज।
3: देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई ये क्योंकि ट्रस्ट ने ही अपनी तरफ से कहा था कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो गई। देखिए, अभी कुछ देर में तमाम उन नामों का खुलासा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक जो बात सामने आई है वो ये कि इसमें शायद जो बड़े नाम हैं, जो ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हैं, उनके नाम एफआईआर में शामिल नहीं होंगे। जो नीचे के कर्मचारी हैं, खासकर जो चंदा चढ़ावा का जो चंदा आता है जिसके गिनने के कर्मचारी हैं, उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 से 6 लोगों पर एफआईआर होगी, लेकिन अभी नाम सामने नहीं है, जल्द ही ये नाम भी सामने आएंगे। और चोरी धोखाधड़ी ऐसे तमाम जो जो जो चार्जेज हैं उसमें एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई है। अब नेचुरल है, जब सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट दी गई है उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई है। लेकिन देखना यह है कि क्या एसआईटी ने सिर्फ ऐसे लोगों को, जो लोग सिर्फ गिनने तक पैसा पहुंचाने तक जो शामिल थे, सिर्फ उन्हें ही उन पर ही एफआईआर कर रही है, उन्हें ही चंदा चढ़ावे में आरोपी बनाया है, या फिर कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल है?
1: मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट है इसमें ही जो नाम शामिल है और तमाम जितने नाम शामिल है वो सब एफआईआर में दर्ज है, या फिर वो सिलेक्टेड तौर पर उनको खंगाल कर, जैसा आप कह रहे थे कि लोअर श्रेणी में जो लोग हैं उनके नाम हो सकते हैं, कुछ बड़े लोग के नाम नहीं शामिल होंगे, तो ये क्या घाल मिल है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसे कि प्राथमिक रिपोर्ट वाले सारे नाम है, कुछ नाम है, या उनमें से कोई भी नाम नहीं है?
3: नहीं, सारे नाम नहीं है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक करीब सिर्फ 5 या 6 लोगों के नाम होंगे, और ऐसे नाम होंगे जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए ऐसे लोग जिनका प्रतिदिन इस चढ़ावे को लेकर के पैसे गिनने का, पैसे रखने का, बैंक तक ले जाने पहुंचाने, ऐसे लोगों का ही नाम इसमें होगा। लेकिन क्या सिर्फ अगर उन तक ही एफआईआर रहती है तो फिर बड़े सवाल खड़े होंगे।
1: ठीक है, विपक्ष को फिर मौका मिल जाएगा। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अपना फ्रेम ठीक करिए और संतोष ये बताइए कि ट्रस्ट के क्या कुछ बड़े लोगों के नाम भी इसमें आ सकते हैं इस एफआईआर में, या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अब लंबा वक्त बीत चुका है और लगातार सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्यों कुछ नामों को शील्ड किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। क्या वो नाम भी होंगे एफआईआर में जब नाम सामने आते हैं?
4: देखिए, अभी शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है राम मंदिर के ही एक पदाधिकारी के द्वारा राम जन्मभूमि थाने में, उसमें शुरुआत में जो नाम है वो लोग हैं जो सीधे से राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में इन्वॉल्व पाए गए, जिनके पास से कुछ रिकवरीज हुई हैं। अभी वो नाम का सामने आना, क्योंकि 6 से 7 लोग लगातार कस्टडी में लिए गए जिनसे जानकारी जुटाई जा रही थी और जिनसे रिकवरी भी हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी तो एसआईटी ने जो संस्तुति की उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया, तो ये नाम अभी और भी खुलासे होंगे।
1: कुछ चीजों पर अभी संशय बना हुआ है। कुमार अभिषेक से पूछ लेती हूँ, ये नामजद एफआईआर यानी कि इसमें कुछ नामों का जिक्र है या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई भी नाम एफआईआर में शामिल ना हो?
3: ये नामजद एफआईआर है और 6 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही जैसा संतोष बता रहे हैं कि शुरुआती एफआईआर के आधार पर इन 6 लोगों को अभी नामजद किया गया है और इस पर बकायदा इनकी धाराएं भी हैं। जो धाराएं हैं उसमें बीएनएस की धारा 306, 316, 5, 317, 317, 5, 61, 3 और 5 के तहत शिकायत एफआईआर में दर्ज हुई है। तो ये वो तमाम शिकायतें हैं जो चोरी, धोखाधड़ी, इस तरीके से जुड़ी हुई बीएसएस की धाराएं हैं उससे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ 6 लोगों तक रह जाएगा या बड़े लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे? क्योंकि अभी जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट के बाद जो एसआईटी के जांच दल के सदस्य रहे हैं विश्वास पंत, उन्होंने बकायदा कहा है कि अभी ये जारी, अभी
1: लड़ाई लंबी है। संतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम है क्योंकि अकूत संपत्ति बताया जा रहा था कि उसने कम समय में अर्जित की है, उसका नाम है इसमें?
4: देखिए, अभी ये जो नाम है ये अभी नाम का सामने आना बाकी है, क्योंकि स्थिति ये है कि पूरे मामले को लेकर के एफआईआर जो दर्ज कर कृष्ण मोहन की तरफ से जो धाराएं हैं वो सामने आई हैं। लेकिन उससे एफआईआर का कंटेंट क्या है, कौन कौन इसमें नामजद किए गए हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये तमाम नाम ऐसे जो चर्चा में थे, कहा गया कि लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए तो वो शामिल है, अनुकल्प मिश्रा जो उसका नौकरी दिलाने वाला रिश्ते में जीजा लगता है वो शामिल है, तो ये तमाम नाम का शामिल होना जिनके पास से रिकवरी हुई है। लेकिन अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाकी, अभी तो ये शुरुआत हुई इन्वेस्टिगेशन की, ये इन्वेस्टिगेशन का दी एंड नहीं है। इसके बाद अभी कई नाम पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में खोलेगी और उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन शुरू हो गया है और इस पूरे मामले को लेकर
1: एक्शन काफी नहीं है क्योंकि एक्शन तो बहुत दिन से लिया जा रहा है, जब से एसआईटी का गठन हुआ है तब से एक्शन जारी है। लेकिन विपक्ष ये लगातार कुमार अभिषेक कह रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, क्या कुछ बड़े नाम शामिल किए जाएंगे, खासतौर पर जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी नॉलेज के बिना ये हो ही नहीं सकता था, वो जानते थे कि ये हो रहा था, उनकी आंखों के ठीक नीचे ये हो रहा था, फिर भी वो खामोश रहे।
3: देखिए, लोग उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि इसमें जो बड़े नाम हैं ट्रस्ट के उनके नाम भी शामिल होंगे, लेकिन लगता नहीं है। ये 6 नाम हैं, ये शुरुआती चूंकि जांच के बाद आए हैं तो ये तमाम वही नाम होंगे जो कि चढ़ावे में जो चोरी हुई है जिनके सीसीटीवी फुटेज आए होंगे या जिनको पैसा रखते जिनके सीसीटीवी फुटेज पकड़े गए होंगे या जो संदिग्ध स्थिति में पाए गए होंगे। 6 दिनों की जो ये जांच हुई उसमें जो जो संदिग्ध या जिन पर कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस मिला होगा सिर्फ उन्हीं पर होगा। लेकिन आप देखिए, अब कहा यह जा रहा है कि चंपत राय ने खुद ही एसआईटी की सिफारिश की थी। आप देखिए, चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर के बड़े बड़े लोग उनको निष्कलंक बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई वो निष्कलंक है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, हो सकता है कि उनसे गलतियां हुई हो, यानी कि वो इस पूरे मामले को ढंग से नहीं देख पाए हो, लेकिन उनको इससे अलग रखा जाना चाहिए। ये भी चर्चा है कि शायद क्लीन चिट कुछ लोगों को मिली है, उसमें चंपत राय भी होंगे। चर्चा तो ये भी है कि चंपत राय के ग्रेसफुल एग्जिट की भी बात की जा रही है। तो ये जो तमाम बातें आप इस वक्त सुन रहे हैं ये एक चीज तो दिखा रहा है कि जो बड़े नाम है शायद वो
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करना काफी होगा या आपको लगता है कि बड़े नामों को अभी भी बचाया जा रहा है और जो नामजद लोग हैं 6, इनमें वो बड़े नाम है ही नहीं?
5: देखिए, ये राष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें इस देश के करोड़ों करोड़ों करोड़ों प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले, धर्म से जुड़े हुए करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और उनकी आस्था के साथ चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। पूरे राष्ट्र के ऐसे लोग जो प्रभु श्री राम से आस्थावान है वो आफत हुए हैं। इसके लिए एसआईटी की जांच का कोई मतलब नहीं है। इस बात को हम बहुत पहले कई बार कह चुके हैं, इस बात को हमारे नेता
1: तो क्या होना चाहिए अवधेश प्रसाद जी, अगर एसआईटी ना हो तो जांच फिर किसके द्वारा की जानी चाहिए? और दूसरी बात ये क्योंकि आप तो पूरे मंदिर का सिस्टम समझते हैं, क्या ट्रस्ट की जानकारी के बिना ऐसा संभव है कि इतने लंबे वक्त तक चोरी होती रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो?
5: ऐसा है, ये जांच के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी जांच करे करती और उसके पहले जितने लोग हैं उनको हटा देना चाहिए था।
1: कौन है वो लोग, कुछ नाम लेना चाहेंगे आप?
5: सब ट्रस्टी, सारे ट्रस्ट में इंटायर ट्रस्ट के जितने हैं उनको हटा देना चाहिए था, उनको दूर रखना चाहिए था, मंदिर से हटा देना चाहिए था, तब जांच होती, और जांच में तो सारी चीजें आ गई हैं, क्या नहीं आया है
1: तो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही है? अवधेश जी, क्या लगता है आपको, रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही है? और चंपत राय जी ऐसे चुपचाप बैठ गए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है?
5: वही तो है ना, बचाने काम किया गया है, बचाने के लिए जनता की निगाह में जो मतदान, जो हमारे ये करोड़ों लोग हैं, ये उनकी निगाह से नहीं बच पाएंगे, भगवान की निगाह से नहीं बच पाए हैं। भले सरकार उनको बचा ले, लेकिन भगवान नहीं बचाएंगे। और जो करोड़ों करोड़ों आस्थावान जिन्होंने माथा टेका है, चढ़ावा चढ़ावा है, उनसे ये बड़ी जिंदगी नहीं हो पाएगी।
1: एक बड़ा एक गोल सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ। इस पूरे मामले में करोड़ों करोड़ों की चोरी हुई, जिसमें सोना चांदी इत्यादि सब कुछ शामिल है, आपको लगता है कि कुछ छोटे लोगों के नाम लेकर बड़े लोग फिर से बच जाएंगे, वो बड़े चेहरे कभी सामने ही नहीं आ पाएंगे?
5: बात तो इसी तरह लगती है, लेकिन लेकिन सरकार भले बचा दे, लेकिन करोड़ों लोगों की निगाह से नहीं बचेंगे, भगवान के यहाँ से नहीं बचेंगे, इनको दंडित करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश के चुनाव में अवधेश जी, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है?
5: उत्तर प्रदेश का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, और पीडीए की सरकार, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, और 350 से ज्यादा सीटें हमें मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं लड़ाई नहीं रहेगी। इस लड़ाई को देवतुल्य मतदाता, देवतुल्य जनता अपने हाथ में ले लेंगे।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद, और उनका ये कहना है कि उच्चतम न्यायालय को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, एसआईटी के गठन से काम नहीं चलेगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी, कुमार 8 नामजद लोग हैं अब ये खबर सामने आ रही है। कुमार आपको
3: देखिए, दो नाम जो सामने आ रहे हैं अभी तक, उसमें अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव, ये दो नाम अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, इनके भी नाम एफआईआर में शामिल हैं। तो जो टिन्नू यादव, जिसकी बहुत चर्चा थी, उसका नाम है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा का नाम है, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा का नाम है, अविनाश शुक्ला का नाम है। तो ऐसे 6 नाम अभी तक ये सामने आ रहे हैं, जो कि जिनका की नाम इस एफआईआर में है। तो निश्चित तौर पर जो पहले पहला जो एफआईआर हुई और जो पहली कार्रवाई है, इसमें ये 6 नाम सामने, हालांकि कहा जा रहा है कि 8 लोगों
1: कुल 8 नाम है, 6 आपके पास हैं, 2 नाम अभी सामने आने बाकी हैं, और जितने भी नाम आपने बताए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ही नहीं है। ट्रस्ट का कोई व्यक्ति है
3: नहीं? ट्रस्ट के ट्रस्ट में बहुत ज्यादा लोग टॉप के लेवल पर जो है वो दिखाई देते हैं, बाकी ये सब ट्रस्ट के अंडर में ही काम करने वाले लोग
1: काम करते
3: इन सबको अगर कोई किसी के छत्रछाया में या कोई हेड करता है तो ट्रस्ट ही हेड करता है। ट्रस्ट ही इन लोगों को यहाँ पर उन्होंने लगा रखा है, वही काम देते हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो जगह जिम्मेदारी की बात बनेगी, चाहे काम कोई करे, एफआईआर कोई हो, पूरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की ही होती है, इसलिए ट्रस्ट तो सवालों के घेरे में है ही।
1: और एक तो सीधे तौर पर टिन्नू यादव तो चंपत राय के ड्राइवर हैं, ऐसा संभव है क्या कि कोई उनकी आंख के नीचे उनका ड्राइवर इस तरह से चोरी कर रहा हो? उन्होंने कानो-कान खबर तक नहीं थी, आज तक उन्होंने ये माना भी नहीं कि इस बात को वो जानते थे, ये स्वीकारा भी नहीं है कि ऐसा उनको पता था या इस बात की आशंका थी, कुछ भी नहीं।
3: एक बार फिर से
1: मैं कह रही हूँ कि टिन्नू यादव के बारे में चंपत राय का क्या रुख रहा है अभी तक?
3: देखिए, चंपत राय तो जब से शुरू हुआ है ये एसआईटी की जांच, तब से सामने नहीं आए हैं। दूसरी बात, वो मीडिया से भी पिछले काफी वक्त से वो दूर आ रहे हैं। टिन्नू यादव उनका करीबी रहा है, उनका ड्राइवर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक टिन्नू यादव को ही इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ढेरों लोग दोषी हैं। बहुत सारे नाम है, अनुकल्प मिश्रा, मनीष मिश्रा, ऐसे तमाम नाम है जो कि, लेकिन ये तमाम वो नाम है जो मंदिर प्रबंधन के भीतर जो चढ़ावे का जो पैसा आता है उसकी गिनती से, उसको उसके मैनेजमेंट से, उसको बैंक तक ले जाने से, चढ़ावों से जुड़े हुए ये लोग हैं, जिनका कि डे टू डे काम इन चढ़ावों की गिनती करना, चढ़ावे को बैंक तक ले जाना, इसमें इनका रोल है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या सिर्फ यहीं तक यही 6 नाम रह जाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये छह नाम, छह समेत
1: कुमार मुझे याद पड़ता है कि
3: सकते
1: जब एक बार बातचीत हो रही थी हमारी एसआईटी की इस प्राथमिक रिपोर्ट के बारे में, तब आपने कहा था कि एजेंसी के कुछ लोग भी जुड़े हो सकते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस तरह से पूरी कार्रवाई जिनके संरक्षण में हो रही थी, कहां से पैसा गिना जाएगा, कैसे जाएगा, तो बहुत सारे लैप्सेस आए थे सामने। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी होंगे जो सीधे तौर पर मंदिर से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी एजेंसी के हैं, किसी बैंक के हैं।
3: देखिए, इसमें जो बात सामने आई थी वो ये कि जो स्टेट बैंक चूंकि इस पूरे चढ़ावे के पैसे की गिनती के बाद इसको बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी होती है, और स्टेट बैंक के बारे में कहा गया कि उन्होंने एक एजेंसी को जो पहले से इस तरीके का काम करती रही है वाराणसी में, उसको उन्होंने हायर किया था। और अभी जो लेकिन जितने नाम आए हैं यहाँ, वो सारे नाम जो लोग सीधे सीधे चढ़ावों की गिनती से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो मंदिर में 24 घंटे में 16 17 18 घंटे रहते हैं, जो ट्रस्ट के बड़े बड़े जो नाम है उनके अंडर में वो काम करते हैं, जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जो चढ़ावों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के ही नाम दिखाई दे रहे हैं। ये जो तमाम नाम अभी इस वक्त FIR में है, ये सारे वो नाम है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिससे कई बार SIT पूछताछ कर चुकी है, इन्हीं पर शक हुआ है। और याद करिए कि नृपेंद्र मिश्र ने तो कहा था कि जो CCTV है उसमें एक आध कर्मचारी पैसे जेब में रखते हुए देखे गए। तो ऐसे वो तमाम नाम है जिनके खिलाफ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, ऐसे वो सारे नाम है जो कि जिनके खिलाफ कोई ना कोई साक्ष्य मिला है, या जब SIT ने पूछताछ की है तो वो संदिग्ध पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो ये मामला शुरुआती है, शुरुआती जांच है, शुरुआती FIR है। अभी जब ये जांच का दायरा बड़ा होगा तब इसमें हो सकता है कि और भी ढेरों नाम आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि चंपत राय या दूसरे नामों पर शायद आंच ना आए, ये भी
1: ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी श्वेता सिंह खबरदार में।
6: शुक्रिया नेहा, नमस्कार। शुरुआत हम करते हैं खबरदार की, क्योंकि जिस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए थे उस खबर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। ये अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा, उसमें किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से चोरी हुई, उसको लेकर पहली FIR दर्ज कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में 8 नामजद के खिलाफ FIR है, 8 नाम है इसमें, और वो सब नाम एक एक करके हम आपको बताएंगे किस तरह की जांच ये अब तक चली है। ये शुरुआती रिपोर्ट जिसके आधार पर यह पहली FIR दर्ज की गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि कोतवाली में यह FIR दर्ज की गई है। टिन्नू यादव, जिसका नाम शुरुआत से आ रहा था, रमाशंकर मिश्र, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्र, ये सारे वो नाम, अविनाश शुक्ला, सब पर FIR दर्ज हुई है। ट्रस्ट से जुड़े लोग, काउंटिंग में लगे लोग, ये अलग अलग प्रोफाइल सबका है। लेकिन इस पूरे मामले में अब बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या नगरी में राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आने की संख्या कम नहीं हुई, लेकिन यह कहा गया कि जो दान देने की राशि थी उसमें जरूर कमी आई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अविश्वास लोगों के मन में शायद आ रहा था। यह अविश्वास न आए, भरोसा रहे, इसी वजह से SIT का तत्काल गठन किया गया था। और SIT के गठन के बाद यह पहली रिपोर्ट जिसके साथ ये 8 नाम, ये 8 नाम कौन कौन है हम जानते हैं कुमार अभिषेक से। अभिषेक बताएं।
3: देखिए, 8 में से 5 नाम तो सामने आ गए हैं, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव उनका पूरा नाम है। तो ये 5 नाम सामने हैं। कहा जा रहा है अभी तीन नामों का अभी तक खुलासा नहीं है, तो आखिर ये कौन तीन नाम है, क्या इसमें कोई ट्रस्ट के बड़े चेहरे भी शामिल हैं या नहीं है, ये कहना अभी मुश्किल है जब तक नाम सामने नहीं आते। लेकिन ये नाम सामने आ चुके हैं, यानी कि आज FIR हुई है, और 2 दिन पहले जो SIT ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके बाद ये पहली कार्रवाई है। देखिए, SIT की रिपोर्ट भी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, शुरुआती रिपोर्ट है, और ये कार्रवाई भी आप शुरुआती ही समझिए। निश्चित तौर पर बड़े बड़े नाम है, चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, ऐसे तमाम नाम उठे हैं, सबके कार्यशैली पर सवाल है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा है। लेकिन क्या ट्रस्ट के बड़े लोग भी जिम्मेदार होंगे, क्या उनके भी नाम है, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक चर्चा जरूर है ये श्वेता कि हो सकता है कि चूंकि चंपत राय को लेकर लगातार ये बात कही गई कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, बेशक उनके रहते उनके महासचिव रहते ये कांड हो गया हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है, वो डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप देखें तो कुछ लोगों ने उनको ये भी कहा कि वो निष्कलंक हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो अब देखना है कि क्या सचमुच इस रिपोर्ट, इस एफआईआर के बाद जो ट्रस्ट है वो कहां तक, ट्रस्ट के ऊपर कहां तक कार्रवाई होती है। चर्चा ये भी है, जो मैं चर्चा की बात है वो मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं चाहे चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो, सबको एग्जिट की तैयारी चल रही है। क्या ये एग्जिट एक जिसे कहते हैं सेफ एग्जिट, या एक इस तरीके से उनको एग्जिट दिया जाएगा कि इतने समय तक वो जुड़े रहे अगर उन पर आरोप नहीं लगे, तो ये चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट है, ये पांच ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे चढ़ावे से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं पैसे गिनती में, कहीं ना कहीं सीसीटीवी में, कहीं ना कहीं पॉकेट में पैसे रखते हुए, या फिर चढ़ावे को लाते ले जाते लोग जो जो जुड़े रहे हैं, ऐसे लोगों के ही नाम फिलहाल इसमें भी शामिल हुए हैं, वो सामने आए हैं। श्वेता,
6: खासकर चंपत राय को लेकर जो आपने जिक्र किया, रामलला के पटवारी, इस नाम से मशहूर रहे वो, रामलला के पटवारी के तौर पर देखे गए, और यही कारण रहा कि किसी से भी जब संपर्क हो, चाहे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, अमूमन एक ही राय सब रखते थे कि व्यवहार को लेकर भले सवाल हो सकते हैं, आचरण को लेकर सवाल उनके नहीं हो सकते हैं। अब क्या ये जो शुरुआती रिपोर्ट और शुरुआती एफआईआर के तौर पर जो हम देख रहे हैं उसको ही हम माने कि उसके ही इर्द गिर्द रहेगा, यानी कि इसमें जो वरिष्ठतम होगा उसके ऊपर नहीं जाएगी आज, या फिर एसआईटी अभी तक जिन पहलुओं की चर्चा कर पाई है उसके जरिए हम समझें उस पूरे मामले को। जो भी रहा अभिषेक, ये दिल को दुखा गया, भक्तों के दिलों को दुखा गया, सबको हैरान कर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आंदोलन जो 100 साल से ऊपर चला, एक ऐसा विवाद जो 500 साल तक रहा, उसमें ऐसी कोई चीज हो सकती थी। और इसीलिए जरूरी था कि न केवल रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हो, एफआईआर जल्दी से जल्दी हो, कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि कार्रवाई पूर्ण हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन वहां तक जरूर सजा पहुंचनी चाहिए।
3: निश्चित तौर पर श्वेता, चूंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, मंदिर अभी आप देखें तो प्राण प्रतिष्ठा हुए 1.25 साल 1.5 साल से ज्यादा का वक्त अभी नहीं हुआ है जब पूरी तरीके से इसकी प्राण प्रतिष्ठा या धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है, लेकिन आज भी जो लोगों की तादाद है, श्रद्धालुओं की तादाद है, श्रद्धालुओं के आस्था में कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से ये चढ़ावे का खेल या फिर चढ़ावे में की चोरी हुई है, इसने लोगों के विश्वास को कम से कम वहां के प्रबंधन पर तो पूरी तरीके से हिला दिया है। और आप देखें ये बड़ी वजह रही है कि चढ़ावों में कमी भी आई है। सिर्फ चढ़ावों की बात मत कीजिए, वहां पे तो अब जितने लोगों ने सोने चांदी जवाहरात चांदी की ईंटें शिलाएं जितने लोगों ने दी है, अब एक एक करके वो तमाम चीजें सामने आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें सुरक्षित रखी हुई है, बहुत सारी चीजों को गला करके उसका इस्तेमाल किया गया है, तमाम बातें अभी क्लैरिफिकेशन उस पर नहीं आया है। लेकिन जब आरोप लगने शुरू हुए तो एक एक करके तमाम आरोप लग गए हैं, यहां तक कि जमीन घोटाले तक के भी आरोप लगे हैं कि यहां पर जमीनों पर भी ठीक ठाक कमाई की गई है, जमीनों के घोटाले हुए हैं। और आज संजय सिंह तो बकायदा जाकर के उन्होंने जो एसआईटी मेंबर हैं उनको जाकर के अपने सौंपी भी है जमीनों के घोटालों की लिस्ट। तो इसमें सब कुछ सम्मिलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये देखिए, जिस वक्त जैसे ही ये मामला खुल करके आया, आप देखें तो पहले अखिलेश यादव ने इसकी चर्चा कर दी, उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में ही जब ये मामला निकल करके आ रहा था कि कहीं ना कहीं चंदा चोरी या चढ़ावे की चोरी हो रही है, तब ट्रस्ट के बड़े लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पर समझ लेंगे, सलट लेंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही इसको अपने स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश थी, जिससे और शक गहराया। और उसके बाद जब सरकार को भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और चीजें हैं, कि इसमें मामला कुछ और बड़ा है, तब जाकर के ये एसआईटी बनी। हालांकि एसआईटी भी चंपत राय ने उसका रिकमेंडेशन किया था कि ट्रस्ट चाहता है कि चूंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ियों की बात आ रही है, तो अब आप एसआईटी करें। एसआईटी आई, लेकिन क्या शुरू में अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें काफी पहले से लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, चढ़ाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक इस 12 जून को ये लेटर आया है और 12 जून से ही ये चीजें शुरू हो गई हैं। पिछले कई महीनों से इसकी सुबुगाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन ट्रस्ट या तो उसने खुद से जांच नहीं की या ट्रस्ट इस पर इस जांच को दबाए बैठा था कि जो होगा हम खुद अपने लेवल पर समझ लेंगे, और ये एक भारी भूल हुई। मुख्यमंत्री को अयोध्या जाकर ये कहना पड़ा कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, आप 15 दिनों का धैर्य रखिए। चलिए 5-6 दिन हो चुके हैं, 15 दिन का वक्त है, अभी SIT की पूरी जांच होनी बाकी है, तो देखना होगा श्वेता कि इसमें और क्या नाम आते हैं। लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि जो बड़े नाम हैं जिनके इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं उठाने की बात कई बड़े लोगों ने की, चंपत राय जैसे, हो सकता है इन्हें ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाए। श्वेता
6: जी, अब SIT किस आधार पर उसकी जांच हुई है, क्या चीजें अभी तक मिली हैं, वो चीजें भी अभी सामने आएंगी। ये जो नाम है जो अभिषेक बता रहे हैं, अभिषेक रहिए है हमारे साथ, क्योंकि 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई, आज FIR दर्ज हुई। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल हैं। जब चढ़ावा चोरी, दान चोरी, जमीन चोरी, PMO की जो दखल थी उस पर भी अनदेखी, इस तरह की चीजें होती रही बिना FIR ही, SIT की जांच, ये आरोप लगे कि बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है, जिम्मेदारों पर सीधा एक्शन नहीं हुआ है, ये भी, और अब भी FIR के बाद भी आरोप लगेंगे। नैतिकता के नाम पर भी पद किसी ने नहीं छोड़ा है, हिंदू भक्तों की आस्था से खिलवाड़ के आरोप लगे, निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, आज नया विवाद फिर जमीन घोटाले के आरोपों के साथ भी खुला।
7: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो PMO में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती SIT को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये वो चेहरे हैं जो SIT की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
8: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
9: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
10: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
11: क्या सरकार बस्ती में जैती बनाती है, जैती का गुना?
7: जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल SIT के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक, हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148, 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रिज मोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल मनीष बंसल शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
6: हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक जी। जिस तरह की चीजें अभी सामने आई, जो नाम सामने आए हैं, 8 नाम सामने आए हैं जिनमें से कुछ नाम हम दिखा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है। आपसे जब पिछली बार मेरी बातचीत हो रही थी आपने कहा था कि इसमें पूरी तरीके से न्याय होगा, लोगों के साथ, लोगों के भरोसे के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं रहेगा। यह हम पहला कदम माने या आपको लग रहा है कि यह सही दिशा में कदम है, अभी कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे?
12: ये तीसरा कदम है। पहला कदम था जब ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि एसआईटी बिठाएंगे। दूसरा कदम था जब एसआईटी के अयोध्या आने पर चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रस्तुत करता हूं। और ये तीसरा कदम है और पूरे ट्रस्ट की प्रार्थना है कि जितने भी आरोप लगे हैं सबकी जांच करो और उन सबकी जांच करके जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको दंड दो। मैं विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगाएगी और एक टाइम बाउंड तरीके से जांच पूरी करेगी।
6: आलोक जी, एक दफा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक फैसला देते हुए एक टिप्पणी की गई थी जिसका सारांश ये था कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोग आस्था से देखते हैं, वो अगर किसी के साथ ऐसा छल करता है तो वो ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। क्या आप इस मामले में ऐसा मानेंगे? ये वो लोग थे जिनको लोग आंख बंद करके ईश्वर का चढ़ावा सुपुर्द कर रहे थे कि ये तो ईश्वर को ही जा रहा है, यानी कि इसमें जो कार्रवाई आगे हो वो भी एक मिसाल ही पेश करे।
12: मैं सहमत हूं आपसे, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सहमत हूं। हम किसी का बचाव नहीं करेंगे और किसी पे अभी कीचड़ नहीं उछालेंगे। जो भी जांच के रिजल्ट्स में दोषी पाए जाएं उन सब के खिलाफ चालान पेश हो और जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले कहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग में, जिससे तुरंत फैसला आए और लोग दंडित हों।
6: आलोक जी, ये नाम अभी शुरुआती, ये पहली एफआईआर है और पहली कार्रवाई उस एफआईआर के बाद जो वो नामों के साथ आगे क्या होता है वो एसआईटी की तरफ से जब आगे बातें होंगी तो समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नाम भी आया, मैं अभी अगर शब्द का ही इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जांच चल रही है, अगर कोई बड़ा नाम भी आया तो उस कार्रवाई के लिए सब खड़े रहेंगे या फिर बचाव के लिए आप लोग तैयार रहेंगे?
12: बचाव का कोई सवाल नहीं है, और जिसका भी नाम सामने आता है और पुलिस दोषी पाती है उसका नाम ट्रायल के लिए जाना चाहिए कोर्ट में, और उसको भी दंड मिलना चाहिए। किसी का बचाव नहीं करेंगे।
6: जहां पर लोग कोई अपने मन के भाव से, कोई अपने तन में लगकर जो आंदोलन करता रहा, धन को लेकर यह पूरा विवाद अब हुआ, आपको लग रहा है कि उस पर एक ऐसा आघात हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, लोगों के मन तक ये दर्द पहुंचा है?
12: जी, आघात हुआ है, मन तक दर्द पहुंचा है, हम लोग भी कष्ट में हैं, और इस कष्ट का निवारण एक ऑनेस्ट प्रोब से होगा, इसलिए हमको संतोष है कि ट्रस्ट ने FIR फाइल करी है, और हम सब अब इंतजार करेंगे कि पुलिस अपने कर्तव्यों का तेजी से पालन करे।
6: क्योंकि विश्व में हिंदू हितों की बात VHP करती है, क्या उन भक्तों से VHP की तरफ से या फिर जो ट्रस्ट के लोग हैं उनकी तरफ से एक क्षमा भी होनी चाहिए? भले ही ये 8 ही लोग चाहे निकलें, लेकिन एक क्षमा का भाव भी होना चाहिए।
12: थोड़ा विषय आगे बढ़ने देते हैं
6: जी,
12: इन्वेस्टिगेशन होने देते हैं, और उसके परिणामों के बाहर होगा। मैं आघात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। वी ऑल हैव बीन हर्ट, मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं मानता हूँ कि जिनकी जवाबदेही थी वो एक एक पैसे के लिए थी जो राम जन्मभूमि के लिए अर्पित हुआ है। वहां का एक पैसा भी जा रहा बाहर
6: जी,
12: ये उस विश्वास को नुकसान पहुंचाने वाला है।
6: बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, हमसे बात कर रहे थे। और जाहिर है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं एक एक करके, उसके बाद कुछ और प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर सबको चाहिए। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आमितोष पारिक जी, हमारे संवाददाता संतोष शर्मा भी हमारे साथ हैं, और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। आमितोष जी, आप जिस तरीके से ये पूरा जिसे चढ़ावा चोरी कांड कह रही है, मतलब ये शब्द आप लोग शायद कभी नहीं सोचते कि राम मंदिर के साथ जुड़ेगा।
13: जी श्वेता जी, अभी आपने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को सुना, बहुत स्पष्ट है। विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से कह रहा था अगर कोई चोरी पकड़ में आती है तो उस चोरी के बाद जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाए जाते हैं उस पर FIR करी जाए। लगातार तरीके से SIT की जांच भी विश्व हिंदू परिषद ने करी, और FIR की पहल भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ट्रस्ट ने करी। मुझे लगता है कि कोई भी कोई चोर के साथ नहीं खड़ा, और ये वो राम जन्मभूमि है जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कई लाखों कार्यकर्ताओं ने कार सेवक बनकर अपने बलिदान दिया। ये दिन देखने के लिए कभी किसी ने बलिदान नहीं दिया था। जो लिप्त पाए गए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी में राम जन्मभूमि की भलाई है, देश की भलाई है, राम भक्तों की भी भलाई है।
6: मुझे वो भी दिन याद है जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम दिनों में चल रहा था, और उसके बाद था कि भक्तों को समर्पित कर दिया जाएगा। लोग जाने क्या क्या नहीं लेकर आ रहे थे, कहां पर क्या चीज रखी हुई थी, कितनी किस चीज की कीमत है, कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि आस्था सबसे महंगी थी वहां पर। ये
13: जी निसंदेह हमने सुना ही हमेशा श्वेता जी, कि कभी भी किसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए मन, धन और तन तीनों समर्पित होते हैं जब जाके वो संकल्प होता है, और ये वो राम जन्मभूमि है जिसके लिए लोगों ने मन, धन और तन समर्पित किया है। लेकिन जब धन का समर्पण के बाद में जब भाव इस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो मुझे लगता है सिर्फ एक राम जन्मभूमि आप मैं नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था का हाथ हुआ है। हमने इस पर कभी राजनीति नहीं करी, नहीं इस पर कभी राजनीति करेंगे। लगातार हमसे प्रश्न पूछा गया, कटघरे में खड़ा करा गया, मीडिया की इसमें अहम भूमिका रही कि मीडिया निष्पक्ष भाव से हमसे सवाल करता रहा, हमने उस चुनौती का सामना करा। लेकिन आज इस तरह से ट्रस्ट ने FIR दर्ज करवाई है, एक पहल हो गई है कि जब लोग कहते थे कि FIR आप क्यों दर्ज नहीं करवाते, तो ये भी हो गई कि SIT की जांच भी ट्रस्ट ने करवाई और FIR भी ट्रस्ट ने कराई। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, उसके साथ वही होगा जो कानून के दायरे में होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
6: भरोसा वापस बहाल करना मुश्किल होगा भक्तों का?
13: नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चोर के साथ में खुद को इकट्ठा करके भरोसे की बात नहीं आती। जो चोर है वो जब सलाहकों के पीछे जाएगा, भरोसा राम पे था, राम पे है और राम पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी तब भी भरोसा कम हो सकता था, फिर भी कार सेवक आए, बलिदान दिया, राम जन्मभूमि बनी। जब हाईकोर्ट फैसलाबाद के अंदर में जजमेंट दिया गया था तब उस जज का प्रमोशन नहीं करा कांग्रेस सरकार ने, तब भी राम जन्मभूमि बनी। जिस प्रकार से चोर इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर सजा हुई है, वो जाएंगे। लेकिन राम के ऊपर विश्वास भारत को था, क्योंकि भारत की आस्था ही राम है, आत्मा राम है, इस पे हमारे को निसंदेह कभी भी शक नहीं करना चाहिए।
6: संतोष, क्या बाकी नाम और सामने आ रहे हैं? कुल जो 8 नाम में से जो चंद नाम हमारे सामने अभी हैं, 6 नाम हैं, बाकी 2 नाम संतोष? संतोष आवाज आपकी आ नहीं रही है अभी, एक बार जी जी जी अब आ रही है, बोलिए।
14: आवाज नहीं जा रही है,
6: अब आ रही है, आ रही है, बोलिए।
14: इस पूरे मामले में जो दो नाम रह गए हैं उसमें एक नाम रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और राजेश पाठक, ये दो नाम बताए जा रहे हैं जिनको ये शामिल इस नामजद एफआईआर में शामिल किया गया। हालांकि इसके अभी आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने भी और एफआईआर कॉपी जब तक सामने ना आ जाए, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है। लेकिन इसमें श्वेता जी सबसे अहम बात जो एफआईआर की जो धाराएँ हैं वो बहुत अहम हैं। एफआईआर की जो धाराएं हैं, बीएनएस की धाराएं, जानबूझकर चोरी करना, आदतन चोरी करने का मतलब कि रेगुलर ये लोग चोरी कर रहे थे। जो भी लोग इसमें फंसे हैं वो यानी कि जानबूझकर एक बार नहीं, ये महीनों से चोरी ये पकड़ी जा चुकी है। दूसरा, चोरी में मदद करना, यानी कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा था वो तो इसमें नामजद है ही, इसमें वो लोग भी इस एफआईआर की जद में आ गए हैं जिनकी निगरानी में चोरी हो रही थी, यानी कि चाहे वो ट्रस्ट के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी या वो नोट गिनने वाले तो इसमें नामजद है ही, लेकिन निगरानी करने वाले जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तीसरी चीज जो सबसे अहम है कि सरकारी कर्मचारी या संस्था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा या संस्था के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत विश्वासघात करना, ये तब धाराएं लगती हैं, ये बहुत अहम धारा है। ये तब धारा लगती है जब कोई किसी कर्मचारी की कस्टडी में कोई सामान हो और वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत वहां पर चोरी करवा दे, सरकारी कर्मचारी की कस्टडी में रहते हुए चोरी हो जाए, तब ये धारा लगती है। यानी कि इस पूरे मामले में ना सिर्फ नोट गिनने वाले कर्मचारी शामिल हैं बल्कि बैंक कर्मचारी, राम मंदिर ट्रस्ट के लोग जो निगरानी करने वाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आधिकारिक तौर पर जो नाम है वो रामशंकर यादव टिन्नू यादव से हमने जब बात की तो उसने कहा मैं तो उस मंदिर ट्रस्ट में नोट गिनने की प्रक्रिया में नहीं हूं, लेकिन निगरानी में है, वो वहां का व्यवस्थापक है, उसके पास तामी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थापक कैसे बच सकता है अगर उसका नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही तमाम अन्य नाम जो जिनके ऊपर निगरानी थी, जो नोट गिन रहे थे 24 लोगों के ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 12 लोग निगरानी कर रहे थे, यानी कि जो दो लोग नोट गिनते थे उनके ऊपर एक व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट का निगरानी करता था, तो वो लोग भी उसमें जो दोषी पाए गए होंगे उन लोगों को भी शामिल किया गया। यानी कि जो एफआईआर है वो ना सिर्फ नोट गिनने वाले बल्कि निगरानी करने वाले, इनके साथ मिलीभगत करने वाले, एक विस्तृत एफआईआर है ये। ये जो भी एफआईआर बड़ी सोच समझ के एसआईटी के द्वारा दर्ज कराई गई है, सारे आयामों पर दर्ज कराई गई है, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, और फिर बाकी तो वो जो चोरी कर रहे थे वो तो पकड़े ही, वो तो इसमें फंसेंगे ही, नामजद है ही। लेकिन 8 जिन लोगों के नाम जो किए गए उसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर ये जो नाम सामने आ रहे हैं, टिन्नू यादव, रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये नाम सामने आ रहे हैं। ये इसलिए नाम सामने आ रहे हैं जो सोर्सेस हैं, और दूसरी बात, इनके घरों से पैसे मिले हैं शुरुआती जांच में, एसआईटी तो बाद में बनी, जब ये शुरुआत नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इनके घरों से पैसे मिल गए। लवकुश मिश्रा के पिता ने कहा कि मेरे घर से पुलिस पैसे लेकर के गई है, यानी कि पहले ही इनके घरों से पैसे मिले तभी ये बवाल उठा है। ये अलग बात है कि एसआईटी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर बड़े व्यापक तरीके से बड़े आयामों पर दर्ज हुई है, यानी कि इसमें तमाम बड़े नाम जो भले ही नामजद ना हुए हों लेकिन पुलिस के पास एक ओपन एंड है, बड़े सरकमफ्रेंस का एक जो एरिया दिया गया कि ओपन एंड में जो भी लोग इसमें शामिल थे, चाहे बैंक कर्मचारी हो, राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें सब इसकी नाम इस एफआईआर की जांच के जद में आएंगे। तो ये बीएनएस की धाराओं में जो एफआईआर हुई है ये बहुत बड़ी अहम बात है कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, और हैबिचुअल थेफ्ट है।
6: टिन्नू यादव के नाम का नाम आ रहा है और जिसका नाम आने के बाद ये एसआईटी की जांच शुरू हुई और आज एफआईआर तक में नाम है, उससे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने बात की है, सुनाते हैं।
15: जी जी सर, नमस्कार, मैं आज तक से बोल रहा हूँ। एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमा शंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है
16: जी,
15: आपका क्या कहना है?
16: हेलो
15: जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ
16: जी,
15: क्या कहना है आपका?
16: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कहना।
15: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है।
16: बस सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार। जी जी सर,
15: नमस्कार, मैं आज तक से बोल रहा हूँ। एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमा शंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है
16: जी,
15: आपका क्या कहना है?
16: हेलो
15: जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ
16: जी,
15: क्या कहना है आपका?
16: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है और हमें कुछ नहीं कहना।
15: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है।
16: बस सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार जी। जी सर
15: नमस्कार, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमा शंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है
16: जी,
15: आपका क्या कहना है?
16: हेलो
15: जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ
16: जी,
15: क्या कहना है आपका?
16: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है और हमें कुछ नहीं कहना।
15: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है।
16: बस सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार जी। जी सर
15: नमस्कार, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रमा शंकर यादव उर्फ टीनू यादव आपका नाम है
16: जी,
15: आपका क्या कहना है?
16: हेलो
15: जी, आपका क्या कहना है? एफआईआर हो गई आपके खिलाफ
16: जी,
15: क्या कहना है आपका?
16: अभी ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है और हमें कुछ नहीं कहना।
15: नहीं, हमें जानकारी है, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है।
16: बस सूत्रों के, बस ठीक है, हमें जानकारी नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार।
6: तो इस समय टिन्नू यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी ताजा जानकारी है उसके अनुसार 8 जो नामजद हैं उनको हिरासत में लिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा जो पूरा मामला है, जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी ने फौरन जांच अपनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच होगी। 15 दिन का उन्होंने एक अंतराल दिया। अब खबरदार करता सवाल यह है कि क्या पीएमओ दखल नहीं देता तो करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ वाला जो चढ़ावा विवाद है वो रफा दफा कर दिया जाता? क्या अब भी यही कोशिश करने की हो रही है? ये सवाल क्यों उठा, पहले ये समझिए। अपराध की दो घटना से इसको समझते हैं। लखनऊ में आग लगी, 15 लोगों की मौत हुई। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा। दोनों मामलों में देखिए तो लखनऊ कांड पर तुरंत एफआईआर हुई, फिर एसआईटी जांच का आदेश हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई, आरोपी जेल भेजे गए, जांच जारी रही। लेकिन अयोध्या में कोई एफआईआर पहले दर्ज नहीं हुई, एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई। जो जांच के दायरे में है उनकी गिरफ्तारी तो दूर की बात, उनसे पूछताछ के बाद भी नहीं कि उन्हें मंदिर परिसर में आने जाने से रोका गया हो। इसीलिए सवाल उठा कि जो एसआईटी बनी वाकई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या केवल फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के तौर पर काम कर रही थी। सवाल उठने की वजह ये रही कि एसआईटी कहीं शिकायत दर्ज होगी तब तो उसकी जांच करेगी, या फिर बिना शिकायत दर्ज किए वो जांच कर सकती है। इन्हीं सब वजहों से ये समझना जरूरी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस राम मंदिर के साथ पूरे देश की आस्था जुड़ी है उस आस्था पर आए धर्म संकट का समाधान निष्पक्षता से करने की जगह खाना पूर्ति की जा रही हो।
7: चंपत राय आखिरी बार 23 जून को राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिखते हैं। यानी जिस दिन एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लखनऊ में सौंपती है उसी दिन चंपत राय, जो सबसे ज्यादा जांच के दायरे में अपने कद पद जवाबदेही की वजह से हैं, वो मंदिर परिसर में मौजूद होते हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई इस जांच में ट्रस्ट पर ट्रस्ट लौट पाएगा? क्योंकि ये चंपत राय ही हैं जिन्होंने सबसे पहले 7 जून को राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोप लगने के बाद तुरंत जांच शुरू करने की जगह पहले इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
17: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
7: सवाल उठा कि जो मुख्यमंत्री 29 जून तक की डेडलाइन देकर ये भरोसा देते आए हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो अपने कार्यकाल में जब 100 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं तो कभी क्या उनके कान तक चढ़ावा चोरी वाली जानकारी नहीं पहुंची?
18: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको? सोचो
19: आस्था की ट्रेन पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम

0: रामलला की नजरों से कोई नहीं बचा।
1: जांच का भरोसा सरकार तो लगातार दे रही है, लेकिन चंपत राय को लेकर दो खबरें ऐसी आती हैं जो इस सवाल को मजबूत कर देती हैं। क्या हर बार आरोपों की जांच करके सच सामने ला देने की जगह मामले को पहले दबाया जाता रहा? जैसे 7 जून को आरोप लगने पर अगर कुछ उल्लेखनीय नहीं है बोलकर चंपत राय बचना चाहते थे, तो इसी तरह 12 जून को जब अयोध्या के ही बीजेपी नेता, जिनके पहले भी शिकायत करने पर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर से जानकारी मांगी गई, तो उनके दोबारा शिकायती चिट्ठी पीएमओ को भेजने के बाद जवाब देने की जगह ट्रस्ट बचने की कोशिश करता दिखता है।
2: चढ़ावा चोरी में सबसे पहले अगर किसी ने पत्र लिखा था तो रजनीश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने, जिन्होंने सीधा पीएमओ को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो वित्तीय लेन देन है, इसके अलावा जो जो चढ़ावा चढ़ रहा है सबका ब्यौरा मांगा जाए। प्रधानमंत्री ने ये लेटर जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा और उसके बाद इस लेटर की जांच पर चंपत राय से भी प्रशासन ने पूछा था, लेकिन तब तक एसआईटी जांच शुरू हो चुकी थी और चंपत राय ने यह कहकर कोई भी ब्यौरा देने से मना कर दिया कि एसआईटी जांच चल रही है, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।
1: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर जैसे विशाल आस्था के केंद्र की देखरेख का काम जिन चंपत राय के ट्रस्ट के हवाले छोड़ा गया, दावा है कि वो ट्रस्ट अपना ट्रस्ट बनाए रखने से ज्यादा ट्रस्ट पर उठते सवालों को खारिज करने में ध्यान देता है। यही वजह है कि पहले भी अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी। 9 जून को लिखी चिट्ठी में मांग की गई कि राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के निस्तारण के लिए पूरे मामले की सीबीआई, ईडी या अन्य सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए, दान राशि मिलने से जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए, जांच के बाद मिले चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक। शिकायतकर्ता रजनीश सिंह ने तब साफ कहा था कि विपक्षी दल राम मंदिर में दान चोरी के आरोप जोर शोर से लगा रहे हैं, जिसका चुनावी नुकसान बीजेपी को हो सकता है।
3: उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, ऐसे में अगर ये चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। इसलिए मैंने चुनाव से पहले इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा के क्रिस्टल क्लियर करने की मांग प्रधानमंत्री से की है।
1: लेकिन 9 जून की शिकायत के बावजूद राम मंदिर के दान चोरी मामले पर पहले कोई जांच की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि अखिलेश यादव कांग्रेस लगातार चढ़ावा चोरी का मामला उठाते रहे। फिर उन्हीं शिकायतकर्ता रजनीश सिंह ने 12 जून को एक और चिट्ठी लिखी, क्योंकि तब तक शक का दायरा और बढ़ चुका था। 12 जून को पीएमओ को भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया कि इस मामले में ट्रस्ट बनने से अब तक की दान राशि के रसीदों का ब्यौरा, दान पात्र के अलावा ऑनलाइन चेक, नगद के सारे दान का ब्यौरा, सोना चांदी आभूषण बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा, लेखा जोखा, ट्रस्ट के सभी बैंक खातों में वित्तीय लेन देन का विवरण, ट्रस्ट की अर्जित संपत्तियों का विवरण, मंदिर बनने चलाने में खर्च का विवरण और सभी ऑडिट रिपोर्ट की भी जाँच की जाए। इस दोहरी शिकायत के बाद 13 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी का गठन कर देती है और अब जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के दावे होने लगे।
4: ये दिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हर व्यक्ति शंका कर रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया होगा, मेरा दान कहाँ गया होगा, मैंने जो आभूषण दिए थे वो कहाँ गए होंगे, शायद ये क्वेश्चन मार्क आज किसी के मन में न होता अगर ट्रस्ट पहले दिन पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया होता।
1: लेकिन जब बीजेपी नेता की शिकायत पर पीएमओ की तरफ से दोबारा जानकारी मांगी जाती है, तो अब इस चिट्ठी पर गौर करिए जिसमें ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई सभी जमीन और संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, मंदिर निर्माण प्रशासनिक खर्च और दूसरे मद में खर्च का ब्यौरा मांगा गया और कहा गया कि दान का हिसाब सार्वजनिक करना जरूरी है, तो रजनीश सिंह के खत पर अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी ने चंपत राय से संपर्क किया, लेकिन चंपत राय ने यह कहकर कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया कि फिलहाल एसआईटी जांच चल रही है और मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। इसीलिए शंका बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विश्व हिंदू परिषद तक मांग करने लगा कि तुरंत एफआईआर करके रोज कोर्ट में सुनवाई हो, दोषी छोड़े ना जाएं।
5: पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच करना चाहिए, जांच समयबद्ध होनी चाहिए और जितने आरोप लगे हैं उन सब आरोपों को जांच में लाना चाहिए। पुलिस अपनी जांच पूरी करके चालान फाइल करे। हमारा सुझाव है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, दैनंदिन सुनवाई हो, डे टू डे।

0: तो शिकायतें आ रही थीं, शिकायतों को पहले नजरअंदाज किया गया, बाद में पीएमओ तक जब बात पहुंची तब सीधे तौर पर यह हुआ कि इनकार तो किया गया कि अभी एसआईटी जांच, लेकिन उसके बाद से परतें हटना इस पर से शुरू हुई हैं, जिसमें आज पहली एफआईआर हमने देखी है। हमारे साथ इस समय अमितोष पारिक जी, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं, और साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़े हैं। अनुराग जी, जिस तरह की अब तक कार्रवाई हुई है, 8 नामजद, एसआईटी की जांच का पहला पड़ाव, भरोसा आपका बहाल हो रहा है वापस?
1: देखिए, समाजवादी ने सबसे पहले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया था कि दान पात्र में चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, आस्था में चोरी हो रही है, क्योंकि ये प्रभु के मंदिर का मामला था और हमारी आस्था का विषय था, सभी सनातनियों की आस्था का विषय था, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया। लेकिन जिस तरह से बीच के लोग या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी दल थे, इसको नकारते रहे, नहीं, ये लोगों की आदत है इस तरह की बात करने की, लेकिन आज वो सच साबित हुआ, एफआईआर हुई। लेकिन अभी भी इसमें जिस तरह की एफआईआर हुई है, क्या आप बताइए, क्या एक ड्राइवर बिना अपने ऊंचे उनके मालिक या जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग के सहयोग से क्या गड़बड़ी कर सकता है? भाई, जिन लोगों पे एफआईआर हुई है वो तो बहुत ही छोटे तबके के लोग हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, तो जब इतना बड़ा ट्रस्ट था, जिनकी निगरानी में ट्रस्ट चलता था, तो बात तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए ना, उनको भी तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जिस तरह की दान पात्र में चोरी हुई है, जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है, तो क्या उनके जो ट्रस्ट में बैठे उच्च अधिकारी जो लोग हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? आपने कुछ लोगों को तो नामजद करके एफआईआर कर दिया,
0: ठीक है,
1: आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो वहां पे जिनके निगरानी में सारा काम होता है, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं होगी?
0: अमितोष जी, ये बातें भले ही एक राजनेता की तरफ से आ रही हैं और राजनीतिक बातें,
1: राजनेता की तरफ से नहीं आ रही हैं। नहीं, श्वेता जी,
0: तो सही, अनुराग जी मैं कंप्लीट कर लूं।
1: नहीं,
0: मैं कह रही हूँ भले ही एक राजनेता की तरफ से आ रही है, लेकिन ये वही सवाल है जो भक्तों के मन में उठ रहे हैं। अमितोष जी,
2: श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले ट्वीट से ये विषय चालू होता है, ट्वीट के बाद पवन पांडे का अपोज होता है, ट्रस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट एसआईटी की मांग होती है, इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इसलिए कि वो करोड़ों हिंदू के आस्था का विषय है। एसआईटी की जांच होती है, इन्होंने एसआईटी पे सवाल उठाए, लगातार आप लोग के माध्यम से मीडिया में आके बोलते रहे कि एसआईटी की जांच पे हमें संदेह है, एसआईटी की जांच एफआईआर से पहले हो गई लेकिन कोर्ट नहीं गए, दो पिटीशन लगी, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी पार्टी नहीं बने, उसके लगातार तरीके से एसआईटी की जांच होती रही, लगातार छोटी मछली बड़ी मछली का ही नैरेटिव बनाते रहे। एसआईटी की जांच के अंदर में साधु संतों का विषय उठा के लिया है, आईटी और एसआईटी की बात करने लगे अखिलेश यादव, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर में ट्रस्ट के कहने पर एफआईआर फिर दर्ज हो जाती है, ट्रस्ट कहता है एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब क्या बात आ रही है, अब आ रही है कि एफआईआर में फिर छोटे मछलियों को फंसा दिया है, बड़ी मछलियां बच गई है, तो होगा क्या? होगा ये कि ये अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, उन लोगों के नाम रख दो तो फिर जांच भी सही है, एफआईआर भी सही है, लेकिन जो लिफ्ट पाए जा रहा है उसके नाम ले ली जा रही, तो वो छोटी मछली हो गया। मुझे एक बार बताइए, मैनेजमेंट के अंदर में लैप्स है, तो लैप्स इज नॉट कॉन्स्पिरेसी। श्वेता जी, कॉन्स्पिरेसी होती है कोई आदमी क्राइम करते हुए साथ में पाया जाता है, आज कोई लैप्स हो जाता है तो किसको ठहराएंगे आप, लेकिन जो क्राइम करने में साथ होता है वो कॉन्स्पायर्ड होता है। अज्ञात क्यों भी नाम लिए गए, नाम जाते आठ और अज्ञात है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, एफआईआर हो चुकी, लेकिन अभी इसमें भी ढूंढ रहे कि एफआईआर को बड़ों को बचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ आक्षेप लगाने से बढ़िया है कि वो न्यायालय में जाए और इसको चुनाव,
0: ठीक है। अनुराग जी बताइए, अगर एसआईटी का गठन हुआ, अगर एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से ही कराया गया, अगर पीएमओ को चिट्ठी बीजेपी के ही एक नेता ने लिखी, तो फिर किस तरह का जांच हो कि सब आश्वस्त हो जाएं?
1: देखिए श्वेता जी, एक बात मान के चलिए, अगर समाजवादी पार्टी ने आवाज नहीं उठाती, अगर इस आवाज को इतनी जोर से नहीं, इसके मुद्दे को हमने पकड़ा होता, चूंकि मेरा आस्था का विषय, मैं अभी राजनेता के हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सनातनी होने के नाते, चूंकि सनातनी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु राम के दान पात्र में चोरी हुई है तो हमने उसकी आवाज उठाई। राजनीति का हमने पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूं, ये विषय दूसरी पार्टियों के लिए तो राजनीति का विषय हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए धर्म हमेशा आस्था का विषय रहा है, तभी हमने प्रभु का आशीर्वाद हम लोग को हमेशा से मिलता रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के जो बातें यहां बता लंबी लंबी बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता, जब हम यही बात कहते थे एफआईआर की मांग करते थे एफआईआर होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, वहां चोरी हुई, तब ये चोरी होने का उसको मानने को तैयार नहीं थे, तब ये उसको नहीं मान रहे थे हमारी बात को, हमें झूठा साबित कर रहे थे ये। आज आज इनकी बात पलट गई।
0: राम मंदिर आंदोलन के दौर की सारी चीजें सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है देश का। तो आप अपनी निजी आस्था की बात कर लेते वो अलग था, लेकिन पार्टी पर
1: मेरी पार्टी की आस्था हमेशा रही है, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की आस्था हमेशा जो सनातनी है वो सनातनी अपने प्रभु के प्रति आस्था रही है। अगर आस्था नहीं होती
0: जांच में क्या चाहिए आपको ये बता दीजिए फिर।
1: मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जिन लोग जिन सनातनियों ने वहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा से जो अपना दान पात्र में दान किया हाँ। वो कहां किसका कितना
0: कौन
1: चोरी
0: करे जांच?
1: ये जांच गहन जांच होनी चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि
0: कौन करे जांच?
1: नहीं मैं कह रहा हूं जांच पूरी और अच्छी तरह से होनी चाहिए। एफआईआर तो भी हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर निगरानी में और अच्छी तरह से हो, चूंकि सनातनियों का मामला है, हम चाहते हैं इसमें गहन जांच हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में भी हो, एसआईटी भी अपनी जांच करे, तब जाके इसमें
0: न्यायालय
1: का पानी हो पाएगा।
2: श्वेता जी मैं काउंटर करूंगा।
0: हाँ ठीक है बोलिए अमित।
2: श्वेता जी बहुत सिंपल सी बात है, देखिए अनुराग जी बहुत सम्मानित है, हमसे बड़े हैं, पर वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं और बिकमिंग विक्टिम ऑफ हिज ओन वर्ड्स। मैं बताता हूँ कैसे। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का विषय कहां से आ जाएगा? अब तो एफआईआर जो दर्ज करेगा वो आईओ अपॉइंट होगा और आईओ देखेगा उस विषय को। दूसरी बात, किसने एफआईआर दर्ज कराई? अनुराग जी ने कराई क्या? किसी उस व्यक्ति ने कराई जो रोज मीडिया के अंदर में ट्रायल देके दोषियों को करार दे रहा था और आरोपी के नाम ले रहा था? नहीं कराई। ये कराई ट्रस्ट ने, आप करा लेते ट्रस्ट से पहले, ने आप नहीं गए, आपको तो मीडिया के अंदर में ट्राई करना था, सारे दोषियों के नाम आप ही को लेते थे, आपको बता ली थी। अभी यही लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से श्वेता जी कि टिंडू यादव के ऊपर आरोप है, लवकुश मिश्रा पे पैसे मिले, नाम आ गए ना, लेकिन अब उसमें क्या बोलेंगे, तो गलत नाम आए वो तो, फिर अभी तक तो आप उनसे रिकवरी दिखा रहे थे। मुझे लगता है कि सिर्फ मामले को घुमाना है, रोज सनातन का अपमान करना है, राम जन्मभूमि की आस्था इनकी ना पहले थी ना आज ना कभी होगी। ये वो लोग थे जो काले पट्टे बांध के सदन में गए थे जब आदर्श आया था, ये वो लोग थे जिन्होंने जज का प्रमोशन रोक दिया था, ये वो लोग थे जिन्होंने बिना देखे गोलियां मार दी।
0: ठीक है अनुराग जी बताइए कैसे
1: सवाल होता है।
0: नहीं देखिए लोगों के मन में संदेह,
1: देखिए
0: अभी अभी भरोसे की कमी है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन एक बड़ी खबर बताते हुए हम चले। अनुकल्प मिश्रा जिनका नाम आया है उन 8 दोषियों में अब तक, और लवकुश मिश्रा, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 नामजद एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 नामजद एफआईआर हुए हैं और ये दोनों जो हैं वो निगरानी में थे, निगरानी का काम इनका था, यानी कि जो हम कह रहे थे ना कि जो नोट गिनती में लगे हुए लोग हैं, निगरानी में लगे लोग हैं, इन सबको जांच के दायरे में रखा गया है, उसकी जद में रखा गया है। और ये जो दो नाम आपको दिखा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है अब तक, ये दोनों निगरानी में लगे हुए थे। अभिषेक अच्छा अभिषेक हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन देखिए ये जो ये सारे नाम, और पहले दिन से जब से शिकायत हुई है, जब से ये बातें सामने आई हैं, चाहे सोशल मीडिया पर वो चर्चा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये सारे नाम एक एक करके निकल रहे थे। सबसे बड़ा नाम टिन्नू यादव का जरूर था, लेकिन अब देखिए गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अनुराग जी
1: बिल्कुल होनी भी चाहिए, जिस तरह के दान पात्र में चोरी की बात आई है, अब देखिए विश्व हिंदू परिषद वाले कितने परेशान हो रहे हैं। जब हम पहले दिन से ये बात उठाई थी तब हमसे कहते थे लोग झूठे हैं, झूठी बातें उठा रहे हैं, प्रभु की आस्था पे चोट कर रहे हैं। अब जब हमने बोला कि नहीं वो दान पात्र में एफआईआर हो गई, तो हमने कहा कि एफआईआर में कोई बचना नहीं चाहिए, तो हम उस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर में जिन जो बड़े लोग हैं भाई, छोटे लोग भी तो किसी की निगरानी में काम करते थे भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाएगी वो चोरी कर लेंगे, वो जो वहाँ ट्रस्ट में बैठे लोगों को पता नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसकी गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय सनातनियों का विषय है, आप इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए कि आप बार बार उसको राजनीतिक विषय कन्वर्ट कर रहे। तब आप हमारी बात को काटते थे, आज एफआईआर हो गई, हमारी बात सच हुई, तब भी आप काटने को आ गए। तो सवाल उठता है कि आप किसको बचाना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद किसको बचाना चाहती है? उनको तो मेरी स्वर में स्वर मिलाना चाहिए कि इसमें कोई नहीं बचना चाहिए, बड़े से छोटा जो भी प्रभु के दान में जिसका भी नाम चोरी में आता है, जो
0: जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से।
2: धन्यवाद श्वेता जी। कौन कह रहा है बच रहा है? मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी को पता है कि कौन बच रहा है, अनुराग भदौरिया जी को पता है कौन चोर है, लेकिन जो चोर एफआईआर में नाम आ रहा है वो इनके लिए चोर नहीं है। कल तक यही अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी कह रही थी गाय के गोबर में से माल निकला है, लवकुश मिश्रा, अनिल इसके टीनू यादव कौन लोग है, आज उनके एफआईआर हो गई तो ये कह रहे नहीं बड़े बच रहे हैं, तो ये बताते बड़े कौन है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो हो रहा है उस पे आक्षेप लगाना।
0: सारी बहस के बीच में इंतजार इसी बात का रहेगा कि चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो जो भी नाम इसमें हो, क्योंकि भरोसे के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, और उस भरोसे को वापस बहाल करने के लिए जनता की आस्था के न्याय के लिए जरूरी है कि हर एक नाम सामने आए, कार्रवाई पूरी हो। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay and Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
6: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
7: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
5: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल UI/UX डिजाइनर meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर क्या?
11: Correct correct.
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
14: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
13: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
15: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी सील साथी रे।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: राम का नाम बदनाम ना करो, किसी भी आस्थावान हिंदू की भावना यही होती है। लेकिन चढ़ावा चोरी मामले की जितनी परतें खुल रही हैं, संदेह के उतने बादल घुमड़ रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया था? 23 जून को अयोध्या के डीएम कार्यालय को भेजी गई अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी की ये चिट्ठी देखिए। इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से अब तक की समस्त आय, व्यय, दान, बैंक खातों, भूमि क्रय विक्रय और संपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। चिट्ठी में साफ लिखा है कि सचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में SIT जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी जानकारियां मांगी थी जिसे पीएमओ ने अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा। लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन को पीएमओ को जवाब देने के लिए ट्रस्ट से क्या जवाब मिला आपने जान लिया?
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पर डाल दे जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की SIT जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट से अपलोड नहीं किए जा सकते।
0: इन्हीं परिस्थितियों में अब ट्रस्ट को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोग भी उठाने लगे हैं। VHP ने मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
2: कि जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों की आस्था श्रद्धा, जिनने अपना दान दिया है, चंदा दिया है, उनकी भावना को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी तरह की उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। संजय सिंह ने SIT को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री को वो संदिग्ध बता रहे हैं।
3: भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: 2024 में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर करोड़ों भक्तों के अयोध्या कूच को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब उन्हीं भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ छल के आरोपों पर हंगामा।

0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा मामले में पहली एफआईआर हुई है, दो गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं, 8 नाम उसमें सामने आए हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उज्जैन से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो पूरे देश को परेशान कर सकती हैं। यहां मुहर्रम के जुलूस में एक ट्रेन की मदद से गाड़ी को हवा में लटकाया गया और फिर उसमें एक भयानक ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट से ठीक पहले दो लड़के धार्मिक झंडे लेकर गाड़ी पर चढ़े। इस गाड़ी पर लिखा था ले फिर आ गए। वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। सवाल यह है कि क्या इस हरकत के पीछे कोई कट्टर मानसिकता है, क्या ये लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का सबसे बड़ा सबसे पक्का सबूत मानते हैं तो अब जान ले कि पासपोर्ट आपको नागरिकता की परीक्षा में पास नहीं करा सकता। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा करने का एक जरिया है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, यहां तक कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अकेले ये साबित नहीं कर सकता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर कोई पूछ ले कि अपनी नागरिकता साबित करें तो कैसे साबित करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय जब राम मंदिर ट्रस्ट से उसकी आय, खर्च और जमीनों की खरीद का पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगता है तो ट्रस्ट ने PMO को ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि SIT जांच चलने तक वो ये डेटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो ये इनकार क्यों। और आखिर में आपको बताएंगे कि आपकी आत्मनिर्भर थाली कितनी स्वदेशी है, जिसे आप अपनी शुद्ध देसी थाली समझकर बड़े चाव से खा रहे हैं वो असल में धीरे धीरे विदेशी होती जा रही है। आपकी थाली में परोसी जाने वाली दाल से लेकर सब्जी पकने वाले तेल सब अब विदेशी आयात के भरोसे हैं। यहां तक कि फसलों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला खाद भी विदेशी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR दर्ज हो गई है। इस FIR में नामजद आरोपियों की संख्या 8 है। इनमें करुणेश पांडे, अविनाश, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र का नाम शामिल है। इनमें लवकुश मिश्रा वही आरोपी है जिसके घर से शुरुआत में पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और जिसकी नौकरी की सिफारिश ट्रस्ट के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा ने खुद की थी। मुख्य रूप से इस FIR में उन्हीं लोगों के नाम है जिन्हें CCTV कैमरों में चढ़ावे की चोरी करते हुए पकड़ा गया और जिनके खिलाफ चोरी में मदद करने के सबूत मिले। बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रस्ट के किसी भी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें धारा 306 है, धारा 316(5) है, धारा 317(4) है, धारा 317(5) है और धारा 61 है। इनमें धारा 306 मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी से संबंधित है। इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 316 आपराधिक विश्वासघात के लिए है और इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 317(4) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या विश्वास करने का कारण रखते हुए आदतन ऐसी संपत्ति को प्राप्त करता है या उसका लेन देन करता है जो चोरी की है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है। SIT की शुरुआती रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद ये FIR तब दर्ज हुई है जब लगातार सवाल उठते रहे थे कि आखिर बिना FIR ही जांच क्यों हो रही है। खबर यह है कि जिस पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर ही सवाल है, उसी ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हुई है। अब सवाल यह है कि इसमें बड़े लोगों का नाम है या फिर कुछ मोहरों पर FIR दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

0: एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आखिर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर राम जन्मभूमि थाने में 8 लोग नामजद किए गए और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जो नामजद किए गए उसमें प्रमुख नाम रामशंकर यादव, टिन्नू यादव के अलावा लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, करीब 8 नामजद किए गए हैं और इनमें से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तमाम नाम ऐसे हैं जो इसमें न सिर्फ नोटों की गिनने की प्रक्रिया में थे बल्कि वो इंचार्ज भी थे जिनकी निगरानी में ये नोटों की गिनती होती थी और चढ़ावा चोरी हुआ है। फिलहाल इस मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।
1: जो श्री कृष्ण मोहन सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि के, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और जिसमें ये संतुष्टि की गई है कि दान चोरी में जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में बेहद सख्त संतुष्टि थी और ये साफ कहा गया कि इसमें जिस तरीके से दान चोरी वाला मामला आया है उसके तहत ही ये पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। मैंने आपको जो धाराएं बताई जिसमें अगर आप बात करिए 306, 316, 317 और 61 के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर इसमें मान के चलिए कि गिरफ्तारियां होनी है।
2: इसमें एक जो बात सामने आई है वो ये कि इसमें शायद जो बड़े नाम हैं, जो ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हैं, उनके नाम एफआईआर में शामिल नहीं होंगे। जो नीचे के कर्मचारी हैं, खासकर जो चंदा चढ़ावा का जो चंदा आता है जिसके गिनने के कर्मचारी हैं, उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 से 6 लोगों पर एफआईआर होगी लेकिन अभी नाम सामने नहीं है, जल्द ही ये नाम भी सामने आएंगे। और चोरी धोखाधड़ी ऐसे तमाम जो चार्जेज हैं उसमें एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई है। अब नेचुरल है जब सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट दी गई है उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई है।
0: 6 से 7 लोग लगातार कस्टडी में लिए गए जिनसे जानकारी जुटाई जा रही थी और जिनसे रिकवरी भी हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी तो एसआईटी ने जो संस्तुति की उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया।
3: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार क्यों कर दिया। आप सही सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है उसने राम मंदिर के ट्रस्ट से सभी तरह की वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। यह जानकारी आई कि जब एक बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, उसको कहा गया कि यह ब्यौरा हासिल किया जाए। जब जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से जानकारी मांगी तो ट्रस्ट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मंदिर ट्रस्ट ने यह कह दिया कि वो इस जानकारी को प्रधानमंत्री के दफ्तर के साथ साझा नहीं कर सकता और एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने दूसरी जो जांच चल रही है इस वजह से हमने जानकारी नहीं दी है, लेकिन मामला गंभीर है। ये पूरा मामला बीजेपी नेता, जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टर रजनीश सिंह की उन चिट्ठियों से शुरू होता है जो उन्होंने पीएम को लिखी थी, प्रधानमंत्री को। इन चिट्ठियों में उन्होंने ये मांग की कि राम मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर जितना भी अभी तक का मामला है वो सब जो आरोप है उनकी निष्पक्ष जांच हो, जांच भी सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जाए, अगर गड़बड़ी के आरोप सही निकलते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर आरोप निराधार है तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि राम भक्तों का भरोसा मंदिर ट्रस्ट पर बना रहे। इसी शिकायत में सबसे बड़ा संदेह जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जताया गया था और यह शिकायत सीधे पीएमओ को भेजी गई। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया और इसके लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। पीएमओ से निर्देश मिलने के बाद अयोध्या के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क किया। पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट को यह बताया कि पीएमओ में हुई शिकायत के आधार पर उन्हें मंदिर की आय का खर्च का पूरा ब्यौरा देना है। यह भी बताना है कि चढ़ावे की कुल राशि और उसके प्रबंधन की व्यवस्था कैसे होती थी, ऑडिट रिपोर्ट का विवरण क्या है, मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जितनी भी जमीनें खरीदी गई उनके संबंध में क्या जानकारी है, और इन आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट का आधिकारिक पक्ष क्या है। अब यहां ये बात याद रखिएगा कि ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय मांग रहा था, लेकिन जब एडीएम ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इसके लिए पत्र लिखा तो उन्होंने पीएमओ के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ये वित्तीय ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया। ये कहा कि मामले की जांच पहले से एसआईटी द्वारा की जा रही है और ऐसे में जांच पूरी होने तक वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से यह भी कहा कि जरूरी होने पर वो ये जानकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सार्वजनिक या प्रशासनिक स्तर पर इसे साझा नहीं करेंगे। अब मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार किया तो इस पर बवाल मचा। इससे ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या मंदिर ट्रस्ट पीएमओ की अपील को खारिज कर सकता है। अगर कानूनी रूप से देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी विषय में सरकार जिला प्रशासन से सूचना मांगे, लेकिन जिस संस्था व्यक्ति संगठन या ट्रस्ट से यह सूचना हासिल की जानी होती है वो इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता। यानी अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले से चंपत राय ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने से इनकार कर दिया तो कानूनी रूप से यह अवैध नहीं है। कानूनी रूप से मंदिर ट्रस्ट वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यहां सवाल नैतिकता का है, यहां सवाल लोगों के भरोसे का है। भरोसे का इसलिए है क्योंकि इसमें मंदिर ट्रस्ट से यह भी पूछा गया था कि उसने किन जमीनों को कब खरीदा, उनके लिए कितना भुगतान हुआ। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मंदिर ट्रस्ट पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि उसने सस्ती जमीनें ज्यादा कीमतों पर खरीदी। जैसे 2021 के मामले में मंदिर ट्रस्ट पर यह आरोप लगा कि जो जमीन कुछ लोगों ने 2 करोड़ के राजीनामे में खरीदी थी उसी जमीन को मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे देकर खरीदा। इन आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है और मंदिर ट्रस्ट भी इन्हें खारिज करता है, लेकिन जब पीएमओ इसका सच जानने के लिए मंदिर ट्रस्ट से वित्तीय ब्यौरा मांग रहा था तो चंपत राय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि जो मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंदिर की जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बदलने पर काम किया जाएगा। पहले सुनिए।
4: हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, जो अपेक्षित निर्णय हैं जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय वो भी लिए जाएंगे, लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जनभावना को चोट नहीं आने देंगे। ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या अन्य सामान्य कर्मचारी हों, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर दो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे।
3: आइए आपको बताते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें पूरे देश को परेशान कर सकती हैं। आज महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक नहीं बल्कि कई धमाके किए गए। यहां धमाकों का मतलब पटाखों की आतिशबाजी से नहीं है, पटाखों की आतिशबाजी तो हर धर्म के त्योहार में होती है, लेकिन इस मामले में एक गाड़ी को क्रेन की मदद से हवा में लटकाकर उसमें बड़ा विस्फोट किया गया। और सिर्फ विस्फोट नहीं किया गया, 2 लोग इससे पहले धार्मिक झंडे लेकर इस गाड़ी के ऊपर चढ़े। इस गाड़ी के आगे ये लिखा गया कि ले फिर आ गया। मुहर्रम के जुलूस में एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट करना और उस गाड़ी के ऊपर इस तरह का संदेश लिखना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर स्थानीय पुलिस खुद हैरान है, जिसने इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। देखिए।

0: गाड़ी जो है क्रेन से लटकी हुई दिख रही है, जिसमें कुछ विस्फोट हुआ है। और ये पता चला है कि इसमें जो आरोपी शोएब पिता गब्बू खान निवासी अडान मोहल्ला जो है वहाँ का ये सारा मामला है, उसके विरुद्ध अभी FIR पंजीबद्ध की जा रही है।
1: आमतौर पर हमारे देश में धार्मिक जुलूसों और आयोजनों के दौरान ऐसी झांकियां निकाली जाती हैं जो सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, सांस्कृतिक परंपराओं का संदेश देती हैं। लेकिन उज्जैन जिले के बड़नगर में इन तस्वीरों ने गवाही दी है कि एक नई बहस अब छिड़ गई है पूरे देश में, और लोग ये पूछ रहे हैं कि मुहर्रम के जुलूस में इस तरह से आतंकी मानसिकता का प्रदर्शन क्यों हुआ। आप खुद सोचिए, गाड़ियों में ब्लास्ट कौन करता है? ये जो कुछ हुआ, इस तरह का वैचारिक कट्टरपंथ आतंकी हमलों में नजर आता है। लेकिन यहाँ उज्जैन के इस मामले में ना सिर्फ गाड़ी में विस्फोट किया गया, बल्कि हमारे पास इस जुलूस के और भी वीडियोस हैं जिनमें अलग अलग तरह के कई विस्फोट जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और सवाल उठाए कि धार्मिक जुलूस में इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत है। पहले देखिए,

इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए या फिर ऐसे ब्लास्ट करके लोगों के मन में डर एक असहजता पैदा करने का होना चाहिए। और ये भी सोचिए कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट किया गया उस पर ये क्यों लिखा था कि ले फिर आ गए। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में धार्मिक जुलूस केवल एक समुदाय का कार्यक्रम नहीं होता बल्कि दूसरे जो उन्हें दूसरे समुदायों के लोग भी देखते हैं, इसीलिए ऐसे आयोजनों में संवेदनशीलता सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा और बढ़ जाती है। पुलिस के मुताबिक ये मामला उज्जैन में बड़नगर के अडान मोहल्ले का है जहां जुलूस की तो अनुमति ली गई थी लेकिन इन जुलूसों में गाड़ी के अंदर विस्फोट करने की इजाजत नहीं ली गई थी। और ये मामला भी तब बाहर आया जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके वीडियोस अपलोड किए गए और जब इनकी जांच हुई तो पुलिस ने शोएब नाम के लड़के और जिस व्यक्ति ने इस कार को लटकाने के लिए क्रेन मुहैया कराई थी उसके मालिक गोपाल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को ध्यान से देखें और ये सोचें कि क्या ये आपको कहीं से भी एक धार्मिक जुलूस लग रहा है।

0: अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गाड़ी या दूसरी चीजों में ऐसा क्या भरा गया था जिससे ये धमाका हुआ। पुलिस ये भी कह रही है कि इस इलाके में मुहर्रम के मौके पर कई तरह के जुलूस निकाले जाते हैं जिनके लिए लोगों का ध्यान खींचा जाता है, और इसी प्रतियोगिता में कई बार अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसमें एक ऐसा प्रतीकात्मक कार ब्लास्ट दिखाया गया जैसा आतंकवादी करते हैं, और इसमें भी धमाका करने से पहले गाड़ी में यह लिखा गया कि ले फिर आ गए। हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि यह मामला एक बड़े सामाजिक प्रश्न का है और इन लोगों की सोच का भी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो आम लोग थे वही ये आयोजन कर रहे थे, वही सड़कों पर निकले थे। अगर किसी आयोजन में विस्फोट या हिंसा जैसे प्रतीकों का प्रदर्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर एक बहस, चिंता सब पैदा होती है। आप खुद भी सोचिए कि आखिर मुहर्रम के जुलूस में इस तरह से अलग अलग विस्फोट करके क्या बताया जा रहा है, और इस जुलूस में मौजूद जो बच्चे इसे देख रहे हैं उन पर इसका क्या असर होगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको वेनेजुएला में भूकंप से मची वो तबाही दिखाते हैं जिसमें कई लोगों की जान ले ली है। आज हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला की आर्थिक तंगहाली ने कैसे इस भूकंप को ज्यादा विनाशकारी बनाया है, और अगर भारत में कभी इतना शक्तिशाली भूकंप आता है तो क्या हमारी सरकारों ने और हमारे देश ने उसके लिए तैयारी की है। पहले देखिए,
1: ya va por aquí, ven.

वेनेजुएला में भूकंप से हुई इस तबाही का एक बड़ा कारण वहां के आर्थिक हालात हैं। साल 2015 के बाद जब वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया तब वहां बड़े बड़े पुल, स्कूल, अस्पताल और दूसरे निर्माण कार्य बीच में ही ठप हो गए। 2 जून 2017 टीआरटी वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट प्रसारित की जिसमें यह दिखाया गया कि वेनेजुएला के कैराकास शहर में पैसों की कमी के कारण कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। कई शहरों में निर्माणाधीन इमारतें, पुल और ढांचे साफ साफ नजर आने लगे और जो लोग दो वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे वही लोग अपने पुराने घरों और इमारतों की मरम्मत नहीं कर पाए और यही कमजोर इमारतें आज शक्तिशाली भूकंप के लिए आसान निशाना बनी और वेनेजुएला में ऐसी तबाही आई कि अब भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां 10,000 लोगों की मौत और $100 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगा रही हैं। यहां यह भी देखना होगा कि क्या हमारा देश भारत ऐसे शक्तिशाली भूकंपों का सामना करने के लिए तैयार है। सिर्फ पिछले महीने हमारे देश में 125 और हर दिन 4 भूकंप दर्ज हुए जिनमें सबसे ज्यादा 25 भूकंप असम में आए, 19 महाराष्ट्र में आए, 17 भूकंप अरुणाचल प्रदेश में, 11 भूकंप मणिपुर में। यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत के 59% भूभाग को भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना गया है। स्थिति यह है कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की 60% इमारतें वेनेजुएला जैसे ताकतवर भूकंप को सहन नहीं कर सकती। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो हाईकोर्ट में नगर निगम ने बताया था कि 80% इमारतें और घर भूकंप के दौरान सुरक्षित नहीं होंगे और कारण यही है हमारे देश में भूकंप रोधी जो इमारतें हैं वो कम बनती हैं। ऐसी इमारतें जो कि भूकंप का जिन पर असर ना हो उन्हें भूकंप रोधी इमारतें कहते हैं, ऐसी इमारतें नहीं बनती और निर्माण कार्य में रिश्वतखोरी ज्यादा होती है। इसीलिए आज हमें वेनेजुएला से सीख लेनी होगी और इसीलिए ये मुद्दा हम बढ़ चढ़ कर ब्लैक एंड व्हाइट में उठा रहे हैं क्योंकि खुद को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए अगर हमें तैयार करना है तो कदम उठाने होंगे। अब आइए आपको ये बताते हैं कि अगर पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आपकी भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होगी और ये कैसा पता चलेगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। 24 जून को भारतीय पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है यानी यात्रा का एक दस्तावेज है जिसे किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर कई लोग हैरान हुए। इस हैरानी का कारण यह था कि अब तक आम धारणा यही रही है कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। अब यह धारणा इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कई सारी दस्तावेज दिखाने होते हैं और ऐसा नहीं है कि इन दस्तावेजों के जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। और यही कारण है कि जब विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं तो इस पर कई नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता साबित करने के तरीकों को सीमित किया जा रहा है जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अब वही भारतीय नागरिक कहलाएगा जिसने बीजेपी की सदस्यता ली होगी। ये सारी बातें राजनीति करने के लिए ठीक हो सकती हैं लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस नियम में मौजूदा सरकार ने क्या कोई बदलाव किया है। पिछली सरकार में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण या आधार नहीं माना गया। सरकार ही नहीं अलग अलग हाईकोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिनमें किसी एक दस्तावेज या पहचान पत्र को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया और इसीलिए यह सामने आ रहा है कि यह पहले से चल रहा था। यह कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2)(a) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकती है जो भारत का नागरिक ना हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। अब इसी आधार पर बार बार ये पूछा जाता है कि जब पासपोर्ट जारी ही नागरिकता के आधार पर होता है तो फिर क्यों इसे नागरिकता का सबूत क्यों ना माना जाए। हालांकि यहां सरकार का पक्ष क्या है आपको बताते हैं। सरकार कहती है कि पासपोर्ट कई बार गलत जानकारी के आधार पर जारी हो सकता है जिसके कारण से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए पिछले साल कुल 1,39,00,000 पासपोर्ट जारी हुए
करीब 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट सेवाएं मिली। ये संख्या इतनी विशाल है कि इतने लोगों की नागरिकता की पूर्ण और अंतिम जांच करना पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण वो पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानती। दूसरा, पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, अदालतों के पास होता है, और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और यही कारण भी है कि सरकार का जो पासपोर्ट मैनुअल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। अब इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि हम आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता का सबूत माने। उदाहरण के लिए, अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो ये सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन ये भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड दिखाएंगे तो कहेंगे राशन कार्ड दिखाएंगे तो ये भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इसे भी आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब एक नारा प्रदर्शनकारियों के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। वो नारा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, आज अगर कागज दिखाना भी पड़ा तो नागरिकता के लिए कौन सा कागज दिखाना है? क्योंकि कोई एक कागज हमारे देश में ऐसा है ही नहीं जो हमारी नागरिकता को साबित कर दे। आप जरा आप ये देखिए कि इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून इस पर क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब आर्टिकल 5, 6, 7 भारतीय नागरिकता का उल्लेख करते थे। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या फिर माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सरल मतलब यह था कि आपके माता पिता कौन है, विदेशी है या नहीं, ये नागरिकता के लिए मायने नहीं रखता था। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर जन्म के आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी और इसे जसोली का कानूनी सिद्धांत कहते थे। अब यह व्यवस्था आपके दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। इसमें यह तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं होगा, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे और कई बार ऐसा होता था कि अवैध प्रवासी यहां जिस बच्चे को जन्म देते थे वो भारत का नागरिक बन जाता था। यही देखते हुए सरकार ने तय किया कि माता पिता में से किसी एक का इस देश में जन्म लेना जरूरी है। अब यह व्यवस्था साल 2004 तक चली, लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक और संशोधन हुआ और यह आज तक जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं और आपके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी होता है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को जस सैंग्विनिस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों को की नागरिकता उनके माता पिता की नागरिकता से तय की जाती है। वैसे यहां पासपोर्ट को लेकर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, सच यह है कि साल 2023 तक हमारे देश में 9,26,00,000 लोगों के पास ही पासपोर्ट था, यानी देश की सिर्फ 6.61 लगभग 6.5% आबादी के पास ही पासपोर्ट है।
93% आबादी के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है। इनमें भी पासपोर्ट वाले केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो विदेश यात्राओं पर गए। 9,26,00,000 लोगों में से करीब 6,00,00,000 लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश यात्रा पर नहीं गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनाकर अपने घर पर रखा है। यहाँ आपको दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की ये रैंकिंग भी देखनी चाहिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले इस रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर होता था, यानी उस वक्त की रैंकिंग में और मौजूदा रैंकिंग में आप देख रहे हैं 6 अंकों की गिरावट है। अब हमारे देश में यह पूरा मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है कि सिर्फ भारत

0: गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स भगवंत मान नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेअदबी वाले इस वीडियो से अलग साबित करने के लिए जिस लैब रिपोर्ट का सहारा लिया गया उसे हर तरह से गलत, भ्रामक और मनगढ़ंत बताया जा रहा है।
1: कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
0: आरोप है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के एक 5-स्टार होटल में इस फर्जी रिपोर्ट को बनवाने के लिए बकायदा एक सीक्रेट डील की थी। इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है जिसका नाम इस रिपोर्ट को तैयार करने में सामने आया था। जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले में मुख्य शिकायतकर्ता बन गया है। जसप्रीत का दावा है कि 15 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें सामने वाले ने खुद को पंजाब का एसपी बताते हुए एक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया। इस पर जस्सी ने कहा कि वो ऑडियो वीडियो का नहीं बल्कि लिखित दस्तावेजों का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन उससे कहा गया कि उसे बस काम करना है और इसके बदले उसे अच्छी रकम मिली।
2: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, तो अननोन नंबर से था। मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन बिल बोल रहा हूँ, तो कृपया ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में। हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के है, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप एक रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज करें, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं करें, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं करें।
0: जसप्रीत का दावा है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में उसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे। जसप्रीत ने साफ कहा कि उस पर भारी दबाव बनाया गया और धमकी दी गई ताकि वो मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर उनके मन मुताबिक एक खास रिपोर्ट तैयार कर। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त साहिब जैसी धार्मिक संस्था के खिलाफ किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने इस होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है जिसका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस की जांच और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। पंजाब पुलिस के दबाव में आने के बाद जसप्रीत ने अरुण और अंकित नाम के दो साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर साइबर यान और साइबर सेंटिनल नाम की दो कथित साइबर लैब्स के लेटर हेड पर जाली रिपोर्ट तैयार कर दी। दिल्ली और जीन के पते पर दिखाई गई ये लैब्स पूरी तरह अवैध थी, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने अंकित और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
3: अरुण नाम के व्यक्ति ने साइबर यान के नाम से फेक रिपोर्ट बना के दी और अंकित नाम के व्यक्ति ने साइबर सेंटिनल नाम से रिपोर्ट जो कि फेक थी वो बना के दी, जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है।
0: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने और पुलिस अफसरों की संलिप्तता के इन गंभीर दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है।
4: तो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे है नंबर 3 पे, क्योंकि ये अखा नहीं लग सकती, मास्क तो बन जाता है अखा नहीं बन गई, तो फिर उन्हें एनक लाई है काली ताकि अखा लुक जान, होटल का कमरा है।
0: अब बीजेपी और कांग्रेस सीएम भगवंत मान पर हमलावर हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
5: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इनके ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
6: क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
0: एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज, दो गिरफ्तार आरोपी और खुद मुख्य गवाह का बयान पंजाब पुलिस के अधिकारी और भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि

0: सिख गुरुओं के अपमान से जुड़ा कथित वीडियो वाकई नकली था तो उसके लिए एक अवैध लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब हम पारंपरिक भारतीय थाली की बात करेंगे जिसकी आत्मनिर्भरता अब खत्म हो रही है। भारतीय थाली अब धीरे धीरे विदेशी थाली बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी थाली में विदेशी व्यंजन बढ़ रहे हैं, बल्कि बात यह है कि भारतीय व्यंजन कहीं जाने वाली चीजें अब विदेशी आयात पर निर्भर होती जा रही हैं। एक सामान्य भारतीय थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही जैसी चीजें होती हैं। कहने के लिए ये सभी चीजें पारंपरिक थाली से जुड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे इन चीजों को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं, धान, सब्जियों की पैदावार अच्छी हो इसके लिए खाद जरूरी है और खाद के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हो रहे हैं। वैश्विक कारणों से खाद या खाद बनाने से जुड़े कच्चे माल का आयात रुकते ही स्थिति बिगड़ने लगती है। आपकी थाली में जो दाल है वो बनी रहे इसके लिए उसका भी विदेशी आयात बढ़ता जा रहा है। यानी हम दालों के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हो रहे हैं, निर्भरता बढ़ रही है, हमारा उत्पादन हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। सब्जियां जिस तेल में पक रही हैं वो भी ज्यादातर विदेशों से आ रही हैं। तेल देश में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का 56% हिस्सा विदेशों से आयात कर रहे हैं।
0: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम ही हैं। और हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें दाल आयात करनी पड़ती है। अब हम आपको साल 2020-21 से 2024-25 के बीच दालों की मांग, उसका उत्पादन और आयात पर बढ़ रही हमारी निर्भरता का एक ग्राफ दिखाते हैं। 2020-21 में दालों की घरेलू मांग 277 लाख टन थी और उस वक्त हमारा उत्पादन 254 लाख टन था। घरेलू जरूरत पूरा करने के लिए करीब 25 लाख टन दाल आयात की गई थी और इसके अगले 5 वर्षों में यानी 2024-25 तक दालों का आयात 73 लाख टन तक पहुंच गया। आयात बढ़ने का सीधा अर्थ है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ भी बढ़ाना पड़ा। दालों के आयात पर साल 2020-21 में भारत ने 11,937 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अगले 5 वर्षों में करीब 4 गुना बढ़कर 46,428 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और अन्य दालों के हिसाब से हमारी निर्भरता अलग अलग देशों पर हो गई है, जिनमें रशिया, कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार शामिल है। यानी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए हम मजबूरन दूसरे देशों पर निर्भर हैं, बावजूद इसके कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक देश हैं। कुछ यही स्थिति खाद्य तेल को भी लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले देश के लोगों से अपील की थी कि वो अपने खाने के तेल में 10% कटौती करें। इस अपील की एक खास वजह थी, भारत में खाद्य तेल का कुल उत्पादन 1,30,00,000 टन है, जबकि देश की कुल जरूरत 2,90,00,000 टन है। यानी खपत उत्पादन से बहुत ज्यादा है और ये खपत बढ़ती ही जा रही है। आज की स्थिति ये है कि भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत 19 से 20 लीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। यानी घरेलू जरूरत बढ़ती जा रही है और उत्पादन में उतनी तेजी नहीं है। साल 2020-21 में खाद्य तेल की मांग 2,50,00,000 टन थी और देश में उत्पादन था 1,10,00,000 टन। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1,40,00,000 टन खाद्य तेल आयात करना पड़ा और इसके अगले 5 वर्षों में खाद्य तेल की हमारी जरूरत 2,90,00,000 टन पहुंच गई, जिसमें उत्पादन मात्र 1,30,00,000 टन ही है और 1,60,00,000 टन खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें 2020-21 में आयात के लिए करीब 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और ये खर्च साल 2024-25 तक बढ़कर 1,61,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हम खाद्य तेल के तौर पर पाम ऑयल, सोयाबीन या सूरजमुखी का तेल आयात करते हैं और इसके लिए हम कई देशों पर निर्भर हैं, जैसे यूक्रेन, रशिया, नेपाल, ब्राजील, अर्जेंटीना, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। बात सिर्फ दाल या खाद्य तेल की भी नहीं है, देश में पैदा होने वाली लगभग हर फसल को खाद की जरूरत होती है और खाद के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। साल 2024-25 में हमें 6,50,00,000 टन खाद की जरूरत थी, जबकि देश में खाद का उत्पादन 4,70,00,000 टन ही था। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1,60,00,000 टन खाद आयात की गई, जिस पर करीब 87,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और ये खर्च ईरान युद्ध के बाद बढ़ता ही जा रहा है। खाद की विदेशी निर्भरता के साइड इफेक्ट हमें ईरान युद्ध में दिखे। मिडिल ईस्ट से आने वाला खाद और उसके कच्चे माल की सप्लाई बाधित हो गई थी, जिससे हालात कुछ समय के लिए बिगड़ गए। ऐसा देखा गया है कि खाने पीने की ज्यादातर चीजें आयात करने वाले देशों के सामने युद्ध एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसीलिए जब बात भारत की देसी थाली की है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने उत्पादन के जरिए ही अपनी देसी थाली को आत्मनिर्भर थाली बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई 5 महिलाओं की मौत हो गई थी। वो आपने भी खबर कहीं ना कहीं देखी होगी। डिलीवरी के बाद उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्हें एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाया गया जिसमें पानी भरा था। वो इंजेक्शन बेकार था, उसमें ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स ही नहीं था। जब इस तरह की खबरें आती है तो उम्मीद की जाती है कि सिस्टम जागेगा, कुछ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई जब तक होती है तब तक एक नया मामला सामने आ जाता है। अब अहमदाबाद में नकली ब्लड प्लाज्मा गैंग का पर्दाफाश हुआ है।
0: मेडिकल क्षेत्र में मिलावट का काम केवल दवाओं तक सीमित नहीं रह गया है, अब अहमदाबाद में नकली ब्लड प्लाज्मा गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ब्लड प्लाज्मा हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको लैब में खून से अलग किया जा सकता है और वो मरीजों के इलाज में काम आता है। लेकिन अहमदाबाद का ये गैंग असली प्लाज्मा में पानी भरकर उसे आधी कीमतों पर मरीजों को बेच रहा था। गुजरात पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस उनकी लैब में पहुंची तो उन्हें वहां पर बड़ी मात्रा में असली ब्लड प्लाज्मा, सलाइन वाटर और 1150 यूनिट नकली ब्लड प्लाज्मा के सैंपल मिले। ये गैंग उन मरीजों के परिवार वालों को टारगेट करता था जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत थी। उनको कम कीमत में प्लाज्मा देने का लालच देकर लैब में लाया जाता था, फिर इसके बाद उनके खून से असली प्लाज्मा निकालकर उन्हें नकली प्लाज्मा कम कीमत पर बेच दिया जाता था। ये गैंग असली प्लाज्मा में पानी मिलाकर ज्यादा मात्रा में नकली प्लाज्मा तैयार करता था और फिर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। नकली ब्लड प्लाज्मा को किसी मरीज के शरीर में डालना उसकी जिंदगी से खिलवाड़ है। प्लाज्मा हमारे खून में मौजूद हल्के पीले रंग का तरल है, जो हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा होता है। खून में मौजूद प्लाज्मा में 92% पानी, 8% प्रोटीन, ग्लूकोज और मिनरल्स जैसे जरूरी तत्व होते हैं। मुख्य रूप से लीवर में बनने वाले प्लाज्मा का काम है भोजन से मिले पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना और चोट लगने पर खून का थक्का जमा कर ब्लीडिंग होने से रोकना।
1: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
7: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
8: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
7: मतलब
8: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
7: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
8: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर उधर,
5: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं, तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB One App, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FT, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
10: PNB One App, बैंकिंग का कैप्टन।
11: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
12: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
11: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
13: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
14: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
13: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
15: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
16: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
17: विमल बोलो जुबा केसरी।
18: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
19: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी,
1: फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
0: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
2: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है। मेरा सुरक्षा
0: कमर है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है। जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे, तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही पद तक जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा देख लो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गजब दुनिया है, भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है फिर भी लोग कानों से देखते हैं। नमस्कार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: दवा चोरी मामले में 8 पर दर्ज हुई एफआईआर, गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू, चंपत राय के ड्राइवर पर भी शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की दी जा रही है बलि। ट्वेंटी सेवेंटीन के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान, प्रदेश संगठन की नई टीम में पिछलों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1500 की जगह आपको देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस हुई 5000 रुपए, 1 जुलाई से नियम लागू। और भयानक भूकंप में वेनेजुएला में त्राहिमाम, 150 से अधिक की मौत की खबर, पीएम मोदी ने जताया दुख, मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। आज दस्तक की शुरुआत श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आई सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद नामजद आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब कर दिए गए। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, इसे लेकर अब सवाल है। तो क्या चढ़ावा चोरी केस में सिर्फ छोटे आरोपियों को बलि का बकरा बनाकर नामचीन हस्तियों को जांच की आंच से बचाने का ये प्रयास है?

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे। चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। आरोपी नंबर 2 अविनाश। आरोपी नंबर 3 मनीष यादव। आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा। आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा। आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र। आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे। आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
1: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको। ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
2: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
1: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
0: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके एफआईआर में जिन पर एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है, और वो बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योजनाबद्ध ढंग से चढ़ावे की चोरी हुआ करती थी, और जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है ये लोग चोरी किया करते थे। कैसे चोरी करते थे ये भी कहा गया है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें ये कहा गया है कि सारे आरोपी 8 जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है ये लोग चोरी किया करते थे, और नोट गिनने के समय ये लोग चोरी किया करते थे, उसके अलावा अलग से चोरी किया करते थे, जो जेवरात आते थे, जो सोना चढ़ता था उनकी चोरी ये लोग किया कर सकते थे, और 8 लोग जिनके नाम एफआईआर में है सभी के सब इस चोरी में शामिल थे। हम आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार अभिषेक लखनऊ, हमारी संवाददाता हमारे साथ। क्या ये 8 अभी पूरे हो चुके हैं, या अभी कुछ नाम और बाकी हैं, या अभी कुछ ऐसे नाम और आने बाकी हैं अभिषेक जो चौंकाने वाले हो सकते हैं?
4: देखिए, कुछ नाम जब ट्रस्ट के बड़े नाम नहीं आए हैं तो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन जिन 8 लोगों पर FIR हुई है उन सबों के नाम आ गए हैं। इसमें कुछ लोग ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि ट्रस्ट के ऐसे लोग जिनके जो लोग इस चंदा की चढ़ावे की गिनती किया करते थे, और ज्यादातर इसमें वो लोग भी हैं जो बैंक कर्मी थे, यानी कि बैंक तक जो पैसे लेकर जाया करते थे। तो आदतन चोरी की का FIR कराया गया है। ऐसे में सिर्फ ये 8 लोग इस वक्त जो नामजद हैं उन्हें ही एक तरीके से हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ हो रही है। जो SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट दी उसमें इन 8 नामों का जिक्र है, इसलिए फिलहाल ये 8 लोग हिरासत में हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी ये SIT जांच आगे होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब इतने बड़े मामले में इतने बड़ी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, तो क्या सिर्फ यही 8 लोग थे या इनके ऊपर भी लोग थे? नाम चंपत राय से लेकर तमाम लोगों का है, और यह भी कहा जा रहा है कि क्या उन्हें कोई सेफ एग्जिट देने की कोशिश हो रही है, क्या उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, ऐसी तमाम बातें अब उठने लगी है। क्योंकि FIR में सिर्फ वो 8 नाम आए हैं जो सीधे ट्रस्ट में नहीं है, ट्रस्ट के अंडर में है, ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन ट्रस्ट का किसी सदस्य का नाम अभी तक नहीं है।
3: क्या सिद्ध करता है अभिषेक कि ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का इसमें नाम नहीं होना, ये किस ओर इशारा करता है?
4: देखिए, इसका अंदाजा पहले से था। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई चंपत राय की इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं किया जा सकता, वो निष्कलंक हैं, किसी के ऊपर चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, ऐसे बयान पहले से बड़े लोगों के आने लगे थे, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोग जो इससे जुड़े रहे हैं। इससे एक चीज दिखता था कि भाई हो सकता है कि ट्रस्ट की ये जो जांच हो रही है इसको सिर्फ उन्हीं तक सीमित रख दिया जाए जो लोग इस चंदे या चढ़ावे की गिनती से जुड़े हैं या बैंक तक ले जाने से जुड़े हैं। आखिर इसके पीछे कोई साजिश है कि नहीं, क्या और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसकी कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। अभी तक जितने लोगों के नाम आए हैं, जितने लोग फुटेज में या तो पैसे चोरी करते हुए या फिर जिन पर संदिग्ध स्थिति में जिनसे जो पूछताछ में पाए गए, ऐसे लोगों तक के ही नाम है। यह जरूर है कि सवाल अब बड़े हो चुके हैं और अब जवाब देना होगा, क्योंकि चंपत राय का नाम, उनके अंडर में तमाम चीजें थी और चंपत राय शुरू में इस मामले को बिल्कुल हल्के मिले रहे थे, अब उनको भी जवाब देना होगा। जब तक और नाम नहीं आते तब तक फिलहाल यही 8 नाम हैं जिन पर फिलहाल जांच चल रही है या फिर उनको हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। सही,
3: बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे संवाददाता, चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों के नाम आपने देख लिए हैं, लेकिन अभी पूरे मामले में ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। इन बड़े नामों में सबसे पहले चंपत राय का नाम है, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे और राम मंदिर चंदा चोरी के शिकायतकर्ता संतोष दुबे का सीधा आरोप है कि मंदिर में चढ़ावे और दान में मिले जेवरों की चोरी के लिए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव जिम्मेदार हैं। आरोप के बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के नाम FIR में नहीं है। मतलब यह हुआ कि ट्रस्ट से जुड़े 3 बड़े पदाधिकारी बच गए हैं, जबकि सिर्फ छोटे कर्मचारी जो 8 हैं जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं वो FIR में। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये तीनों ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, लेकिन इनके नाम FIR में नहीं है। और ये 8 नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 3 नामों पर सवाल है। विपक्ष भी इन तीनों नामों पर सवाल उठा रहा है कि आखिर ये पदाधिकारी क्या इनकी मिलीभगत, क्या इनकी जानकारी के बिना ये सब कुछ हो सकता है और ऐसा क्या हुआ है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की। सिया गोयल के परिवार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सिया अग्रवाल के माता पिता ने आज तक से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को, यानी कि जिस दिन केतन अग्रवाल की मौत हुई उस दिन लोहगढ़ का किला जाने की जिद केतन अग्रवाल ने ही की थी। सिया गोयल ने लोहगढ़ जाने से मना किया था। इसे लेकर केतन अग्रवाल की माँ से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अगर केतन कह रहा है तो चले जाए। अब दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले केतन अग्रवाल का परिवार ये आरोप लगा रहा था कि सिया गोयल ने ये जिद की है। सिया बार बार चाह रही थी कि लोहगढ़ जाया जाए।
5: जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली। क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
6: मुझे इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
5: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
6: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
5: जी,
6: और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
5: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी है जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
7: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
5: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
7: नहीं थी, पहचानते नहीं।
5: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
6: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
5: हाँ।
6: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
7: हाँ। मेरे तो साहिल।
6: उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई
5: हाँ।
6: बात नहीं।
5: हाँ।
6: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
5: हाँ। तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं इस तरीके से, अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में दोनों साथ में बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं था?
6: मुझे कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी, और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
7: उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था।
5: चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे? सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था, तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था?
7: कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है।
3: सिया, केतन और चेतन की हेट स्टोरी जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या करने की पूरी साजिश रची, कैसे केतन को लोहगढ़ किले में ले जाकर उसकी जान लेनी है ताकि दुनिया के सामने ये सिर्फ एक हादसा लगे। बाकायदा सिया गोयल ने यह पूरा प्लान अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को समझाया, तो आइए हम आपको दिखाते हैं केतन अग्रवाल के मर्डर प्लान का, सिया गोयल का सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: चेतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे महाविनाश का भूकंप कैसे वेनेजुएला में 2 भूकंप ने तबाही मचा दी। अब देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: आगे आगे
6: उधर
5: उधर
6: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
14: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
15: Roongta nahi to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar ekdam solid.
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

एक हंसता मुस्कुराता जोड़ा, 20 साल की सिया गोयल, 26 साल का केतन अग्रवाल। ये जोड़ी जो जिंदगी के नए अध्याय लिखने निकला था, फरवरी में सगाई हो चुकी थी, नवंबर में शादी तय थी। राजस्थान के उदयपुर में शादी का वेन्यू भी तय था। मेहमानों और रिश्तेदारों के लिए अलग अलग चार्टर प्लेन बुक किए गए थे। इस जोड़ी को देखकर कहीं से नहीं लगता कि इनके प्रेम में कोई कमी है, एक दूसरे के प्रति कोई खोट है। केतन अग्रवाल पुणे के कारोबारी खानदान का इकलौता बेटा था। बाप दादा का अरबों का बिजनेस है, सारी सुख सुविधाएं हैं। सिया गोयल का खानदान भी मसाला कारोबारी है। शादी बराबरी की हैसियत में हो रही थी। सिर्फ सिया और केतन नहीं, दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। शादी से पहले ही सिया का अपने होने वाले ससुराल में आना जाना हो गया था। नए परिवार के सदस्यों से मिलना जुलना, मेल मिलाप, सब कुछ। उन्नीस जून को सिया का बर्थडे था तो केतन ने एक महीने तक हर रोज नया सेलिब्रेशन किया, कभी गाड़ी में फूल देता। कभी रेस्टोरेंट में केक काटता। सिया और केतन की शादी विशुद्ध रूप से अरेंज मैरिज थी, लेकिन एंगेजमेंट के कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को इतने करीब से जानने लगे कि केतन के लिए सिया ही जिंदगी बन गई। सिया की खुशियां केतन की खुशी बन गई। सिया की इच्छाएं केतन के लिए आदेश बन गया। केतन सिया के लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन सिया के मन में कुछ और था। सिया का अफेयर पुणे के ही एक चेतन चौधरी से था। पुलिस की माने तो चेतन और सिया एक साथ पढ़ाई करते थे। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्रेम हो गया। दोनों करीब 8-9 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। इधर सिया केतन अग्रवाल के और उसके परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि सिया के मन में क्या चल रहा है। सिया अक्सर केतन को अपने साथ घुमाने ले जाती। केतन के परिवार वाले कभी कभी मना भी कर देते थे। 19 जून को सिया का बर्थडे था और उसके बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को केतन की मौत हो गई। तब कहा गया कि केतन पुणे के इसी लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिरा और इस हादसे में मारा गया। जांच हुई तो पता चला कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या की है। परिवार को यह अंदाजा ही नहीं था कि सिया बहुत पहले से ये प्लानिंग कर रही है। वो बाहर बाहर से केतन से प्यार और शादी का नाटक कर रही थी, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी केतन से शादी हो। इसीलिए अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर रही थी। मासूम सी दिखने वाली सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को मार डाला। पुणे की इस घटना ने परिवार और रिश्तों की हर शाखा को झकझोर दिया है। कभी सोनम रघुवंशी हनीमून पर पति को मार डालती है, तो कभी सिया गोयल शादी से पहले मंगेतर को मार डालती है और फिर ऐसा दिखावा करती है जैसे हमने कुछ किया ही ना। पुलिस, परिवार और रिश्तेदारों को शक ना हो, इसलिए सिया अपने सोशल मीडिया पर केतन का स्टेटस लगाती थी। ऐसा दिखाने का प्रयास करती थी कि वो सदमे में है। केतन के परिवार वाले भी यही मान रहे थे कि यह हादसा है, लेकिन 21 जून को जब पुणे पुलिस ने जांच शुरू की तो सिया का खूनी प्लान सामने आ गया। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक। रिश्तों के बनने और मिटने की एक ऐसी कहानी है जिसमें 20 साल की एक लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम देती है कि भरोसे का भी कत्ल हो जाए। इसमें रिश्तों की नर्सरी है, जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का कत्ल है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं: सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी। इनमें से केतन अब दुनिया में नहीं है। सिया और चेतन ने केतन को ठिकाने लगा दिया। केतन अग्रवाल और सिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घड़ी आती, सिया ने अपने होने वाले पति केतन को ठिकाने लगा दिया। सिया ने केतन को कैसे मारा, केतन को मारने के लिए सिया ने कितने प्लान बनाए, सिया का प्लान बी क्या था, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौहान इस हत्याकांड के खुलासे में कैसे अहम कड़ी साबित हुआ, आज हम सब कुछ बताएंगे। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये मानेगा ये लड़की अपने होने वाले पति की हत्या कर देगी? क्या इन हंसी खुशी के इन पलों में कहीं से लग रहा है कि सिया और केतन के बीच में कोई अविश्वास, दरार या तनाव है? तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सिया ने ही अपने होने वाले पति को मार डाला, लेकिन पुलिस की

शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है और आगे भी जा सकता है। बीते 19 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हजारों लोगों के जमींदोज हुए इमारत में दबे होने की आशंका है। विश्वास कीजिए, वेनेजुएला में भूकंप से मची महातबाही की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

0: वेनेजुएला में हिलती धरती की विनाश ली, उनतालीस सेकंड में दो बार आया प्रलय वाला भूकंप, वेनेजुएला में 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप, ऐसा जलजला कि तस्वीरें रोंगटे खड़े कर दी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। दस हजार से ज्यादा के मारे जाने की आशंका है। हिलती धरती, मरते लोग और महातबाही। वेनेजुएला में विनाश लीला की 10 तस्वीर। तारीख 24 जून, वक्त शाम के 6:05। विनाशकारी भूकंप ने लोगों के पैरों के नीचे जमीन हिला दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही पाताल से उठी तबाही की तरंगों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, मानो कुदरत सब कुछ जमींदोज करने पर आमादा। भूकंप का पहला झटका वेनेजुएला के सैन फिलिप और मोंटेबलान के पास महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 थी। अभी पहले झटके से लोग संभलते, उससे पहले ही भूकंप का दूसरा झटका तकरीबन 39 सेकंड के बाद आया, रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता थी 7.5। भूकंप का एपिसेंटर कैरिबियाई तट के करीब था। वेनेजुएला के इतिहास में 126 साल के बाद ऐसे विध्वंसक भूकंप ने कहर बरपाया है। दोनों विनाशकारी भूकंपों का सबसे ज्यादा असर ला ग्वायरा शहर में दिखाई दिया। यह वेनेजुएला की राजधानी कराकस के करीब स्थित एक पोर्ट सिटी है।
1: Cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas, pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película, de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros.
0: ये आप बीती हैं, भूकंप के चश्मदीद। किस्मत से जान बच गई, लेकिन कुदरत की विनाश लीला का मंजर अभी भी दिलो दिमाग में खौफ भरने के लिए काफी। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों में तबाही का एक एक मंजर कैद है। देखिए, जब विनाशकारी भूकंप आया तो पैरों तले खिसकी जमीन ने सब कुछ हिला दिया। बहुत गौर से 30 सेकंड तक इस वीडियो को देखिए। अचानक सब कुछ हिलने लगा, जान बचाने के लिए सड़क पर लोग भागते दिखे। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगा और लोगों के चेहरों पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें कराकास के माइकेटिया एयरपोर्ट की। जब भूकंप आया तो चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। मंजर कितना भयावह था आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला भागती हुई नजर आती है। इसी बीच एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा ढह जाता है, महिला बच जाती है, लेकिन हर तरफ धूल का गुबार आपको नजर आएगा। एयरपोर्ट पर भूकंप से मची तबाही को एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद किया।
2: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Mira cómo quedó todo. Puedo observar, yo grabé.
0: अब ये दृश्य देखिए, जब भूकंप

0: नहीं पाया तो तस्वीरों में खड़ी गाड़ियां हिलने लगी, मानो कोई इन कारों को हिला रहा है। ये तस्वीर भी गौर से देखिए, भूकंप ने कैसे इस आलिशान होटल को जमींदोज कर दिया। ये होटल ऐसा दिखता था, लेकिन अब होटल का नामोनिशान नहीं बचा है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों इमारतों को कुदरत ने मानो रौंद दिया। भूकंप के झटकों ने ऊंची ऊंची इमारतों का कुछ ऐसा हाल कर दिया। आज तक ब्यूरो।
1: वेनेजुएला में सदी के सबसे बड़े भूकंप ने न सिर्फ वेनेजुएला को बल्कि दुनिया को थर्रा दिया। एक के बाद एक दो भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला में महाविनाश की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। केवल 43 सेकंड के अंदर वेनेजुएला के इतिहास में यह भूकंप 126 वर्ष का सबसे विनाशकारी भूकंप बन गया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी और इस महाविनाश में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 के से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के इस डबल अटैक ने वेनेजुएला की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। देखिए कैसे टूटा वेनेजुएला पर कुदरत का सबसे खौफनाक कहर।

0: वेनेजुएला में महाविनाश का भूकंप, हर तरफ तबाही ही तबाही। वेनेजुएला में क्यों है अब तक हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका? सदी के सबसे बड़े भूकंप ने वेनेजुएला की तस्वीर ही बिगाड़ कर रख दी। उनतालीस सेकंड का कहर, भूकंप के दो झटकों ने कैसे सब कुछ मलबा बना दिया। अमेरिका ने भेजी रेस्क्यू टीमें, मौत के तांडव से कांप उठा वेनेजुएला। सात दशमलव दो और फिर 7.5 की तीव्रता के दो भूकंप ने वेनेजुएला में जैसे सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, और उसके बाद भी भूकंप के आकर शॉक्स आ रहे हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक अब तक 30 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसपास बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाही मची है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि अभी मरने वालों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वेनेजुएला में भूकंपों की एक डबलेट सीरीज आई। इसमें एक ही जगह पर लगभग एक ही तीव्रता के दो भूकंप बहुत कम समय के अंतराल पर आते हैं। इस मामले में 7.2 तीव्रता के भूकंप के ठीक 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इससे एक जटिल रप्चर इंट्रैक्शन प्रोसेस का संकेत मिलता है, यानी एक भूकंप पास ही दूसरे भूकंप को शुरू करने में मदद करता है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। करीब 50 लाख की आबादी वाला ये शहर तबाह हो गया है। कभी यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी इमारतें जमींदोज हो गई। जो बची है उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो रहने लायक ही नहीं रही। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया है कि साल 1900 के बाद, यानी पूरे 26 साल बाद, वेनेजुएला में इतना भयानक भूकंप आया है। इस विनाशकारी भूकंप का इतना ज्यादा खौफ हो गया है कि लोग खुले में रात बिता रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि और झटके आ सकते हैं या भूकंप की वजह से डैमेज हुई इमारत अचानक से गिर सकती है। कई लोग अपनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि अपने घरों को तब तक छोड़ दें जब तक कि नुकसान का अनुमान ना लगा लिया जाए। वहीं खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वेनेजुएला एक ऐसे जोन में आता है जिसमें समंदर के नीचे कैरेबियन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से मिलती है, इसीलिए वहाँ भयंकर भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले भी 1812 में मेरिडा और काराकास के शहरों में भयंकर भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान था। 1967 में भी काराकास में भयंकर भूकंप आया था जिसमें 240 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि वेनेजुएला इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में बड़ा हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा ले गए। अब अमेरिका दावा करता है कि वेनेजुएला की सरकार को वही चला रहे हैं। उन्होंने डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया हुआ है। वो धीरे धीरे वेनेजुएला को अपने पैरों पर खड़ा कर रही थी। वेनेजुएला में विदेशी तेल कंपनियों की एंट्री हो रही थी। अमेरिका भी धीरे धीरे अपने प्रतिबंध खत्म कर रहा था, और अचानक से कुदरत ने वेनेजुएला पर अपना सबसे खौफनाक कहर बरपा दिया।
1: वेनेजुएला में महागु भूकंप से मची महातबाही के बाद दुनिया के विभिन्न देश मदद के लिए आगे आए। हमारे देश भारत ने भी संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला के पीड़ितों के साथ खड़े होने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। डेल्सी ने पीएम मोदी की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मदद की पेशकश का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने हमारे देश में आए विनाशकारी भूकंपों के गंभीर प्रभावों पर संवेदना व्यक्त की, राहत कार्यों में मदद के लिए भारत की ओर से इच्छा जताई। भारत ने जो मुश्किल समय में एकजुटता दिखाई है वो हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप है।

0: वेनेजुएला ने ऐसी त्रासदी पहली बार नहीं देखी। इससे पहले भी कई बार भूकंप के जोरदार झटकों ने देश को गहरा सदमा दिया है। 1967 में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। तब वेनेजुएला में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस भूकंप में पालोस ग्रांडेस और अल्तामिरा इलाके में कई इमारतें जमींदोज हो गई थी। इस बार 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप से वेनेजुएला तबाह हुआ है। 7.5 तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। अब आपको बताते हैं कि इतनी तीव्रता वाले भूकंप का क्या असर हो सकता है। 7.5 तीव्रता का भूकंप 1967 में आए भूकंप से करीब 32 गुना ज्यादा ताकत से धरती को कंपाता है। नतीजा ये होता है कि मजबूत से मजबूत इमारतें, सड़कें और पुल पर गंभीर असर पड़ता है। USGS की माने तो दुनिया में ऐसे भूकंप हर साल औसतन 10 से 20 बार आते हैं, लेकिन अगर इनका केंद्र किसी बड़े शहर के पास हो तो भारी तबाही मचा सकते हैं। वेनेजुएला में यही हुआ है। वहां आए दो बड़े झटकों से बड़ी तबाही मची है। संकट की इस घड़ी में कई देशों ने मदद की पहल की है। भारत मदद को आगे आया है। अमेरिका ने भी मदद की बात कही है। मैक्सिको, पनामा, कतर, टर्की, कोलंबिया, ब्राजील, ब्रिटेन, क्यूबा, बारबाडोस और अन्य कई देशों ने मदद की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की त्रासदी पर संवेदना जताते हुए मुश्किल में साथ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस मुश्किल वक्त में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए भारत से NDRF की टीम जल्द रवाना हो सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की हालात पर नजर है। NDRF की एक विशेष टीम को वेनेजुएला भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। NDRF को तैयार रहने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: राम का नाम बदनाम ना करो, किसी भी आस्थावान हिंदू की भावना यही होती है, लेकिन चढ़ावा चोरी मामले की जितनी परतें खुल रही हैं, संदेह के उतने बादल घुमड़ रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया था? 23 जून को अयोध्या के डीएम कार्यालय को भेजी गई अयोध्या के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इंद्रकांत द्विवेदी की ये चिट्ठी देखिए। इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से अब तक की समस्त आय, व्यय, दान, बैंक खातों, भूमि क्रय विक्रय और संपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। चिट्ठी में साफ लिखा है कि सचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में SIT जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अयोध्या के BJP नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 12 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी जानकारियां मांगी थी, जिसे पीएमओ ने अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा। लेकिन अयोध्या जिला प्रशासन को पीएमओ को जवाब देने के लिए ट्रस्ट से क्या जवाब मिला, आपने जान लिया?
1: मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी, ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पर डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की SIT जांच चल रही है, इस नाते भी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते।
0: इन्हीं परिस्थितियों में अब ट्रस्ट को लेकर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोग भी उठाने लगे हैं। VHP ने मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बढ़ रही नाराजगी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात की गई है।
2: जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है, उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों की आस्था श्रद्धा, जिनने अपना दान दिया है, चंदा दिया है, उनकी भावना को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी तरह की उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।
0: चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बीच मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीनों पर जांच के लिए भी अब मांग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की है। संजय सिंह ने SIT को 11 फाइलों में उन 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी खरीद बिक्री को वो संदिग्ध बता रहे हैं।
3: भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं।
0: 2024 में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर करोड़ों भक्तों के अयोध्या कूच को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब उन्हीं भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ छल के आरोपों पर हंगामा।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
3: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा
4: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली हमारा फायदा उठा के गलत फायदा उठा के अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है
3: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है
5: ना मेरी शारीरिक बनतर उस बंदे ने मिलती है ना मेरा कद काठ मिलता है ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है वो वीडियो नू वायरल करके मैंने दोषी करार देता है
3: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं
6: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे
7: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं
8: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए
3: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंदो झा दिल्ली आज तक

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में 8 पर दर्ज हुई FIR, गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू। चंपत राय के ड्राइवर पर भी शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर प्रश्न, कहा बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की दी जा रही है बलि। 2027 के लिए यूपी बीजेपी का पुख्ता प्लान, प्रदेश संगठन की नई टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, अब 1500 की जगह आपको देने होंगे 2500 रुपए, तत्काल सेवा की फीस हुई 5000 रुपए, 1 जुलाई से नियम लागू। और भयानक भूकंप में वेनेजुएला में त्राहिमाम, 150 से अधिक की मौत की खबर, पीएम मोदी ने व्यक्त किया दुख, मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। केतन की मौत से 17 घंटे पहले सिया और चेतन के बीच एक आखिरी मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग पुणे के एक कैफे में हुई थी। 17 जून की शाम कुल 45 मिनट तक चली इस मीटिंग में ही केतन की मौत पर आखिरी मुहर लगाई गई। इस बीच सिया के माँ बाप ने पहली बार कैमरे पर आकर कहा है कि अगर सिया गुनहगार है तो उसे उसी किले पर ले जाकर वहां से धक्का देकर मार देना चाहिए। किसी मर्डर की प्लानिंग कैसे होती है, किसी कत्ल की साजिश कैसे बुनी जाती है, किसी मर्डर की साजिश को रचने के लिए साजिश में शामिल दो लोग आपस में क्या बात करते होंगे, कैसे बात करते होंगे, साजिश रचने के लिए वो कहां जाते होंगे, साजिश रचते वक्त उनके दिमाग में क्या चलता होगा, क्या साजिश रचने वालों के चेहरे से कुछ जाहिर होता होगा। आप में से ज्यादातर लोग अक्सर टीवी पर या अखबारों में ये पढ़ते देखते होंगे कि कातिल ने पहले कत्ल की साजिश रची फिर कत्ल किया, पर अब तक आप सिर्फ पढ़ते या सुनते ही आए होंगे। पहली बार आज आपको एक मर्डर की साजिश का लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपके अंदर जितने भी साजिशी सवाल कौंध रहे हैं, उम्मीद है उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अब से ठीक 17 घंटे बाद कत्ल करने जा रहे इन दो कातिल किरदारों से मिलते हैं। नीली टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर के साथ चप्पल में ये कोई और नहीं सिया है। सिया के ठीक पीछे पीछे धारीदार टी शर्ट, जीन्स और चप्पल में ये चेतन है। इन दो किरदारों से अब तक तो आप कहानी समझ ही चुके होंगे, तो चलिए अब कास्टिंग के बाद फिल्म और कहानी पर आते हैं। ये पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे है। अब सीसीटीवी कैमरे को चालू करता हूँ। तारीख ध्यान से देखिए, 17 जून लिखा है इस पर, साल 2026। अब वक्त पर भी नजर घुमा लीजिए। शाम के 4:32 और सेकंड चालू। ठीक यही वक्त था जब इस कैमरे में सबसे पहले सिया एंट्री मारती है। सिया से कुछ कदम पीछे कुछ पल के बाद चेतन कैफे में एंट्री मारता है। अब फ्रेम बदल चुका है। अब हम कैफे के अंदर हैं, सामने काउंटर है। सीन के हिसाब से कैफे के अंदर भी आगे आगे सिया पहले दाखिल होती है, फिर उसके पीछे पीछे चेतन। कैफे में 3 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। फ्रेम फिर बदलता है। अब चेतन काउंटर पर खड़ा है और उसके बराबर में सिया। चेतन मेन्यू कार्ड देखता है, रिया से कुछ पूछता है और फिर अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करता है। फ्रेम एक बार फिर बदला। अब दोनों काउंटर से बाहर की तरफ जाते नजर आते हैं। इस बार चेतन आगे आगे और सिया पीछे पीछे। जाहिर है सीन को एक बार फिर बदलना था। अब दोनों कैफे के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं। दोनों इधर उधर बैठने की जगह देखते हैं और फिर सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। कैफे में एंट्री से लेकर बाहर इस टेबल तक आने में दोनों करीब 4 का वक्त लेते हैं। अब ऑर्डर आने वाला है और प्लानिंग शुरू होने वाली है, प्लानिंग केतन के कत्ल की। कुछ देर में दोनों का ऑर्डर टेबल पर सर्व भी हो चुका है। अब यहीं से बातचीत शुरू होती है। बातचीत लंबी खींचती जाती है। इसी बातचीत के दौरान सिया अपनी चप्पल उतार दोनों पैर कुर्सी पर रख कर बैठ जाती है। बातचीत के दौरान चेतन अपनी कुर्सी खिसका कर सिया के और करीब चला जाता है। कुछ देर के लिए दोनों पीछे की तरफ भी मुड़ जाते हैं। फिर एक पल ऐसा आता है जब दोनों मोबाइल में झुक कर कुछ जरूरी चीज देखने लगते हैं। जानते हैं इस वक्त मोबाइल में ये दोनों क्या देख रहे हैं? YouTube पर लोहगढ़ किले का वीडियो, वही किला जहां केतन का कत्ल होना है। बातचीत कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी थी। दोनों को यहां बैठे अब करीब 45 मिनट होने वाले थे। लगता है अब साजिश पूरी हो चुकी है। इसी के बाद दोनों अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर बाहर निकलने लगते हैं। तभी उसी वक्त सिया के मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। वो फोन कान पर लगा ही कैफे के बाहर आ जाती है। तब घड़ी में शाम के 5:20 हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो तो है नहीं, तो फिर दोनों यहाँ केतन के कत्ल की साजिश रचने आए थे, ये कैसे पता? तो असल में पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान सिया और चेतन ने ही पुलिस को ये बताया था कि कत्ल से एक दिन पहले 17 जून की शाम वो इसी कैफे में आए थे और आखिरी प्लानिंग को यहीं अंजाम दिया था। उसी के बाद पुलिस इस कैफे तक पहुंची और ये तस्वीर सामने आई। हालांकि गुरुवार को पहली बार सिया के माँ बाप सामने आए। सिया के पिता ने जब से ये खबर सुनी है उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो एक अस्पताल में भर्ती है। सिया के माँ बाप ने कहा है कि अगर सिया सचमुच कातिल है तो उसे उसी किले पर ले जाकर वहां से धक्का दे देना चाहिए।
1: अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
2: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
3: देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी।
2: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
4: मैं आप माँ हो उसकी?
2: हाँ जी, अगर वो उसने ये
1: मैं तो बोलता हूँ
2: काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
4: हाँ जी,
1: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: रात का वक्त है, हाथों में टॉर्च लिए काफिला चला जा रहा है उसे कत्ल की तफ्तीश के लिए, जो इस वक्त देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि सब कुछ देखने सुनने पढ़ने के बाद भी हर कोई यही सोच रहा है कि 20 साल की एक लड़की के दिमाग में ऐसी सोच कहां से आ सकती है जो पेशेवर मुजरिमों को भी पीछे छोड़ दे। इस काफिले में पुणे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम शामिल है। लोहगढ़ किले की यही वो जगह है जहां पर केतन धक्का दिए जाने के बाद नीचे गिरा था। यहां चारों तरफ पेड़ और जंगल है। जिस जगह केतन गिरा था ठीक उसी जगह पर इस वक्त पुणे के एसपी और बाकी पुलिस वालों के साथ फॉरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है, साथ ही जरूरी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। नीचे इस जगह से आप उस ऊंचाई को भी देख सकते हैं जहां पर केतन खड़ा था, जहां से उसे गिराया गया था। बुधवार की शाम पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस जगह का दौरा किया। सबसे पहले उन लोगों ने उस जगह की पड़ताल की जहां से केतन की लाश मिली थी। 340 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से केतन के सिर से लेकर पैर तक अनगिनत चोटों के निशान थे। सिर जख्मी था और शरीर की हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी। खाई के इस निचले हिस्से की जांच करते करते अब शाम होने लगी थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को अब उस जगह पहुंचना था जहां से केतन को धक्का दिया गया था। चूंकि चढ़ाई काफी ज्यादा थी इसीलिए उस जगह तक पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था। अब शाम के अंधेरे में ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। दरअसल क्राइम सीन पर पहुंचकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को ये पता लगाना था कि केतन फिसल कर खाई में गिरा था या फिर उसे धक्का दिया गया। चूंकि रास्ता लंबा था लिहाजा हमारे रिपोर्टर ओमकार वाबले ने चलते चलते पुणे के एसपी संदीप सिंह गिल से बात की।
5: सर एग्जैक्टली फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, आप भी आ चुके हैं, किस तरीके की तहकीकात अभी शुरू है?
6: देखिए अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की पहानी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में। और वो प्रोसेस आयो ने की है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की पहाड़ी चल रही है।
0: असल में किसी के फिसल कर गिरने या धक्का देकर गिराने में फर्क होता है। अगर कोई फिसल कर खुद से गिरता है तो उसकी बॉडी नीचे बहुत दूर जाकर नहीं गिरेगी, पहाड़ी के दामन के आसपास ही गिरेगी। लेकिन अगर किसी को धक्का देकर गिराया जाता है तो वो पहाड़ी के दामन से कुछ दूर जाकर गिरेगा। इसीलिए पहले पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने उस जगह को देखा जहां से केतन की लाश मिली थी। इसके बाद अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहाड़ी की चोटी पर थी। यही वो जगह है जहां से सिया और चेतन ने केतन को धक्का दिया था। इस जगह पर आमतौर पर आने वाले लोग रुकते या बैठते नहीं है क्योंकि यहां ना कोई रेलिंग है ना ही कोई और सेफ्टी। खाई बिल्कुल मुहाने पर है, इसीलिए सिया ने इसी जगह को चुना था।
5: वारदात पे मौजूद है जहां से सिया ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। सबसे अहम बात यह है, इससे पहले अलग अलग टीमें यहां आ चुकी थी लेकिन अब खुद सुपरिटेंडेंट आ चुके हैं, वे फॉरेंसिक टीम के साथ यहां आ पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहां से कुछ एविडेंसेस है वो कलेक्ट करेंगे। इससे पहले जहां से जिस खाई में ढकेला गया था वहां से नीचे भी तहकीकात हुई है, उसके बाद अब सब लोहगढ़ के ऊपर ये जो टॉप है यहां सब आ चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या क्या हुआ, ये सबकी अब तहकीकात शुरू है। अभी तक 29 तारीख तक ये चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगी। वो अब क्या कहते हैं क्योंकि कन्फेशन शुरू है, उनके स्टेटमेंट लेना शुरू है और इंट्रोगेशन भी इस पूरे मामले में अब सामने आएगा।
0: दरअसल सिया को लगा कि इस जगह से केतन को धक्का देंगे तो किसी को शक नहीं होगा क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी जहां हादसे की बात पर कोई भी आसानी से यकीन कर लेगा। यहां तक कि खुद पुणे पुलिस ने भी शुरुआती 24 घंटे तक यही माना कि ये एक हादसा है, इसीलिए केतन की मौत को एक्सीडेंटल डेथ करार देकर उसी मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली थी।
7: शुरुआत में 18 जून को जब ये वारदात हुई उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ था और सब लोग एक्सीडेंट के तौर पे ही उस पर देख रहे थे। लेकिन जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वो प्री प्लान करके प्रॉपरली मर्डर किया हुआ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ। उस अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर करके दोनों एक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया है।
0: पुलिस के मुताबिक बाद में जब सीसीटीवी की तस्वीरें देखी गईं तो पहली बार शक हुआ। असल में केतन के साथ साथ चल रही सिया और पीछे पीछे चल रहा चेतन लगातार एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, इशारा कि कब चलना है, कब रुकना है, कहां रुकना है।
7: वो एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, लड़का और लड़की, कब रुकना है कब चलना है ये इशारे दे रहे थे, इसकी वजह से भी हमको डाउट बदल गया।
0: इस बीच चेतन के पिता ने दावा किया कि केतन को सिया ने अकेले ही धक्का दिया था। उनका कहना है कि जब केतन को सिया धक्का दे रही थी तब चेतन उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़ा था। चेतन के पिता ने ये भी दावा किया कि ये सब कुछ खुद चेतन ने पुलिस चौकी में सिया के सामने उनसे कहा था।
8: अब उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
9: किस तरह फंसा जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है?
8: क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं।
9: अच्छा,
8: चेतन ने उस हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था।
9: तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में?
8: हाँ, वो ऐसा चेतन बता
9: रहा था। लड़की के पास खड़ी थी लड़का, मैं आता हूँ आपके पास। अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे कि उस लड़के जो लड़का गिरा है उसके पास लड़की खड़ी थी।
8: हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने।
9: ओके,
8: ऐसा।
9: और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी।
8: हाँ,
9: धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं।
8: हाँ,
9: लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ।
8: हाँ, ऐसा।
9: चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि
8: चेतन एकदम सिंसियर लड़का है। वो मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है।
9: वो लड़की से जानते हैं?
8: वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है
9: ये सब आया मामला।
8: उसके बाद पहले अपने कुछ मालूम नहीं।
0: चेतन के पिता का ये भी कहना है कि उन्होंने सिया का नाम पहली बार थाने में ही सुना। वो या उनका परिवार कभी सिया से मिला ही नहीं, कभी चेतन ने सिया के बारे में कुछ बताया भी नहीं।
8: वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला।
9: लड़की के साथ में था उसके बारे में
8: उसको अपना को कुछ मालूम नहीं है,
9: कुछ नहीं बताया,
8: कुछ मालूम
10: नहीं, नहीं नहीं, इसके पहले भी था इनके साथ में रहता तो कभी देखता, हमने कभी देखा नहीं,
8: हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी ना तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौकी में देखा उसको लड़की को।
9: अच्छा
8: हाँ
9: आपने
10: हाँ।
9: अच्छा मुझे एक बात बताइए,
8: और उसका नाम भी सब कल ही मालूम पड़ा।
0: चेतन के चाचा ने इल्जाम लगाया है कि इस पूरे मामले में चेतन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसका केतन के कत्ल से कोई वास्ता नहीं है।
11: चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है, ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखा रहा जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर वन साइड दिखा रहे हैं, चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेतन एक स्पोर्ट्समैन और एकदम सीधा बंदा है, इधर मार्केट में कभी आज तक किसी का कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मारकूट कोई भी नहीं आ रहा हूं। और इधर रोज आता था बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम जाता था आता था, और उनका क्या संबंध था वो कुछ जो भी है वो हमारे को कुछ 1% भी हमारे को मालूम नहीं था। अच्छा। हमारे परिवार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि चेतन क्या उस लड़की के साथ है, हमारे को कोई मालूम नहीं था। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रहे।
9: अच्छा।
11: तो आगे उसमें चेतन का कोई रोल नहीं है, चेतन एकदम निर्दोष है।
0: कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक। इस बीच पुलिस हिरासत में सिया ने पूछताछ में बताया है कि उसके घर वालों ने केतन से उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी थी, वो ये शादी करना नहीं चाहती थी लेकिन घर वालों के डर से खामोश रही। हालांकि दूसरी तरफ पुणे पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान सिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसने ये भी माना है कि उसी ने केतन को धक्का दिया था। इस बीच पुलिस पूछताछ के दौरान सिया ने बताया कि वो केतन के साथ शादी करना नहीं चाहती थी, वो इस रिश्ते से पहले दिन से ही खुश नहीं थी, ये रिश्ता उसकी मर्जी के बिना उसके घर वालों ने तय कर दिया, उसने कई बार घर वालों से कहना भी चाहा लेकिन घर वाले इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो खामोश हो गई। ये सिया और केतन की सगाई और रोका के वक्त की तस्वीर है जो इसी साल फरवरी में हुई थी। हालांकि इन तस्वीरों से कहीं नहीं पता चलता कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। ये सिया और केतन की एक और तस्वीर है, शायद सिया के बर्थडे से पहले की, दोनों कार में। केतन सिया को पहले फूल देता है फिर अचानक कार का सनरूफ खोलता है, कार की छत को उसने सिया के लिए फूलों से सजा रखा था। पर अफसोस, जिस सिया की जिंदगी में केतन फूल ही फूल बिखेरना चाहता था, वही सिया शहर के एक कैफे में केतन की मौत के 15 घंटे पहले चेतन के साथ मिलकर उसकी मौत की आखिरी तैयारी की साजिश रच रही थी। इस तस्वीर के ठीक 15 घंटे बाद इसी ऊंचाई से केतन 340 फीट नीचे यहीं आकर गिरा था। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
13: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
14: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: Right field, and it will leave.
14: From the first pitch of the season to the stretch run.
15: And that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई थी उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इनमें से 2 गिरफ्तार हुए थे, 4 को हिरासत में लिया गया था, 2 को नहीं पकड़ा गया था, लेकिन अब 8 के 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 8ों जो हैं वो चंदा गिनने का काम करते थे, चंदे को बैंक में जमाने का काम करते थे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संतोष बताइए।
16: देखिए इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई, सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 8 नामजद आरोपी जो इस एफआईआर 90/2026 में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव, टिन्नू यादव को नामजद किया गया है। और जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही, सभी 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस अब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं गिरफ्तारी के उनको तैयार कर रही है। राम जन्मभूमि थाने के द्वारा इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल रिमांड मजिस्ट्रेट, कल मुहर्रम की छुट्टी है, जिसकी वजह से जो रिमांड मजिस्ट्रेट बैठेगी, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। उससे पहले श्रीराम अस्पताल में करीब 10 बजे इनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद इनको शाम करीब 4 बजे के लगभग रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। जी सर जी,
1: बहुत धन्यवाद संतोष। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हम रुक रहे हैं यहाँ कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
17: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like Pop

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: पूरा एक पुलिंदा लेकर के गए थे आप, तो ये जमीनें कैसी हैं? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये खरीदी गई, इसमें कहां गड़बड़ी हो गई?
2: एक ही बताता हूं आपको, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक जमीन है नजूल की जमीन, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को। एक जमीन है 92 लाख की, वो जमीन चंपत राय खरीद रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। एक जमीन है सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी की, उसी दिन उसी समय 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है। तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है, पूरा जम के चंदा चोरी की जा रही है। तो ऐसे करीब करीब 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं, जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे, ये जितने बेईमान हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 8 गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर भी शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का आरोप, सरकार की मंशा पर

0: यहीं करीब एक घंटे तक हत्या की साजिश रची थी। सीसीटीवी फुटेज में कॉफी की चुस्कियों के साथ सिया लोहगढ़ की तस्वीरें भी यूट्यूब पर दिखाती नजर आ रही है।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है, उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी, और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 31 को जब सिया केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ जा आई थी, तभी उसने रेकी की थी, कुछ प्लान फाइनलाइज किया था, और वारदात को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले यहीं एक घंटे की बैठक हुई और दोनों के बीच कॉफी के सिप लेते हुए ये साजिश रची गई।
0: खबरों की माने तो केतन की हत्या के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार किया गया था। प्लान ए में केतन को सिया ने धक्का दिया था, लेकिन केतन अच्छा ट्रैकर था, ऐसे में वो बच गया और सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाया, जिसके बाद प्लान बी के तहत केतन की हत्या हुई, जबकि प्लान सी में केतन को एक्सीडेंट के जरिए मारने की तैयारी थी। यानी किसी भी कीमत पर सिया केतन को जिंदा नहीं बख्शने वाली थी। पुलिस को सीसीटीवी में पता चला था कि लोहगढ़ में हुडी पहने युवक ने हाथ से इशारा किया, जिस पर सिया ने भी हल्का सा संकेत दिया। सिया ने योजना बनाई थी कि किले पर पहुंचने के बाद वो थकने का बहाना बनाकर बैठ जाएगी, इसे संकेत मानकर चेतन को धकेलना था। जांच में पता चला है कि जैसे ही सिया बैठी, चेतन भी रुक गया और उसी दौरान चेतन ने उसे धक्का देकर खाई में गिरा दिया। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
2: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के परिवार ने पहली बार कैमरे पर आकर अपना पक्ष रखा। बड़ी खबर यह है कि सिया के माता पिता ने आज तक से बातचीत में कहा कि 17 जून को जिस दिन केतन की मौत हुई, उस दिन लोहगढ़ के लिए जाने की जिद तो केतन ने ही की थी। सिया ने लोहगढ़ जाने से मना किया था। इतना ही नहीं, सिया के पापा मम्मी ने कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई गई तो उसे फांसी दे दी जाए या फिर उसे लोहगढ़ किले से खाई में धक्का दे दिया जाए।

0: केतन अग्रवाल की हत्या के बाद सबसे पहला नाम सामने आया वो था सिया गोयल का, और उसका कनेक्शन जोड़ा गया वो था चेतन चौधरी के साथ। इन दोनों के कुछ संबंध थे और इसी में से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो सिया के पापा यानी कि प्रवीण गोयल और उनकी माँ पूजा गोयल, एग्जैक्टली उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है उन्हीं से समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये गोयल और अग्रवाल ये कैसे मिले एक दूसरे को और ये रिश्ता कैसे फाइनलाइज हुआ?
1: हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था, तो हम गोवा गए थे। गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था, तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़के की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे, उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेणु मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे। तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे, जो भी है तो लड़का अच्छा है बढ़िया है वो हिसाब से आगे की बात करते हैं। तो इतनी बात होने के बाद अगले दिन जब वो पूना शादी अटेंड करके वापस आए, तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रेणु मित्तल का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए रिश्ता आया है, तो तेरी क्या इच्छा है? मैंने वही बोला कि अभी तो दीदी ये 19 साल की है और 20 की भी पूरी हुई नहीं है, और अभी तो मेरे को पहला शादी मेरे बेटे साहिल की करनी है, 3-4 साल बाद फिर देखेंगे सिया का। तो उन्होंने

0: मेरे पे, यानी कि बोला कि अच्छा खानदान है, अच्छी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो देख ले लड़की अच्छे घर में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे रिश्ते फिर कभी आते नहीं हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, जो भी आपकी भाभी पूजा से बात करके आज शाम को, फिर कल आपको बताता हूँ।
1: ओके तो मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ, मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
0: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
1: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं
0: पहचानते?
1: नहीं
0: थी, पहचानते नहीं।
1: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
2: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
1: हाँ।
2: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
0: हाँ।
2: उस टाइम पे ये मिले थे, उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद कोई उनका वो नहीं था। क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: तो मुझे पूछना है कि फिर चेतन की बात आई कैसे सामने? क्योंकि आपको तो बाद में पता चला होगा ये सब होने के बाद कि आपकी लड़की ने ये सब कुछ कर दिया है। मुझे पूछना है कि बाद में तो आपको ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हुआ है और चेतन इसमें साथ में है। तो
2: मुझे तो 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं उनका, कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था।
1: तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं इस तरीके से, अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं? क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में भी दोनों साथ में बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं था?
2: मुझे कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: तो आप बताइए ऐसा कितनी बार हुआ कि केतन अग्रवाल आपके घर पे आया है जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है?
0: केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है, तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में।
1: हाँ।
0: कि सिया का फोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से।
1: क्योंकि देखो अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे, सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था?
0: कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज की कोई बात नहीं है।
1: माँ से भी कभी बात नहीं की बेटी ने?
2: केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था, घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी, काफी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे उसने।
1: देखो क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी?
2: नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है।
1: अब तहकीकात में सामने आ रहा है कि सिया इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर थी, यानी कि आपकी लड़की ने बैठ के चेतन के साथ ये सब कुछ किया है। तो अग्रवाल्स ने आपके साथ इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं की, क्योंकि रिश्ता तो तय हो चुका था, फरवरी में एंगेजमेंट भी हो चुकी थी।
0: फरवरी में एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ, रिज कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, दोनों परिवार बहुत खुश थे। बीच में आना जाना, मिलना हमारी मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से, मैंने बहुत सारी बात की सब, यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था, जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया था कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके, मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया।
1: तो जब रिश्ता फाइनल हुआ, उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं?
2: हाँ, मुझे इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
1: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
2: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
1: जी,
0: और मैंने
2: केतन के साथ बात चालू थी सिया की, वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
1: तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे?
2: हाँ जी,
1: तब भी बताया
2: था, संडे था उसी,
1: परफेक्ट,
2: हाँ जी,
1: तब भी बताया था,
2: हाँ जी
1: जी। उसके बाद फिर 14 को गए, तब बताया था,
2: हाँ बता के गई थी,
1: और 17 को आई मीन 18 को जब जा रही, उसका 17 को आपको कॉल हुआ होगा?
0: कॉल हुआ था कि उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
1: जी,
0: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी, तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है, क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा, मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे, तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
1: ओके
2: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो,
1: ये मोबाइल में चैट है उसका,
2: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है, अपन और कहीं चलते हैं, तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
1: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
2: हैं? हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
1: ये चैट भी है मोबाइल में, अब तो पुलिस ने रिकॉर्ड
2: कर लिया। हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है,
0: और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
2: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी?
2: हाँ, तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो,
0: मैं
1: आप माँ हो उसकी,
2: हाँ जी, अगर वो उसने ये
0: मैं तो बोलता हूँ
2: काम किया है, हाँ। तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे?
1: हाँ जी,
0: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
3: केतन अग्रवाल की दर्दनाक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। केतन के बाबा ने आज तक से बातचीत में कहा कि सिया के परिवार ने बेटी की कम उम्र के बावजूद जल्दी शादी की जिद की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द केतन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
4: क्या बताना चाहोगे, आपका जो पोता है केतन अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो कभी लगा था कि कुछ अपने ही लोग ऐसे कर पाएंगे?
5: सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारे बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हुए बाद उनका वो क्या रहता है प्री शूटिंग के लिए वो बाली जाने वाले थे। बाली जाते टाइम भी उनका कुछ ऐसी चालाकी हुई कि ये लड़की मेरी पोती, पोता और उसका भाई लड़की का, ये चारों जा रहे थे, तो शायद वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, उसने मेरे पोते का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो टूर उनको कैंसिल करके वापस आना पड़ा। उसके बाद ये लोही किला है पे वो ले गई दूसरी बार, एक बार जाके आए फिर दूसरी बार वहीं ले गई। वहां जब ले गई तो इसने उसको थोड़ा ढकले जैसा महसूस हुआ, बच्चे को क्या है क्या है क्या है क्यों मेरे को ढकले रही, बोलता वो बोली यार सांप सांप सांप सांप बोल के एक्टिंग कर ली। उसको भी लगा होगा कुछ तो भी सांप होगा, नहीं तो कुछ तो निकल गया होगा, क्योंकि तो दिल में तो ये था ही ना, ना ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बाद फिर 18 तारीख को वापस से चले गए।
4: नहीं, लेकिन ये 14 तारीख का जो इंसिडेंट है वो आपको बताया था केतन ने उसके पापा को या फिर आपके घर में?
5: नहीं नहीं नहीं नहीं,
4: फिर ये इंसिडेंट किसने बताया आपको?
5: ये शायद किसने बताया, किसने बताया 14 तारीख का?
6: पुलिस स्टेटमेंट में बताया,
5: पुलिस स्टेटमेंट में लड़के के जवाब में आया ये कि भाई हम 14 तारीख को भी गए थे और 18 तारीख का तो वो टीवी में आ गया था, मतलब कैमरों में आ गया था कि लड़का इनका पीछा कर रहा था, कभी आगे था कभी पीछे था, जिससे पुलिस वहां तक पहुंची। और ऊपर ये चले गए, ऊपर गए बाद इसने कुछ उनके इशारे होंगे पता नहीं, लड़का जब ऐसा कर रहा था हमारा पोता तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी, शायद दोनों ने मिलके भी दिया हो, उन्होंने दे दिया।
3: मुंबई मेट्रो में एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run.
9: And that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी भरत के परिजनों से मिलने पहुंचे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी से सवाल पूछे, सवालों के जवाब मांगे कि आखिर पिस्टल फेंक दी थी तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। पीड़ित परिवार के कई ऐसे सवाल थे और हर सवाल पर एसपी साहब की चुप्पी थी, सिवाय इस जवाब के कि इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
1: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
0: पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सबका गुस्सा एक था, सबका सवाल एक था कि आखिर सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर क्यों किया। महापंचायत में शामिल लोग गुस्से में दिखे, उनका सवाल सरकार से था। लोगों ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए।
2: मर्डर किया गया है, जब कोई व्यक्ति हथियार के साथ समर्पण कर देता है, चाहे उग्रवादी हो आतंकवादी हो, देश की न्याय व्यवस्था कहती है किसी पुलिस कर्मियों को मर्डर करने का अधिकार नहीं है। मेरा सुरक्षा
0: कमर है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू होगी। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ सौ या हजार रुपए का नहीं बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेरा फेरी का दावा है तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्टधातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
3: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहां लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
2: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है। जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे हैं, तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो मामूल से जमी के ही पद चल जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा निकलो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। बड़ी खबर, श्रीराम मंदिर चंदा चोरी में जिन 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 4 हिरासत में थे और इन 6 के अलावा 2 बाहर थे, लेकिन अब सभी 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो लोग हैं जो अधिकतर चंदा गिना करते थे। संतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये क्या दर्शाता है?
1: ये साफ दर्शा रहा है कि इस मामले को लेकर नजर सभी की थी, बस SIT के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के बाद आनंद फानंद में FIR हुई। FIR होने के बाद जो 8 लोग नामजद थे, सबसे अहम बात कि इस पूरे मामले में जो 8 लोग नामजद हैं, ये जो नोट गिनने वाले, चढ़ावा को गिनने वाले लोग तो हैं ही, साथ ही इसमें व्यवस्थापक, आप जिसके ऊपर FIR हुई, रामशंकर यादव टिन्नू व्यवस्थापक है। आज तक से बातचीत में इसने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसकी भूमिका साफ हुई कि ये इसका लेना देना था चढ़ावा चोरी का, के पहले जो चढ़ावे का जो पूरा मैनेजमेंट था उसमें रामशंकर यादव टिन्नू इन्वॉल्व था, इसीलिए इसके ऊपर नामजद FIR हुई। और जिन जिन लोगों के ऊपर नामजद FIR हुई, ये सारे लोग SIT की जांच में भी इनका नाम आया, इसी वजह से FIR हुई और अब ये सभी 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका संतोष। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। देश और दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें, आइए आपको दिखाते हैं नॉनस्टॉप 100 में।

27 से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम की ये दूसरी सेशल्स यात्रा, इससे पहले 2015 में किया था दौरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल भी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे हिस्सा। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नई हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, अब 1500 की जगह आपको देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल की फीस हो गई है 5000 रुपए। 1 जुलाई से नया नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर AIMIM प्रमुख ओवैसी का केंद्र पर हमला। एक्स पर साझा पोस्ट में AI से बनाए गए बीजेपी नागरिकता कार्ड की तस्वीर दिखाई, कहा 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगा। नागरिकता पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा, बीजेपी के महासचिव BL संतोष का पलटवार, बोले तो फिर बिना आपत्ति के NRC कबूल कर लो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या थाने में 8 पर FIR दर्ज, SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय। श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत कई लोग शामिल, पुलिस ने गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में केस दर्ज किया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR के बाद से 2 आरोपी लवकुश और अनुकल्प मिश्रा गिरफ्तार, नोटों की गिनती करते थे। अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे, सुभाष, मनीष यादव को हिरासत में लिया गया। सुभाष काउंटिंग इंचार्ज के पद पर था। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट शिकायत मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, कहा बड़ों को बचाने के लिए छोटों की बलि। अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना, बीजेपी राज में हो रही है नाइंसाफी, SIT जांच पर भी उठाए सवाल। राम मंदिर मामले में FIR पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले चंपत राय से सब डरते हैं, उनका नाम FIR में नहीं है, वही मुख्य आरोपी है। यूपी बीजेपी का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान, नई टीम में पिछलों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले सप्ताह UCC हो सकता है लागू, CM शुभेंदु के नेतृत्व में पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान TMC नेता भोला सिंह का विरोध, आसनसोल अदालत में बीजेपी समर्थकों ने दिखाई चप्पल की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, स्थानीय राजनीतिक नेता संयम चौधरी पुलिस हिरासत में, कुल 30 गिरफ्तार। बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई, 19 घायल हैं, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। CM मान के विवादित वीडियो पर सैड, शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का दावा, CM मान की मास्क थ्योरी को नकारा। मजीठिया ने CM मास्क का सेल्फ गोल बताते हुए सवाल किया, यदि पहले ही दिन से मास्क की बात की थी तो गुरुग्राम की लैब रिपोर्ट फर्जी बनवाने की क्या जरूरत है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी, रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए CM मान से इस्तीफे की मांग की, बोले मान झूठ का नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए। मान मामले पर केजरीवाल बोले विवादित वीडियो का सच बाहर आया, फर्जी वीडियो मास्क लगाकर बनाया गया, पंजाब के लोग ED को नहीं करेंगे माफ। CM मान ने विवादित वीडियो को फर्जी कहा, मैं अकाल तख्त को चुनौती नहीं दे सकता, मुझे बदनाम करने की साजिश। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आगाज, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन, एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से अधिक देश। जयपुर में गिरफ्तार महिला के मामले में खुलासा, जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की थी योजना, 27 जून तक पुलिस कस्टडी में बबीता धाकड़ उर्फ खतीजा। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के दमन और हिंसा के खिलाफ POK में जोरदार विद्रोह, 17वें दिन सियालकोट में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे। उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी, पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। सांसद संजय पाटिल पर पत्रकारों को धमकी देने पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले इस्तीफा दें बागी सांसद संजय। महाराष्ट्र विधानसभा में UCC को लेकर बहस पर NCP की विधायक सना मलिक के बहुविवाह, पाकिस्तान का उल्लेख वाले बयान पर विवाद। विधायक सना मलिक के पाकिस्तान वाले बयान पर योगेश कदम बोले, धर्मग्रंथ के आधार पर नहीं बनते कानून।
पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में खुलासा, सामने आया साजिश का सीसीटीवी वीडियो, बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी सिया गोयल। पुणे हत्याकांड में सिया के माता पिता का बयान, हमने कई बार पूछा था, उसने कहा था केतन पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं करूंगी। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी रोशन सुवर्णा को अदालत ने 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के होटल्स रेस्टोरेंट्स को एफडीए के सख्त निर्देश, ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी, कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। तमिलनाडु को 300 नई बसों की सौगात, सीएम विजय ने बसों को हरी झंडी दिखाई। रांची में पारण परेड समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंता, नव प्रशिक्षित जवानों की पासिंग आउट परेड की ली सलामी। गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा को लेकर चर्चा। कर्नाटक के होसपेट में तुंग भद्रा बांध पर लगाए गए 33 नए स्पिलवे गेट्स का उद्घाटन, डीके शिव कुमार हुए शामिल। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। भारत में $48 मिलियन का निवेश करेगा अमेजॉन, 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, पहलगाम के बेस कैंप में मनोज सिन्हा ने निरीक्षण किया, समीक्षा की, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर पवित्र धारा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में मानसून में तेजी, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया अलर्ट, यह है येलो अलर्ट। जलगांव में भारी बारिश ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में और कई घरों में पानी घुसा। मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। वाशिम में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, वाहन चालकों को मुश्किल और परेशानी। अरुणाचल में बाढ़ भूस्खलन से तबाही, एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है वायुसेना। जेसीबी अन्य मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा, खराब मौसम के कारण आ रही हैं मुश्किलें। अरुणाचल के केपी पोन्योर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद आ गई बाढ़, प्राकृतिक आपदा की ड्रोन तस्वीरें सामने। कोलकाता के कई इलाकों में मानसून की शानदार बारिश, मौसम सुहाना, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। कोलकाता में आंधी बारिश का दौर, कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 40 फीट हवा में क्रेन पर लटकी गाड़ी से ब्लास्ट का वीडियो वायरल, 4 पर FIR दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर दो पक्षों में हंगामा, पत्थरबाजी मारपीट में 15 लोग घायल, 75 पर केस दर्ज। फिरोजपुर में नगर पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों तरफ से चली गोलियां, 2 घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक होटल में विकराल आग लगी, सारा सामान जलकर खाक हुआ, लाखों का नुकसान। तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में बंद पड़े पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट, कई लोग घायल। दिल्ली के महरौली में तोड़फोड़ के दौरान 3 मंजिला इमारत गिरी, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। लद्दाख में बड़ा हादसा, द्रास नदी में गिरी कार, हादसे में 1 की मौत, 3 लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। मेरठ में पति पत्नी में आपसी विवाद के बीच हंगामा, कार से कूदने लगी पत्नी के अपहरण का हो हल्ला। झारखंड के पलामू में PNB बैंक के प्रज्ञा केंद्र पर लूट की वारदात, पिस्टल के बल पर अपराधी 1 लाख रुपए लूट ले गए। भोपाल में समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश का विरोध करने पर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। बांका सदर अस्पताल में मरीज के परिजन डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट, तीमारदारों का डॉक्टर्स पर इलाज नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी, रिटायर्ड महिला को 37 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया, 1,58,00,000 रुपए लूटे। MP के अशोकनगर में कार में खून से लथपथ 2 शव मिले, युवक युवती के पास पिस्टल, कुल्हाड़ी, कटर सब मिला, आत्महत्या की आशंका। कोलकाता मेट्रो स्टेशन पर महिला ने प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ट्रैक पर लगा दी छलांग, यात्रियों GRPF की सूझबूझ से बची। झारखंड के कोडरमा में हाथियों का उत्पात, महिला को कुचलकर मार डाला, 12 से अधिक की अब तक मौत।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भीड़ ने युवक पर किया जानलेवा हमला, इलाके में हड़कंप। नासिक से वलसाड की ओर जा रही कार और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, पांच लोग घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चोरी करने पर युवक को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा, फिर गर्म तार से पैर जला दिए, चार पर हुई FIR दर्ज। राजगढ़ में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रही लड़की को मारी जोरदार टक्कर। राजस्थान के अलवर में चोरी कर भाग रहे तीन चोरों में से एक को लोगों ने दबोचा, भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। आज से भारत आयरलैंड की दो मैचों की T20 सीरीज, IPL 2026 के बाद मैन इन ब्लू की ये पहली T20 सीरीज। T20 सीरीज से पहले मैच के समय में हुआ एक घंटे का बदलाव, 28 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया समय। क्रिकेटर शिवम दुबे के जन्मदिन पर पत्नी अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर भावुक को प्यारा पोस्ट किया, जन्मदिन की बधाई दी। 18 वर्ष की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रचा इतिहास। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का का कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। आज बड़े पर्दे पर रिलीज होगी वेलकम सीरीज की तीसरी वेलकम टू द जंगल। कॉमेडी में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े कलाकार। OTT पर रिलीज हो रही है फिल्म राजा शिवाजी, रितेश देशमुख के लीड रोल और निर्देशन में बनी फिल्म में जिनेलिया देशमुख, संजय दत्त भी हैं। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन फिल्म का टाइटल रिलीज, मेकर्स ने फिल्म में अजय देवगन का चौहान के रूप में पहला लुक जारी किया। बड़े पर्दे पर फिर दिखेगी सर्किट और मुन्ना की सुपरहिट जोड़ी, राजकुमार हिरानी ने किया कंफर्म, मुन्ना भाई 3 पर काम जारी। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 34 साल और जश्न मनाया। दुनिया भर में जेट फ्यूल की भारी कमी के बीच ATF की महंगाई से एयरलाइंस की लागत में उछाल, मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा होगा। पश्चिम एशिया में तनाव, अलिनो के असर से सब्जियों के दाम में तेज उछाल, नींबू टमाटर कई सब्जियां महंगी, 15 से 60 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। वैश्विक बाजार में $4,000 प्रति ऑन्स के नीचे जाने से 7 महीने में सबसे सस्ता हुआ सोना, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में सख्त रुख के कारण सोना 3 साल की तेजी के बाद गिरना शुरू। जुलाई में 35,000 करोड़ रुपए के IPO बाजार में आने की संभावना, तेज हुई SBI, जेप्टो समेत कई बड़ी कंपनियों के लिस्ट होने की तैयारी, निवेशकों के लिए पैदा होंगे निवेश के अच्छे अवसर। सरकार के नए नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों के लिए यूजर सारा डेटा भारत में रखना अनिवार्य, डेटा के विदेश भेजने पर रोक लगने से लोगों की प्राइवेसी ज्यादा अधिक सुरक्षित। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में बफर जोन के एक हिस्से से पीछे हटी इसराइल की सेना। अमेरिका के विदेश मंत्री की हॉर्मुज ईरान के साथ समझौते पर दो टूक, कहा अमेरिका ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हॉर्मुज पर किसी एक देश का अधिकार। ईरान की IRGC का नया बयान बढ़ा सकता है हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों की चिंता, कहा ईरान को बिना हॉर्मुज में नए रास्ते पर जहाजों की आवाजाही मंजूर नहीं। रूस पर थम नहीं रहा यूक्रेन का ड्रोन हमला, रात 1 बजे रूसी नियंत्रण वाले शहर पर किया हमला, 3 की मौत। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद दी, 90 अरब यूरो के लोन की पहली किश्त यानी कि 3.2 अरब यूरो को जारी किया। रूसी सरकार ने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता की तारीफ की, कहा क्रेमलिन यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए ट्रंप के प्रयास की तारीफ। नेटो महासचिव ने कहा ट्रंप नेटो गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध, अमेरिका के सहयोगी देशों को रक्षा खर्च बढ़ाना होगा, ट्रंप ने पहले ही यह कहा था। अमेरिका द्वारा चीन की टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से भड़का चीन, सैन्य ड्रोन बनाने वाली दुर्लभ खनिजों के खनन से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों पर लगा दिया प्रतिबंध। वेनेजुएला में तूफान से बढ़ा मौतों का आंकड़ा, 160 से अधिक की मौत, 950 से अधिक घायल। दक्षिण ताइवान में तूफान, भारी बारिश के बाद बाढ़, स्कूल ऑफिस को प्रशासन ने बंद किया।

अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उज्जैन से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो पूरे देश को परेशान कर सकती हैं। यहां मुहर्रम के जुलूस में एक ट्रेन की मदद से गाड़ी को हवा में लटकाया गया और फिर उसमें एक भयानक ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट से ठीक पहले दो लड़के धार्मिक झंडे लेकर गाड़ी पर चढ़े। इस गाड़ी पर लिखा था ले फिर आ गए। वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सवाल यह है कि क्या इस हरकत के पीछे कोई कट्टर मानसिकता है, क्या ये लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का सबसे बड़ा सबसे पक्का सबूत मानते हैं तो आप जान लें कि पासपोर्ट आपको नागरिकता की परीक्षा में पास नहीं करा सकता। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा करने का एक जरिया है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, यहां तक कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अकेले ये साबित नहीं कर सकता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर कोई पूछ ले कि अपनी नागरिकता साबित करें तो कैसे साबित करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय जब राम मंदिर ट्रस्ट से उसकी आय, खर्च और जमीनों की खरीद का पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगता है तो ट्रस्ट ने पीएमओ को ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि एसआईटी जांच चलने तक वो ये डेटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो ये इनकार क्यों। और आखिर में आपको बताएंगे कि आपकी आत्मनिर्भर थाली कितनी स्वदेशी है, जिसे आप अपनी शुद्ध देसी थाली समझकर बड़े चाव से खा रहे हैं वो असल में धीरे धीरे विदेशी होती जा रही है। आपकी थाली में परोसी जाने वाली दाल से लेकर सब्जी पकने वाले तेल सब अब विदेशी आयात के भरोसे हैं। यहां तक कि फसलों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला खाद भी विदेशी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर में नामजद आरोपियों की संख्या 8 है। इनमें करुणेश पांडे, अविनाश, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र का नाम शामिल है। इनमें लवकुश मिश्रा वही आरोपी है जिसके घर से शुरुआत में पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और जिसकी नौकरी की सिफारिश ट्रस्ट के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा ने खुद की थी। मुख्य रूप से इस एफआईआर में उन्हीं लोगों के नाम है जिन्हें सीसीटीवी कैमरों में चढ़ावे की चोरी करते हुए पकड़ा गया और जिनके खिलाफ चोरी में मदद करने के सबूत मिले। बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रस्ट के किसी भी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें धारा 306 है, धारा 316(5) है, धारा 317(4) है, धारा 317(5) है और धारा 61 है। इनमें धारा 306 मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी से संबंधित है। इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 316 आपराधिक विश्वासघात के लिए है और इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 317(4) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या विश्वास करने का कारण रखते हुए आदतन ऐसी संपत्ति को प्राप्त करता है या उसका लेन देन करता है जो चोरी की है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद ये एफआईआर तब दर्ज हुई है जब लगातार सवाल उठते रहे थे कि आखिर बिना एफआईआर ही जांच क्यों हो रही है। खबर यह है कि जिस पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर ही सवाल है, उसी ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब सवाल यह है कि इसमें बड़े लोगों का नाम है या फिर कुछ मोहरों पर एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

0: एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आखिर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर राम जन्मभूमि थाने में 8 लोग नामजद किए गए और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जो नामजद किए गए उसमें प्रमुख नाम रामशंकर यादव, टिन्नू यादव के अलावा लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, करीब 8 नामजद किए गए हैं और इनमें से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तमाम नाम ऐसे हैं जो इसमें न सिर्फ नोटों की गिनने की प्रक्रिया में थे बल्कि वो इंचार्ज भी थे जिनकी निगरानी में ये नोटों की गिनती होती थी और चढ़ावा चोरी हुआ है। फिलहाल इस मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।
1: जो श्री कृष्ण मोहन सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि के, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और जिसमें ये संतुष्टि की गई है कि दान चोरी में जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में बेहद सख्त संतुष्टि थी और ये साफ कहा गया कि इसमें जिस तरीके से दान चोरी वाला मामला आया है उसके तहत ही ये पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। मैंने आपको जो धाराएं बताई जिसमें अगर आप बात करिए 306, 316, 317 और 61 के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर इसमें मान के चलिए कि गिरफ्तारियां होनी है।
2: इसमें एक जो बात सामने आई है वो ये कि इसमें शायद जो बड़े नाम हैं, जो ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हैं, उनके नाम एफआईआर में शामिल नहीं होंगे। जो नीचे के कर्मचारी हैं, खासकर जो चंदा चढ़ावा का जो चंदा आता है जिसके गिनने के कर्मचारी हैं, उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 से 6 लोगों पर एफआईआर होगी लेकिन अभी नाम सामने नहीं है, जल्द ही ये नाम भी सामने आएंगे। और चोरी धोखाधड़ी ऐसे तमाम जो जो जो चार्जेज हैं उसमें एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई है। अब नेचुरल है जब सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट दी गई है उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई है।
3: 6 से 7 लोग लगातार कस्टडी में लिए गए जिनसे जानकारी जुटाई जा रही थी और जिनसे रिकवरी भी हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी उनको शुरुआत में एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी तो एसआईटी ने जो संस्तुति की उसके बाद अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई इसमें इतना रकम चुरा रहे थे तो किसकी जानकारी में थे, किसकी कैसे बचते थे, कभी कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो किसने बचाया, कैसे बचाया।
4: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार क्यों कर दिया। आप सही सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है उसने राम मंदिर के ट्रस्ट से सभी तरह की वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। ये जानकारी आई कि जब एक बीजेपी के नेता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, उसको कहा गया कि ये ब्यौरा हासिल किया जाए। जब जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से जानकारी मांगी तो ट्रस्ट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मंदिर ट्रस्ट ने यह कह दिया कि वो इस जानकारी को प्रधानमंत्री के दफ्तर के साथ साझा नहीं कर सकता और एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने दूसरी जो जांच चल रही है इस वजह से हमने जानकारी नहीं दी है, लेकिन मामला गंभीर है। यह पूरा मामला बीजेपी नेता, जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टर रजनीश सिंह की उन चिट्ठियों से शुरू होता है जो उन्होंने पीएम को लिखी थी, प्रधानमंत्री को। इन चिट्ठियों में उन्होंने ये मांग की कि राम मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर जितना भी अभी तक का मामला है वो सब जो आरोप है उनकी निष्पक्ष जांच हो, जांच भी सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जाए, अगर गड़बड़ी के आरोप सही निकलते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर आरोप निराधार है तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि राम भक्तों का भरोसा मंदिर ट्रस्ट पर बना रहे। इसी शिकायत में सबसे बड़ा संदेह जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जताया गया था और यह शिकायत सीधे पीएमओ को भेजी गई। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया और इसके लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। पीएमओ से निर्देश मिलने के बाद अयोध्या के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क किया। पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट को यह बताया कि पीएमओ में हुई शिकायत के आधार पर उन्हें मंदिर की आय का खर्च का पूरा ब्यौरा देना है। यह भी बताना है कि चढ़ावे की कुल राशि और उसके प्रबंधन की व्यवस्था कैसे होती थी, ऑडिट रिपोर्ट का विवरण क्या है, मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जितनी भी जमीनें खरीदी गई उनके संबंध में क्या जानकारी है, और इन आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट का आधिकारिक पक्ष क्या है। अब यहां ये बात याद रखिएगा कि ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय मांग रहा था, लेकिन जब एडीएम ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इसके लिए पत्र लिखा तो उन्होंने पीएमओ के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ये वित्तीय ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया। ये कहा कि मामले की जांच पहले से एसआईटी द्वारा की जा रही है और ऐसे में जांच पूरी होने तक वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से यह भी कहा कि जरूरी होने पर वो ये जानकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सार्वजनिक या प्रशासनिक स्तर पर इसे साझा नहीं करेंगे। अब मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार किया तो इस पर बवाल मचा। इससे ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या मंदिर ट्रस्ट पीएमओ की अपील को खारिज कर सकता है। अगर कानूनी रूप से देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी विषय में सरकार जिला प्रशासन से सूचना मांगे, लेकिन जिस संस्था व्यक्ति संगठन या ट्रस्ट से ये सूचना हासिल की जानी होती है वो इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता। यानी अगर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले से चंपत राय ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने से इनकार कर दिया तो कानूनी रूप से यह अवैध नहीं है। कानूनी रूप से मंदिर ट्रस्ट वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यहां सवाल नैतिकता का है, यहां सवाल लोगों के भरोसे का है। भरोसे का इसलिए है क्योंकि इसमें मंदिर ट्रस्ट से यह भी पूछा गया था कि उसने किन जमीनों को कब खरीदा, उनके लिए कितना भुगतान हुआ। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मंदिर ट्रस्ट पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि उसने सस्ती जमीनें ज्यादा कीमतों पर खरीदी। जैसे 2021 के मामले में मंदिर ट्रस्ट पर यह आरोप लगा कि जो जमीन कुछ लोगों ने 2 करोड़ के राजीनामे में खरीदी थी उसी जमीन को मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे देकर खरीदा। इन आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है और मंदिर ट्रस्ट भी इन्हें खारिज करता है, लेकिन जब पीएमओ इसका सच जानने के लिए मंदिर ट्रस्ट से वित्तीय ब्यौरा मांग रहा था तो चंपत राय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि जो मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंदिर की जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बदलने पर काम किया जाएगा। पहले सुनिए।
5: हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, जो अपेक्षित निर्णय है जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय वो भी लिए जाएंगे, लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जन भावना को चोट नहीं आने देंगे। ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वहां घटनाक्रम हुआ है जिसमें धन की चोरी या अन्य अन्य चीजें सामने आई है उसमें कितना ही बड़ा हो, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या अन्य सामान्य कर्मचारी हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई के लिए दोषी सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचाएगा नहीं। नंबर दो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके उसके लिए व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन करना है उसका भी चिंतन मंथन होकर कार्रवाई होने का काम होगा। कुछ चीजें लागू हो भी गई हैं और आगे जो भी सुधारात्मक काम होने हैं वो भी पूरी तरह निर्णय लेने के काम होंगे।
4: आइए आपको बताते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें पूरे देश को परेशान कर सकती हैं। आज महाकाल की नगरी उज्जैन जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक नहीं बल्कि कई धमाके किए गए। यहां धमाकों का मतलब पटाखों की आतिशबाजी से नहीं है, पटाखों की आतिशबाजी तो हर धर्म के त्योहार में होती है, लेकिन इस मामले में एक गाड़ी को क्रेन की मदद से हवा में लटकाकर उसमें बड़ा विस्फोट किया गया। और सिर्फ विस्फोट नहीं किया गया, 2 लोग इससे पहले धार्मिक झंडे लेकर इस गाड़ी के ऊपर चढ़े। इस गाड़ी के आगे यह लिखा गया कि ले फिर आ गया। मुहर्रम के जुलूस में एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट करना और उस गाड़ी के ऊपर इस तरह का संदेश लिखना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर स्थानीय पुलिस खुद हैरान है, जिसने इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। देखिए।

इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए या फिर ऐसे ब्लास्ट करके लोगों के मन में डर एक असहजता पैदा करने का होना चाहिए। और यह भी सोचिए कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट किया गया उस पर यह क्यों लिखा था कि ले फिर आ गए। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में धार्मिक जुलूस केवल एक समुदाय का कार्यक्रम नहीं होता बल्कि दूसरे जो उन्हें दूसरे समुदायों के लोग भी देखते हैं, इसीलिए ऐसे आयोजनों में संवेदनशीलता सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा और बढ़ जाती है। पुलिस के मुताबिक ये मामला उज्जैन में बड़नगर के अडान मोहल्ले का है जहां जुलूस की तो अनुमति ली गई थी लेकिन इन जुलूसों में गाड़ी के अंदर विस्फोट करने की इजाजत नहीं ली गई थी। और ये मामला भी तब बाहर आया जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके वीडियोज अपलोड किए गए और जब इनकी जांच हुई तो पुलिस ने शोएब नाम के लड़के और जिस व्यक्ति ने इस कार को लटकाने के लिए क्रेन मुहैया कराई थी उसके मालिक गोपाल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को ध्यान से देखें और ये सोचें कि क्या ये आपको कहीं से भी एक धार्मिक जुलूस लग रहा है।

0: अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गाड़ी या दूसरी चीजों में ऐसा क्या भरा गया था जिससे ये धमाका हुआ। पुलिस ये भी कह रही है कि इस इलाके में मुहर्रम के मौके पर कई तरह के जुलूस निकाले जाते हैं जिनके लिए लोगों का ध्यान खींचा जाता है, और इसी प्रतियोगिता में कई बार अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसमें एक ऐसा प्रतीकात्मक कार ब्लास्ट दिखाया गया जैसा आतंकवादी करते हैं, और इसमें भी धमाका करने से पहले गाड़ी में ये लिखा गया कि ले फिर आ गए। हमें लगता है कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि ये मामला एक बड़े सामाजिक प्रश्न का है और इन लोगों की सोच का भी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो आम लोग थे वही ये आयोजन कर रहे थे, वही सड़कों पर निकले थे। अगर किसी आयोजन में विस्फोट या हिंसा जैसे प्रतीकों का प्रदर्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर एक बहस, चिंता सब पैदा होती है। आप खुद भी सोचिए कि आखिर मुहर्रम के जुलूस में इस तरह से अलग अलग विस्फोट करके क्या बताया जा रहा है, और इस जुलूस में मौजूद जो बच्चे इसे देख रहे हैं उन पर इसका क्या असर होगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, वेनेजुएला में भूकंप से मची वो तबाही दिखाते हैं जिसमें कई लोगों की जान ले ली है। आज हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला की आर्थिक तंगहाली ने कैसे इस भूकंप को ज्यादा विनाशकारी बनाया है, और अगर भारत में कभी इतना शक्तिशाली भूकंप आता है तो क्या हमारी सरकारों ने और हमारे देश ने उसके लिए तैयारी की है। पहले देखिए,
1: ya va, por aquí ven.

0: वेनेजुएला में भूकंप से हुई इस तबाही का एक बड़ा कारण वहां के आर्थिक हालात हैं। साल 2015 के बाद जब वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया तब वहां बड़े बड़े पुल, स्कूल, अस्पताल और दूसरे निर्माण कार्य बीच में ही ठप हो गए। 2 जून 2017 टीआरटी वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट प्रसारित की जिसमें यह दिखाया गया कि वेनेजुएला के कैराकास शहर में पैसों की कमी के कारण कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। कई शहरों में निर्माणाधीन इमारतें, पुल और ढांचे साफ साफ नजर आने लगे और जो लोग दो वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे वही लोग अपने पुराने घरों और इमारतों की मरम्मत नहीं कर पाए और यही कमजोर इमारतें आज इस शक्तिशाली भूकंप के लिए आसान निशाना बनी और वेनेजुएला में ऐसी तबाही आई कि अब भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां 10,000 लोगों की मौत और $100 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगा रही हैं। यहां यह भी देखना होगा कि क्या हमारा देश भारत ऐसे शक्तिशाली भूकंपों का सामना करने के लिए तैयार है। सिर्फ पिछले महीने हमारे देश में 125 और हर दिन 4 भूकंप दर्ज हुए जिनमें सबसे ज्यादा 25 भूकंप असम में आए, 19 महाराष्ट्र में आए, 17 भूकंप अरुणाचल प्रदेश में, 11 भूकंप मणिपुर में। यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत के 59% भूभाग को भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना गया है। स्थिति यह है कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की 60% इमारतें वेनेजुएला जैसे ताकतवर भूकंप को सहन नहीं कर सकती। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो हाईकोर्ट में नगर निगम ने बताया था कि 80% इमारतें और घर भूकंप के दौरान सुरक्षित नहीं होंगे और कारण यही है हमारे देश में भूकंप रोधी जो इमारतें हैं वो कम बनती हैं। ऐसी इमारतें जो कि भूकंप का जिन पर असर ना हो उन्हें भूकंप रोधी इमारतें कहते हैं, ऐसी इमारतें नहीं बनती और निर्माण कार्य में रिश्वतखोरी ज्यादा होती है। इसीलिए आज हमें वेनेजुएला से सीख लेनी होगी और इसीलिए ये मुद्दा हम बढ़ चढ़ कर ब्लैक एंड व्हाइट में उठा रहे हैं क्योंकि खुद को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए अगर हमें तैयार करना है तो कदम उठाने होंगे। अब आइए आपको ये बताते हैं कि अगर पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आपकी भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होगी और ये कैसा पता चलेगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। 24 जून को भारतीय पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है यानी यात्रा का एक दस्तावेज है जिसे किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर कई लोग हैरान हुए। इस हैरानी का कारण यह था कि अब तक आम धारणा यही रही है कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। अब यह धारणा इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कई सारी दस्तावेज दिखाने होते हैं और ऐसा नहीं है कि इन दस्तावेजों के जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है और यही कारण है कि जब विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं तो उस पर कई नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता साबित करने के तरीकों को सीमित किया जा रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अब वही भारतीय नागरिक कहलाएगा जिसने बीजेपी की सदस्यता ली होगी। ये सारी बातें राजनीति करने के लिए ठीक हो सकती हैं लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस नियम में मौजूदा सरकार ने क्या कोई बदलाव किया है। पिछली सरकार में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण या आधार नहीं माना गया। सरकार ही नहीं, अलग अलग हाईकोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिनमें किसी एक दस्तावेज या पहचान पत्र को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया और इसीलिए यह सामने आ रहा है कि यह पहले से चल रहा था। ये कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2)(a) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकती है जो भारत का नागरिक ना हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। अब इसी आधार पर बार बार ये पूछा जाता है कि जब पासपोर्ट जारी ही नागरिकता के आधार पर होता है तो फिर क्यों इसे नागरिकता का सबूत क्यों ना माना जाए। हालांकि यहां सरकार का पक्ष क्या है आपको बताते हैं। सरकार कहती है कि पासपोर्ट कई बार गलत जानकारी के आधार पर जारी हो सकता है जिसके कारण से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए पिछले साल कुल 1,39,00,000 पासपोर्ट जारी हुए, करीब 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट सेवाएं मिली। ये संख्या इतनी विशाल है कि इतने लोगों की नागरिकता की पूर्ण और अंतिम जांच करना पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण वो पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानती। दूसरा, पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, अदालतों के पास होता है, और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और यही कारण भी है कि सरकार का जो पासपोर्ट मैनुअल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। अब इससे यह सवाल भी पैदा होता है कि हम आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता का सबूत माने। उदाहरण के लिए, अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो यह सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन यह भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड दिखाएंगे तो कहेंगे राशन कार्ड दिखाएंगे तो यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इसे भी आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब एक नारा प्रदर्शनकारियों के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। वो नारा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, आज अगर कागज दिखाना भी पड़ा तो नागरिकता के लिए कौन सा कागज दिखाना है? क्योंकि कोई एक कागज हमारे देश में ऐसा है ही नहीं जो हमारी नागरिकता को साबित कर दे। आप जरा आप ये देखिए कि इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून इस पर क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब आर्टिकल 5, 6, 7 भारतीय नागरिकता का उल्लेख करते थे। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या फिर माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सरल मतलब यह था कि आपके माता पिता कौन है, विदेशी है या नहीं, ये नागरिकता के लिए मायने नहीं रखता था। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर जन्म के आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी और इसे जस सोली का कानूनी सिद्धांत कहते थे। अब यह व्यवस्था आपके दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। इसमें यह तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं होगा, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे और कई बार ऐसा होता था कि अवैध प्रवासी यहां जिस बच्चे को जन्म देते थे वो भारत का नागरिक बन जाता था। यही देखते हुए सरकार ने तय किया कि माता पिता में से किसी एक का इस देश में जन्म लेना जरूरी है। अब यह व्यवस्था साल 2004 तक चली, लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक और संशोधन हुआ और यह आज तक जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं और आपके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी होता है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को जस सैंग्विनिस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों को की नागरिकता उनके माता पिता की नागरिकता से तय की जाती है। वैसे यहाँ पासपोर्ट को लेकर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, सच यह है कि साल 2023 तक हमारे देश में 9 करोड़ 26 लाख लोगों के पास ही पासपोर्ट था, यानी देश की सिर्फ 6.61 लगभग 6.5% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। 93% आबादी के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है। इनमें भी पासपोर्ट वाले केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो विदेश यात्राओं पर गए। 9 करोड़ 26 लाख लोगों में से करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश यात्रा पर नहीं गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनाकर अपने घर पर रखा है। यहां आपको दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की यह रैंकिंग भी देखनी चाहिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले इस रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर होता था, यानी उस वक्त की रैंकिंग में और मौजूदा रैंकिंग में आप देख रहे हैं 6 अंकों की गिरावट है। अब हमारे देश में यह पूरा मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, जबकि बात पूरी तरह गलत है। दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सामान्य रूप से नागरिकता का कार्ड मान लिया जाता है, लेकिन हकीकत में कानूनी रूप से ज्यादातर देश कभी भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। मुख्य रूप से दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सिटीजनशिप कार्ड माना गया है, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में पासपोर्ट को नागरिकता कार्ड के बराबर माना गया है, लेकिन बाकी देशों में, ज्यादातर देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। यहां तक कि जो सिंगापुर पासपोर्ट रैंकिंग में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, सिंगापुर, वहां भी पासपोर्ट को नागरिकता का कार्ड नहीं माना गया है। और अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस विवादित और आपत्तिजनक वीडियो के मामले में सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त साहिब के सामने खुद को बेकसूर बताया था, जिस फोरेंसिक रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही की सबसे बड़ी ढाल बनाया था, अब वही फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी और फिक्स्ड बताई जा रही है।
1: हरियाणा पुलिस के खुलासों ने न सिर्फ भगवंत मान की राजनीतिक साख बल्कि पंजाब पुलिस के आला अफसरों को भी सीधे सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला सिख गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार वाले एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को लेकर सीएम भगवंत मान अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे और खुद को पूरी तरह पाक साफ बताया था।
2: ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
1: बाद में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स भगवंत मान नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेअदबी वाले इस वीडियो से अलग साबित करने के लिए जिस लैब रिपोर्ट का सहारा लिया गया उसे हर तरह से गलत, भ्रामक और मनगढ़ंत बताया जा रहा है।
3: कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
1: आरोप है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के एक 5-स्टार होटल में इस फर्जी रिपोर्ट को बनवाने के लिए बाकायदा एक सीक्रेट डील की थी। इसके लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है जिसका नाम इस रिपोर्ट को तैयार करने में सामने आया था। जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का यह फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले में मुख्य शिकायतकर्ता बन गया है। जसप्रीत का दावा है कि 15 जून को उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें सामने वाले ने खुद को पंजाब का एसपी बताते हुए एक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया। इस पर जस्सी ने कहा कि वो ऑडियो वीडियो का नहीं बल्कि लिखित दस्तावेजों का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन उससे कहा गया कि उसे बस काम करना है और इसके बदले उसे अच्छी रकम मिली।
4: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन बिल बोल रहा हूँ, तो कृपया से करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में। हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप एक रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं कर रहे।
1: जसप्रीत का दावा है कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में उसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे। जसप्रीत ने साफ कहा कि उस पर भारी दबाव बनाया गया और धमकी दी गई ताकि वो मुख्यमंत्री के वीडियो को लेकर उनके मन मुताबिक एक खास रिपोर्ट तैयार कर। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस फर्जी रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त साहिब जैसी धार्मिक संस्था के खिलाफ किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने इस होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस की जांच और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। पंजाब पुलिस के दबाव में आने के बाद जसप्रीत ने अरुण और अंकित नाम के दो साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर साइबर यान और साइबर सेंटिनल नाम की दो कथित साइबर लैब्स के लेटर हेड पर जाली रिपोर्ट तैयार कर दी। दिल्ली और जींद के पते पर दिखाई गई ये लैब्स पूरी तरह अवैध थी, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने अंकित और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
5: अरुण नाम के व्यक्ति ने साइबर यान के नाम से फेक रिपोर्ट बना के दी और अंकित नाम के व्यक्ति ने साइबर सेंटिनल नाम से रिपोर्ट जो कि फेक थी वो बना के दी, जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है।
1: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने और पुलिस अफसरों की संलिप्तता के इन गंभीर दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है।
2: तो बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लग गया है नंबर 3 ते, क्योंकि इहदे च अखां नहीं लग सकदियां, मास्क तां बन जांदा है, अखां नहीं बनदियां, तां फिर उहने ऐनक लई है काली ताकि अखां लुक जाण, होटल दा कमरा है।
1: अब बीजेपी और कांग्रेस सीएम भगवंत मान पर हमलावर हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
6: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इहदे असीं इस्तीफे दी मांग करदे हैं।
7: क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
1: एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज, दो गिरफ्तार आरोपी और खुद मुख्य गवाह का बयान पंजाब पुलिस के अधिकारी और भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि सिख गुरुओं के अपमान से जुड़ा कथित वीडियो वाकई नकली था तो उसके लिए एक अवैध लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब हम पारंपरिक भारतीय थाली की बात करेंगे, जिसकी आत्मनिर्भरता अब खत्म हो रही है। भारतीय थाली अब धीरे धीरे विदेशी थाली बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी थाली में विदेशी व्यंजन बढ़ रहे हैं, बल्कि बात यह है कि भारतीय व्यंजन कहीं जाने वाली चीजें अब विदेशी आयात पर निर्भर होती जा रही हैं। एक सामान्य भारतीय थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही जैसी चीजें होती हैं। कहने के लिए ये सभी चीजें पारंपरिक थाली से जुड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे इन चीजों को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं, धान, सब्जियों की पैदावार अच्छी हो इसके लिए खाद जरूरी है और खाद के लिए विदेशी आयात पर निर्भर हो रहे हैं। वैश्विक कारणों से खाद या खाद बनाने से जुड़े कच्चे माल का आयात रुकते ही स्थिति बिगड़ने लगती है। आपकी थाली में जो दाल है वो बनी रहे इसके लिए उसका भी विदेशी आयात बढ़ता जा रहा है। यानी हम दालों के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हो रहे हैं, निर्भरता बढ़ रही है, हमारा उत्पादन हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। सब्जियां जिस तेल में पक रही हैं वो भी ज्यादातर विदेशों से आ रही हैं। तेल देश में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का 56% हिस्सा विदेशों से आयात कर रहे हैं।
1: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम ही हैं और हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें दाल आयात करनी पड़ती है। अब हम आपको साल 2020-21 से 2024-25 के बीच दालों की मांग, उसका उत्पादन और आयात पर बढ़ रही हमारी निर्भरता का एक ग्राफ दिखाते हैं। 2020-21 में दालों की घरेलू मांग 277 लाख टन थी और उस वक्त हमारा उत्पादन 254 लाख टन था। घरेलू जरूरत पूरा करने के लिए करीब 25 लाख टन दाल आयात की गई थी और इसके अगले 5 वर्षों में यानी 2024-25 तक दालों का आयात 73 लाख टन तक पहुंच गया। आयात बढ़ने का सीधा अर्थ है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ भी बढ़ाना पड़ा। दालों के आयात पर साल 2020-21 में भारत ने 11,937 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अगले पांच वर्षों में करीब चार गुना बढ़कर 46,428 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और अन्य दालों के हिसाब से हमारी निर्भरता अलग अलग देशों पर हो गई है, जिनमें रशिया, कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार शामिल है। यानी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए हम मजबूरन दूसरे देशों पर निर्भर हैं। बावजूद इसके कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक देश हैं, कुछ यही स्थिति खाद्य तेल को भी लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले देश के लोगों से अपील की थी कि वो अपने खाने के तेल में 10% कटौती करें। इस अपील की एक खास वजह थी, भारत में खाद्य तेल का कुल उत्पादन 1,30,00,000 टन है, जबकि देश की कुल जरूरत 2,90,00,000 टन है, यानी खपत उत्पादन से बहुत ज्यादा है और ये खपत बढ़ती ही जा रही है। आज की स्थिति ये है कि भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत 19 से 20 लीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है, यानी घरेलू जरूरत बढ़ती जा रही है और उत्पादन में उतनी तेजी नहीं है। साल 2020-21 में खाद्य तेल की मांग 2,50,00,000 टन थी और देश में उत्पादन था 1,10,00,000 टन। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1,40,00,000 टन खाद्य तेल आयात करना पड़ा और इसके अगले पांच वर्षों में खाद्य तेल की हमारी जरूरत 2,90,00,000 टन पहुंच गई, जिसमें उत्पादन मात्र 1,30,00,000 टन ही है और 1,60,00,000 टन खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें 2020-21 में आयात के लिए करीब 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और ये खर्च साल 2024-25 तक बढ़कर 1,61,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हम खाद्य तेल के तौर पर पाम ऑयल, सोयाबीन या सूरजमुखी का तेल आयात करते हैं और इसके लिए हम कई देशों पर निर्भर हैं, जैसे यूक्रेन, रशिया, नेपाल, ब्राजील, अर्जेंटीना, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। बात सिर्फ दाल या खाद्य तेल की भी नहीं है, देश में पैदा होने वाली लगभग हर फसल को खाद की जरूरत होती है और खाद के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। साल 2024-25 में हमें 6,50,00,000 टन खाद की जरूरत थी, जबकि देश में खाद का उत्पादन 4,70,00,000 टन ही था। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1,60,00,000 टन खाद आयात की गई, जिस पर करीब 87,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और ये खर्च ईरान युद्ध के बाद बढ़ता ही जा रहा है। खाद की विदेशी निर्भरता के साइड इफेक्ट हमें ईरान युद्ध में दिखे। मिडिल ईस्ट से आने वाला खाद और उसके कच्चे माल की सप्लाई बाधित हो गई थी, जिससे हालात कुछ समय के लिए बिगड़ गए। ऐसा देखा गया है कि खाने पीने की ज्यादातर चीजें आयात करने वाले देशों के सामने युद्ध एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसीलिए जब बात भारत की देसी थाली की है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने उत्पादन के जरिए ही अपनी देसी थाली को आत्मनिर्भर थाली बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई 5 महिलाओं की मौत हो गई थी। वो आपने भी खबर कहीं ना कहीं देखी होगी। डिलीवरी के बाद उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्हें एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाया गया जिसमें पानी भरा था। वो इंजेक्शन बेकार था, उसमें ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स ही नहीं था। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उम्मीद की जाती है कि सिस्टम जागेगा, कुछ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई जब तक होती है तब तक एक नया मामला सामने आ जाता है। अब अहमदाबाद में नकली ब्लड प्लाज्मा गैंग का पर्दाफाश हुआ है।
1: मेडिकल क्षेत्र में मिलावट का काम केवल दवाओं तक सीमित नहीं रह गया है, अब अहमदाबाद में नकली ब्लड प्लाज्मा गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ब्लड प्लाज्मा हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको लैब में खून से अलग किया जा सकता है और वो मरीजों के इलाज में काम आता है। लेकिन अहमदाबाद का ये गैंग असली प्लाज्मा में पानी भरकर उसे आधी कीमतों पर मरीजों को बेच रहा था। गुजरात पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस उनकी लैब में पहुंची तो उन्हें वहां पर बड़ी मात्रा में असली ब्लड प्लाज्मा, सलाइन वाटर और 1150 यूनिट नकली ब्लड प्लाज्मा के सैंपल मिले। ये गैंग उन मरीजों के परिवार वालों को टारगेट करता था जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत थी उनको कम कीमत में प्लाज्मा देने का लालच देकर लैब में लाया जाता था, फिर इसके बाद उनके खून से असली प्लाज्मा निकालकर उन्हें नकली प्लाज्मा कम कीमत पर बेच दिया जाता था। ये गैंग असली प्लाज्मा में पानी मिलाकर ज्यादा मात्रा में नकली प्लाज्मा तैयार करता था और फिर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। नकली ब्लड प्लाज्मा को किसी मरीज के शरीर में डालना उसकी जिंदगी से खिलवाड़ है। प्लाज्मा हमारे खून में मौजूद हल्के पीले रंग का तरल है जो हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा होता है। खून में मौजूद प्लाज्मा में 92% पानी, 8% प्रोटीन, ग्लूकोज और मिनरल्स जैसे जरूरी तत्व होते हैं। मुख्य रूप से लीवर में बनने वाले प्लाज्मा का काम है भोजन से मिले पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना और चोट लगने पर खून का थक्का जमा कर ब्लीडिंग होने से रोकना।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गजब दुनिया है, भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है फिर भी लोग कानों से देखते हैं। नमस्कार।
8: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। FIR दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में FIR की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि SIT गठित करने से पहले FIR दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
9: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में FIR दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई है FIR। FIR में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। आरोपी नंबर 2 अविनाश। आरोपी नंबर 3 मनीष यादव। आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा। आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा। आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र। आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे। आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, BNS की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, BNS की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, BNS की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, BNS की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन FIR पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
10: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है। गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है FIR में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
11: लेकिन बताया जा रहा है कि पिंगू यादव जी का नाम है और
10: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ FIR है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
11: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
10: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
9: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन FIR में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर SIT की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है? आज तक ब्यूरो।
8: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब FIR दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
12: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो PMO में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती SIT को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो SIT की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
10: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
13: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
14: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
15: क्या सरकार बस्ती में जैसी बनाती है जैसी का गुना?
12: जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल SIT के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात ये कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रिज मोहन दास ने गाटा संख्या 82, 131, 134, 132, 135, 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5,60,00,000 में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153, 82, 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247, 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरली दास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
16: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है, जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20,00,000 में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन, वो और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
17: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
12: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
8: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
18: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
8: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
19: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
16: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
20: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
19: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
21: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
19: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
8: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
19: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
22: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
19: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
23: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
19: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
24: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
19: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
25: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
19: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
8: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की, जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के एक कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं। और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे, जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुंचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए? इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।

0: राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
1: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको। ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
2: तो
1: जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
0: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है? आज तक ब्यूरो।
3: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल हैं। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के

0: महासचिव राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये वो चेहरे हैं जो SIT की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
1: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
2: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है।
3: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
4: क्या सरकार बस्ती में जैसी बनाती है, जैसी का बना।
0: जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल SIT के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरली दास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि SDM की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
1: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको SDM लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी आलोक बंसल से। ये भी छोड़ दीजिए, फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
5: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो SIT के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, SIT को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
0: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: BJP ने UP में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
7: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 OBC, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 OBC, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 OBC और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 OBC, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
6: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
8: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
9: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
10: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
8: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
11: अब पासपोर्ट is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity.
8: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए NRC में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में NRC की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ए जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
12: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
13: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
12: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
14: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
12: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
15: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
12: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
16: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
12: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
6: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मोहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मोहर्रम जुलूस की यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आगे लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
3: लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जी का नाम है और
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल हैं। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
2: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
5: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
6: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
7: क्या सरकार बस्ती में जाति बनाती है, जाति का गुना?
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153/42,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
8: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20,00,000 में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
9: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
4: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
10: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरण को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
11: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
12: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
13: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
11: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
14: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
11: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
1: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
15: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
1: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
16: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
1: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
17: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
1: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
18: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
1: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए, इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मोहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मोहर्रम जुलूस की यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आगे लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम

0: बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
1: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको। ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
2: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
1: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
0: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
1: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
5: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
6: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
7: जहां सरकार बस्ती में जैती बनाती है, जैती का गुना।
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात ये कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय

0: और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपतराय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपतराय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपतराय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल मनीष बंसल शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
1: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
2: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो SIT के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, SIT को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
0: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि ना विश्वास कम हो ना सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, ना इधर से कोई कर पाए ना उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
4: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष 8 महामंत्री 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
5: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
6: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
7: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
5: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
8: पासपोर्ट is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity.
5: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए NRC में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में NRC की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में NRC NPR की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें NRC बनाना अनिवार्य किया गया। NRC में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम NRC में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: NCERT ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
5: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
9: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
5: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
10: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
5: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
11: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया,
5: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
12: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखें ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
5: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के एक कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर मौसम के बिगड़े मिजाज की। महाराष्ट्र में मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें आने लगी। पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। जलगांव से तो बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।
4: पहले ही बरसात में तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसी जलधारा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। देखिए ये जलगांव की तस्वीरें, पहले ही बरसात में ये आलम है। जलधारा के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है। पानी का वेग ट्रैक्टर को बहा ले जाने पर आमादा है। इसी जलगांव की दूसरी तस्वीर देखिए, बेहिसाब बरसात हुई और इस बरसात में ये बस यहाँ फंस गई। पानी में आधी बस डूबी हुई और जान बचाने के लिए ये लोग बस की छत पर खड़े हैं। जलगांव के मुक्ताई नगर और रावेर में बादलों ने तबाही मचाई है। मौसम की मार अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ी है। यजाली में कल बादल फटने जैसी तस्वीरें सामने आई थी। यहां रास्ते बंद हैं। देखिए कैसे लोग अपनी बाइक और सामान लादकर निकल रहे हैं। दार्जिलिंग में भी कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन हुआ जिसके बाद रास्ता बंद है। अब यहाँ मलबा हटाने का काम हो रहा है। मुंबई में भी मॉनसून ने दस्तक दी तो परेशानियों का अंबार लग गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। अभी तो मॉनसून आया ही है और अभी से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। आज तक बेरो
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी है, जबकि कई अज्ञात। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको। ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
3: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
2: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
4: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
5: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
3: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रिज मोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
6: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो जो, जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20,00,000 में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
7: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
3: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
8: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
9: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
10: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
11: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
9: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
12: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
9: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
13: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
14: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
13: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
15: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
13: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
16: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
13: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
17: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
13: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कुंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हावभाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हावभाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: चेतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आगे लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते, गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए।

0: दान का घोटाला हुआ उसके खिलाफ FIR है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
1: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
0: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
2: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन FIR में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर SIT की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है? आज तक ब्यूरो।
3: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब FIR दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो PMO में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती SIT को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो SIT की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
0: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
5: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
6: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
7: क्या सरकार बस्ती में जैसी बनाती है, जैसी का बना।
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल SIT के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को BJP के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51

0: 1,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153/82,45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247/2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
1: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है, और 20,00,000 में खरीद के 2,50,000,000 रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1,00,00,000 रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
2: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
0: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
4: सत्ताईस का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
5: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है।
6: पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
7: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
8: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
6: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
9: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
6: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
10: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
11: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
10: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
12: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
10: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
13: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
10: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
14: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
10: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कुंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लव कुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
3: लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जी का नाम है और
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
2: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
5: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
6: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
7: क्या सरकार बस्ती में जाति बनाती है, जाति का बुनियाद?
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153/82,45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
8: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20,00,000 में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
9: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
4: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
10: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरण को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
11: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
12: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
13: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
11: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
14: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
11: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
15: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
16: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
15: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
17: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
15: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
18: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
15: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
19: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
15: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के एक कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
3: लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जी का नाम है और
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक पेरो
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल हैं। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल

0: संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
1: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
2: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है।
3: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
4: जहां सरकार बस्ती में जैसी बनाती है, जैसी का गुना।
0: जिस राम मंदिर में रोज हजारों, साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात ये कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को गाटा संख्या 153 82 45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
1: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है उसको

0: दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
1: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो SIT के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, SIT को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
2: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
4: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
5: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
6: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
7: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
5: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
8: पासपोर्ट is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity.
5: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए NRC में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में NRC की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में NRC NPR की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें NRC बनाना अनिवार्य किया गया। NRC में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम NRC में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
5: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
9: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
5: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
10: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
5: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
11: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
5: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
12: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखें ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
5: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के एक कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल भी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफे शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुँचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर मौसम के बिगड़े मिजाज की। महाराष्ट्र में मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें आने लगी। पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। जलगांव से तो बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।
4: पहले ही बरसात में तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसी जलधारा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। देखिए ये जलगांव की तस्वीरें, पहली ही बरसात में ये आलम है। जलधारा के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है। पानी का वेग ट्रैक्टर को बहा ले जाने पर आमादा है। इसी जलगांव की दूसरी तस्वीर देखिए, बेहिसाब बरसात हुई और इस बरसात में ये बस यहाँ फंस गई। पानी में आधी बस डूबी हुई और जान बचाने के लिए ये लोग बस की छत पर खड़े हैं। जलगांव के मुक्ताई नगर और रावेर में बादलों ने तबाही मचाई है। मौसम की मार अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ी है। यजाली में कल बादल फटने जैसी तस्वीरें सामने आई थी। यहां रास्ते बंद हैं। देखिए कैसे लोग अपनी बाइक और सामान लादकर निकल रहे हैं। दार्जिलिंग में भी कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ नेशनल हाईवे 10 पर भूस्खलन हुआ जिसके बाद रास्ता बंद है। अब यहाँ मलबा हटाने का काम हो रहा है। मुंबई में भी मॉनसून ने दस्तक दी तो परेशानियों का अंबार लग गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। अभी तो मॉनसून आया ही है और अभी से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। आज तक देरो
3: बहुत छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपापोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
3: लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जी का नाम है और
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक पेरो
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल है। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
2: ये पूरे जमीन घोटाले के सबूत है,
5: बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है,
6: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
7: क्या सरकार बस्ती में जैटी बनाती है, जैटी का बुनियाद?
4: जिस राम मंदिर में रोज हजारों साल में करोड़ों लोग आस्था विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, जहां वो श्री राम में अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में तन मन धन सब समर्पित करते हैं, क्या उस मंदिर की जमीन से लेकर दान तक में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई? ये सवाल एसआईटी के बुलावे पर वहां आरोपों की फाइल सौंपने पहुंचे संजय सिंह की तरफ से उठा है, जो आरोप लगाते हैं कि सस्ते रेट पर स्थानीय लोगों से जमीन लेकर फिर कई गुना ज्यादा रेट पर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को मिलीभगत करके बेचा गया। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4,97,76,000 रुपए की जमीन चंपत राय की तरफ से 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 2 करोड़ में खरीदा और फिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा। आरोपों के मुताबिक अहम बात यह कि जमीन खरीदने और बेचने दोनों मामले में गवाह बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। दावा है कि यहां पर 16.5 करोड़ का घपला हुआ। 20 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 148 41,60,000 रुपए की जमीन जगदीश कुमार मिश्रा ने 2 करोड़ में चंपत राय को बेची। इस जमीन के भी गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 21 फरवरी 2021 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से गाटा संख्या 135 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेची। इस जमीन को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। आरोप है कि तत्कालीन मेयर के भतीजे को 2.30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 14 मई 2020 को बीजेपी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को गाटा संख्या 36 सावित्री देवी से दान में मिली और ये जमीन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 20 मई 2021 को महंत ब्रजमोहन दास ने गाटा संख्या 82 131 134 132 135 92,50,000 रुपए की जमीन चंपत राय को 5.60 करोड़ में दी। गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा थे। 27 मार्च 2021 को 51,80,000 रुपए महंत रघुवर शरण की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 11 मई 2021 को घाटा संख्या 153/82,45,24,000 की जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच का विषय है। 2 अप्रैल 2024 को घाटा संख्या 247 2,92,86,000 की जमीन महंत मुरलीदास से चंपत राय ने 23,61,00,000 में खरीदी, जबकि दावा है कि एसडीएम की तरफ से ये सत्यापित किया गया कि जमीन नजूल की है। 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवारी बंसल से 55,47,31,000 रुपए में खरीदी गई। ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से लगभग 47,00,000 रुपए प्रति बिस्वा की दर पर खरीदी गई, जबकि इसी जगह के निकट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा है कि किसानों से 4,40,000 रुपए बिस्वा में जमीन खरीद ली गई थी।
8: वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया, नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55,47,00,000 रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47,00,000 रुपए बिस्वा, और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी आलोक बंसल से, ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20,00,000 रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20,00,000 में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। एक जमीन है जो भाजपा के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है, उसको दान में मिलती है जमीन वो, और दान की जमीन वो उठा के 1 करोड़ रुपए में बेच दे रहा है चंपत राय को।
9: उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एसआईटी के सामने कागज दे रहे हैं, एक ऐसी संस्था के विरोध में दे रहे हैं जिसके ऊपर 65 करोड़ राम भक्तों ने विश्वास किया था। आप गली में खेलने वाले कुछ लोगों को कागज नहीं बांट रहे हैं, एसआईटी को दे रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आपको शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाने चाहिए।
4: यह आरोप विपक्ष की तरफ से 2021 में भी लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चढ़ावा चोरी के बाद जमीन घोटाले का आरोप फिर से जागा है। सवाल है कि जमीन खरीदने से लेकर अब चढ़ावा चोरी के आरोपों तक में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय। इसलिए जरूरी है जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए, ताकि न विश्वास कम हो न सियासत हावी, बस आस्था से खिलवाड़, न इधर से कोई कर पाए न उधर से। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बीजेपी ने यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया।
10: समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरण को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: और अब पासपोर्ट को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे की खबर। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सरकार सफाई दे रही है कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है।
11: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
12: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
13: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
11: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
14: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
11: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। अब इमरजेंसी पर राजनीतिक रण छिड़ गया।
1: इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।
15: इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ।
1: बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया।
16: कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
1: मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है।
17: 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया।
1: सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है, इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है।
18: जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखे ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ।
1: अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर पुणे की उस हेट स्टोरी की जिसकी चर्चा आज हमारे पूरे देश में हो रही है। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने वाली सिया गोयल का ऐसा सच सामने आया जो पूरे मर्डर प्लान को डिकोड कर देता है। कैसे सिया गोयल ने पुणे के कैफे में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दिखाते हैं केतन के मर्डर का सिया सच।

0: पुणे के केतन हत्याकांड में सिया पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने कैफे में तैयार किया मर्डर प्लान। सिया और चेतन चौधरी का मर्डर प्लान वाला वीडियो सामने आया। पुणे के एक कॉफी कैफे से केतन हत्याकांड का पूरा प्लान डिकोड। सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही गिराने का प्लान क्यों बनाया। अब तक आपने देखा कि पुणे की सिया गोयल ने कैसे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। अब तक आपने 20 साल की सिया और 26 साल के केतन की सगाई का वीडियो देखा। आपने केतन को सिया पर प्यार लुटाते हुए दोनों के वीडियो भी देखे। आपने ये कहानी भी सुन ली कि 31 मई को सिया ने लोहगढ़ किले में केतन को ले जाकर मारने के लिए रेकी की और 14 जून को सिया ने एक बार केतन को सांप का बहाना बनाकर धक्का भी दिया, लेकिन केतन बच गया। फिर सिया ने 18 जून को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर लोहगढ़ के किले की पहाड़ी से केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन 17 जून को यानी केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ थे, दोनों क्या कर रहे थे, कैसे सिया ने केतन के मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। अब हम आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो केतन के मर्डर की पूरी साजिश को डिकोड करता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। 17 जून शाम 4:35 पुणे का थर्ड वेव कॉफी कैफे। अब तक सिया लोहगढ़ किले की रेकी कर चुकी थी और केतन को पहाड़ी से धक्का देने की रिहर्सल दी, लेकिन फाइनल प्लान को अंजाम देने के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे में मिलते हैं और सिया अपने मोबाइल फोन में बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, यानी लोहगढ़ किले का पूरा व्यू, पहाड़ी खाई, सब कुछ।
1: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कुंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: इस कैफे में एक घंटे के दौरान दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। अगर केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था।
1: 18 जून को सिया ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को सिया और चेतन चौधरी यही पुणे के कैफी शॉप में मिले थे जहां शाम को 4:30 to 5:30 तक लगभग एक घंटा दोनों बैठे थे। इसी दौरान सिया ने यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की तस्वीरें उसे दिखाई, एक लोहगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री है वो भी उसे दिखाई और पूरे साजिश इसी कैफे में रची गई।
0: और अगले दिन यानी 18 जून को सिया जबरदस्ती केतन के माँ बाप के मना करने के बावजूद उसे लोहगढ़ किले के अंदर लेकर पहुंचती है। पीछे से सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक स्कूटी से लोहगढ़ किले पहुंचता है। वो अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जाता है। चेतन चौधरी किले में कुछ इस तरह से दाखिल होता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी और दोनों प्लान के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। सिया फोन करके बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया और किले की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पहला सुराग, सिया के हाव-भाव से केतन की बहन को शक हुआ। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, तो इस सवाल से सिया के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। दूसरा सुराग, लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज से मिला जब गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी निकला। तीसरा सुराग, सिया की एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में से करीब करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। और अब सिया और चेतन चौधरी का पुणे के थर्ड वेव कॉफी कैफे के सीसीटीवी वीडियो का सामने आना हत्या के इस प्लान को पूरी तरह से डिकोड कर देता है।
2: उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: केतन मर्डर केस में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुणे पुलिस ने चेतन की दुकान में काम करने वाले शख्स नीरज को भी हिरासत में लिया है, जिसका फोन लेकर चेतन चौधरी लोहगढ़ किले में गया था। शक है कि चेतन ने इसी फोन से सिया से कई बार संपर्क किया होगा। नीरज पिछले 3 साल से चेतन के साथ काम कर रहा था। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन से हुड़दंगी तस्वीरें सामने आई, जहां जुलूस के दौरान ब्लास्ट किया गया।
4: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन ने विस्फोट करके उसे उड़ा दिया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आगे लिखा था। वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा युवकों के अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियोज में अलग अलग तरह के विस्फोट नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
5: तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके, इसके अलावा जो क्रेन का मालिक है गोपाल माली जी, उनको भी गिरफ्तार करके हम हिरासत में लेंगे।
4: शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां आपस में कंपटीशन चलता है। ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट और व्यूज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी 9-8 गिरफ्तार। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर शिकंजा। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार की मंशा पर सवाल, बड़ों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बलि। 27 के लिए यूपी बीजेपी का प्लान, प्रदेश संगठन की टीम में पिछड़ों का दबदबा, 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम। पासपोर्ट महंगा, 1500 की जगह अब देने होंगे 2500, तत्काल की फीस 5000, 1 जुलाई से नियम लागू। वेनेजुएला में भूकंप से त्राही, 150 से अधिक की मौत, पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर मदद का हाथ बढ़ाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 8 आरोपी नामजद हैं और कई अज्ञात। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर की टाइमिंग और नामजद आरोपियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईटी गठित करने से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम आरोपियों की लिस्ट से गायब है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों पर शिकंजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज करवाई एफआईआर। एफआईआर में चंपत राय का नाम मौजूद नहीं। क्या बड़े लोग बचे, सिर्फ छोटे लोग फंसे? चढ़ावा चोरी में लीपा पोती का खेल शुरू। चढ़ावा चोरी में 8 नपे, लेकिन चंपत बचे। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चौंकाने वाली बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं, जबकि कई अज्ञात हैं। सबसे पहले आपको चढ़ावा चोरी केस में नामजद 8 आरोपियों की मंडली की कुंडली के बारे में बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, आरोपी नंबर 2 अविनाश, आरोपी नंबर 3 मनीष यादव, आरोपी नंबर 4 लवकुश मिश्रा, आरोपी नंबर 5 अनुकल्प मिश्रा, आरोपी नंबर 6 सुभाष चंद्र, आरोपी नंबर 7 करुणेश पांडे, आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा। इन 8 आरोपियों में सबसे बड़ा नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। ये वही टिन्नू यादव है जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना, बीएनएस की धारा 306 यानी किसी नौकर या क्लर्क के द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चोरी करना, बीएनएस की धारा 316(5) यानी आपराधिक विश्वासघात को सरकारी अफसर, बैंकरों, कारोबारियों या एजेंटों के द्वारा अंजाम दिया जाना, बीएनएस की धारा 317(4) यानी चोरी के आदतन अपराधी, बीएनएस की धारा 61 की उपधारा 3, धारा 61 का मतलब आपराधिक साजिश, जबकि धारा 3(5) का मतलब साजिश को अंजाम देने के लिए सभी अपराधियों की समान भागीदारी और इरादा। मामला दर्ज होने के बाद अब नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप यही है कि चढ़ावा चोरी केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे मोटे आरोपियों पर ही कानूनी फंदा कसा जा रहा है।
2: इसमें चंपत राय का नाम है, चंपत राय का नाम है कि नहीं है, तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है, गोपाल राव का नाम है कि नहीं है, जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में, पहले कागज मिल जाए तब बताएंगे आपको।
3: लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जी का नाम है और
2: ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है, अगर कागज हो तो बताइए मुझे।
3: ये तो सर अभी रात तक खुल जाएगा,
2: तो जब खुलेगा तब बात कीजिएगा।
1: विपक्ष का यही आरोप है कि चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ी मछली चंपत राय है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। सवाल यही है कि क्या एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी सबूत नहीं मिले हैं, या फिर एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट में बड़े पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: 7 जून को पहली बार आरोप लगा, 15 जून से जांच शुरू हुई, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आई और अब एफआईआर दर्ज। लेकिन इस अयोध्या कांड में अभी बहुत सारे सवाल हैं। अब नया विवाद जमीन घोटाले के आरोप के साथ खुल गया है।
4: चढ़ावा चोरी की जांच चल ही रही है, तब तक सोना चांदी के चोरी के आरोपों ने मामले को और गंभीर कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी होता तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घटते ट्रस्ट को और संकट में डाल दिया ट्रस्ट के ही जवाब ने, जो पीएमओ में हुई शिकायत तक पर कान नहीं देना चाहता। और अब जांच करती एसआईटी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के आरोप लगाकर 11 नई फाइल दे दी। इन सब के केंद्र में कुछ नाम जैसे चंपत राय यानी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के ड्राइवर से लेकर प्रबंधन के तमाम काम संभालने तक की जिम्मेदारी उठाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो चेहरे हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में। चौंकाने वाली बात ये कि अब तक ये सभी चेहरे मंदिर की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन अब क्या इन सभी चेहरों तक केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि जमीन चोरी के आरोपों तक में जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद जमीन चोरी तक के आरोप अयोध्या में लगने लगे।
5: ये पूरे